FM 102.2 मेगाहर्ष पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 12वीं तिथि, तदनुसार 2 जून सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5:58 और 30 सेकंड हो रहे हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ओमिन आउं लाइन ने कल व्यापार और आर्थिक रक्षा सुरक्षा तथा सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि दोनों पक्षों ने आपसी संपर्क के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा

0: करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमार की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
1: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि म्यांमार भारत की पड़ोसी प्रथम, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। राष्ट्रपति भवन में म्यांमार के राष्ट्रपति का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच सदियों पुराने गहरे सांस्कृतिक, सभ्यतागत और आध्यात्मिक संबंध हैं। भारत के साथ म्यांमार के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता कल से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में कल भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों के संवाद के दूसरे संस्करण के दौरान दोनों देशों ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने रिलायंस कम्युनिकेशन ग्रुप के शीर्ष अधिकारी अमिताभ झुनझुनवाला को बैंक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ऋण निधि के दुरुपयोग के कारण बैंकों को अनुचित नुकसान हुआ। इससे पहले सीबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से प्राप्त शिकायत के आधार पर रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड और अनिल धीरूभाई अंबानी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने हमीरपुर जिले में बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल के ढहने की जांच के लिए 2 उच्चस्तरीय समितियों का गठन किया है। हादसे में 6 श्रमिकों की मृत्यु हो गई थी। जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश सेतु निगम द्वारा गठित समितियों ने जांच शुरू कर दी है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने स्पष्ट किया है कि पुदुचेरी में पेट्रोल, डीजल या रसोई गैस की कोई कमी नहीं है और पूरे केंद्र शासित प्रदेश में इनकी आपूर्ति सामान्य बनी हुई है। तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेल उद्योग के राज्यस्तरीय समन्वयक ने कहा कि पेट्रोलियम उत्पादों का पर्याप्त भंडार है और निर्बाध आपूर्ति जारी है। ईरान ने चेतावनी दी है कि लेबनान में हिजबुल्ला के खिलाफ इसराइल के हमलों से अमेरिका के साथ संघर्ष विराम पर असर पड़ सकता है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने बेरूत के दक्षिणी उपनगरीय इलाकों में हमले का आदेश दिया था। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्षी ने कहा कि अमेरिका के साथ हुए समझौते में लेबनान सहित सभी मोर्चों पर संघर्ष विराम शामिल है। जापान में पुरुष अंडर 18 हॉकी एशिया कप में कल भारतीय टीम ने कोरिया को 4-1 से हराया। कप्तान केतन कुशवाहा ने 2, वरिंदर सिंह और शाहरुख अली ने 1-1 गोल किया। और वहीं 2026 के एशियाई खेलों से पहले 22 नौका चालकों को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया गया है। इनमें ओलंपियन बलराज पंवार, एशियाई खेलों में रजत पदक विजेता अरविंद सिंह और जसविंदर सिंह शामिल हैं। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज गरज के साथ तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में भी आज गरज के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मेगाहर्ष पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। हरि शरणम।

0: वंदना कार्यक्रम में अभी आपने सुना जगजीत सिंह, अनूप जलोटा, लता मंगेशकर, अनुराधा पौडवाल और साथियों को। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम चिंतन बिंदु।
1: सदाचार एक व्यापक शब्द है। इसमें ओज, मधुर वाणी, अनुकरणीय चरित्र, मृदुलता, सहिष्णुता, त्याग आदि अन्य भावनाएं समाहित हैं। सदाचार दो शब्दों से मिलकर बना है, सत एवं आचार। सत का अर्थ है सनातन, शाश्वत। सत्य को जानने के लिए आवश्यकता है धैर्य, तपस्या एवं संयम की। अहिंसा, निर्भयता, निस्वार्थ सोच, प्रेम, श्रद्धा, परिश्रम एवं सादगी सत्य के आवश्यक अंग हैं।

0: इन सभी गुणों को अपने आचरण में लाना ही सदाचार है। हमारा व्यवहार सभी से अच्छा होना चाहिए, वाणी मधुर एवं संयत हो। अच्छे आचरण से हम दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति को सही राह पर ला सकते हैं, उसे अपना बना सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब हम किसी सदाचारी व्यक्ति से मिलते हैं तो उनकी ओर सम्मोहित हुए बगैर नहीं रह पाते। उनके व्यक्तित्व से उनकी तेजस्विता स्वतः ही झलक उठती है। सर्वप्रिय व्यक्ति बनने की पहली सीढ़ी ही सदाचार है। सदाचार से ही मनुष्य उन्नति कर सकता है, प्रगति की ओर अग्रसर हो सकता है, उसे कला, साहित्य एवं संगीत जैसे क्षेत्र में अद्भुत सिद्धि प्राप्त हो सकती है। असभ्य व्यवहार से हमारे सभी गुण नजरअंदाज कर दिए जाते हैं। अंधे को अंधा कहकर उसके हृदय की शुभकामनाएं अर्जित नहीं की जा सकती। प्यार के संबोधन को पशु पक्षी तक समझते हैं। मानव कितना ही विवेकी क्यों ना हो, पर स्वार्थ से पराजित हो ही जाता है। ईमानदारी और कर्तव्य विहीन सदाचार से परे होकर जीने का कोई अर्थ नहीं होता। संपूर्ण मानव जगत की भागदौड़ का उद्देश्य है सुख की प्राप्ति। मनुष्य ने इस सुख की प्राप्ति के लिए धरती आकाश एक कर डाला है, किंतु सुख की चाह में उसका भटकाव निरंतर जारी है। असल बात तो यह है कि हमने गंभीरता पूर्वक सोचा ही नहीं है कि सुख क्या है और इसकी प्राप्ति का मार्ग कौन सा है। इसी सोच के अभाव का परिणाम दुख है, संघर्ष एवं भटकन है। हमारी मानसिक चाल उल्टी है। प्रिय दर्शन अर्थात सभी में अच्छा ही अच्छा देखने की आदत डालना एक श्रेष्ठ गुण होता है। इससे अपने सद्गुणों का विकास तो होता है, पर यह होता कितना कठिन है। हमें दूसरों के दोष दर्शन में बड़ा ही आनंद आता है। इससे हमारा अहं तुष्ट तो होता है, पर यह संतुष्टि लौकिक और पारलौकिक दोनों ही दृष्टियों से हानिकारक है। प्रकृति ने संसार के हर पुरुष को कोई न कोई सद्गुण अवश्य ही दिया है। किसी में सच्चाई अधिक है, कोई ईमानदार है, कोई अच्छा वक्ता है तो कोई अच्छा श्रोता ही है। आत्मीयता, उदारता, साहस, नैतिकता, श्रमशीलता जैसे सदाचारों में से हर किसी के पास कोई ना कोई गुण अवश्य होता है। क्यों ना हम उसी के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करें। सुंदर, संतुलित एवं सभ्यतापूर्ण आचरण जीवन को महकाता है। इनके अभाव में जीवन, उसका विकास, उन्नति थम सी जाती है। वर्तमान परिस्थिति में समाज एक संक्रामक दौर से गुजर रहा है। समाज में सांप्रदायिकता, दुराचार, भ्रष्टाचार, लूटमार और हिंसा की बढ़ती प्रवृत्ति का उत्तरोत्तर विकास हो रहा है। मानवता की सारी सीमाओं को लांघकर अपना नग्न रूप प्रस्तुत किया जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में सदाचार पूर्ण व्यक्तित्व ही समाज को सही राह दिखा पाएगा। आज फिर से आवश्यकता है गांधी जैसे युग पुरुष की, भगवान राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम की और श्री कृष्ण जैसे कर्मयोगी की।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन बिंदु, विषय था सदाचरण, आलेख केजी महेश्वरी और वाचन स्वर था यतीन्द्र चतुर्वेदी का। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं श्री रामचरित मानस गान।

पार्वती की कठोर तपस्या का वर्णन किया। शिव पार्वती के विवाह के प्रसंग में उन्होंने संक्षेप में कार्तिकेय के जन्म की कथा भी सुनाई। शिवजी का चरित सुनकर मुनि भरद्वाज अत्यंत प्रसन्न हुए। उस कथा को आगे सुनने की उनकी लालसा और भी बढ़ गई। ये जानकर मुनि याज्ञवल्क्य अतिशय प्रेरित हुए।

अभी आप सुन रहे थे सतीश भाटिया के संगीत निर्देशन में तैयार श्री रामचरित मानस गान का आज का संगीतबद्ध प्रसंग, जिसे स्वरों में पिरोया था वाड़ी जयराम ने FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

कुछ देर बाद यानी 6 बज का 50 मिनट पर हमारे श्रोता कार्यक्रम खेती की बातें में जानकारी प्राप्त करेंगे। विषय रहेगा गर्मियों की जुताई और वार्ताकार होंगे डॉक्टर एस के झा। सात बजे हमारे श्रोता आनंद लेंगे पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम भूले बिस्तरे गीत का और 7:18 का समय होगा प्रादेशिक समाचारों का, जिन्हें हम आकाशवाणी लखनऊ से अनुप्रसारित करेंगे।

कार्यक्रम में हमारे श्रोता आज आनंद लेंगे यात्रा पृष्ठ 84 कोष की। विषय होगा काम वन और आलेख प्रस्तुति सहयोग होगा रश्मि शर्मा का। साथ ही कार्यक्रम में आप आनंद लेंगे हवेली संगीत का। आप सुनेंगे शरद चतुर्वेदी को और अगला पद होगा हरिवंश राय का। 8:30 पर आप सुनेंगे चित्रपट संगीत के कार्यक्रम में गीतांजलि के कुछ नगमे। साथ ही 9:00 आप सुनेंगे हिंदी वार्ता, हिंदी भाषा साहित्य एवं भारतीय जनमानस। वार्ताकार प्रेमपाल शर्मा, साहित्यकार एवं संपादक से ओपी सिंह की बातचीत। का 25 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आबोहवा। 9:30 पर आप सुनेंगे विशेष कार्यक्रम ब्रज में पुरुषोत्तम मास और प्रशासन की तैयारी। वार्ताकार होंगी रश्मि शर्मा। हमारे श्रोता सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। 11:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। 12:00 आप सुनेंगे व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित कार्यक्रम गीत बात और SMS। 12:30 का समय रहेगा ब्रजलोकगीत कार्यक्रम का। आज कलाकार होंगे श्री बाबू कौशिक। 15:00 पर बहनों का कार्यक्रम होगा कार्यक्रम वनिता लोक। आज चर्चा का विषय रहेगा बच्चों को दे अच्छे संस्कार। साथ ही चर्चा सुनेंगे परिवार में महिलाओं का महत्व। कार्यक्रम में वार्ता होगी घर में फेशियल कर चेहरा बनाए खूबसूरत। वार्ताकार होंगी किशोरी पाठक। 30 पर सैनिक भाइयों के लिए होगा फिल्म संगीत।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से। और आइए सुनते हैं एक जानकारी। किसान भाइयों, इस मंगलवार यानी कि आज शाम 6:15 से 30 मिनट अवधि के कार्यक्रम हेलो किसानवाड़ी कार्यक्रम में आज का विषय है पशुपालन से जुड़ी है किसान और खेत की समृद्धि। इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे डॉक्टर अरविंद कुमार त्रिपाठी। किसान भाई, पशुपालक भाई, अगर मेंटेनेंस, भूमि सुधार, मृदा की उर्वरता बढ़ाने हेतु जैविक उपाय, कार्बन नाइट्रोजन अनुपात आदि जानकारी, बदलते मौसम में अपने पशुओं की उचित देखभाल जैसे उनका आहार, आवास व्यवस्था, लू से बचाव तथा बरसात से पूर्व टीकाकरण पर जानकारी हेतु हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे डॉक्टर अरविंद कुमार त्रिपाठी। हमारे टेलीफोन नंबर 25 30 135 पर फोन करके अथवा मोबाइल नंबर 94 12 22 55 75 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस संबंध में आप सीधे बातचीत कर सकते हैं डॉक्टर अरविंद कुमार त्रिपाठी से। कार्यक्रम का समय होगा आज मंगलवार यानी 6:15 से 6:45 के मध्य। सूचना समाप्त हुई। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम खेती की बातें में ये जानकारी।
1: तो ऐसे समय में जब गर्मी का मौसम चल रहा है, हमारे खेत खाली हैं, तो ये उपयुक्त समय है कि हम अपने खेतों की उचित देखभाल करें ताकि अगली जो फसल है उसके लिए वो तैयार हो सके। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है गर्मी की जुताई का। तो ये क्यों आवश्यक है, इसको करने से आपको क्या लाभ होगा, इसके बारे में जो वैज्ञानिक तथ्य है वो उस पर प्रकाश फिर से डाल लें डॉक्टर एस के झा साहब।
2: बहुत अच्छा प्रश्न किया ओपी सिंह जी आपने कि ये गर्मी की जुताई के बारे में किसान भाइयों को अक्सर हम लोग बताते ही रहते हैं और कई बार आप लोग जानते भी होंगे और करते भी होंगे, फिर भी आज दोहराने का अवसर मिला है तो मैं दोहरा रहा हूँ कि गर्मी की जुताई करने से कीटों, रोगों, खरपतवारों या भूमि में वायु संचार को नियंत्रित किया जा सकता है। यानी

0: इन सब चीजों को नियंत्रित किया जा सकता है, कीटों को भी, रोगों को भी, खरपतवारों को भी, और भूमि के अंदर में वायु के संचार को भी। भूमि में आपके कीड़े छिपे होते हैं, उसके अंडे होते हैं, आपके खरपतवारों के बीज होंगे, फफूंद के बीज होंगे, सूक्ष्म जीव होंगे जो बीमारियां फैलाते रहते हैं। और अगर आप गर्मी की जुताई करते हैं तो ये ऊपर आ जाते हैं, तो सूर्य की तेज किरणों से ये नष्ट हो जाते हैं, भूमि के छिद्र खुल जाते हैं जिससे भूमि में जल सोखने की क्षमता बढ़ जाती है। भूमि के निचली सतह पर पाए जाने वाले जो लाभदायक सूक्ष्म जीव की क्रियाएं वो तेज हो जाती हैं। कुछ तो हमारे मित्रवत भी हैं फफूंद सब। इसके परिणाम से क्या होता है कि भूमि में जीवांश पदार्थों की मात्रा एवं भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। इसी के साथ पौधों को पोषक तत्वों एवं खनिज पदार्थों की उपलब्धता भी बढ़ जाती है। तो ये कुल मिलाकर के एक समेकित कार्य करता है गर्मी की जुताई, इसलिए ये आवश्यक है।
1: तो निश्चित तौर पर इसके लाभ तो हैं, लेकिन लाभ तभी मिलेंगे जब हम कोई भी काम उचित तरीके से करें। अगर उचित तरीके से नहीं करेंगे तो हो सकता है जितना लाभ हमें मिले उतना नहीं मिल पाएगा। तो अब वो गर्मी की जुताई आप करने जा रहे हैं, उसका तरीका क्या होना चाहिए जिससे आपको सही लाभ मिले, वो फिर से बता रहे हैं डॉक्टर जी।
0: हाँ, ये भी सही है कि अगर आप गर्मी की जुताई करते हैं तो उसका जो अनुमोदित तरीका है, जो यंत्र है, उसका इस्तेमाल करें। जैसे मिट्टी पलटने वाले हल के बारे में आप सभी जानते होंगे, जिसको हम मोल्ड बोर्ड प्लॉ कहते हैं। तो इससे यदि आप 15 सेंटीमीटर या 6 इंच या आधे फीट की गहराई तक गर्मी की जुताई करनी चाहिए। ये तो इस हल से, देसी हल द्वारा जुताई न करें, क्योंकि इसके द्वारा मिट्टी पलटना संभव नहीं हो पाता है। दूसरी बात कि यदि खेत में ढलान हो तो जुताई ढलान के विपरीत दिशा में करनी चाहिए, जिससे वर्षा ऋतु में खेत से पानी या मिट्टी बहके न जाने पाए। गर्मी की जुताई रबी फसल की कटाई के बाद प्रायः मई के प्रथम सप्ताह में शुरू करते हुए जून के दूसरे सप्ताह के बीच करनी चाहिए। यानी कि आपको एक डेढ़ महीने का समय मई से लेके जून तक, आपको जून के दूसरे सप्ताह तक करनी चाहिए। जो सबसे ध्यान देने योग्य बात है वो ये है कि गर्मी की जुताई से मिट्टी के बड़े बड़े ढेले बन जाएं, ना कि मिट्टी को आप भुरभुरा बना दें। ये आवश्यक है कि वो ढेले बने और ढेले पलट जाएं, इसलिए इसको मिट्टी पलटने वाले हल से ही आप गर्मी की जुताई करें।
1: तो किसान भाइयों, जो बात बताई गई है वो ये है कि जब आप गर्मी की जुताई कर रहे हैं तो दो चीजें विशेषकर ध्यान रखनी चाहिए, जिस पर डॉक्टर साहब ने विशेष बल दिया, वो है एक तो जुताई हमेशा मिट्टी पलटने वाले हल से ही करें, और दूसरे जुताई ऐसी करें जिससे खेत में ढीले बने, यानी मिट्टी भुरभुरी नहीं हो। उससे क्या होगा कि आपकी जमीन में वायु का प्रसार बढ़ेगा, जो हमारे हानिकारक कीड़े हैं वो धूप में मर जाएंगे।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बातें में जानकारी, विषय था गर्मियों की जुताई। वार्ताकार थे डॉक्टर एस के झा। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी देर में आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।

0: आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी म्यांमार देशस्य राष्ट्रपतिः यू मिन आंग लाइंग इत्येषश्च ह्यः नवदिल्ल्यां द्विपक्षीयोपवेशनं कृतवन्तौ। उभयोः मध्ये ऐतिहासिक सभ्यतागत सम्बन्धान् इतोपि सुदृढीकर्तुं वार्ता अभवत्। संवादे म्यांमार भारत देशयोः मिथः सुरक्षां सम्पर्कं च समेत्य देशद्वयोः सम्बन्धानां समेपि पक्षाः चर्चिताः। उपवेशनस्यानन्तरं विदेशसचिवः विक्रम मिसरी अवोचत् यत् देशद्वयेन विदेशव्यवहार विकास शिक्षा स्वास्थ्यादि विषयेषु कार्याचरणाय साहमत्यं प्रकटितम्।
1: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
2: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी

आशा भोसले को अभी आपने सुना फिल्म उमराव जान में, और आइए सुनते हैं किशोर कुमार लता मंगेशकर को। फिल्म का नाम है गाइड।

पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से।

मंगेशकर के गाए फिल्म जब जब फूल खिले के इस गीत के साथ ही पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम भूले बिस्तर गीत अब संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी देर में आकाशवाणी लखनऊ से रिले करेंगे।

0: प्रदूषण पर प्रतिबंध लगाएं, पर्यावरण को हम सब बचाएं। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है प्रदूषण, इसका परिणाम होता है भीषण। प्रदूषण के हैं कई कारण, धुआं, कचरा इत्यादि उदाहरण। देश को प्रदूषण मुक्त बनाएं, मन में ये संकल्प बनाएं।
1: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम।
0: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
1: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
0: बढ़ते हुए या धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, सांस लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाएं।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10वीं और 12वीं के मेधावियों सहित उनके अभिभावकों और प्रधानाचार्यों को किया सम्मानित, कहा प्रदेश में नकल विहीन ढंग से हो रही हैं परीक्षाएं। मुख्यमंत्री ने बिजनौर में पाकिस्तान से विस्थापित 1645 परिवारों, पूर्व सैनिकों और लीज धारकों को सौंपे भूमि स्वामित्व अधिकार प्रमाण पत्र, कहा सभी वर्गों के हितों की रक्षा के लिए काम कर रही है सरकार। उत्तर प्रदेश पुलिस की आरक्षी, नागरिक पुलिस और समकक्ष पदों की लिखित परीक्षा की तारीखें घोषित, 32,000 से अधिक पदों के लिए 8, 9 और 10 जून को दो पालियों में होगी परीक्षा। और बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण की ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल सिटी परियोजना को भारत सरकार से मिली पर्यावरणीय स्वीकृति, 5.5 लाख से अधिक युवाओं को मिल सकेगा रोजगार।

0: समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में प्रदेश के विभिन्न शिक्षा बोर्डों में 10वीं और 12वीं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं, मेधावी विद्यार्थियों, उनके अभिभावकों और प्रधानाचार्यों को कल सम्मानित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते 9 वर्षों में प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन आए हैं और परीक्षाएं नकल विहीन ढंग से संपन्न हो रही हैं। श्री योगी ने कहा कि माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर प्रदेश में अनेक नवाचार किए गए हैं।
1: प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर छात्र छात्राओं को तकनीकी दिशा से सक्षम बनाने के लिए अनेक अभियान प्रारंभ करवाए। अटल टिकरिंग लैब भी उसी का एक उदाहरण है। डिजिटल लाइब्रेरी बन रही है, ये उसी क्रम का हिस्सा है। अनेक ऐसे कदम उठाए गए हैं जो छात्र छात्राओं को उन नवाचारों के साथ जुड़ने के लिए, जो उसकी शिक्षा के लिए आवश्यक है, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए आवश्यक है, उस दिशा में आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।
0: मुख्यमंत्री ने कल बिजनौर जिले में पाकिस्तान से विस्थापित 1645 परिवारों, पूर्व सैनिकों और लीजधारकों को भूमि स्वामित्व अधिकार प्रमाण पत्र भी सौंपे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार समाज के सभी वर्गों के हितों की रक्षा के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि बीते वर्षों में प्रदेश के विकास को गति मिली है और बिजनौर भी उस विकास से अछूता नहीं रहा है।
1: बिजनौर के बारे में लोग सोचते भी नहीं थे यहाँ मेडिकल कॉलेज खुलेगा। आज तो बिजनौर में अपना मेडिकल कॉलेज हो गया और महात्मा विदुर के नाम पर हो गया। हाईवे बन रहे हैं, रेलवे की नई नई सुविधाएं विकसित हो रही हैं और अभी गंगा एक्सप्रेसवे को भी हम इधर से ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। ये विकास, यही परिवर्तन लाएगा। हर एक तबके के लोगों को नई सुविधाएं दी जा रही है।
0: बिजनौर के बाद मुख्यमंत्री ने सहारनपुर में विकास कार्यों और माता शाकंभरी देवी कॉरिडोर के निर्माण की प्रगति की समीक्षा की। गोरखपुर और कुशीनगर में लोकार्पण तथा शिलान्यास के कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल देर शाम गोरखपुर पहुंचे। वह आज कुशीनगर जिले के तमकुहीराज विधानसभा क्षेत्र के हरिहरपुर में आयोजित समारोह में 424 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 278 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इस अवसर पर श्री योगी जनसभा को संबोधित करने के साथ ही विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र और चेक भी वितरित करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री कुशीनगर में निर्माणाधीन महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का निरीक्षण करेंगे। मुख्यमंत्री आज शाम गोरखपुर में चिलुआ ताल घाट पर 20 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से कराए गए चिलुआ ताल के पर्यटन विकास और सौंदर्यीकरण कार्यों का भी लोकार्पण करेंगे। अपने दौरे के दौरान मुख्यमंत्री कल गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में 42 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से बने फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण करेंगे। प्रदेश के पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने कहा है कि अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के चलते राज्य में अपराधों में काफी कमी आई है। स्थायी पुलिस महानिदेशक के तौर पर कार्यभार संभालने के बाद कल मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि नागरिकों की सुरक्षा और साइबर अपराधियों के प्रति कठोर कार्रवाई पुलिस विभाग की प्राथमिकता है।
2: माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में उनकी और शासन की प्राथमिकताओं के तहत उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार काम कर रही है, जिसमें अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस, महिलाओं की सुरक्षा, व्यापारियों की सुरक्षा, नागरिकों की सुरक्षा, साइबर अपराधियों के प्रति कठोर कार्रवाई, कानून व्यवस्था लगातार अक्षुण रहे उसके लिए लगातार चलने वाली कार्रवाई, जितने भी मेले पर्व त्यौहार हैं उसमें एक शांतिपूर्ण ढंग से मनाए जाए इसके लिए लगातार सतत बंदोबस्त की अरेंजमेंट, ये सभी प्राथमिकताएं हैं जिन प्राथमिकताओं के तहत उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार कार्य रही है और आगे भी कार्य करती रहेगी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश पुलिस की आरक्षी, नागरिक पुलिस और समकक्ष पदों की लिखित परीक्षा 8, 9 और 10 जून को विभिन्न जिलों में निर्धारित केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। इस संबंध में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड के अपर सचिव भर्ती सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज ने बताया कि ये परीक्षा

0: परीक्षाएं दो पालियों में होंगी। करीब 32,000 से अधिक पदों के लिए होने वाली इस भर्ती से जुड़ी विस्तृत जानकारी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है। उच्चतम न्यायालय ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा को मौजूदा पेन और पेपर प्रारूप के स्थान पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने कहा कि कंप्यूटर आधारित पुनर्परीक्षा आयोजित करने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि परीक्षा रद्द होने के बाद से राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी पहले से ही चुनौतियों का सामना कर रही है। भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण झांसी की ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल सिटी परियोजना को आधिकारिक रूप से पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान कर दी है। 253 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 1,50,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित होने वाली इस परियोजना के अंतर्गत 5.5 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है। ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल सिटी में मुख्य रूप से कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्र, रक्षा उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक डेटा सेंटर और इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग स्थापित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों से प्रेरित भारत में पिछले 12 वर्ष में अभूतपूर्व बदलाव आया है। प्रस्तुत है किसान कल्याण की दिशा में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर एक रिपोर्ट।
1: नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पिछले 12 वर्षों में किसानों के कल्याण और उनकी आय बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इनमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रूपए सीधे उनके बैंक खातों में दिए जाते हैं और अब तक लगभग 9,50,00,000 किसान परिवारों के खातों में 4,28,000 करोड़ रूपए से अधिक की राशि भेजी जा चुकी है। वहीं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से सिंचाई व्यवस्था मजबूत हुई है और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के माध्यम से किसानों को मिट्टी की पोषक तत्वों की जानकारी दी जा रही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के लिए एक मजबूत सहारा बना है, जिसके तहत किसानों को उनके उत्पादन लागत का 1.5 गुना मूल्य मिल रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मौसम विभाग ने प्रदेश के पश्चिमी जिलों में 4 जून तक कहीं कहीं बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना व्यक्त की है। विभाग के मुताबिक इस अवधि में प्रदेश के पूर्वी जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। विभाग द्वारा आगामी दिनों में प्रदेश के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में भी धीरे धीरे क्रमिक बढ़ोतरी का पूर्वानुमान जारी किया गया है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10वीं और 12वीं के मेधावियों सहित उनके अभिभावकों और प्रधानाचार्यों को किया सम्मानित। कहा, प्रदेश में नकल विहीन ढंग से हो रही हैं परीक्षाएं। मुख्यमंत्री ने बिजनौर में पाकिस्तान से विस्थापित 1,645 परिवारों, पूर्व सैनिकों और लीज धारकों को सौंपे भूमि स्वामित्व अधिकार प्रमाण पत्र। कहा, सभी वर्गों के हितों की रक्षा के लिए काम कर रही है सरकार। उत्तर प्रदेश पुलिस की आरक्षी, नागरिक पुलिस और समकक्ष पदों की लिखित परीक्षा की तारीखें घोषित। 32,000 से अधिक पदों के लिए 8, 9 और 10 जून को दो पालियों में होगी परीक्षा। और बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण की ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल सिटी परियोजना को भारत सरकार से मिली पर्यावरणीय स्वीकृति। 5.5 लाख से अधिक युवाओं को मिल सकेगा रोजगार। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन

0: मन बलिदान करने को तैयार रहता है वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
1: आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।

माधुरी कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, वंदे ब्रज वसुंधरा। ब्रज की आप पावन धरा को नमन करें, वंदन करें। और भैयाओ, जय मंजुल कुंज निकुंज निकी रसपुंज विचित्र समाज की जय। यमुना तट की वंशी बट की, गिरिजेश्वर की गिरिराज की जय। ब्रज गोपिन गोप कुमारन की, विपिनेश्वर की सुख साज की जय। ब्रज के सब संतन भक्तन की, ब्रज मंडल की ब्रजराज की जय। ब्रजराज को नमन, ब्रजवासीन को नमन, ब्रज भक्तन को नमन। भैया, या समय तो समूचे ब्रजमंडल में खूब खूब आनंद देखने को मिले हैं। कहूँ तो ब्रज 84 कोस की परिक्रमा चल रही है, कहूँ अधिक मास में दान की परंपरा खूब आगे। जल को दान, मिट्टी के घड़ा, मिट्टी की सुराई, पंखा, सतुआ, अन्य अन्य सामग्री। मंदिर में जाओ तो कहूँ खस के बंगला, कहूँ गुलाब के। कल तो हमने दर्शन करे कमल को बंगला, बात एक दिन पहले मोती को महल। नित्य नित्य नित्य नए उत्सव हमारे ब्रजमंडल के मंदिर में, देवालय में और पूरी परिक्रमा में, ब्रज 84 कोस में खूब देखने को मिले। और क्यों ना हो, अधिक मास में जो आनंद हमारे पूरे समूचे ब्रजमंडल में देखने को मिल रहे है, तो आज सबको सुनवा में यात्रा ब्रज 84 कोस की। आज को पड़ाव है काम वन, या को प्रस्तुति सहयोग है लक्ष्मी शर्मा को, तो आनंद लियो या ब्रज 84 कोस की यात्रा के पड़ाव काम वन को।

यात्रा ब्रज चौरासी कोस की के 21वें अंक में हमने कीनी खो बद्रीनाथ केदारनाथ तथा अन्य दर्शनीय स्थलन की यात्रा और आज के 22वें अंक में हमारी यात्रा पहुंच रही है काम्यवन की ओर।

0: ब्रज मंडल के द्वादश वनन में चतुर्थ वन है काम्य वन। यह ब्रज मंडल के सर्वोत्तम वनन में से एक है। यह वन की परिक्रमा करने वालों सौभाग्यवान व्यक्ति ब्रजधाम में पूजनीय हुए हैं। चतुर्थ काम्य वनम वनानाम वनमुत्तमम तत्र गत्वा नरो देवी मम लोके महीयते। यहाँ श्री ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण ने बहुत सारी बाल क्रीड़ा करी। या वन के तीर्थ में स्नान करने से सब प्रकार की मनोकामना पूर्ण हो जाए हैं। यथार्थ में श्री कृष्ण के प्रति गोपीन को प्रेम ही काम शब्द वाच्य है। प्रेमेव गोपरामाणाम काम इत्यागमत प्रथम, अर्थात गोपीन को निर्मल प्रेम जो केवल श्री कृष्ण को सुख देवे वारो होए है, जामे लौकिक काम की कोई गंध नहीं होए है। शास्त्रन में वही को कहवयो है सांसारिक काम वासनांते यह सर्वथा भिन्न है। सब प्रकार की लौकिक कामनांते रहित केवल प्रेमास्पद कृष्ण को सुखी करना ही गोपीन के काम्य को एकमात्र तात्पर्य है। यह काम नित्य वर्धमान है क्योंकि प्रेम को स्वरूप नित्य वर्धमान है। ब्रजांगनान में ते काउ प्रकार के लौकिक काम की गंध की कल्पना करनो भी घोर पतन में ले जाए वारो है। इन ब्रज बालान को स्वार्थ कछु है ही ना है। वे जो कछु करे हैं भगवान श्री कृष्ण के काजे ही करे हैं, अपना श्रृंगार करे हैं। तो यही आशय से कि श्री कृष्ण वाकु देख के सुखी होंगे। दूध दही तथा माखन संभार संभार के रखे हैं। यही काज है कि श्री कृष्ण वाकु आस्वादन करेंगे। यमुना तट पे वंशी पट पे जाने में उनको हेतु श्री कृष्ण को सुख प्रदान करना ही है। वे कृष्णमयी है, चित देखो तित श्याममयी है, अर्थात श्री कृष्ण के काजे ही वे जीवन धारण करे भये हैं। एक शर्ते कहनो होगो कि जो भाव सहज ही श्री कृष्ण की माँ ले जाए वही प्रेम है, वही शुद्धतम काम है। यार के अतिरिक्त सभी विडंबना है और त्याज्य है। इन ब्रज गोपिकान की कामनान की उत्पत्ति तथा विविध प्रकार से श्री कृष्ण द्वारा इनकी कामनान को शमन यही स्थान पर होवे के कारण यह स्थली काम वन कहलाए है। यह श्री कृष्ण को परम रमणीय विहार स्थली है। यही काज या को काम्यवन कहा गया है। विष्णु पुराण के अनुसार काम्यवन में 84 कुंड मंदिर तथा 84 खम्बान के वर्तमान हैं।
1: 84 तीर्थों का आह्वान हुआ है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण मात पिता बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि लाला दूध की धारा निकल रही है, चंदन वर्ष रो है और कन्यान को भी कल्याण है गो। हमारी वृद्धा अवस्था है बेटा, चल लो बस की नाए, तू हमारे काजे 84 तीर्थन को बुला दे। तो मात पिता बड़े अत्यंत प्रसन्न हो रहे हैं। तो एक दुख का कारण भी बना है, एक रिश्तेदार नजर नहीं आया है, पुष्कर राज जो ब्रह्मा जी को ब्रह्म पड़ गया। ये कैसा भगवान है, गाय बछड़े चराने वाला जो साधन मानवों के साथ भोजन कर रहा है, उनके संग छाक खा रहा है। तो ब्रह्मा जी का ब्रह्म तोड़ने के लिए चतुर्भुज भगवान के पुष्कर राज को दर्शन दिए हैं कि मुझे आप पहचानो, मैं साक्षात नारायण का स्वरूप हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण ने चतुर्थ मास में सारे तीर्थ इसी आदि वृंदावन कामन में वास करते हैं और इस बिमल कुंड के स्नान करने से, पान करने से, प्रकम्मा करने से ये निपुत्री को पुत्र दे और कोड़ी को काया कोण चाहते हुए भी इसके आचमन करने से, कथा करने से, प्रकम्मा करने से जिनकी निर्मल काया हो जाती है, मुक्ति का है गोपालते मेरी मुक्ति दे।

0: बताए, ब्रज रज मस्तिक लगे तो मुक्त मुक्त हो जाए। यह दुर्वासा ऋषि भी आए हैं अपने 16,000 शिष्यों को लेकर के। यह अच्छा पात्र वाली लीला भी है।
1: कहमे है कि इन सब की प्रतिष्ठा राजा श्री कामसेन के द्वारा करी गई ही। ऐसी मान्यता है कि देवता और असुरन ने मिलकर यहाँ 168 खम्बन को निर्माण करो हो। यहाँ छोटे बड़े असंख्य कुंड और तीर्थों हैं। यह वन की परिक्रमा 14 मील की है। विमल कुंड यहाँ को प्रसिद्ध तीर्थ है। सर्वप्रथम यह विमल कुंड में स्नान कर काम्य वन की परिक्रमा और काम्य वन के दर्शनीय स्थलन को दर्शन आरंभ हुए है। विमल कुंड में स्नान के पश्चात गोपिका कुंड, सुवर्णपूर्ण, गया कुंड, धर्म कुंड के दर्शन है। धर्म कुंड पे धर्मराज जी को सिंहासन दर्शनीय है। यज्ञ कुंड, पांडवन के पंचतीर्थ सरोवर, परम मोक्ष कुंड, मणिकर्णिका कुंड भी है। पास ही में निवास कुंड और यशोदा कुंड है। कछु आगे मनोकामना कुंड, गोपिका रमण कुंड, सेतुबंध रामेश्वर कुंड, ध्यान कुंड, तप्त कुंड, जल विहार कुंड, जल क्रीड़ा कुंड, रंगीलो कुंड, छबीलो कुंड, जटिलो कुंड, मतीलो कुंड, दतीलो कुंड, पंच कुंड, विवल कुंड, श्याम कुंड, गोमती कुंड, द्वारका कुंड, मान कुंड, ललिता कुंड, विशाखा कुंड, दोहनी कुंड, मोहिनी कुंड, बलभद्र कुंड, चतुर्भुज कुंड, सुरभि कुंड, वत्स कुंड, लुकलुक कुंड, गोविंद कुंड, नेत्रमोचन कुंड, फिसलनी शिला, व्योमासुर गुफा, भोजन स्थली, सुमना सखी को विवाह स्थल, ललिता ग्रंथि दत्त स्थान, तदंतर विष्णु चिन्ह पाद पर्वत, गरुड़ तीर्थ, कपिल तीर्थ, लोहजंग ऋषि को स्थान, होड़ स्थान, यही के उत्तर में इंदुलेखा देवी स्थल, पासई में पर्वत के ऊपर बलराम स्थल, बलराम के हल की रेखा, वाकी उत्तर भाग में कृष्णकूप, वाकी पासई दूसरो संकर्षण कुंड, अनंतर लोकेश्वर नामक गुह तीर्थ, वाराह कुंड, सती कुंड, चंद्र सखी, पुष्करणी, या के ऊपर चंद्रशेखर, शिव मूर्ति तथा श्रृंगार तीर्थ हैं। अनंतर पर्वत के दक्षिण में प्रभावल्ली नामक बावड़ी है, जाके पश्चिम भाग में भारद्वाज ऋषि कूप है, बाकी उत्तर में संकर्षण कुंड है और बाकी पूर्व भाग में कृष्ण कूप है। ये तीनों कूप पर्वत के निकट में हैं। पर्वत के शिखर पे भद्रेश्वर शिव मूर्ति है, अनंतर अलक्ष गरुण मूर्ति है, पास ही में पिप्पलाद ऋषि को आश्रम है, अनंतर दिहुहली राधा पुष्करणी और बाकी पूर्व भाग में ललिता पुष्करणी, बाकी उत्तर में विशाखा पुष्करणी, बाकी पश्चिम में चंद्रावली पुष्करणी, बाकी दक्षिण भाग में चंद्रभागा पुष्करणी है, पूर्व दक्षिण के मध्य स्थल में लीलावती पुष्करणी है, पूर्व पश्चिम उत्तर में प्रभावती पुष्करणी है, मध्य में राधा पुष्करणी है और इन पुष्करणी में 64 सखियों की पुष्करणी है। आगे कुशस्थली है और वही शंखचूड़ वध स्थल तथा कामेश्वर महादेव दर्शनीय है। कामेश्वर महादेव से उत्तर में चंद्रशेखर मूर्ति, विमलेश्वर तथा वाराह स्वरूप को दर्शन है। वही द्रौपदी के संग पंच पांडवन को दर्शन, आगे वृंदा देवी के संग गोविंद जी को दर्शन है, श्री राधा वल्लभ, श्री गोपीनाथ, नवनीत राय, गोकुलेश्वर और श्री रामचंद्र स्वरूपन को दर्शन है। इनके अतिरिक्त चरण पहाड़ी श्री राधा गोपीनाथ, श्री राधा मोहन, 84 खंबा आदि दर्शनीय स्थल हैं। काम्यवन ग्राम से 1 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम कोण में विमल कुंड स्थित है। कुंड के चारों ओर क्रमते दाऊजी, सूर्यदेव, श्री नीलकंठेश्वर महादेव, श्री गोवर्धन नाथ, श्री मदन मोहन, श्री काम्यवन बिहारी, विमल बिहारी, विमला देवी, श्री मुरली मनोहर, भगवती गंगा, श्री गोपाल जी विराजमान हैं। सिंधु देश में चंपक नगरी के राजा विमल है, बिनके कोई संतान नाई ही। श्री याज्ञवल्क्य जी की कृपा से बिनकी 6,000 रानी के अनेक कन्या ने जन्म लियो। वे सब कन्या श्री राम अवतार के

0: સમય આશ્વાસન પ્રાપ્ત અયોધ્યા વાસની સ્ત્રી હતી. इन सुंदर रूपवती कन्यान के विवाह के कार्य श्री याज्ञवल्क्य ऋषि द्वारा सुझाए गए योग्य वर की खोज में राजा विमल ने अपना दूत भेजो और वह मथुरा नगरी में आयो. मथुरा में भोजराज कंस के भय से सब यहाँ तक थे. बहुत छिप के वह दूत को वसुदेव जी के 6 पुत्रन के वध की तथा 7वीं कन्या के आकाश में चले जाने की बात पता चली. भीष्म जी के सहसा वहां चले जाने से सारी घटना को प्रकाश भयो तो वह दूत पुनः वृंदावन में यमुना तट पर श्री कृष्ण के दर्शन करके कृतार्थ है गयो. राजा विमल को निमंत्रण पाए के श्री कृष्ण चंपक नगरी पहुंचे और राजा विमल की कन्यान को अपने संग ले ब्रजमंडल में आए गए. वे सबरी कन्या रमणीय काम्य वन में भगवान श्री कृष्ण के संग कंदुक क्रीड़ा और आमोद प्रमोद में रत है गईं. या के पश्चात श्री कृष्ण ने उतने ही रूप धारण करके इन विमल कन्यान के संग रास कीनो. वह राजमंडल में उन विमल कुमारीन के आनंद अश्रुन से प्रपूरित यह कुंड विमल कुंड के नाम से विख्यात भयो.
1: विमल कुंड तीर्थराज ये आदि वृंदावन काम बन है. 12 वनों में कामबन पंचम वन है जिसको माँ तुलसी के नाम से जाना जाता है. ये आप विमल कुंड देख रहे हो, ये रहने वाला भी बहुत दूर का है. सिंधु देव चंपक नगरी राजा विमल हुए जिनको योग माया देवी से वरदान लगा हुआ था कि तुम्हारे 16108 कन्याएं होंगी. वृद्धा अवस्था हुई, चिंताजनक राजन रहने लगा उन कन्याओं के प्रति. प्रत्येक कन्या की अभिलाषा यही थी कि वर मिले तो भगवान कृष्ण मिले और भक्ति मिले तो भगवान श्री कृष्ण की मिले. तो सिंधु देश के राजा विमल ने कभी कृष्ण को नहीं देखा तो उनका कार्य सफल कैसे होगा. एक दिन जागुल ऋषि उनके द्वार पहुंचे कि हे राजन आप दुखी क्यों. कि प्रभु जी मेरी तो वृद्धा अवस्था है, मेरे मरने के पश्चात इन कन्याओं का लालन पालन कौन करेगा और प्रत्येक कन्या की यही अभिलाषा है कि वर मिले तो भगवान कृष्ण मिले और भक्ति मिले तो भगवान श्री कृष्ण की मिले. उन्होंने कही आप नेक भी चिंता मत कीजिए, आप आदि वृंदावन काम बन जाइए जहाँ पर एक विमल सरोवर है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण भादो मास शुक्ल पक्ष भोजन थाली ना दौज को नंद बाबा यशोदा मैया को लेकर के साधुओं की टोली के साथ उसी विमल सरोवर पे पधारेंगे, वो आपका कार्य सिद्ध कर सकते हैं. सिंधु देश के राजा विमल ने कही कि प्रभु जी मुझे कुछ कृष्ण का स्वरूप बताओ जिससे कि मैं पहचान लूं कि यही कृष्ण है, मैंने कभी कृष्ण को नहीं देखा. तो उन्होंने स्वरूप भी बताया है कि 5 वर्ष की अवस्था है, सामरा स्वरूप है, मुख पे मुरलिया है, सिर पे मुकुट है, हाथ में लाठी है और साधुओं की टोली के साथ उसी विमल सरोवर पे पधारेंगे, वो आपका कार्य सिद्ध कर सकते हैं. सिंधु देश का राजा विमल अपनी कन्याओं को लेकर के चतुर्थ मास में इसी विमल सरोवर पे आकर के बैठा हुआ है. जब आदों की दौज को नंद बाबा यशोदा मैया को साधुओं की टोली के साथ इसी विमल सरोवर पे आकर के विराजे हैं तो आकाश से चंदन बरसो है और बीच में से दूध की धारा निकली है. तो गंगा महारानी के लिए प्रणाम करो है. और जो सिंधु देश का राजा विमल था उसकी बालक पे उसी बालक पे दृष्टि पड़ी जैसा का जागुल ऋषि ने बताया था कि 5 वर्ष की अवस्था है, सामरा स्वरूप है, मुख पे मुरलिया है, सिर पे मुकुट है और हाथ में लाठी है और भगवान श्री कृष्ण के चन्नान बिंदु पकड़ लिए सिंधु देश के राजा विमल ने और बिल्लाप करने लगे हैं कि प्रभु जी तो भगवान श्री कृष्ण ने सभी कन्याओं को अपनी पटरानी बना लिया है और उनके साथ में प्रेम का महाराज किया है. जब भगवान श्री कृष्ण को बर पा करके कन्या इतनी अत्यंत प्रसन्न हो गई हैं कि उनके प्रेम के आंसुएं बहने लगे हैं, उन प्रेम के आंसुओं से इसको भरा है. जो सिंधु देश का राजा विमल था उसके नाम से विमल कुंड.
0: यही श्री वृंदा देवी और श्री गोविंद देव को मंदिर भी है. यहाँ वृंदा देवी को विशेष दर्शन है जो ब्रजमंडल में कहीं अन्यत्र दुर्लभ है.
1: कामबन 12 वनों में कामबन पंचम वन है जिसको माँ तुलसी के नाम से बोलते हैं. ये 1655 ईस्वी में भी मंदिर मौजूद, जब यहाँ पर औरंगजेब के दूत आए थे और माँ विंध्या देवी को जबरन करने गए थे तो वो अंधे हो गए थे. इस जगह पे जब 5:30 की मंगला हुई तो वो यहाँ पर इन दीवारों को पकड़ रहे थे. तो यहाँ के जो मालिक थे उन्होंने पूछा भाई तुम किस लिए यहाँ पर आए. तो अब उन्होंने कही कि हमने औरंगजेब ने हमको कहा था कि विंध्या देवी को यहाँ से खंडित करो. तो जैसे ही हमने दरवाजे पे माँ के लड़के पे हाथ लगाया तो उसको हमको दिखना बंद हो गया. तो उन्होंने यहाँ पर क्षमा याचना मांगी.

0: तो उनको भी मैत्री दयावान थी तो उनको भी नेत्र दान कर दिए, क्योंकि ब्रज की रजोपति हैं, अगर इनसे कोई गलती भी हो जाती है और उसकी क्षमा याचना मांग लेते हैं तो माँ तुलसी उनको माफ कर देती है। जयपुर के राजा हुए नरेश, उनको सपना दिया बिंदा देवी ने कि हमको आप दर्शन कराओ, ब्रज 84 कोस की यात्रा कराओ। तो बृंदा देवी जयपुर से गोविंद देव जी, ललिता सखी, राधा रानी, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु और जगन्नाथ जी, ये तीनों ही विग्रह ब्रज 84 कोस की परिक्रमा करते हुए जब इस आद वृंदावन काम वन में पंचम वन में यहाँ पर आए हैं और माँ तुलसी ने जब नेत्र खोल करके देखा है तो यहाँ आम पेड़ नहीं थे, तुलसी ही तुलसी थी, पूरे कण कण में तुलसी का वास। तो माँ बिंदे कहने लगी अपने ग्वाल वालों से कि भैया आज तीसरा रोज है, हमको जब मेरा स्वरूप काम मन में है तो मैं इस काम मन को छोड़ करके ही जाऊंगी। तो ग्वाल बाल हटी करने लगे कि माँ आप हमारे साथ आई हो, हम आपके बिगर कैसे रहेंगे। तो तीनों ही विग्रहों को रथ में बिठा दिया है, जैसे ही रथ आगे बढ़ाए तो ब्रज रज में पहिया समा गए, पर माँ तुलसी ब्रज को छोड़ करके नहीं गई। माँ बिंदे ब्रज को छोड़ करके चली जाती तो इसको ब्रज धाम कौन कहता। ये ब्रज की रजोपति है, आप वृंदावन आए और आपने माँ तुलसी का दर्शन नहीं करा तो आपको ब्रज का वास नहीं मिलेगा। तीन लोक तारन तरन सब तेरे आधीन, ठाकुर जी भी इनके आधीन है, आपने 56 भोग लगाए और माँ तुलसी नहीं है तो ठाकुर जी भी आपके भोग को नहीं स्वीकार करेंगे। ये ब्रज की रजोपति है, यहाँ भक्त लोग बड़े भाव में आते हैं और माँ तुलसी उनको उसी जैसे वो भाव में आते हैं उनको वैसे ही भाव प्रकट करते हैं। ये 5,500 वर्ष 1655 ईस्वी में भी मौजूद था ये मंदिर औरंगजेब के, और ठाकुर तो सब भाग गए थे। यहाँ का राजा था राजा मान सिंह, बहुत शक्तिशाली था। तो और विग्रह तो राधा कुंड में 1 साल के लिए रहे थे, यहाँ 4 विग्रह रह गए थे, बिंदा देवी, गोविंद देव जी, जगन्नाथ जी और गोपियों के नाथ गोपीनाथ जी आज भी मौजूद हैं। इन्हीं को ये बल्लभ कुल के जो मंदिर है उनसे भी पुराने हैं। यही मुख्य द्वार है बिंदा देवी का, 12 वनों में काम वन पंचम वन है, तीन लोक तारन तरन सब तेरे आदीन। अगर आप ब्रज में आए और माँ तुलसी का आपने दर्शन नहीं करा तो आपकी ब्रज यात्रा सफल नहीं है। ब्रज की रजोपति है, ठाकुर जी भी आधीन है, आपने 56 भोग लगाए और माँ तुलसी नहीं है तो आपका भोग मान्य नहीं है जी। आप बिंदा देवी के आप साक्षात दर्शन करोगे, ये मुख्य द्वार है, हम इसके अंदर चल रहे हैं।
1: श्री श्री राधा गोविंद देव जी भी यहाँ विराजमान है, पास ही में विष्णु सिंहासन अर्थात श्री कृष्ण को सिंहासन है, बाकी निकट ही चरण कुंड है जहाँ श्री राधा और गोविंद युगल के श्री चरण कमल पखारे गए हैं। धर्मांध मोगल सम्राट औरंगजेब के अत्याचारन ते जा समय ब्रज में वृंदावन मथुरा आदि के प्रसिद्ध मंदिर ध्वंस किए जा रहे हैं। वह समय परम भक्त जयपुर के महाराजा ब्रज के श्री गोविंद देव, श्री गोपीनाथ जी, श्री मदन मोहन जी, श्री राधा दामोदर जी आदि प्रसिद्ध विग्रहण को अपने संग लेके जब जयपुर जा रहे हैं तो बिन्हें मार्ग में या काम्यवन में कछु दिना तक विश्राम कीनो। श्री विग्रहण को रथंते यहाँ विभिन्न स्थान पर पधराए के बिनको विधिवत स्नान, भोगराग और शयन आदि संपन्न करवायो। तत्पश्चात वे जयपुर और अन्य स्थान में स्थापित कीने गए। समय पाए के काम्यवन में जहाँ जहाँ श्री राधा गोविंद, श्री राधा गोपीनाथ और श्री राधा मदन मोहन प्रतिष्ठित कीने, उन स्थान पर विशाल मंदिरन को निर्माण कराए के उनमें उन मूल श्री विग्रहन के प्रतिभू विग्रहन की प्रतिष्ठा की गई। श्री वृंदावन देवी काम्यवन तक तो आई किंतु वे ब्रिज को छोड़ के आगे नहीं गई और यहाँ श्री वृंदा देवी को पृथक रूप में दर्शन है। श्री गोविंद मंदिर के समीप में ही गरुण जी, चंद्रशेखर महादेव जी, वाराह कुंड, वाराह कूप, यज्ञ कुंड और धर्म कुंड आदि दर्शनीय हैं। तो श्रोताओं, आज के अंक में आपने काम्यवन की यात्रा के भाग एक में कुछ विशेष दर्शनीय स्थलन की जानकारी सुनी और काम्यवन की यात्रा भाग दो में हम यहाँ के कुछ और दर्शनीय स्थलन के दर्शन आप तक पहुँचाएंगे। तब तक के काज है जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।
2: अभी आपने आनंद लियो यात्रा ब्रज 84 कोस की या कामवन पड़ाव को आलेख और प्रस्तुति से।

शत्रुघ्न रश्मि शर्मा को, भैया आए जुड़े सब ब्रज के वासी, टेरा परे लाख चौरासी, जो ब्रज की बात हो, ब्रजवास की बात हो, ब्रजवासीन की बात हो, ब्रजवनिता की बात हो, ब्रजांगना की बात हो, तो ब्रज माधुरी कार्यक्रम में और आनंद आवे। भैया सबसे बड़ी बात है हमारे समस्त समूचे ब्रजमंडल में जो अधिक मास में चर्चा पर चर्चा आनंद देखने को मिल रहे हो, वो आपको सुनने को खूब खूब मिल रहे हो। भैया सबसे बड़ी बात है, अभी जो पूर्णिमा गई है ना, वादना तो रास के दर्शन भय, पूरी पूरी पूर्णमासी जगह जगह पखावश पर गायन वादन देखने को मिलो, आज गोपाल रास रस खेलत, ऐसे पदन को आनंद मिलो। अब आपको सुनमा में हमारी संगीत में रचना है, आज गोपाल रास रस खेलत, रचना हित हरवंश राय जी की है।

0: आज गोपाल रास रस खेलत। हरिवंश राय की रचना राग तोड़ी में प्रस्तुत कर रहे हैं शरद चतुर्वेदी। यही के संग आज को ब्रजमाधुरी कार्यक्रम अब संपन्न हुए है। सब ब्रजवासीन को सबन को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ब्रज माधुरी, आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी देर में आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़ दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
2: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने कहा, म्यांमार भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी धरती का इस्तेमाल नहीं होने देगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अमेरिका ने व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं को अंतिम रूप दिया। उत्तराखंड का यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए खुला। एशियाई खेल 2026 से पहले टॉप समूह में 22 नौका चालक शामिल। और हॉकी में अंडर 18 एशिया कप में भारत ने कोरिया को 4-1 से हराया। और अब समाचार विस्तार से। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आश्वासन दिया है कि भारत के खिलाफ म्यांमार की जमीन का इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। दोनों नेताओं के बीच कल नई दिल्ली में रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संपर्क बढ़ाने के उपायों पर विचार विमर्श हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

0: ने म्यांमार की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत का समर्थन दोहराया। प्रधानमंत्री ने म्यांमार से पूर्वोत्तर में संचालित आतंकी गुटों का मुद्दा भी उठाया। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने बताया कि म्यांमार के राष्ट्रपति ने भरोसा दिलाया कि भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ म्यांमार की धरती का इस्तेमाल नहीं होगा।
1: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
0: दोनों देशों के बीच मुख्य रूप से व्यापार और आर्थिक संबंध, रक्षा और सुरक्षा, सीमा प्रबंधन, विकास सहयोग और क्षेत्रीय स्थिति पर बातचीत हुई। म्यांमार भारत का रणनीतिक पड़ोसी देश है और इसकी 1640 किलोमीटर लंबी सीमा नागालैंड और मणिपुर सहित भारत के कई पूर्वोत्तर राज्यों से लगी है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने भी श्री ऑनलाइन से मुलाकात की और विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया। 5 दिन की भारत यात्रा पर आए राष्ट्रपति ऑनलाइन व्यापार और उद्योग जगत से बातचीत के लिए आज मुंबई जाएंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन गई है, अब समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमरीकी दल बातचीत के लिए 4 जून तक दिल्ली में है। भारत की ओर से वाणिज्य विभाग में अपर सचिव दर्पण जैन मुख्य वार्ताकार हैं और अमरीका का नेतृत्व ब्रेंडन लिंच कर रहे हैं। दोनों पक्षों ने 3 फरवरी को समझौते के पहले चरण की रूपरेखा घोषित की थी। रूपरेखा पर सहमति बन जाने पर 7 फरवरी को संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया गया। अब समझौते के लिए कानूनी पक्ष तय किया जाना है। अमरीका पिछले वित्त वर्ष में भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापार साझेदार था। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कल नई दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि बैठक में पिछले 12 वर्ष के दौरान मोदी सरकार की सेवा, संगठनात्मक विस्तार और समाज के विभिन्न वर्गों तक पार्टी की पहुंच को बढ़ाने के प्रयासों पर विचार विमर्श हुआ। उन्होंने कहा कि हर नागरिक पिछले 12 वर्ष में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति का साक्षी है। श्री पात्रा ने कहा कि आज भाजपा और एनडीए सरकार को देश के 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सेवा का अवसर मिला है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्षों में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। आज महिला सशक्तिकरण की दिशा में हुए प्रयासों पर एक विशेष रिपोर्ट।
2: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार के लगातार प्रयासों से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। साल 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लाखों महिलाओं को बिना किसी गारंटी के ऋण मिल रहा है, जिसके कारण उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने और आगे बढ़ाने में मदद मिली है। इस योजना के तहत इस वर्ष मार्च तक 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक ऋण लाभार्थियों को वितरित किए जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 17 लाख करोड़ रुपए महिलाओं को दिए गए। तमिलनाडु के तिरुपुर के रहने वाली वाणीश्री ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना ने उन्हें उद्यमी बनने के लिए प्रेरित किया।
3: इस योजना की सहायता से मैंने अपनी नई बुटीक शॉप खोली है और मैं ये गर्व के साथ कह सकती हूँ कि ये शॉप बहुत अच्छी चल रही है। इसके साथ ही मैं अब अपने प्रतिष्ठान की 3 से 4 और शाखाओं का सफल संचालन करने में सक्षम हो गई हूँ। 2 to 3
2: ब्रांचेस आल्सो। वहीं प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और भूमिनिया जैसी प्रमुख योजनाओं ने महिलाओं की बैंकिंग, बचत और उद्यमिता से जुड़ने की क्षमता को मजबूत किया है। जनधन योजना के तहत अब तक 58 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 33 करोड़ खाते महिलाओं के नाम पर हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला की रहने वाली सरोज बाला ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जनधन खाता खुलने के बाद अब सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ सीधे उनके बैंक खाते में पहुंचता है।
4: ये जीरो बैलेंस से खाता आराम से खुल जाता है, इसके लिए कोई राशि जमा नहीं करवानी।

0: बढ़ते। जब कोरोना था, जब किसी के पास एक रुपया भी नहीं होता था, उस समय लोगों को 1500 रुपया मोदी सरकार ने दिया। मोदी जी के 12 वर्ष का कार्यकाल बहुत अच्छा है, उन्होंने आम जनमानस को बहुत सुविधाएं दी हैं। इसमें एक हमारे को बीमा योजना मिली है, 2 लाख बीमा कवर मिलता है।
1: वहीं मोदी सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल लखपति दीदी है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को सालाना कम से कम 1 लाख रुपए की स्थायी आय प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। यह पहल अब लगभग 6 लाख गाँव तक पहुँच चुकी है और सरकार ने देश भर में 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कारण राष्ट्रीय लिंगानुपात वर्ष 2014-15 के 918 से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 929 हो गया है। सरकार की निरंतर नीतियों और योजनाओं के चलते महिलाएं आज आत्मनिर्भर और समावेशी अर्थव्यवस्था के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तराखंड में चमोली जिला स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए खोल दी गई है। वन विभाग ने पर्यटकों से घाटी की समृद्ध जैव विविधता और दुर्लभ वनस्पति संरक्षण में सहयोग की अपील की है। वर्तमान में घाटी में 300 से अधिक फूलों की प्रजातियां और दुर्लभ वनस्पतियां मौजूद हैं। वन क्षेत्राधिकारी चेतना कांडपाल ने बताया कि ये घाटी 31 अक्टूबर तक पर्यटकों के लिए खुली रहेगी।
3: वैली 1 जून से 31 अक्टूबर तक ओपन रहती है। पहले बार इसकी डिस्कवरी फ्रैंक स्माइथ ने की थी 1931 में, जब वो कॉमेट के एक एक्सपीडिशन से लौट रहे थे। उसके बाद वो वैली दोबारा आई 1937 में, और 1938 में उन्होंने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था वैली ऑफ फ्लावर्स। 2005 में यूनेस्को द्वारा वैली ऑफ फ्लावर्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया।
2: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने रिलायंस कम्युनिकेशन ग्रुप के शीर्ष अधिकारी अमिताभ झुनझुनवाला को बैंक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ऋण निधि के दुरुपयोग के कारण बैंकों को अनुचित नुकसान हुआ। इससे पहले सीबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से प्राप्त एक शिकायत के आधार पर रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड और अनिल धीरूभाई अंबानी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। उत्तर प्रदेश के आतंकरोधी दस्ते एटीएस ने आजमगढ़ जिले से एक युवक को गिरफ्तार किया है, जिस पर पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े होने का आरोप है। एटीएस ने बताया कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और कुछ आतंकी संगठन भारत में आतंक फैलाने के लिए शहजाद भट्टी के नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे थे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन और अंकों की पुष्टि के लिए पोर्टल को सक्रिय कर दिया है। विद्यार्थियों को पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने के बारे में जारी दिशा निर्देशों का ध्यान से अनुपालन करने को कहा गया है। बोर्ड ने इस जानकारी के लिए वीडियो जारी किया है। सर्वोच्च न्यायालय के 5 नव नियुक्त न्यायाधीश आज पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत उन्हें शपथ दिलाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद इन न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल और हिजबुल्ला संघर्ष रोकने पर सहमत हो गए हैं। श्री ट्रंप ने बताया कि उन्होंने इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से बातचीत की है और मध्यस्थों के जरिए हिजबुल्ला से भी संपर्क किया है। श्री ट्रंप ने बताया कि अब बेरूत की ओर सेना नहीं भेजी जा रही है और जो सैनिक रास्ते में हैं उन्हें वापस बुला लिया गया है। हिजबुल्ला ने कहा है कि अगर इसराइल की ओर से हमले बंद होते हैं तो वो भी हमला नहीं करेगा। 2026 के एशियाई खेलों से पहले 22 नौका चालकों को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: कुल 22 रोवर्स को अब टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप्स के डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया गया है। ये खिलाड़ी 6 अलग अलग नौका समूहों का हिस्सा हैं। अभी रोवर्स एशियाई खेलों और रोइंग विश्व कप जैसी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी करेंगे। टॉप्स डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल खिलाड़ियों में पेरिस ओलंपिक 2024 के प्रतिभागी बलराज पवार, एशियाई खेल 2022 के रजत पदक विजेता अरविंद सिंह और एशियाई खेल 2022 में 2 पदक जीतने वाले जसविंदर सिंह भी शामिल हैं। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: जापान में पुरुष अंडर 18 हॉकी एशिया कप में कल भारतीय टीम ने कोरिया को 4-1 से हराया। कप्तान केतन कुशवाहा ने 2,

0: वरिंदर सिंह और शाहरुख अली ने एक एक गोल किया। भारत का अगला मुकाबला कल चीनी ताइपे से होगा। मौसम विभाग ने आज भीतरी कर्नाटक, केरल, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। तटीय आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज और तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी आज बारिश की संभावना है। कोंकण और गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, रायलसीमा, सौराष्ट्र और कच्छ, तेलंगाना, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा हिमाचल प्रदेश में भी ऐसी स्थिति रह सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
1: धन्यवाद मनीष। देश की राजधानी से प्रकाशित लगभग सभी हिंदी समाचार पत्रों ने अपनी सुर्खियों में आज राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों को वरीयता देते हुए अंतर्राष्ट्रीय मसलों को भी मुखपृष्ठ पर जगह दी है। लोकसत्य ने पीएम स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री के कथन को शीर्ष समाचार बनाया है। लाखों रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को आत्मनिर्भर बनाया। दैनिक जागरण ने नए ड्रोन दिव्यास्त्र MK1 के सफल परीक्षण के समाचार को सचित्र प्रकाशित करते हुए लिखा है कि 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ड्रोन लगातार 5 घंटे तक उड़ान भर सकता है। पत्र ने CBSE के ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम में गड़बड़ी की जांच शुरू होने और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की आला अधिकारियों के साथ मंत्रणा को दूसरा शीर्ष समाचार बनाया है। हिंदुस्तान ने केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के कथन को पहली खबर बनाते हुए लिखा है अमेरिका से व्यापार समझौता जल्द। वीर अर्जुन ने म्यांमा के राष्ट्रपति की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भेंट का चित्र सबसे ऊपर प्रकाशित करते हुए म्यांमा के राष्ट्रपति के बयान को सुर्खी बनाया है। भारत के खिलाफ म्यांमा की धरती का इस्तेमाल नहीं होने देंगे। दैनिक भास्कर ने अपने संपादकीय में भारतीय रिजर्व बैंक की नीति निर्धारक इकाई के 3 से 5 जून के मध्य लिए जाने वाले फैसलों का विश्लेषण किया है। शीर्षक दिया है महंगाई से गरीबों को बचाने पर फोकस होना चाहिए। पत्र याद दिलाता है कि पिछले 10 वर्षों में खाद्यान्नों की कीमतें इलेक्ट्रॉनिक सामान के मुकाबले ज्यादा बढ़ी हैं।
0: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउन लाइन ने कहा म्यांमार भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी धरती का इस्तेमाल नहीं होने देगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा भारत और अमेरिका ने व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं को अंतिम रूप दिया। एशियाई खेल 2026 से पहले टॉप समूह में 22 नौका चालक शामिल। और हॉकी में अंडर-18 एशिया कप में भारत ने कोरिया को 4-1 से हरा दिया है। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। म्यांमार प्रेसिडेंट ऊ मिन आउन क्लाइन सेज हिज कंट्री विल नॉट अलाउ इट्स टेरिटरी टू बी यूज्ड अगेंस्ट इंडिया सिक्योरिटी इंटरेस्ट्स। India and US have finalized most elements of first phase of bilateral trade agreement, says Commerce and Industry Minister Piyush Goyal. Uttarakhand's UNESCO World Heritage Site, Valley of Flowers, opened to tourists. 22 rowers included in TOPS development group ahead of Asian Games 2026. And in hockey, India registered dominant 4-1 win over Korea in Men's Under-18 Asia Cup. Myanmar President Ou Min Aung Hlaing has assured Prime Minister Narendra Modi that Myanmarese territory will not be allowed to be used against India's security interests. The two leaders held wide-ranging talks to boost bilateral ties in trade, defence, energy and connectivity in New Delhi yesterday. Mr. Aung Hlaing is on a 5-day visit to India. Briefing media after the talks, Foreign Secretary Vikram Misri said the President of Myanmar reiterated the assurance that Myanmar's territory will not be permitted to be used against India's security interests. Mr. Misri said Prime Minister Modi reaffirmed India's support for the sovereignty and territorial integrity of Myanmar, and both sides underscored the importance of preventing the misuse of sovereign territory for activities inimical to the

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
4: जी,
3: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
4: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
3: पर ये होगा कैसे?
4: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
3: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
4: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
3: बस
4: बस
3: समझ गया।
4: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।

0: कहता है।
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
3: जी,
2: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
3: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
2: पर ये होगा कैसे?
3: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
2: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो
3: ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
2: बस समझ गया।
3: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
4: और आइए सुनते हैं चित्रपट संगीत के कार्यक्रम में ये पहला नगमा।

0: सोनू निगम अलका याग्निक को भी आपने सुना फिल्म दिल परदेसी हो गया में, और सुनते हैं कार्यक्रम में अगला गीत एक छोटे से व्यावसायिक अंतराल के पश्चात।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

अनुराधा पौडवाल, कुमार सानू को भी आपने सुना फिल्म आशिकी में, और आइए सुनते हैं कविता कृष्णमूर्ति को। फिल्म का नाम है प्यार झुकता नहीं।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: संगीत का आनंद इस समय आप आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से ले रहे हैं।

0: अलका याग्निक एसपी बाला सुब्रमण्यम के गाए। फिल्म साजन के इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं हिंदी वार्ता, हिंदी भाषा साहित्य एवं भारतीय जनमानस। वार्ताकार प्रेमपाल शर्मा, साहित्यकार एवं संपादक। आपसे बातचीत कर रहे हैं ओपी सिंह।
1: श्रोताओं, भाषा भाव की और संवाद की एक माध्यम होती है। भाषा किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में एक बहुत बड़ा अवदान होती है, संबल होती है। भाषा के माध्यम से ही हम ये कहें कि जीवन के जो कार्य व्यापार है हमारे चल रहे होते हैं, लेकिन भाषा हमारे जीवन में कहाँ से आती है, कैसे समृद्ध होती है और हमको एक जीवन प्रवाह, हमारे जो जीवन का प्रवाह है उसको एक नदी की भांति किस तरह प्रवाहित करती हुई ले जाती है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। साहित्यकार इस पर बहुत कुछ लिखते हैं, पढ़ते हैं, जैसा कि हिंदी भाषा के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। तो हिंदी भाषा का अपना जो विकास है, अपना उसका जो साहित्य है, वो कहाँ और कैसे पैदा हुआ, ये आज हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक वरिष्ठ साहित्यकार हैं, प्रेमपाल शर्मा जी। प्रेमपाल जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत, नमस्कार।
2: नमस्कार
1: जी, हम जानना चाह रहे हैं कि जैसा हिंदी के संदर्भ में कहा जाता है कि हिंदी जो जन की भाषा है, मन की भाषा है, राष्ट्र की भाषा है, और हिंदी की जो अपनी सहोदर भाषा है, बोलियां हैं, या कहें कि अगर हम किसी भी जीवन के पक्ष को ले लें, चाहे वो आज़ादी के को लेकर ले, चाहे आज वर्तमान की बात करें, चाहे पुराने समय की बात करें, हिंदी हमारे साथ एक नदी की तरह बहती रही है, प्रवाह की तरह बहती रही है, उसी के साथ हम मिलकर के आगे बढ़े हुए हैं। तो हिंदी के अगर अपने साहित्य के साथ साथ उसके विकास की यात्रा को अगर हम आपसे जानना चाहें, क्योंकि आप इससे जुड़े रहे हैं, तो किस तरह से रेखांकित करेंगे, हमारे श्रोताओं को कैसे बताना चाहेंगे इसमें?
2: सर, हिंदी साहित्य को लेके
1: जी
2: जो इतना हो हल्ला मचता है कि भाई हिंदी पर संकट है, हिंदी के अस्तित्व का प्रश्न बन गया है, ऐसा कुछ है नहीं
1: जी।
2: दरअसल हिंदी तो अपने आदिकाल से ही विभिन्न चरणों में इतनी गति से, हमारी अपेक्षा से कहीं अधिक गति से आगे बढ़ती रही है
1: जी।
2: अपनी विकास यात्राओं को इस तेजी के साथ आगे बढ़ाती रही है
1: जी।
2: और आप पीछे लौट के देखें तो हिंदी का जो शब्द सामर्थ्य है कितना विशाल हुआ है
1: जी।
2: और हिंदी के जो साहित्य भंडार है उसमें कितनी वृद्धि हुई है, तो ये कहना कि हिंदी पे अस्तित्व है, हिंदी कुछ अपनी विकास यात्रा रुक गई है या ऐसा कुछ संकट खड़ा हो गया है, तो ऐसा तो मैं नहीं मानता हूँ। बल्कि हिंदी तो वट वृक्षों की बात विभिन्न रूपों में बाहर निकलकर आ रही है,

0: विभिन्न विधाओं में बुलंदियों पर पहुंच रही है। एक अगर विधा कुछ कम हुई है तो दूसरी विधा ने चरमोत्कर्ष को छुआ है, तो विकास हिंदी का निरंतर हो रहा है। और वर्तमान काल में, और मैं कहूं कि पिछले 3-4 दशक से तो हिंदी ने बहुत ही अच्छी गति पकड़ी है और बहुत ही उत्कृष्ट साहित्य देखने में आ रहा है।
1: जी, हिंदी की अपनी जो लिपि है, हिंदी का अपना जो एक वैज्ञानिकता है, हिंदी की वो वाली सामर्थ्य जो किसी को भी अपने में समाहित कर लेती है, चाहे किसी भी भाषा का शब्द हो, किसी भी बोली का हो, कि कहीं से भी कोई आ जाए, हिंदी उसको अपना लेती है। तो उसके स्वीकार करने की जो शक्ति है, वैज्ञानिकता के मामले में अगर हम बात करें तो आज जैसा कि तकनीकी युग है, कंप्यूटर का युग है, एक समय जब था कि कंप्यूटर का हमारे जीवन में आगमन हो रहा था, समाज में उसकी उपयोगिता सिद्ध हो रही थी, वो हमारे जीवन में आ रहा था, तो हिंदी की जो स्वीकार्यता है और उसकी जो वैज्ञानिकता है, चाहे वो लिपि के संदर्भ में हो, चाहे उसके कार्य व्यवहार के संदर्भ में हो, ये कितने स्थापित हुई है इसमें?
0: ये तो बहुत मजेदार बात है
1: जी
0: कि हिंदी की जो पाचन क्षमता है बहुत विशाल है।
1: जी
0: वो विभिन्न भाषाओं के, प्रादेशिक भाषाओं के, दूसरी विदेशी भाषाओं के भी शब्दों को
1: जी
0: अपने में ऐसे समाहित कर लेती है जैसे कि वो हिंदी के ही शब्द है। और अगर हम आज के संदर्भ में कहें, तकनीकी संदर्भ में कहें, तो जो हिंदी की सामर्थ्य है कि हर स्वर के लिए एक शब्द है, हर संबंध के लिए एक शब्द है,
1: जी जी
0: हर संपर्क के लिए एक शब्द है, और हिंदी जो है ना, सोनोग्राफी है, फोनोग्राफी है, कि हर स्वर के लिए, हर आरोह अवरोह के लिए एक शब्द अलग से है उसमें।
1: जी जी जी
0: अंग्रेजी में ऐसा नहीं है।
1: हाँ हाँ
0: अंग्रेजी यहाँ बहुत पीछे पिछड़ जाती है।
1: जी जी
0: क्योंकि वहाँ एक ही शब्द
1: कई संबंधों के लिए
0: कई संबंधों को उच्चारण देता है, अभिव्यक्ति देता है। लेकिन हमारे यहाँ तो हिंदी में तो ऐसा है कि उसका एक संबंध है तो उसके लिए अलग उच्चारण है, एक कॉलिंग है, एक पुकार है, तो उसके लिए कई कई शब्द हैं।
1: कई कई शब्द,
0: एक ही व्यक्ति को कई कई संदर्भ में हम पुकार सकते
1: जी,
0: हैं।
1: जी, तो उसकी जो समृद्धि है, उसकी जो व्यापकता है, उसका जो विस्तार है, वो मतलब एक कहें कि अनंत है। आपने बात कही कि हिंदी की मातृभाषा संस्कृत है, वो जननी है, वहीं से हिंदी का विकास हुआ धीरे धीरे। इसी तरीके से और भाषाएं भी, बोलियां भी हैं जिनका संस्कृत से जन्म हुआ। तो कई बार ऐसा चर्चाओं में, परिचर्चाओं में ऐसा आभास लगता है कि हिंदी का शायद किसी से कंपटीशन है, प्रतिद्वंद्वता है, प्रतिस्पर्धा है, लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं लगता। तो इसको आप किस तरह से रखेंगे इसमें?
0: ये मैं इस संदर्भ में कहना चाहता हूँ कि जो ये फोबिया बना रखा है,
1: जी
0: मैं ये मानता हूँ कि अगर हिंदी का विकास होता है या हो रहा है या होगा,
1: जी
0: तो प्रादेशिक भाषाएं निश्चित ही समृद्ध होंगी,
1: निश्चित तौर पर।
0: उनका आपस में कोई विरोधाभास
1: मतलब
0: नहीं है,
1: अस्तित्व की कोई लड़ाई
0: कोई
1: नहीं,
0: लड़ाई नहीं है।
1: जी।
0: अगर दोनों में तालमेल रहता है तो उसके बहुत सारे शब्द हिंदी में समाहित हो जाएंगे, हिंदी के बहुत सारे शब्द कन्नड़ में भी उपयोग किए जा सकते हैं, तेलुगु में भी उपयोग किए जा, और जैसा कि हो रहा है
1: जी।
0: संस्कृत के बहुत सारे शब्द उधर भी हैं, इधर भी हैं,
1: जी,
0: लेकिन उनके लय ताल बोलने का, थोड़ा उच्चारण का
1: जी जी
0: तरीका,
1: तो वो
0: थोड़ा
1: तो स्थानीयता और व्यवहारिक जो वो है वो तो बना रहेगा, लेकिन बात यही है कि हम कितने लोगों को, कितनी बोलियों को, कितनी भाषाओं को और कितने समुदायों को एक साथ लेकर के चलते हैं, इसी से शायद भारतीयता बनी है। संस्कृति की बात करें, सभ्यता की बात करें, या फिर इस भाषा के विकास की बात करें, तो सामूहिकता और उसमें स्वीकार्यता, ये तो हमारा एक तरह से हमारा संस्कृति का भी गुण है और हमारी भाषा और बोलियों का भी गुण है, तो ये तो बना रहना चाहिए उसमें। इसको आप मानते हैं इसमें?
0: बिल्कुल बिल्कुल, हिंदी की स्वीकार्यता बढ़ेगी तो सब भाषाओं की स्वीकार्यता बढ़ेगी।
1: जी जी,
0: ऐसा नहीं कि हिंदी तो समृद्ध हो जाए या चरम पर पहुंच जाए और ये रसातल में पहुंचाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, ऐसा है कि अगर अंग्रेजी का बोलबाला बढ़ता है
1: जी,
0: तो हिंदी को भी नुकसान होगा, उसकी छोटी बहने प्रादेशिक भाषाओं का भी नुकसान होगा, मगर
1: जी
0: हिंदी का विकास होने से ये क्षेत्रीय भाषाएं।
1: तो अब थोड़ा सा इसमें मैं ये जानना चाहूंगा कि व्यवहार में जब हिंदी के प्रचलन की बात करते हैं, स्वीकार्यता और उसकी उपयोगिता की तो बात हो गई, लेकिन जब व्यवहार में हम उसके उपयोग की बात करते हैं तो कहीं ऐसा लगता है कि हम चीजों को कहीं छोड़ते भी जा रहे हैं, चाहे वो आधुनिकता के नाम पर, चाहे कामकाज की भाषा के उपयोगिता के नाम पर, या फिर पढ़ाई में अंग्रेजी के थोड़े माध्यम के नाम पर। तो यहाँ कहीं ऐसा लगता है कि व्यवहार

0: हमें उसको थोड़ा सा उन चीजों को देखने की और समझने की जरूरत है कि व्यवहार में हिंदी बनी रहे, उसमें हमारी आने वाली जो पीढ़ी है कहीं वो थोड़ा सा इससे ना अलग हो जाए, तो जो स्थानीयता है, जो हम बोलियों की बात कर रहे हैं, तो उनके जो देशज शब्द है वो भी कहीं छूटते जा रहे हैं हमसे, तो इस पे कहीं काम करने की जरूरत है व्यवहार में।
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल काम करने की। देशज भाषा और बोली और
0: जी
1: उसके शब्दों से ही हिंदी की ताकत बढ़ती है।
0: जी
1: मैं आज ये पूरे दावे के साथ कहता हूँ कि हिंदी में भी, हिंदी के क्षेत्र में भी हजारों हजार रोजगार हैं, उसकी बहुत अच्छी मांग है, बशर्ते हिंदी अच्छी आनी चाहिए।
0: जी
1: हिंदी सर्व गुण सर्वांग रूप में आनी चाहिए।
0: जी
1: और जो लोग ऐसा कहते हैं कि मैं इतना पढ़ गया, पीएचडी कर ली, या इतनी ऊंचाई तक मैंने हिंदी का
0: जी
1: अध्ययन किया और मैं आज बेरोजगार घूम रहा हूं, तो उन्हें खुद अपने आप
0: अपने
1: में
0: आप को देखना है
1: आत्मलोचन करना चाहिए
0: जी के।
1: कि मैं कहाँ गलत हुआ, मैं कैसी हिंदी पढ़ गया और
0: हाँ
1: मुझे कैसी हिंदी पढ़नी चाहिए थी।
0: जी
1: तो उनको थोड़ा इस पर मनन करना चाहिए। लेकिन हिंदी के जो अच्छे लोग हैं, अच्छे जानकार हैं, आज हर क्षेत्र में उनकी मांग बनी हुई है, चाहे प्रकाशन का क्षेत्र हो, चाहे मीडिया का क्षेत्र हो, चाहे भारत सरकार या राज्य सरकारों के विभिन्न मंत्रालयों में, विभागों में अच्छे हिंदी जानकारों की बड़ी मांग है।
0: जी, तो कई बार ऐसा कहा जाता है कि सरकारी कामकाज में हिंदी कहीं कम हो रही है, तो आप इस बात को मानते ही क्या है? इसमें कई बार ये प्रश्न उठता है कि जो लोग इसके प्रचार प्रसार की बात करते हैं, जिन पे इनके विकास की बात है, वो ही कहीं हिंदी को छोड़ते जा रहे हैं या उनके व्यवहार में कमी है। तो सरकारी कामकाज में हिंदी भाषा काम की भाषा तो है, लेकिन व्यवहार में कहीं ऐसा लगता है कि उसके साथ थोड़ा सा वो हो रहा है इसमें?
1: हाँ, जिनके हाथों में या जिनके पदों में इसके विकास और इसको समान धारा में लाने की ताकत है, वो
0: जी
1: लोग शायद इस ओर से उदासीन है।
0: जी जी उदासीन है, मतलब व्यवहार
1: हाँ,
0: में तो है लेकिन उदासीन
1: अगर
0: है।
1: वो चाहें, पूरे मन से चाहें,
0: जी
1: तो हिंदी अपने जन जन की भाषा बन सकती है, व्यावहारिक भाषा भी बन सकती है, हर कार्यालय की व्यवहार की भाषा बन सकती है। मैं तो इतना कहता हूं कि छोड़ो दक्षिण को, अगर उत्तर भारत के, खासकर जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं,
0: जी जी
1: हिंदी भाषी राज्य हैं, वही ये प्रण कर लें कि हम अपने राजकीय कार्य में हिंदी का ही प्रयोग करेंगे,
0: जी
1: तो हिंदी तो वैसे
0: हिंदी
1: ही व्यवहार में आ
0: तो
1: जाएगी।
0: हिंदी के अस्तित्व को कोई खतरा नहीं है
1: नहीं,
0: उसमें।
1: बिल्कुल नहीं।
0: प्रेमपाल जी, कई बार जब हम साहित्य रचना करते, कोई कृति आती है, लेखन होता है, चाहे वो कहानी हो चाहे अन्य विधाएं हो, कई बार उसमें जो चाहे वर्तनी की शुद्धि हो चाहे व्याकरण की अशुद्धि हो, इस पर भी काफी कुछ लिखा और पढ़ा जाता है, तो इसमें किस तरह की गलतियां एक उससे लेखक से हो जाती हैं, और उस पे लिखते समय क्या कुछ ध्यान दिया जाना चाहिए? अगर हमारे कुछ पाठक सुन रहे होंगे तो उनके लिए बताएं कि लेखन के समय जो होने वाली अशुद्धि है उनसे कैसे बचा जा सकता है।
1: जी हाँ जी हाँ, ये बहुत अहम सवाल है कि हिंदी तो हम लिख रहे हैं या
0: जी
1: लिखते हैं,
0: जी
1: लेकिन त्रुटियों से, लेकिन हिंदी लिखें तो त्रुटि रहित। अब उनमें किस तरह की त्रुटियां होती हैं, गलतियां होती हैं, और इनका परिमार्जन भी आप खुद कर सकते हैं। जैसे शब्दों के गलत रूप प्रचलन में हैं और हम उन्हीं को चलाए चले जा रहे हैं,
0: प्रयुक्त कर
1: लेकिन
0: लेते हैं।
1: पीछे लौटकर ये देखना चाहिए कि जो मैंने ये लिखा है क्या ये शुद्ध है, अन्यथा
0: उसके
1: कोश,
0: शुद्धता पे
1: हाँ,
0: जाना चाहिए।
1: शब्दकोश का सहारा ले सकते हैं। हिंदी की शुद्धता को बनाए रखने के लिए कुछ ऐसे संस्थान भारत सरकार ने खड़े किए हैं जो आपका मार्गदर्शन करते हैं,
0: जी
1: समय समय पर एडवाइजरी वो निकालते हैं, तो उनको आप अनुकरण करें। वो क्या बताते हैं, उनके द्वारा बताई गई वर्तनी, उनके द्वारा बताए गए शब्द जो वो शुद्ध मानते हैं, उनका
0: जी
1: अपने लेखन में उपयोग करें, तो मैं समझता हूं कि अशुद्ध हिंदी लिखने से आप जरूर बच जाएंगे।
0: जी अब प्रेमपाल जी, हिंदी की बात हमने की, हिंदी में आप साहित्य रचना कर रहे हैं, उस रचना के प्रकाशनों से जुड़े हुए हैं, बहुत सारे संदर्भ और वो आपके आते रहते हैं, जहां तक मेरी जानकारी है आपने जो कुछ लिखा है हिंदी में, आप यात्रा वृत्तांत और संस्मरणों पर काफी कुछ काम करते हैं, तो ये जो विधा है लिखने की, इसके बारे में थोड़ा हमारे श्रोताओं को बताओ कि यात्रा वृत्तांत अगर कोई लिखता है तो उसकी क्या प्रामाणिकता होनी चाहिए, उसमें क्या कुछ ऐसे स्थायी चीजें हैं जिनको लेना ही चाहिए, तब वो एक अच्छा यात्रा वृत्तांत या संस्मरण होता है, इस पर थोड़ा मैं श्रोताओं के साथ।
1: जी हाँ जी हाँ सर, मैं बिल्कुल इस पे बताना चाहूंगा कि यात्रा संस्मरण हिंदी साहित्य की बड़ी रसदार विधा है।

0: इसमें पिछले कई दशक से ऐसा हो रहा है कि जो उथले उथले बिना गहराई वाले कि यहाँ गए वहां गए ये खाया वो खाया ऐसे यात्रा संस्मरण आ रहे थे
1: जी
0: और केवल उसकी पूर्ति भर हो रही
1: जी जी
0: थी।
1: जी
0: लेकिन मैं ये मानता हूं कि यात्रा संस्मरण कैसा होना चाहिए, उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए। जब आप किसी स्थान विशेष या तीर्थ विशेष या पर्यटन स्थल की आप
1: जी
0: यात्रा करते हैं तो मैं समझता हूं कि उस स्थल की भौगोलिक ऐतिहासिक
1: जी
0: जानकारी पाठक को मिलनी चाहिए और लिखने की शैली आपको ऐसी होनी चाहिए
1: जी
0: जो यात्रा वृत्तांत लिखने वाले हैं कि पाठक को लगे वो पढ़ नहीं रहा है बल्कि लेखक के साथ साथ उनका दर्शन कर रहा है।
1: दर्शन कर रहा है जी
0: तो इसमें यात्रा वृत्तांत लेखन की
1: जी
0: सार्थकता है।
1: मतलब जीवंतता होनी चाहिए
0: जी जी
1: उसमें, जो
0: जी
1: जीवंतता मतलब जो हम उसको पढ़ रहे हैं तो वो एक तरह से वो उस चीज को विजुअलाइज कर पाए, उसके साथ जुड़ पाए, उसको भाव रूप में उसको स्वीकार कर पाए,
0: जी
1: तो उसके लिए उसकी पूरी पृष्ठभूमि उसमें आना चाहिए।
0: आना
1: प्रेमपाल जी आप आए और हमारे श्रोताओं के साथ जुड़े एक इस संवाद के लिए आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और निश्चित तौर पर आपके विचारों से हमारे श्रोता लाभान्वित होंगे इसकी हम कामना करते हैं। एक बार पुनः आपका धन्यवाद,
0: जी,
1: नमस्कार।
0: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे भेंट वार्ता हिंदी भाषा साहित्य एवं भारतीय जनमानस। वार्ताकार थे प्रेमपाल शर्मा, साहित्यकार एवं संपादक, और आपसे बातचीत कर रहे थे ओपी सिंह। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी देर में आकाशवाणी लखनऊ से रिले करेंगे।

0: आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। जिले की हलचल, आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए कानपुर नगर और रामपुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं कानपुर नगर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है राजेश श्रीवास्तव का।
1: जनपद कानपुर नगर में पिछले दिनों पहुंचे प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में आयोजित कानपुर झांसी चित्रकूट धाम मंडलों की संयुक्त मंडली खरीफ उत्पादकता गोष्ठी 2026 का बतौर मुख्य अतिथि उद्घाटन किया। इस दौरान श्री शाही ने स्टॉलों पर जाकर विभिन्न उत्पादों के विषय में जानकारी लिया। गोष्ठी के दौरान कृषि उत्पादन आयुक्त, प्रमुख सचिव कृषि सहित कृषि वैज्ञानिक एवं कृषक गण कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस दौरान कृषि मंत्री ने कहा कि खरीफ का मौसम शुरू होने वाला है, जिसका ध्यान रखते हुए प्रदेश सरकार की प्राथमिकता किसानों को उन्नतशील बीज उपलब्ध कराने के साथ ही खेतों में हरी खाद बढ़ाने और रासायनिक खाद का प्रयोग कम करने के लिए सरकार द्वारा KCC योजना को अपनाने के लिए किसानों को प्रेरित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ईंधन की बचत किए जाने की अपील को बल देते हुए श्री शाही ने कहा कि उन्होंने अपने काफिला कम कर दिया है और अधिकारियों को कार पूल करने के लिए निर्देश दिए हैं। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि प्रत्येक कृषि विश्वविद्यालय को 100 साइकिल लेने और शिक्षकों, कर्मचारियों तथा विद्यार्थियों को साइकिलों के माध्यम से चलने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। जनपद कानपुर नगर पहुंचे प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने अनुदेशक सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत अनुदेशकों के मानदेय में लगभग दोगुनी वृद्धि करते हुए प्रदेश सरकार ने इसे 9,000 रुपए से बढ़ाकर 17,000 रुपए प्रतिमाह कर दिया है। श्री राकेश सचान ने बताया कि बढ़ा हुआ मानदेय 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा तथा अनुदेशकों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा से भी आच्छादित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि परिषदीय विश्वविद्यालयों में कार्यरत अनुदेशक खेलकूद, योग, संगीत, कला एवं अन्य गतिविधियों के माध्यम से बच्चों में आत्मविश्वास, अनुशासन और रचनात्मकता विकसित कर रहे हैं। यह निर्णय बच्चों के व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे अनुदेशकों के योगदान का सम्मान है। जनपद कानपुर नगर में पिछले दिनों पहुंचे प्रदेश सरकार के व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल।

0: वाल ने राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पांडु नगर कानपुर नगर का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने संस्थान में संचालित विभिन्न व्यवसायों प्रशिक्षण व्यवस्थाओं एवं उपलब्ध संसाधनों का गहन अवलोकन किया। उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रशिक्षार्थियों से संवाद कर उनके कौशल विकास प्रशिक्षण अनुभव एवं भविष्य की रोजगार संभावनाओं के बारे में जानकारी लिया। उन्होंने प्रशिक्षण गुणवत्ता में सुधार और आधुनिक संसाधनों पर जोर देते हुए संस्थान में किए जा रहे निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और समयबद्ध पूर्णता सुनिश्चित करने के साथ ही कौशल विकास के माध्यम से आत्मनिर्भरता का संदेश युवाओं को रोजगार पूरक प्रशिक्षण पर बल दिए जाने के निर्देश दिया। मंत्री कपिल अग्रवाल ने बताया,
1: कानपुर जो एक बड़ा हब है, इंडस्ट्री का बड़ा सेंटर है, तो यहाँ के उद्यमियों से भी उद्योगपतियों से व्यापारियों से मेरा निवेदन है कि आईटीआई में कभी विजिट करें, बच्चों की आवश्यकता को समझें कि बच्चे आईटीआई करते करते ड्यूअल सिस्टम के अंदर बच्चे आईटीआई में भी काम करें और इंडस्ट्री के अंदर भी प्रशिक्षण लें, तो इन बच्चों को इंडस्ट्री में घुमाएं देखें ताकि ये बच्चे प्रैक्टिकल रूप से वहां जाके इंडस्ट्री में सीखने का काम कर सके और बालिकाओं के अंदर भी एक शानदार आत्मविश्वास दे रहा है, उनको भी सपने साकार हों।
0: जनपद कानपुर नगर में पिछले दिनों अग्रणी जिला बैंक कार्यालय कानपुर नगर द्वारा वित्तीय सेवा विभाग राष्ट्रीय ऋण गारंटी न्यासी कंपनी लिमिटेड NCGTC राज्य स्तरीय बैंकर समिति SLBC लीड बैंक एवं जन समर्थ PSB अलायंस के मध्य समन्वय से ECLGS 5.0 योजना के व्यापक प्रचार प्रसार एवं जागरूकता के उद्देश्य से आउटरीच प्रोग्राम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बैंक ऑफ बड़ौदा एवं राज्य स्तरीय बैंकर समिति SLBC उत्तर प्रदेश के संयोजक शैलेंद्र कुमार सिंह, वित्त मंत्रालय भारत सरकार के वित्तीय सेवा विभाग DFS के अवर सचिव शैलेंद्र कुमार एवं विशेष कार्याधिकारी OSD मधुरिता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। इस दौरान ECLGS 5.0 योजना MSME इकाइयों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने, कार्यशील पूंजी संबंधी समस्याओं को दूर करने तथा रोजगार एवं औद्योगिक गतिविधियों को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने तथा बैंकों के पात्र इकाइयों तथा योजना का अधिकतम लाभ पहुंचाने के लिए सक्रिय प्रयास करने के उद्देश्य से किया गया। SLBC उत्तर प्रदेश के संयोजक और बैंक ऑफ बड़ौदा के महाप्रबंधक शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया,
2: इस स्कीम में जो MSME सेक्टर है, जो भी वो लोन बैंक देंगे, MFI देंगे बल्कि, वो टोटल 100% सिक्योर्ड है और नॉन MSME के लिए 90% तक इसको क्रेडिट गारंटी भारत सरकार दे रही है, जिसका कोई भी फीस किसी भी कस्टमर को नहीं देना है।
3: कानपुर नगर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं रामपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है शन्नू खान का।
4: रामपुर में उद्यान विभाग द्वारा एकीकृत बागवानी विकास योजना संचालित की जा रही है। योजना के अंतर्गत कार्यक्रमों में पॉली हाउस, शेड, नेट हाउस की स्थापना, मशरूम उत्पादन इकाई, स्पॉन मेकिंग इकाई, कोल्ड रूम एवं कोल्ड स्टोरेज जैसे कई कार्यक्रम सम्मिलित हैं। अधीक्षक राजकीय उद्यान अजय कुमार ने बताया कि सरकार द्वारा इकाई लागत का 40-50% तक अनुदान अनुमन्य है। जनपद में ईद उल अजहा का त्यौहार श्रद्धा, पारंपरिक हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर लोगों ने बारगाहे इलाही में सिर झुकाकर मुल्क में अमन, चैन, खुशहाली और तरक्की के लिए खास दुआएं की। त्यौहार को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस बेहद मुस्तैद नजर आई। शहर के संवेदनशील इलाकों, ईदगाह और प्रमुख मस्जिदों के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। रामपुर में अत्यधिक गर्मी और बढ़ते तापमान को ध्यान में रखते हुए सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर 3 से 6 साल उम्र के बच्चों के लिए 15 जून 2026 तक अवकाश घोषित किया गया। जिला कार्यक्रम अधिकारी धर्मेंद्र कुमार मिश्र ने बताया कि बच्चों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए यह निर्णय लिया गया। हालांकि समस्त आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री एवं सहायिकाएं ने अपने अपने केंद्रों पर नियमित रूप से उपस्थित रहकर विभागीय कार्यों का निर्वहन किया। जिले में आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों के गोल्डन कार्ड निर्माण कार्य में गंभीर लापरवाही पाई गई। लापरवाही पाए जाने पर जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को कार्य में शिथिलता बरतने वाली आशाओं के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए। मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा बताया गया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिलासपुर क्षेत्र तथा नगर क्षेत्र की आशा कार्यकर्ताओं द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप कार्य नहीं किया गया। मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित 7 आशाओं की सेवाएं समाप्त करने की कार्रवाई की गई। ICDS विभाग द्वारा बनाए जा रहे गोल्डन आयुष्मान कार्ड की समीक्षा में लापरवाही सामने आने पर जिलाधिकारी ने CDPO मिलक को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। साथ ही CDPO मिलक एवं CDPO बिलासपुर का 3-3 दिन का वेतन बाधित करने की कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए। जिले में समाज कल्याण विभाग द्वारा

0: संचालित वृद्धावस्था एवं किसान पेंशन योजना में शानदार प्रदर्शन किया गया है। भौतिक और वित्तीय प्रगति रिपोर्ट के अनुसार विभाग ने योजना के तहत अपना 100% लक्ष्य प्राप्त किया। वर्तमान में जिले के कुल 70,000 से अधिक पात्र बुजुर्गों को पेंशन का सीधा लाभ मिल रहा है। अपात्रों की छटनी करने के साथ साथ चालू वित्तीय वर्ष के दौरान नए हकदारों को उनका अधिकार दिलाने का काम भी तेजी से हुआ है। पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान को न्यायालय ने 2 साल की सजा और 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया। आजम खान द्वारा साल 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान अधिकारियों के खिलाफ विवादित बयान दिया गया था। थाना क्षेत्र भोट अंतर्गत चुनाव प्रचार करते हुए उच्च अधिकारियों के विरुद्ध आजम खान ने अभद्र टिप्पणी की थी। न्यायाधीश शोभित बंसल न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम MPMLA कोर्ट रामपुर में विचाराधीन था। ADGC संदीप सक्सेना ने बताया कि आजम खान को इसमें दोष सिद्ध करार दिया गया है।
1: MPMLA जो स्पेशल मजिस्ट्रेट कोर्ट है रामपुर में, श्रीमान शोभित बंसल जी की, उनके द्वारा सजा सुनाई गई, जिसमें हर धाराओं में 2 साल की सजा और 5,000-5,000 रुपए का जुर्माना आजम खान के ऊपर डाला गया।
0: जनपद में अवैध खनन, अवैध परिवहन एवं ओवरलोडिंग के विरुद्ध कार्रवाई की गई। जनपद स्तरीय गठित टास्क फोर्स द्वारा संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया गया। चेकिंग के दौरान 3 वाहनों को ओवरलोड पाया गया। इसके अतिरिक्त 25 डंपरों में कमियां पाई गईं। प्रशासन ने वाहन स्वामियों एवं चालकों से अपील की है कि वाहनों में रेता, बजरी अथवा अन्य सामग्री निर्धारित क्षमता से अधिक न भरें तथा डंपरों का संचालन निर्धारित गति सीमा के अंतर्गत करें, ताकि आमजन को किसी प्रकार की असुविधा न हो।
2: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
3: जिले की हलचल में अभी आपने सुनी कानपुर नगर और रामपुर जिलों की हलचल। मीडियम वेव
4: आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आबोहवा।
5: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं मथुरा रिफाइनरी मथुरा। मथुरा रिफाइनरी स्वच्छ एवं हरित रिफाइनरी, पर्यावरण के प्रति एक जिम्मेदार और समर्पित प्रतिष्ठान, विकास का आधुनिक मंदिर, पर्यावरण प्रबंधन के लिए एशिया की पहली ISO 14001 रिफाइनरी। मथुरा रिफाइनरी विशाल इकोलॉजिकल पार्क को सहेजे, ब्रज के फ्लोरा एवं फोना का जीता जागता नमूना, ताजमहल की सुरक्षा और संरक्षण को सदैव समर्पित। मथुरा रिफाइनरी स्वच्छ एवं हरित रिफाइनरी।
6: श्रोताओं, पर्यावरण संरक्षण में हमारा योगदान सर्वाधिक होना चाहिए, क्योंकि सबसे अधिक प्रभावित आम आदमी ही होता है। मिट्टी, जल, वायु, पेड़ पौधे तथा जीव जंतु आदि सभी पर्यावरण के मूलभूत घटक हैं। इन सभी के तालमेल से पर्यावरण स्वस्थ और संतुलित रहता है। किंतु अत्यंत खेद की बात है कि आज मनुष्य अपने अहम और स्वार्थ के वशीभूत असंतुलित भौतिक विकास की दौड़ में अंधा होकर बेरमी के साथ वनों को उजाड़ रहा है, काट रहा है, नदियों को प्रदूषित कर रहा है, प्राण वायु को विषैला बना रहा है। प्रकृति पर लगातार होने वाले ये हमले पर्यावरण को तिल तिल करके नष्ट कर रहे हैं। देखा जाए तो आज का मनुष्य अपनी भौतिक महत्वाकांक्षाओं के वशीभूत होकर आज विनाश की ओर बढ़ रहा है। पर्यावरण संरक्षण में मानव का योगदान 2 चरणों में होगा। सबसे पहले प्रदूषण की गति थाम कर, दूसरा संरक्षण को गति प्रदान करके। वर्तमान परिस्थितियों में पर्यावरण शब्द का दायरा सूक्ष्म में जैविक कोशिका से ब्रह्मांड तक बढ़ गया है। औद्योगिकरण और मानव सभ्यता के आधुनिक विश्वास से पहले पर्यावरण और मानव दोनों के बीच एक सामंजस्य एवं संतुलन था, परंतु जैसे जैसे उद्योगों का फैलाव बढ़ता गया और जनसंख्या वृद्धि से आबादी के घनत्व में बढ़ोतरी होती गई, वैसे वैसे कई क्षेत्रों में पर्यावरण विकृति की गति इतनी द्रुत होती गई कि अब प्रभावित क्षेत्रों में प्राकृतिक संतुलन करना एक विकट समस्या बन गया है। इससे न केवल मानव जीवन संकट में है, अपितु पशु पक्षी एवं वनस्पति जगत के लिए भी यह संकट उतना ही भयावह हो गया है। इसको हमें बचाना है। इस संकट से बचने के लिए यह आवश्यक है सारी पृथ्वी पर मिलजुल कर

0: ऐसे प्रयत्न किए जाएं जिससे हमारी पृथ्वी और पर्यावरण सही सलामत रहे। वृक्ष लगाएं, तीव्र औद्योगिकरण, वनों के बेरोक टोक कटाव, नदियों में कूड़े कचरे का प्रवाह, कृषि में रसायनों का असंतुलित प्रयोग और तेजी से बढ़ती जनसंख्या आदि के द्वारा पर्यावरण को बिगाड़ने के लिए मनुष्य ही पूर्णतः जिम्मेदार है। इसके लिए हमें ऊर्जा की बचत अधिक से अधिक करनी चाहिए ताकि कार्बन डाइऑक्साइड जो मनुष्य के लिए घातक है उसके वायुमंडल में जाने की गति धीमी हो जाए। दूसरी ओर हमें ऊर्जा के उन स्रोतों की ओर ध्यान देना होगा जिनसे ये समस्या ही उत्पन्न नहीं होगी। उदाहरण के लिए सौर ऊर्जा एक है। यदि हम सौर ऊर्जा का उपयोग करें तो न इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और न ही मीथेन। इस प्रकार हम पवन ऊर्जा का प्रयोग भी करें तो यही सब लाभ होंगे। सौर ऊर्जा से हम खाना भी पका सकते हैं, बिजली भी बचा सकते हैं। यदि हम व्यर्थ कचरे से ऊर्जा उत्पन्न करें तो मोटर गाड़ियों के उपयोग में थोड़ी सी योजनाबद्ध नीति पेट्रोल की खपत को कम करके पर्यावरण को दूषित होने से बचा जा सकता है। मानव चाहे तो वैज्ञानिक तथा औद्योगिक विकास को रोके बिना भी पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए प्रयत्न किए जा सकते हैं। अवशिष्ट प्रदूषक पदार्थों का कंपोस्ट खाद बनाकर मानव उपयोग में लाए, उन्हें जल में नहीं बहाए ताकि उनके हानिकारक तत्व जल में नहीं जाएं और मनुष्य बीमार नहीं पड़े। इस दिशा में अधिक से अधिक शोध एवं प्रचार प्रसार को बढ़ावा देना चाहिए। पर्यावरण को कम से कम हानि पहुंचे इसके लिए मनुष्य अपनी आवश्यकताएं सीमित रखे और अपना जीवन सादगी से बिताए। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाले एक ही वाहन का उपयोग करें तो पेट्रोल की खपत कम होगी। पॉलिथीन का प्रयोग न करें, जल का अपव्यय न करें, जनता में पर्यावरण के प्रति चेतना जगाएं। जल, जमीन और जंगल की रक्षा से ही सारे मानव जाति की रक्षा हो पाएगी। अतः सभी मनुष्यों का दायित्व है कि वर्तमान तथा भविष्य की पीढ़ी के जीवन को सुखमय बनाने के लिए पर्यावरण को सुरक्षित रखें।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे मथुरा रिफाइनरी मथुरा।
2: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम आबोहवा। विषय था मानव और वृक्ष। आलेख और वाचन ललिता गुप्ता का था। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं विशेष कार्यक्रम ब्रज में पुरुषोत्तम मास और प्रशासन की तैयारी। वार्ताकार है रश्मि शर्मा।

जब समय की गति डगमगाई, जब जब धर्म और भक्ति के बीच दूरी बढ़ी, तब तब सनातन परंपरा ने मानवता को एक अतिरिक्त अवसर दिया। पुराणों में वर्णित है एक ऐसा मांस जिसे कोई देवता स्वीकार नहीं कर रहा था, जिसे मल मांस कहकर तिरस्कृत किया गया। वह दुखी होकर भगवान विष्णु की शरण में पहुंचा। तब स्वयं श्री हरि ने उसे अपने नाम से विभूषित किया और कहा, आज से तुम पुरुषोत्तम मास कहलाओगे। जो तुम्हारे समय में भक्ति करेगा उसे मैं स्वयं स्वीकार करूंगा। यही कारण है कि पुरुषोत्तम मास केवल एक अतिरिक्त महीना नहीं, यह भगवान के सबसे निकट पहुंचने का दुर्लभ अवसर माना गया है। ब्रज में इस मास का महत्व और भी अद्भुत हो जाता है। जहां हर कण में कृष्ण है, हर पग में लीला और हर धड़कन में राधे राधे।

घाटों पर दीपदान, मंदिरों में हरिनाम संकीर्तन, परिक्रमा मार्गों पर उमड़ती श्रद्धा और साधु संतों की वाणी, पूरा ब्रज

0: जैसे भक्ति के महासागर में डूब जाता है। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम जानेंगे पुरुषोत्तम मास की पौराणिक महिमा। क्या करें क्या ना करें, ब्रज 84 कोस परिक्रमा का महत्व, राधा वल्लभ मंदिर के विशेष उत्सव, दान पुण्य की दिव्यता और श्रद्धालुओं के लिए प्रशासन की व्यवस्थाएं। सबसे पहले चलते हैं उस प्रश्न की ओर जो हर श्रद्धालु के मन में उठता है, आखिर अधिक मास क्या है, इसका आध्यात्मिक महत्व क्या है और इस मास में भक्तों को क्या करना चाहिए। हमारे साथ जुड़ रही हैं पूज्य मित्र वृंदा सुता।
1: जी रश्मि जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए और इस चर्चा के लिए। तो हम सरल शब्दों में जानते हैं कि इसे अधिक मास क्यों कहा जाता है। तो जैसा कि हमें पता है कि साल में 12 महीने आते हैं, जनवरी फरवरी, तो ये जो गणना की जाती है सूर्य के संचरण के अनुसार की जाती है, जिसे सौर वर्ष सोलर ईयर कहा जाता है। ऐसे ही जब चंद्रमा के संचरण के अनुसार गणना की जाती है उसे चंद्रवर्ष ल्यूनर ईयर कहा जाता है। तो जो सोलर ईयर है, सौर वर्ष हमारा आता है, उसमें 365 दिन और 6 घंटे होते हैं, जबकि चंद्रवर्ष में 354 दिन ही होते हैं। तो देखा जाए तो इन दोनों वर्षों में लगभग 11 दिन का अंतर आ जाता है। तो इसे ही संतुलित करने के लिए लगभग 32-33 महीने के बाद जो चंद्र वर्ष है ना, उसमें हमारा जो वैदिक कैलेंडर है उसमें एक जो मास वो है एक्स्ट्रा ऐड किया जाता है, इसे ही अधिक मास कहा जाता है। बल्कि और सरल शब्दों में, जैसे कि इंग्लिश कैलेंडर में आप सब जानते हैं 365 दिन और 6 घंटे, मतलब एक चौथाई दिन एक्स्ट्रा होता है एवरी ईयर, और यही एक चौथाई दिन जो है वो 4 साल बाद एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है। तो हम इसे लीप ईयर के नाम से जानते हैं जब वो ऐड किया जाता है। जी,
2: अब इसके नाम की बारी, जैसे कि अधिक मास, ये आपने एक लॉजिक इसका समझाया हमें। हमारे ब्रज भाषा में तो इसे लौंद का महीना भी कहते हैं, कोई कहता है खल मास चल रहा है, कोई कहता है पुरुषोत्तम मास चल रहा है, मतलब इस मास के इतने सारे नाम हैं और निश्चित रूप से कुछ ना कुछ तो इन नामों के साथ जुड़ा होगा, तो कुछ इस पर भी प्रकाश डालेंगे।
1: जी, जैसे कि पुरुषोत्तम मास आपने कहा, तो इसके पीछे जो कथा आती है पुराणों में कि ये अतिरिक्त मास है, तो इसलिए इसका कोई अधिष्ठाता देव नहीं थे, पर इस मास में कोई शुभ कार्य और मांगलिक कार्य नहीं किया जाता, इसीलिए इसे मल मास खर मास कहा जाता है, और इसी के कारण इसको एक तिरस्कृत किया गया और हे दृष्टि से देखने लगे सब इसे। तो ये जो मास है वो अत्यंत दुखी हुआ और वो भगवान की शरण में गया। तब भगवान ने कृपावश स्वयं अपना नाम इसे प्रदान किया, पुरुषोत्तम। और केवल नाम ही प्रदान नहीं किया बल्कि भगवान ने इसे एक स्पेशल स्पिरिचुअल पोटेंसी, एक विशेष आध्यात्मिक शक्ति भी प्रदान की कि इस महीने में जितने भी भक्ति परक कार्य किए जाएंगे उसका हमें कई गुना फल अधिक प्राप्त होगा। तो ये इस मास की एक और विशेषता है कि आप जितने भी इसमें भक्ति परक कार्य करेंगे तो कई गुना होकर आपको उसका फल मिलेगा।
2: जी, तो अभी हम देख रहे हैं कि हमारे ब्रज मंडल में इस मास में श्रद्धालु आ रहे हैं, परिक्रमा लगा रहे हैं, यमुना जी में स्नान कर रहे हैं, यहाँ के मंदिरों के दर्शन कर रहे हैं और चारों तरफ भगवत कथा का भी पाठ हो रहा है, विशेष पंडाल सजाए गए हैं और हमारे ब्रजवासी तो बढ़ चढ़ के भोजन की सेवा, जल की सेवा, शरबत की सेवा, न जाने कितनी सेवाएं कर रहे हैं। तो ये तो सेवा का भाव हुआ, दान पुण्य का हुआ, लेकिन इस मास में जो लोग हमारे ब्रजमंडल में नहीं आ पा रहे या कोई और पुण्य कार्य करने के लिए बाहर नहीं जा पा रहे क्योंकि गर्मी भी बहुत है इस महीने में, तो वो घर में बैठे बैठे ऐसा क्या करें जिससे उन्हें पुण्य फल की प्राप्ति हो।
1: जी, जैसा आप बता ही रहे हैं इतना कुछ इसमें, तो बहुत महत्ता बताई गई है अगर आप धाम में जाते हैं, पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, लेकिन फिर भी अगर किसी कारणवश ये संभव नहीं है तो आप दान तो घर से भी कर सकते हैं। आजकल तो QR कोड जो है आपको कहीं पर भी आप बैठे बैठे करते

0: जगन्नाथपुरी में कहीं पर भी दान कर सकते हैं, तो
1: जी
0: आप एक वो जरूर करना चाहिए आपको। उसके बाद दीप दान, संध्या के समय आप तुलसी जी पर और जगन्नाथ जी के सामने जो है दीप दान कीजिए। इसके साथ साथ भगवत गीता का 15th जो चैप्टर है, मतलब 15वां अध्याय है, उसका नाम है पुरुषोत्तम योग। तो हम देखेंगे कि इस मास को भगवान ने जो अपना नाम दिया पुरुषोत्तम, और इस

0: अपना नाम दिया पुरुषोत्तम, और इस अध्याय का भी नाम जो है पुरुषोत्तम। तो अगर आप
1: जी
0: इस भगवद गीता के सिर्फ एक अध्याय का नित्य प्रति पाठ करते हैं, उसके साथ साथ चौराष्टकम जो कि बिल्व मंगल ठाकुर ने भगवान को संबोधित करते हुए लिखा है, बहुत ही सुंदर है ये, और साथ साथ जगन्नाथ अष्टकम, तो इस तरह के बहुत से हैं जो आप घर बैठकर जिनका पाठ कर सकते हैं। और
1: जी
0: लेकिन सबसे ज्यादा मैं कहूंगी कि जो उत्तम है और इन सब में फलदायी है, वो जो है ज्यादा से ज्यादा हरि नाम लेना। आप
1: जी
0: घर पर हो, आप अपनी दुकान पर हो, आप अपने बिजनेस ऑफिस कहीं पर भी हैं, हरि नाम कहीं भी लिया जा सकता है। तो आप हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे, सिर्फ इस मंत्र का जाप करके भगवान की कई गुना अधिक कृपा प्राप्त कर सकते।

0: श्रोताओं, पुरुषोत्तम मास हमें केवल पूजा नहीं बल्कि जीवन को पवित्र बनाने की प्रेरणा देता है। ब्रज की परिक्रमा सिर्फ पैरों की यात्रा नहीं, यह आत्मा की यात्रा है, जहां कदम कदम पर श्री कृष्ण की स्मृतियां जीवित हैं। हमारे साथ हैं पूज्य राम प्रपन्नाचार्य जी महाराज। महाराज जी से जानेंगे ब्रज 84 कोस परिक्रमा के प्रमुख स्थानों के संदर्भ में और इसके महत्व के संदर्भ में।
1: ब्रज में चारों धाम है, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ। ब्रज रज से अनुमति लेंगे, इस रज के ऊपर आपको चलना है 7 दिनों में, तो इन रज रानी से पहले अनुमति लेंगे। जो 84 कोस यात्रा है, ये 84 कोस यात्रा पहले किसने कराई? पहले भगवान श्री कृष्ण ने कराई, और किसको कराई? अपने माता पिता नंद बाबा यशोदा मैया को।
2: बोल जमुना मैया की जय, बोल गुरु गोविंद की जय।
1: आज से आप लोगों का 84 कोस यात्रा आरंभ हो रहा है। इसका प्रथम नियम है
2: 84 कोस ब्रज यात्रा रो संकल्प हो।
1: सर्व अवस्थान ततो पिबा यह स्मरेत कुंडली काक्यो समायभ्यन सरिष्ठ जी ओ कुंडली काक्यो।
3: शुरुआत जो है कहते हैं कि यमुना जी से शुरू करते हैं, फिर उसके बाद आपका भांडेर वन बंसीवत ये एरिया आती है, उसके बाद फिर गोकुल, गोकुल से फिर मथुरा, मथुरा से गोवर्धन, गोवर्धन से फिर चार धाम डीग राजस्थान जो होता है, वहां से होते हुए फिर कामबन, कामबन से फिर छाता बरसाना होते हुए छाता, और छाता से होते हुए फिर आपका छठीगढ़ होते हुए सीधा फिर वृंदावन आ जाएंगे। ऐसे पूरी ब्रज 84 कोस 250 किलोमीटर यानी कि 84 कोस जो है, और इसको अधिक मास में करने से ये लाभ है कि ठाकुर जी मान लो सभी देवी देवता जो है इस समय इस वृंदावन धाम में साक्षात प्रकट हो जाते और सभी लोग दर्शन देते हैं। और जब ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं कि ठाकुर जी हमारे बालकृष्ण लाल जी साक्षात वैसे तो 365 दिन अनवरत यहाँ पर विराजमान रहते हैं, भक्तों को लीलाओं में दर्शन देते हैं राधा कृष्ण, लेकिन उस वक्त जो है वो लीला करने के लिए तत्पर रहते हैं और उस लीलाओं को दर्शन करने के लिए भक्त देवता देवी सभी प्रकट हो जाते हैं। और जब वो प्रकट होते हैं ऐसे समय में जब भजन करते हैं हम, तो उस भजन का 1000 गुना फल मिलता है। इसलिए अधिक मास में आकर के 84 को यात्रा करिए, ब्रजधाम में संतों का दर्शन करिए, ब्रजवासियों को दर्शन करिए, ब्रजवासियों के दिए हुए टुकड़े खाइए, अन्न पाइए, और ब्रज में आकर के अपने जो पुण्य है उसको उदय करिए और इस धराधाम से मुक्त होने के लिए ठाकुर जी से प्रार्थना करिए।
0: पुरुषोत्तम मास में लाखों श्रद्धालु ब्रज में पहुंचते हैं, ऐसे में प्रशासन की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। आइए जानते हैं माननीय जिलाधिकारी श्री CP सिंह जी से इस संदर्भ में।
4: ब्रज भूमि में सभी जो श्रद्धालु आ रहे हैं देश से विदेश से, जितने भी सनातनी हैं, जितने भी हमारे भगवान श्री कृष्ण के को मानने वाले हैं, ठाकुर जी के मानने वाले हैं, मैं अपनी तरफ से उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ब्रज की भूमि में उनका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। वर्तमान में अधिमास है, मलमास है, ये बहुत ही पवित्र माह माना जाता है और इसमें लोग ये मान्यता है कि जो लोग ब्रज की में 84 कोस की परिक्रमा करते हैं, गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं या वृंदावन में परिक्रमा करते हैं, बरसाना में परिक्रमा करते हैं, उन्हें पुण्य लाभ होता है और उनका यह लोक के साथ साथ परलोक भी बहुत

0: शुद्ध होता है और उनको भगवत प्राप्ति होती है। उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की है। लगभग 160 किलोमीटर का क्षेत्र 84 कोस ब्रज परिक्रमा का मथुरा में आता है और जो रास्ते हैं उनका हम लोगों ने निरीक्षण किया है, उनको गड्ढा मुक्त बनाया गया है, जगह जगह पड़ाव हैं उन पर पीने के पानी की व्यवस्था कराई गई है, साफ सफाई की व्यवस्था कराई गई है, ग्राम पंचायतों के माध्यम से लाइट की भी व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा छोटे छोटे सेक्टर में बांट करके पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है ताकि लोग सुरक्षित रहें। मैंने स्वयं कल अपनी पूरी टीम के साथ गिरिराज जी में परिक्रमा किया और निरीक्षण किया और ये महसूस करने का प्रयास किया कि जो हमारे श्रद्धालु आ रहे हैं उनको क्या क्या असुविधाएं हो रही हैं। तो पूरा प्रशासन कटिबद्ध है कि जो हमारे श्रद्धालु आ रहे हैं ब्रज 84 कोस की परिक्रमा में, गिरिराज जी की परिक्रमा करने या वृंदावन और बरसाना में परिक्रमा करने आ रहे हैं और विभिन्न जो हमारे देवालय हैं, हमारे तीर्थ हैं, चाहे वो बदले हो, गोकुल हो, बरसाना हो, नंदगांव हो, गोवर्धन हो, वृंदावन हो, मथुरा हो, वहां उनको किसी प्रकार की असुविधा ना हो, वो आवे अच्छे से, बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से, बहुत ही दिव्य और भव्य तरीके से अपने आराध्य की पूजा करें, परिक्रमा करें और जब यहां से अपने गंतव्य को वापस जाएं तो वो एक सुखद याद के साथ जाएं और बार बार ब्रज में आएं और बार बार ठाकुर जी की पूजा करें और ठाकुर जी का आशीर्वाद प्राप्त करें।
1: जी सर, ब्रज 84 कोस परिक्रमा की आपने बात की और बहुत सारे इसमें पड़ाव स्थल भी आते हैं, तो वहां पर भी कुछ पड़ाव स्थलों पर भी यात्रियों के लिए कुछ व्यवस्थाएं, अन्य रहने इत्यादि की भी की गई है?
0: देखिए, ये ब्रज का क्षेत्र है और ब्रज में ये माना जाता है कि कोई व्यक्ति भूखा नहीं रहता है। यहाँ के जो ब्रजवासी हैं वो बहुत ही उदार हृदय के हैं और जितने भी लोग आते हैं उनके खाने की, पीने की, रहने की व्यवस्था कराते हैं। आप स्वयं भी देखेंगे तो पूरे ब्रज में और खास करके मथुरा जनपद में जगह जगह त्योहार जैसी स्थिति है, लोगों ने भंडारे लगाए हुए हैं, वहां उनके पीने के पानी की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है। साथ साथ प्रशासन ने भी उन जगहों पे साफ सफाई के लिए बिजली की भी व्यवस्था कराई हुई है, जहां आवश्यक है वहां टैंकर लगवाए जा रहे हैं और जो रास्ते थे उनकी साफ सफाई कराई गई है, कहीं झाड़ी या पेड़ आदि की डाल बढ़ गई थी तो उसकी भी ट्रिमिंग कराई गई है। और जो उत्तर प्रदेश सरकार का जो मोटो है, जो उनके उस पे कार्य हो रहा है कि जो हमें विकास भी करना है और अपनी विरासत को संजो करके रखना है, तो ये जो हमारी 84 कोस की परिक्रमा है ये हमारी विरासत का अभिन्न अंग है और वर्ष पर्यंत यहाँ लोग परिक्रमा करते हैं, लेकिन जो अधिमास की परिक्रमा होती है उसकी विशेष महत्ता है हमारे संस्कृति में, हमारे धर्मों में, हमारे शास्त्रों में। तो सरकार के निर्देश ही हैं हम लोगों को कि जो भी श्रद्धालु हमें उन्हें किसी प्रकार की असुविधा ना हो।
1: सर, इस समय बहुत गर्मी है और इस समय तापमान निरंतर बढ़ रहा है, स्वास्थ्य को लेकर भी क्या कुछ विशेष व्यवस्थाएं की गई है?
0: हाँ, स्वास्थ्य को लेकर के बहुत विशेष तैयारी की गई है, जगह जगह छोटे छोटे टीमें लगाई गई हैं, एम्बुलेंसेस की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा जो जितने CHCs हैं, PHCs हैं, उनको अलर्ट पे रखा गया है। कल रात में भी ये देखने में आया कि दिन में तो सारी टीमें रहती हैं परंतु रात में नहीं रहती हैं, तो आज से हम लोग ये भी व्यवस्था करा रहे हैं कि रात में भी आकस्मिक चिकित्सा यूनिट रहे। कल हम लोगों ने ये भी देखा कि हॉस्पिटल्स में डॉक्टर रात में नहीं मिलते हैं, तो इसकी भी व्यवस्था नए सिरे से की जा रही है। उद्देश्य भी कल घूमने का, भ्रमण करने का यही था कि हमको पता तो चले कि धरातल पर स्थिति क्या है।
1: चलते चलते कोई अपील हमारे शो?
0: मेरी अपील यही से है कि स्वयं का भी ध्यान रखें और कोई हीरोइक काम ना करें जिससे कि उनको स्वयं को नुकसान हो और व्यवस्था को नुकसान हो। प्रशासन ने व्यवस्था की है, हो सकता है कहीं 19-20 भी हो सकता है, तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है, हमको अवगत कराएं और जो बेहतर से बेहतर व्यवस्था होगी वो हम जरूर कराएंगे। हमारे अतिथि हैं, उनका हमेशा स्वागत है, बारंबार स्वागत है, परंतु ये बड़ी व्यवस्था है, इसमें जनता का भी सहयोग हमको चाहिए। और मैं मथुरा वासियों का, ब्रजवासियों का दिल की गहराई से धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो आतुर हैं, वो तैयार हैं जो हमारे जितने भी श्रद्धालु परिक्रमा करने आ रहे हैं उनका स्वागत करने के लिए।
2: तो जब प्रशासन और श्रद्धालु दोनों मिलकर सहयोग करते हैं तभी तीर्थ की गरिमा बनी रहती है। वृंदावन के मंदिरों में पुरुषोत्तम मास का उल्लास देखते ही बनता है। विशेष रूप से राधा वल्लभ मंदिर की छटा भक्तों को मंत्रमुग्ध कर देती है। आइए इस संदर्भ

0: संदर्भ में जानते हैं मंदिर के सेवायत श्री कृष्ण बलराम गोस्वामी जी से। गोस्वामी जी, इस समय पुरुषोत्तम मास में मंदिर में कौन कौन से विशेष उत्सव आयोजित होते हैं?
1: प्रत्येक तीन वर्ष में आने वाला ये पुरुषोत्तम मास, जिसको भगवान ने स्वयं अपना नाम दिया है, अति उत्तम है। हर प्रकार के धार्मिक कार्य करने के लिए ये अति उत्तम मास है। तो इसमें ही राधा दामोदर मंदिर में ठाकुर जी को नित्य नए स्वरूप में दर्शन कराए जाते हैं। कभी तो वो नर्तकी के रूप में दर्शन देते हैं, कभी योगीराज, जैसे आज योगीराज बनकर किशोरी जी से मिलने गए हैं, कभी नौका विहार के दर्शन होते हैं, कभी ठाकुर जी कालिया मर्दन के रूप में दर्शन देते हैं। इस प्रकार ठाकुर जी के रोज नित्य, जो ठाकुर जी नित्य लीलाएं हुई हैं, उन्हीं के स्वरूपों को भगवान यहाँ पर राधा दामोदर मंदिर में नित्य दर्शन कराए जाते हैं।
2: जी, तो ये झांकी पूरे दिन बनी रहती है, प्रातःकाल और सायंकाल, या विशेष समय पर ही दर्शन होते हैं?
1: नहीं, ये पूरे दिन, सुबह सुबह मंगला आरती होती है, सुबह सुबह 4:45 बजे मंगला आरती के बाद प्रारंभ होता है, फिर 7:30 बजे से लेकर पूरे दिन झांकी रहती है, और पुष्प श्रृंगार बैठक में ठाकुर जी विराजमान रहते हैं, इसलिए रोज बंगले के दर्शन भी पूरे महीने आपको दर्शन करने को मिलेंगे, वो भी नित्य रहेगा इसमें।
2: जी, भक्तों के लिए और क्या बताना चाहेंगे इस मास में, उन्हें और क्या कुछ करना चाहिए?
1: देखिए, ये मास बना इसलिए है, देखिए नाम भी है अधिक मास, यानी जो भी करें उसका अधिकतम फल आपको प्राप्त होगा। लेकिन देखिए, हमको जैसे बोलते हैं इस महीने में कोई भी कार्य शुभ कार्य, तो शुभ कार्य का मतलब होता है जो सांसारिक कार्य है, जैसे शादी विवाह, गृह प्रवेश, कोई भी नया कार्य, यानी जो सांसारिक कार्य है उसको नहीं करना है, परंतु जो आध्यात्मिक कार्य है, जो भगवान से मिलाने का जो कार्य है, प्रभु के चिंतन का कार्य है, जो हरिनाम लेने का, जो भी पुण्य कर्म करेंगे हम, उसका बहुत ही ज्यादा फल हमको अधिक मिलेगा, इसलिए इस महीने को अति उत्तम मास कहा जाता है। तो जितना हो सके उतना हरिनाम करें, जितना हो सके उतना दान करें, और सबके सबका मतलब अच्छा ही सोचें, तो सब कुछ अच्छा रहेगा इसमें।
2: आपने बताया इस महीने में विशेष रूप से धार्मिक कार्य हमें जरूर करने चाहिए, और जैसा कि आप जो मंदिर है जहाँ के आप सेवायत हैं, वहाँ पर परिक्रमा का विशेष महत्व है। कहते हैं कि वहाँ की चार परिक्रमा गोवर्धन की परिक्रमा का पुण्य फल प्रदान करने वाली हैं, तो इस मास में भी क्या ये पुण्य फल और अधिक बढ़ जाता है?
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल अधिक मतलब ज्यादा, क्योंकि इसमें आप देखेंगे कि सनातन गोस्वामी जी यहाँ से नित्य गोवर्धन जाते थे, 7 कोस जाना, 7 कोस आना, और 7 कोस की परिक्रमा देने के बाद ही वो जल ग्रहण करते थे। सारा जीवन ये कठोर तप किया, तो भगवान ने स्वयं उनको दर्शन दिया चक्रेश्वर महादेव के पास, एक जगह है चक्रतीर्थ, वहाँ आज भी सनातन गोस्वामी जी भजन कुटी बनी हुई है, वहीं ठाकुर जी ने उनको दर्शन दिया और वहीं पर ये शिला दी, जिस पर 4 चिन्ह बने हैं, भगवान जी की बंसी का, ठाकुर जी की लकुटी का, गाय के खुर का, और भगवान के श्री चरण का, दाहिने पैर का निशान। ये 4 चिन्ह देकर बोले, सनातन ले जाओ राधा दामोदर मंदिर में रखना, और इसी मंदिर की 4 परिक्रमा करने से गोवर्धन की 1 परिक्रमा का फल प्राप्त हुआ। इस समय भक्त लोग यहाँ पर दंडौती परिक्रमा भी लगा रहे हैं, खड़ी परिक्रमा भी लगा रहे हैं, और इस प्रकार ठाकुर जी के मतलब गिरिराज जी की महिमा तो यहाँ और बढ़ रही है। मतलब
0: पुरुषोत्तम मास में दान का विशेष महत्व बताया गया है। इस मास में मालपुए का भी विशेष दान बताया गया है, साथ ही साथ एक दीप किसी के जीवन का अंधकार मिटा सकता है, तो इस माह में दीप दान का भी विशेष महत्व है। ऐसे में तुलसी के वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे तथा देवालयों में भी विशेष रूप से दीपदान किया जा सकता है, साथ ही हमारी जो नदियां हैं उनके घाटों पर भी श्रद्धालु दीपदान कर आनंदित हो रहे हैं।

0: श्रोताओं, पुरुषोत्तम मास में श्रीमद् भागवत कथा श्रवण का भी विशेष महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि जहाँ भागवत की ध्वनि होती है वहाँ स्वयं भगवान श्री कृष्ण का वास होता है। कुछ विशेष विषयों की जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं पूज्य देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज।
1: सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। अधिक मास, जिस मास में कोई भी शुभ कार्य करने का मतलब उसका फल बहुत ज्यादा होता है। इस अधिक मास में हमको कुछ ऐसे कार्य करने चाहिए जिन कार्यों को करने से हमारी जो आध्यात्मिक यात्रा है उसमें हम लोग आगे बढ़ सके। आध्यात्मिक यात्रा का मतलब है कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य तो वही है ना। हम लोगों का एक ही उद्देश्य है कि इस मनुष्य जीवन को पाने के बाद पुनः किसी और योनि में न जाना पड़े। उसके लिए अधिक मास एक बहुत महत्वपूर्ण मास है, पवित्र मास है। और इस मास में अगर आप कुछ छोटे छोटे कार्य करें, उन कार्यों को करने से आपकी जो आध्यात्मिक यात्रा है, मानव जीवन की यात्रा है, निश्चित तौर पर वो सफल हो सकती है। उनमें से कुछ कार्य मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि जो लोग चाहते हैं कि हमारी आध्यात्मिक यात्रा सफल हो, मनुष्य जीवन जो हमें प्राप्त हुआ वो सफल हो, उसके लिए बहुत जरूरी है कि इस पूरे महीने में सदा हमेशा सद आचरण करें, सत्य का हमेशा साथ दें, सत्य बोलें, असत्य भाषण न करें और अपने आचरण में भी ऐसा व्यवहार करें जिस व्यवहार से परमपिता परमात्मा आपसे प्रसन्न हो। पूरे मास में भगवान की सेवा, भगवान का जाप आप करते रहें। हिंदू पुराणों के अनुसार हमारे यहाँ पीपल को भी भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है, अथवा ये कहें कि पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास कहा जाता है। और एक और बात बता दूं, पीपल का वृक्ष ही एक ऐसा वृक्ष है जो रात में भी और दिन में भी हमें ऑक्सीजन प्रदान करता है। तो हमें चाहिए कि घी का दीपक जलाकर पीपल के वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाएं, परिक्रमा करें और हो सके तो एक लोटा जल पीपल के वृक्ष पर अवश्य चढ़ाएं, उससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। दूसरे जो चाहते हैं लक्ष्मी और नारायण हमारे ऊपर प्रसन्न हो, जो चाहते हैं कि लक्ष्मी देवी जी भी हमारे घर में वास करें, नारायण भगवान की कृपा भी बनी रहे, लक्ष्मी नारायण दोनों वास करें, तो उसके लिए बहुत आवश्यक है दक्षिणवर्ती संघ की पूजा। जो दक्षिणवर्ती संघ होता है उसकी पूजा आप अपने घर में एवरीडे इस अधिक मास के समय पर करें। तीसरा एक और अहम उपाय मैं बताता हूँ। जैसे हम लोग मनुष्य जीवन प्राप्त करते हैं तो कहीं न कहीं पदोन्नति इत्यादि वगैरह हमारे मन में इच्छाएं होती हैं कि हम पदोन्नति मिल जाए, कुछ और आगे हमारा बिजनेस आगे बढ़े, घर में ये हो जाए, तो सब लोग चाहते हैं। उसके लिए भी जरूरी है कि आप नवमी के दिन कन्याओं को अपने घर में बुलाकर पूजन करें, उनका आदर करें, उनका पूजन करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको पदोन्नति प्राप्त होगी। ऐसी कुछ चीजें हैं छोटी छोटी जिनको हम करें इस अधिक मास में, स्पेशली मंत्र जाप, स्पेशली भगवान का पूजन, स्पेशली हमारा आचरण अच्छा व्यवहार होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि नित्य कथा श्रवण होना चाहिए, हमारे श्रवण रंधों में भगवान की कथा पढ़ती रहे। तो इस कथा का जो श्रवण है ये भी हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है।
0: इस मास में जगह जगह भंडारों की सेवा आपको देखने को मिलेगी, जल की सेवा देखने को मिलेगी, शरबत की सेवा देखने को मिलेगी, क्योंकि अन्नदान और जलदान दोनों ही श्रेष्ठ और उत्तम माने गए हैं। तो श्रोताओं, पुरुषोत्तम मास केवल समय का एक अतिरिक्त अध्याय नहीं, यह आत्मा के जागरण का अवसर है। आइए भक्ति करें, सेवा करें, दान करें और ब्रज की संस्कृति, श्रद्धा और पवित्रता को संजोए रखें। जब भी ब्रज आइए, प्रेम लेकर आइए और आशीर्वाद लेकर जाइए। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री कृष्ण।

अभी आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम ब्रज में पुरुषोत्तम मास और प्रशासन की तैयारी। वार्ताकार थी रश्मि शर्मा। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम संबंधी सूचना। श्रोताओं, किसान भाइयों, आज मंगलवार 2 जून 2026 को आज शाम को 6:15 से 30 मिनट का अवधि का एक कार्यक्रम हेलो किसानवाड़ी। आज का विषय है पशुपालन से जुड़ी है किसान और खेत की समृद्धि। इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे डॉक्टर अरविंद कुमार त्रिपाठी। किसान भाई, पशुपालक भाई, भूमि सुधार एवं मृदा की उर्वरता बढ़ाने हेतु जैविक उपाय, कार्बन नाइट्रोजन अनुपात की जानकारी, बदलते मौसम में अपने पशुओं की उचित देखभाल जिसे उनका आहार, आवास व्यवस्था, लू से बचाव, बरसात से पूर्व टीकाकरण पर जानकारी हेतु हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे डॉक्टर अरविंद कुमार त्रिपाठी। हमारा टेलीफोन नंबर है 25 30 135 और मोबाइल नंबर 94 12 22 55 75 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस संबंध में अपना आप सीधे बातचीत कर सकते हैं डॉक्टर अरविंद कुमार त्रिपाठी से। कार्यक्रम का समय होगा आज शाम 6:15 से 6:45 के मध्य। सूचना समाप्त हुई। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सबको विमलेश का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है उमंग कार्यक्रम में।
3: और अजीत का भी नमस्कार। बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय जी ने सुविचार भेजा है, लिखते हैं,
2: जहाँ पेड़ और पानी साथ हों वहाँ हरियाली अपने आप आ जाती है। जीवन भी ऐसा ही है, जहाँ मन की सरलता और परिवार के संस्कार हों वहाँ जीवन में भी खुशहाली आ जाती है।
3: बहुत बहुत सुंदर संदेश आपका, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों में हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है छत्तीसगढ़ सरगुजा से रुबीना थापा, सोनम थापा, फातिमा थापा, आसमा थापा, आदिवा थापा, रेशमा थापा, कुमारी वली थापा और कुमारी डब्ल्यू थापा।
2: बोरखेड़ा जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से विनोद मूणत, नैना जैन, दीपक, मयंक मूणत और चेतन नाहटा।
3: अगला संदेश हमें मिला है भटीपुरा महुआ उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, पंकज, आयुषी और मीहू जी का। बड़ी सुंदर प्रतिक्रिया भेजी है, आइए सुनते हैं।
2: नमस्कार। एक सप्ताह में उमंग कार्यक्रम हमें इतनी अधिक जानकारी से समृद्ध कर देता है कि कार्यक्रम की समीक्षा में आपसे किस अंक की चर्चा करें और किस अंक को छोड़ें ये दुविधा हो जाती है, क्योंकि उमंग का प्रत्येक अंक अपनी खासियत लिए होता है।
3: आपने आगे लिखा है, हम हर एक अंक को नियमित रूप से सुनते हैं। 27 अप्रैल सोमवार को भारत की प्रथम महिला पायलट सरला ठकराल के प्रेरक व्यक्तित्व की नाट्य प्रस्तुति सुनी और जान सके कि उनके ससुर श्री के एस शर्मा जी का कितना बड़ा योगदान उनको पायलट बनाने की मुहिम में रहा। आपने आगे लिखा है,
2: 28 अप्रैल को उमंग कार्यक्रम में भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा के अंतर्गत गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था पर सरल शब्दों में पुख्ता जानकारी प्राप्त हुई। 30 अप्रैल को नालंदा विश्वविद्यालय और 1 मई को तक्षशिला विश्वविद्यालय पर दुर्लभ संग्रहणीय जानकारी मिली। उमंग की पूरी टीम को हार्दिक धन्यवाद और आभार।
3: तो कृष्ण कुमार गुप्ता जी, आपको भी हमारा आभार इस प्रोत्साहन से भरे संदेश के लिए। हम आपकी उत्साहवर्धक प्रतिक्रियाओं की सचमुच सराहना करते हैं। अगला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलकराज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा, अंकुश अरोड़ा जी का।
2: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी और प्रमोद कुमार डूडी।
3: आप सभी श्रोताओं को संदेश भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब प्रस्तुत है हमारी रोचक जानकारी से भरी श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी। आप सबका स्वागत है श्रृंखला में। श्रोताओं, पिछले कई हफ्तों से हम

0: कर रहे हैं भूगोल यात्रा।
1: हमने रोचक चर्चा की समुद्रों की, वर्षा वनों की और मैंग्रोव वनों की। तो अजीत जी, आज हम अपनी भूगोल की यात्रा में उमंग कार्यक्रम के माध्यम से कहाँ चल रहे हैं?
0: विमलेश जी, आज ही नहीं, इस पूरे सप्ताह हम चर्चा करने जा रहे हैं शीत मरुस्थलों की।
1: शीत मरुस्थल? ये कैसी बात हुई अजीत जी, हमने तो अक्सर सुना है कि मरुस्थल गर्म होते हैं और वहाँ रेती रेत होती है।
0: जी विमलेश जी, दरअसल होता यह है कि जब भी हम मरुस्थल सोचते हैं ना, तो
1: जी
0: अक्सर हमें रेत के टीले और गर्मी याद आती है,
1: बिल्कुल
0: लेकिन तथ्य कुछ और है।
1: जी
0: दरअसल मरुस्थल की पहचान गर्मी और रेत से नहीं, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यदि कहा जाए तो कम वर्षा से होती है।
1: जी तो आज हम किस शीत मरुस्थल की बात करेंगे?
0: बताइए।
1: मैंने पढ़ा था कि पृथ्वी का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है अंटार्कटिका।
0: जी वो तो है।
1: श्रोताओं आपको बता दें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है। ये दुनिया के सबसे अद्भुत स्थानों में से भी एक है। इसके बारे में जानना ऐसा है मानो किसी दूसरी दुनिया के बारे में जानना।
0: जी विमलेश जी, श्रोताओं, यहाँ सालाना 50 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। इसका क्षेत्रफल 14.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, यानी 1.42 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ लगातार हिमपात होता रहता है।
1: जी श्रोताओं, इसे पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान माना जाता है। यहाँ का सबसे कम तापमान लगभग -90 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। जरा सोचिए, ऐसी ठंड के यहाँ सांस लेना भी एक चुनौती है। ऐसी ठंड है इस जगह पर कि यहाँ के वाहनों के और अन्य मशीनों के इंजनों को भी हमेशा चालू रखा जाता है, क्योंकि इंजन यदि बंद कर दिया गया तो ईंधन मात्र 3 सेकंड में ही जम जाएगा।
0: और श्रोताओं, साथ ही साथ इनकी बैटरीज भी काम करना बंद कर देंगी।
1: जी
0: आपको बता दें कि यहाँ के लिए वाहन विशेष रूप से बनाए जाते हैं।
1: यहाँ की दो और बेहद रोचक बातें। पहली ये कि यहाँ के कुछ इलाकों में साल भर अक्सर बहुत तेज हवाएं चलती हैं, जिनकी गति लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इतनी तेज कि इंसान भी खड़ा नहीं हो सकता।
0: तो ये तो हुई पहली रोचक बात। अब आइए करते हैं दूसरी रोचक बात क्या है।
1: दूसरी रोचक बात यह है कि यहाँ कई ऐसी घाटियां हैं जहाँ बर्फ बिल्कुल नहीं पड़ती। ये ड्राई वैलीज कहलाती हैं। वैज्ञानिक इसे प्रकृति का अनोखा करिश्मा मानते हैं कि जहाँ पर्वत पर चारों ओर बर्फ पड़ रही है, उन्हीं पर्वतों की घाटियों में भला बर्फ क्यों नहीं पड़ती।
0: विमलेश जी, हमारा उमंग प्रसारण शैक्षिक है,
1: जी
0: तो जरा बच्चों की भी बात कर लें। एक प्रश्न है मेरा कि क्या अंटार्कटिका के शीत मरुस्थल में बच्चे स्कूल जाते हैं?
1: अजीत जी, आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। इसका उत्तर है, यहाँ भी बच्चे स्कूल जाते हैं। यहाँ कोई स्थायी जनसंख्या तो नहीं है, सिर्फ कुछ शोध केंद्र हैं जहाँ शोधकर्ता वैज्ञानिक और अनुसंधान केंद्र के कर्मचारियों और कुछ सैनिक अपने बच्चों के साथ रहते हैं। यहाँ के कुछ क्षेत्रों में विशेष स्कूल चलाए जाते हैं जिनमें बच्चे पढ़ते हैं।
0: विमलेश जी, आपने कहा कि यहाँ अनुसंधान केंद्र है।
1: जी
0: हमारे श्रोता ये जरूर जानना चाहेंगे कि वैज्ञानिक यहाँ किस प्रकार का अनुसंधान करते हैं।
1: जी जी यहाँ अनुसंधान के मुख्य विषय हैं जलवायु, शीत मरुस्थल के जीव और अंतरिक्ष इत्यादि।
0: जी
1: श्रोताओं, ये जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि शीत मरुस्थलों में भारतीय वैज्ञानिकों के दल ने भी 9 जनवरी 1982 को कदम रखा। भारत के अंटार्कटिक अभियान को ऑपरेशन गंगोत्री भी कहते हैं। बाद में यहाँ भारत द्वारा दक्षिण गंगोत्री के नाम से शोध केंद्र की स्थापना हुई।
0: तो अब विमलेश जी, मेरा अंतिम प्रश्न आपसे,
1: जी
0: हमारे श्रोताओं की ओर से है ये। मेरा प्रश्न है कि अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में पाए जाने वाले जीव कौन कौन से हैं?
1: अजीत जी, यहाँ पाए जाने वाले जीवों में मुख्य हैं पेंगुइन, जो शानदार तैराक भी होते हैं, ध्रुवीय भालू, सील, वेल और कई समुद्री पक्षी भी यहाँ पाए जाते हैं, जो यहाँ के कठोर वातावरण में भी जीवन को बनाए रखते हैं।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सच तो ये है कि कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, जीवन अपना रास्ता बना ही लेता है।
1: जी
0: यही तो जीवन की खूबसूरती है।
1: बिल्कुल।
0: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी।
1: और अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है,
0: अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में भारतीय शोध केंद्र का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में भारतीय शोध केंद्र का नाम बताइए।
0: प्रश्न का उत्तर भेजने के लिए आप हमारे IBRS नंबर यानी 8800440559 का इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमारे ईमेल के पते पर भी हमें संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in।
1: आप CIET NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, यदि आप NCERT की ध्वनि पाठ्य पुस्तकों को सुनना चाहते हैं तो आप इन्हें दीक्षा और NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पर भी सुन सकते हैं।
0: तो श्रोताओ, आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है लुई पाश्चर।
1: इस कार्यक्रम में

0: वैज्ञानिक लुई पाश्चर के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए उनकी उन खोजों के बारे में बताया गया है जिनके कारण खाद्य सुरक्षा और जीवाणुओं से होने वाले विभिन्न रोगों के प्रति चिकित्सा विज्ञान की अवधारणा में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए।
1: आज हम आपको एक बहुत ही प्रतिभाशाली वैज्ञानिक की कहानी सुनाने जा रहे हैं। उस वैज्ञानिक का नाम है लुई पाश्चर, जो दुनिया के महान और श्रेष्ठ वैज्ञानिकों में से एक हैं।
2: 19वीं शताब्दी में अपने सार्थक और बेजोड़ योगदान के लिए वे सदैव याद किए जाएंगे। पेंसिलिन के आविष्कारक सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने भी इस जीनियस के गुणों को पहचान लिया था, इसीलिए उन्होंने कहा था, विदाउट पाश्चर आई वुड बी नथिंग।
1: 27 दिसंबर सन 1892 सॉर्बोन विश्वविद्यालय का एम्फीथिएटर।
3: लेडीज एंड जेंटलमैन, आज इस सुप्रभात में हमारे साथ विज्ञान की दुनिया के जाने माने लोग हैं। आज के दिन लुई पाश्चर जी को उनके 70वें जन्मदिन पर उनके मानव कल्याणकारी कार्यों के लिए उन्हें सम्मान देते हुए हमें बहुत ही खुशी हो रही है। और अब साइंस एकेडमी के प्रेसिडेंट मॉन्सिनर द अवेडी उन्हें यह मेडल प्रदान करेंगे।

0: आप लोगों ने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। इसे मुझ जैसा व्यक्ति ही महसूस कर सकता है। हाँ, मुझे पूरा विश्वास है कि विज्ञान और शांति अज्ञान और अशांति पर विजय पाएंगे।
1: आज भी कई झकझोरने वाले सच लुई पाश्चर के नाम से जुड़े हैं। उनका नाम केवल कुछ आविष्कारों के लिए ही नहीं लिया जाता है। उनकी प्रत्येक खोज एक बाधा रहित श्रृंखला की कड़ी है। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया,
2: रिमेम्बर, कोई भी ऐसी बात मत कहो जिसे प्रयोगों द्वारा तुम सिद्ध ना कर सको।
3: लुई पाश्चर का जन्म 27 दिसंबर सन 1822 को फ्रांस में स्विस बॉर्डर के नजदीकी शहर जूरा के एक छोटे से गांव डोले में हुआ था।
1: वे एक किसान परिवार से थे। उनके पिता जीन जोसेफ पाश्चर नेपोलियन ग्रैंड आर्मी में नॉन कमीशन ऑफिसर थे।
3: लुई पाश्चर का बचपन अपनी तीन बहनों के साथ बहुत ही खुशहाल रहा।
1: स्कूल में वे एक सामान्य पर गंभीर छात्र थे। आगे जिंदगी में क्या करना है, इन्हीं विचारों में वे खोए रहते थे। उनकी रुचि या तो मछली पकड़ने में या फिर चित्रकारी में थी। उनमें पोर्ट्रेट बनाने की गजब की प्रतिभा थी। ये देखकर किसी ने उन्हें एक बार कहा भी था कि एक दिन वे महान पेंटर बनेंगे। लुई पाश्चर के पिता उनके भविष्य को लेकर चिंतित रहते थे। एक दिन,
4: देखो, मुझे पाश्चर की बहुत चिंता है, लेकिन फिर भी मुझे पूरा यकीन है कि पाश्चर इस गांव की मामूली जिंदगी को पीछे छोड़कर दूसरी जगह किसी अच्छे स्कूल में एक दिन टीचर बनेगा।

0: वो काबिल तो है, पर उसमें विद्वान बनने के लक्षण मुझे जरा कम ही नजर आते हैं।
1: हाँ ठीक कहते हो, वो मेहनती है, चित्रकारी में भी अच्छा है। उसने मेरे और आपके जो स्केच बनाए हैं वो देखे हैं आपने?
0: लेकिन क्या सिर्फ चित्रकारी से ही वो अपनी जिंदगी चला लेगा?
1: हाँ मुझे भी उसकी चिंता होती है, पर मुझे लगता है वो सिर्फ हाथों से ही नहीं बल्कि दिमाग से भी काम लेता है।
0: तुम शायद ठीक कह रही हो, लेकिन
2: सन 1831 में जब लुई पाश्चर केवल 8 साल के थे, तभी एक महत्वपूर्ण घटना घटी। पहाड़ियों से एक भयानक भेड़िया नीचे तलहटी में आकर लोगों पर हमला करने लगा, जिसके कारण 8 लोग रेबीज नामक भयंकर बीमारी के शिकार हुए और फिर मर गए।
0: चलो
3: अरे भेड़िया,
2: लुई पाश्चर के गांव के भी कुछ लोग इस भयानक बीमारी का शिकार हुए।
4: वे लोग रेबीज का सिर्फ एक ही इलाज जानते थे। वे लुहार के पास जाते थे और वो घावों को गर्म लोहे की छड़ से दाग देता था।
5: चलो चलो चलो
6: ठहरो, लोहा गर्म हो रहा है।
7: ये लीजिए, बिल्कुल लाल हो गया।
2: जले हुए मांस की बदबू और रोगियों की दर्दनाक चीखों से लुई पाश्चर घबरा गए।
4: जब वे 15 वर्ष के हुए तो उन्हें शिक्षा के लिए पेरिस भेज दिया गया। घर से दूर रहने के कारण वे निरुत्साहित रहते थे।
2: 21 वर्ष की आयु में लुई पाश्चर ने पेरिस के मशहूर नॉर्मल साइंस स्कूल इकोल में प्रतियोगी परीक्षा में 4th स्थान प्राप्त किया।
4: ये उथल पुथल और हलचल से भरा समय था। सन 1848 की क्रांति ने पेरिस को हिला दिया था और दूसरे कई लोगों की तरह लुई पाश्चर के मंसूबे भी इस दौर की उठापटक में कहीं दब के रह गए थे।
2: 26 वर्ष की आयु में टार्टरिक एसिड, जो प्राकृतिक रूप से इमली व अंगूरों में पाया जाता है, उसके क्रिस्टल पर शोध के अपने डॉक्टरल थीसिस के बाद लुई पाश्चर स्ट्रासबर्ग कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए।
4: केमिस्ट्री प्रोफेसर के पद पर 2 साल काम करने के बाद वे लिली विश्वविद्यालय की साइंस फैकल्टी के डीन बने।
2: उसी समय उत्तरी फ्रांस के शराब उद्योग में एक समस्या उठ खड़ी हुई, जिसके समाधान के लिए फ्रांस के तत्कालीन शासक नेपोलियन बोनापार्ट ने लुई पाश्चर को बुलाया और कहा,
8: लुई पाश्चर
9: सर,
8: हम तुमसे एक मदद चाहते हैं।
9: कहिए सर।
8: पता लगाकर हमें बताओ कि वो कौन से जीवाणु हैं जिनसे हमारे यहां बनने वाली शराब प्रदूषित हो रही है और हमें बहुत ही आर्थिक हानि उठानी पड़ रही है।
9: यस सर, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि इस समस्या का हल ढूंढ सकूं।
8: ठीक है।
4: कुछ ही वर्षों बाद सन 1864 में पाश्चर इस समस्या का हल खोजने के लिए अरबोइस नामक एक जगह पर अंगूरों के बाग में गए। उन्होंने साबित कर दिखाया कि सूक्ष्म

0: जीवों के कारण ही शराब प्रदूषित हो रही है। और अगर शराब को कुछ मिनटों तक 55 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाए तो इन जीवाणुओं को नष्ट किया जा सकता है। 8 साल तक लुई पाश्चर ने फर्मेंटेशन पर काम किया और अपनी कड़ी मेहनत से उन्होंने एक नई तकनीक विकसित की जो दुनिया भर में पाश्चरीकरण के नाम से जानी जाती है।
1: तभी से दूध और अन्य पेय पदार्थों पर सफल प्रयोग के बाद यह प्रक्रिया पूरे विश्व में काम में लाई जाने लगी। इस प्रक्रिया में जल्दी खराब होने वाली खाने पीने की चीजों को गर्म करके उनमें मौजूद नुकसानदायक बैक्टीरिया और मोल्ड्स को नष्ट किया जाता है। और अच्छी बात यह है, इस प्रक्रिया से खाद्य पदार्थों को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचता है। आज दूर दूर से खाद्य पदार्थ और दवाइयां आ पाती हैं, वे इसी प्रक्रिया की देन है।
0: पाश्चर वास्तव में धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसी तकनीक ढूंढ निकाली जिससे रोगाणुओं को नष्ट करना और उनसे होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण रख पाना संभव हो पाया।
1: इस जानकारी के साथ ही पाश्चर ने स्टेरिलाइजेशन के आधारभूत नियमों को भी विकसित किया। इसके साथ साथ उन्होंने रोगाणुओं द्वारा फैलने वाली बीमारियों को कम करने के लिए अस्पताल प्रणाली में बहुत ही गौरवशाली बदलाव किए।
0: इससे पहले जोसेफ लिस्टर ने एंटीसेप्टिक विधि विकसित की थी जिसमें कार्बोलिक एसिड का प्रयोग एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता था। शल्य चिकित्सा में शरीर में सूक्ष्म जीवों का प्रवेश रोकने के लिए यह विधि काफी सफल रही।
1: सन 1874 में लिस्टर ने पाश्चर को पत्र लिखकर अपने शोधों के बारे में बताया, जिससे पाश्चर को आगे बढ़ने और नए तरीके से सोचने में सहायता मिली।
0: लेकिन 1786 में एक ब्रिटिश डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने, जिन्हें प्रतिरक्षण प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम की कोई जानकारी नहीं थी, सबसे कारगर दवाई का उन्होंने पता लगाया, जिसे उन्होंने नाम दिया वैक्सीन।
1: प्रतिरक्षण विज्ञान के जनक के नाम से मशहूर लुई पाश्चर ने रोगों से बचाने वाली वैक्सीन के वैज्ञानिक सिद्धांत को स्थापित किया।
0: एक बार फिर समय ने अपना खेल दिखाया और ये खोज बड़ी ही सफल रही।
1: सन 1881 में भेड़ों पर शोध करते हुए पाश्चर ने एंथ्रेक्स बीमारी को रोकने के लिए वैक्सीन बनाई।
0: तो फिर उन्होंने क्या किया?
1: 5 और 17 मई को 25 भेड़ों के एक समूह को पाश्चर के इसी साल बनाए गए एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया वाला द्रव दिया गया और दूसरे नियंत्रित समूह की 25 भेड़ों को ये द्रव नहीं दिया गया। इस प्रकार ये बिना टीके वाली भेड़ें थीं। 2 सप्ताह बाद यानी 31 मई को सभी 50 भेड़ों को एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया वाला टीका दिया गया।
2: अरे आजा आजा आजा हाँ, इंजेक्शन लगा दूँ?
3: आई एम श्योर 100% सारी की सारी भेड़ें बच जाएंगी और यही बात मेरे सिद्धांत को सही साबित करेगी।
0: रिजल्ट के इंतजार में उन्होंने कई रातें जाग जाग कर बिताई।
4: सर सर, ये टेलीग्राम।
3: अच्छा, लाओ दिखाओ। हाँ, अरे आश्चर्यजनक कामयाबी चार्ल्स, वंडरफुल सक्सेस।
4: क्या हुआ सर?
3: देखो, टीके वाली सभी भेड़ें बिल्कुल ठीक और स्वस्थ हैं।
4: कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो सर।
3: थैंक यू। और बिना टीके वाली सारी भेड़ें मर रही हैं या फिर मर चुकी हैं?
4: यानी आपका प्रयोग सफल रहा।
3: हाँ चार्ल्स।
0: उनकी प्रसिद्धि आसमान को छूने लगी।
1: इस समय तक भी पाश्चर ने मानव जाति पर प्रयोग करने की बात सोची तक नहीं थी। 6 जुलाई सन 1800

0: 1985 का ऐतिहासिक दिन। उन्होंने पहली बार एक व्यक्ति का इलाज रेबीज वैक्सीन से किया।
1: सर देखिए, एक पागल कुत्ते ने मेरे बेटे के हाथ, पैरों और जांघ पर काट लिया है। मेहरबानी करके मेरी मदद कीजिए।
2: लेकिन इंसानों पर और खासकर बच्चों पर परीक्षण करने के लिए मैं अभी पूरी तरह तैयार नहीं हूँ।
1: डॉक्टर साहब, कुछ तो करिए वरना मेरा बेटा।
2: देखिए आप,
1: ओ गॉड, जोसेफ मास्टर की उम्र ही क्या है, 9 साल का है, लगता है मर जाएगा।
2: पर ये काम जोखिम भरा है, इससे जान को भी खतरा हो सकता है। हाँ अब
1: मेरा अच्छा, बेटा।
2: अच्छा ठीक है ठीक है, मैं ये परीक्षण करूंगा।
3: और आखिरकार उन्होंने ये परीक्षण करने की ठान ली।
0: उनके सहयोगी जोसेफ ग्रांचर एक डॉक्टर थे। उन्होंने रेबीज से मरे हुए खरगोश की हड्डी में थमे द्रव का आधा सिरिंज जितना डोज लिया और उस सहमे हुए बच्चे के शरीर में इंजेक्शन लगा दिया।
3: 10 दिनों तक रहस्य की स्थिति बनी रही, जिस दौरान उस बच्चे को एक के बाद एक 13 इंजेक्शन लगाए गए। 3 हफ्तों के परीक्षणों के बाद उन्हें महसूस हुआ कि अब वे अपनी सफलता संसार के सामने घोषित कर सकते हैं।
0: पास्चर को खुद यकीन नहीं था कि वैक्सीन काम करेगी, लेकिन माइस्टर चंगा हो गया। वो इतिहास का प्रथम व्यक्ति बन गया जिस पर रेबीज की दवाई का पहला प्रयोग किया गया। उसने बड़े होकर वर्षों तक पास्चर इंस्टीट्यूट में गेटकीपर के रूप में कार्य किया।
3: सन 1940 के दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब नाजियों ने पास्चर के इंस्टीट्यूट पर आक्रमण किया, तो यही माइस्टर था जिसने जर्मन्स को पास्चर की कब्र तक पहुंचाने के बजाय अपनी जान देना बेहतर समझा। सन 1868 में अपने शानदार करियर के बीच में ही पास्चर पर अपंगता का प्रहार हुआ, जिसका परिणाम आंशिक रूप से लकवे के रूप में सामने आया। उनके बाएं हाथ को लकवा मार गया था और उनकी जबान पर भी इसका बुरा असर पड़ा था। तब वे 46 वर्ष के थे और तभी से उन्हें अपने प्रयोगों को करने के लिए दूसरों की सहायता लेनी पड़ती थी।
0: इतना सब होने के बावजूद उनके महान मस्तिष्क पर इसका कोई असर नहीं पड़ा और जो जो प्रयोग और नए विचार पास्चर के दिमाग में थे, वे दूसरों की मदद से दुनिया के सामने आए। पास्चर के समय विज्ञान या चिकित्सा के क्षेत्र में कोई नोबेल पुरस्कार नहीं था, अगर होता तो उन्हें जरूर मिल ही जाता।
3: और फिर 27 सितंबर सन 1895 को उनकी पत्नी ने उन्हें ये कहते हुए सुना।
4: इस तरह मैं और ज्यादा नहीं जी सकता।
3: और 24 घंटे बाद दोपहर को 4:40 पर लुई पास्चर ने अपनी समर्पित पत्नी की बाहों में दम तोड़ दिया। पूरी जिंदगी एकनिष्ठ और उत्साह से भरे पास्चर का अंतिम संस्कार भी एक नायक की तरह किया गया और उन्हें पेरिस के नोट्रेडम कैथेड्रल में दफना दिया गया। अपने दादा को याद करते हुए उनके पोते वैलोरी रेडॉट ने अपनी डायरी में लिखा, माई ग्रैंडफादर वॉज द जेंटलेस्ट विद द गुडनेस ऑफ हिज हार्ट, मोस्ट अफेक्शनेट एंड सेंसिटिव इंडिविजुअल। ही वॉज अ ह्यूमनिस्ट, ऑलवेज वर्किंग टूवर्ड्स द इम्प्रूवमेंट ऑफ द ह्यूमन कंडीशन।
5: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम

0: लुई पाश्चर। और अब इसी के साथ हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है, तो मुझे यानी अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, NCERT एवं CIET द्वारा प्रायोजित। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम संबंधी सूचना। किसान भाइयों, इस मंगलवार यानी कि आज दिनांक 2 जून 2026 को शाम 6:15 से 30 मिनट अवधि के हेलो किसानवाणी कार्यक्रम में इस बार आज का विषय है पशुपालन से जुड़ी है किसान और खेत की समृद्धि। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे डॉक्टर अरविंद कुमार त्रिपाठी। किसान भाई, पशुपालक भाई, मेंटेनेंस, भूमि सुधार एवं मृदा की उर्वरता बढ़ाने हेतु जैविक उपाय, कार्बन नाइट्रोजन अनुपात पर जानकारी, बदलते मौसम में अपने पशुओं की उचित देखभाल जैसे उनका आहार, आवास व्यवस्था, लू से बचाव, बरसात से पूर्व टीकाकरण आदि जानकारी हेतु हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे डॉक्टर अरविंद कुमार त्रिपाठी। हमारे टेलीफोन नंबर 2530135 पर फोन करके अथवा मोबाइल नंबर 9412255575 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस संबंध में आप सीधे बातचीत कर सकते हैं डॉक्टर अरविंद कुमार त्रिपाठी से। कार्यक्रम का समय होगा मंगलवार यानी कि आज शाम 6:15 से 6:45 के मध्य। सूचना समाप्त हुई। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

आशा भोसले को अभी आपने सुना फिल्म साहिब और गुलाम में, और आइए सुनते हैं उदित नारायण, अलका याग्निक, सपना अवस्थी और साथियों को। फिल्म का नाम है राजा हिंदुस्तानी।

आर सानू कविता कृष्णमूर्ति को अभी आपने सुना फिल्म बागी में, और आइए सुनते हैं एस पी बाला सुब्रमण्यम को। फिल्म का नाम है हम आपके हैं कौन।

दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। अभी आप सुन रहे थे इस फिल्म से लिया ये गीत। उदित नारायण लता मंगेशकर के गाए इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत के कार्यक्रम को अब हम यही विराम देते हैं।

0: आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर लीजिए पेश फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। आज की प्रस्तुति संजय सारस्वत की है।
1: हेलो आकाशवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ संजय सारस्वत। श्रोताओं, अगर आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं, अपनी फरमाइश के गीत सुनना चाहते हैं, तो हमें इस कार्यक्रम में फोन करें। इसकी रिकॉर्डिंग हम करते हैं प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सवेरे 10:30 से, और इस कार्यक्रम का प्रसारण हमारे केंद्र से होता है रविवार से शुक्रवार तक सवेरे 11:00 से 11:30 तक। अगर आप अपने फोन रिकॉर्ड कराना चाहते हैं तो हमें फोन अवश्य कीजिए। हमारा फोन नंबर है 2530135। मथुरा से बाहर के श्रोता हमें 0565 कोड लगाकर फोन करें। फोन कॉल्स आने का सिलसिला शुरू हो गया है, तो आइए शुरू करते हैं कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी।

0: हेलो,
1: परम आदरणीय शारदा साहब, शारदा सुप्रीम, प्यार नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: मानवर में आपका वही पुराना जाना पहचाना ब्रज रेडियो का मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति सिटी मध्य प्रदेश से आदरणीय आपका रहा हूँ आकाशवाणी मथुरा वृंदावन से।
0: जी जी प्रजापति जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बहुत बहुत
1: जी, हृदय से धन्यवाद। मानवर आप कैसे हैं?
0: हम अच्छे हैं सर, आप बताइए आपका क्या हाल चाल है।
1: मैं तो बहुत बढ़िया हूँ, अच्छा हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। रेडियो सुनते रहता हूँ, आप लोगों से वार्तालाप करने का इच्छुक रहता हूँ, और जब बातचीत होती है तो बहुत ही सुखद अनुभूत होती है, बहुत ही अच्छा लगता है।
0: अब तो मौसम भी थोड़ा ठीक हो चला है सर।
1: जी, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ कि मौसम हमारे वृंदावन मथुरा का थोड़ा ठीक हो गया है, अच्छा लग रहा है, और तापमान भी काफी नीचे आ गया है।
0: आज कार्यक्रम में क्या फरमाइश रहेगी प्रजापति जी।
1: मानवर, 31 मई को हमारे बीच सुमन कल्याणपुर ब्रह्म विलीन हो गई है, भौतिक रूप से अब विद्यमान नहीं है, लेकिन अपनी आवाज, अपनी गायकी के माध्यम से वे हमारे हृदय में सदैव जीवित रहेंगी, और उन्हें याद करते हुए सत सत नमन करता हूँ, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, और आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, उनका गाया हुआ गीत है, बांसुरी बनाई के हो, बांसुरी बनाई के, सुमन कल्याणपुर ने गीत को गाया है फिल्म गीत के लिए।
0: बिल्कुल प्रजापति जी, हमारी तरफ से, रेडियो परिवार की तरफ से भी सुमन कल्याणपुर जी को विनम्र हार्दिक श्रद्धांजलि। उनके बहुत ही सुरीले नगमे हम अपने कार्यक्रमों में आपको सुनवाते आए हैं, हम भी सुनते आए हैं। आइए
1: जी,
0: आज सुनवाते हैं आपकी फरमाइश का, उन्हीं का गाया ये गीत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर।
1: आपको मैं हृदय धन्यवाद करता हूँ, आपका दिन मंगलमय हो, नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: हेलो,
1: आदरणीय सारस्वत जी को सादर पे प्यार भरा नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: राजू लबानिया बोल रहा हूँ, ब्रज रेडियो सुल्तान मित्र खंडौली से।
0: बहुत स्वागत है लवानिया जी कार्यक्रम में आपका।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। सरस्वती कैसी है हमारी आकाशवाणी टीम?
0: सब अच्छे हैं सर, बहुत अच्छे। आपके घर परिवार में सब ठीक हैं?
1: सब कुशल मंगल है सर, और मौसम भी बड़ा खुशगवार है इस समय।
0: हाँ, कुछ राहत है इन दिनों।
1: लेकिन सर, जहाँ एक और राहत है, वहाँ जनहानि और धनहानि भी बहुत हो रही है।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक कहा सर आपने।
1: तो ये जहाँ एक और सुखद बात है, वहीं दुखद ये है कि भाई हम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि जो प्रकृति का बिगड़ता संतुलन है, उसका परिणाम अब हमारे सामने आने लगा है।
0: बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन कुछ अलर्ट भी जारी किए जाते हैं सरकार की तरफ से, लोगों को इस बारे
1: बिल्कुल
0: में भी
1: बिल्कुल
0: थोड़ा
1: सर,
0: सावधानी बरतनी
1: बिल्कुल
0: चाहिए।
1: बिल्कुल सर, बिल्कुल। हमारे मोबाइल पे, जबकि हम छोटा मोबाइल चलाते हैं, फिर भी बार बार अलर्ट आ रहा है सरकार की तरफ से। तो जो सावधानी हम लोगों को बताई जा रही है, वो तो पर्याप्त है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, सावधानी रखेंगे तो जन और धन की हानि कुछ कम होगी।
1: बिल्कुल सर, बिल्कुल।
0: जी
1: तो
0: लवानिया जी।
1: सर देखिए, जो एक दुखद सूचना मिली थी सुबह ही सुबह रेडियो के माध्यम से, हमारे
0: जी
1: बीच से एक मशहूर पार्श्व गायिका कमल कल्याणपुर जी का निधन हो गया है। तो आपसे गुजारिश करेंगे, फिल्म का नाम है शगुन।
0: जी
1: रफी साहब और सुमन कल्याणपुर जी द्वारा गाया हुआ ये गीत है, और गाने के बोल हैं, पर्वतों के पेड़ों पर शाम का बसेरा है।
0: सुमन जी की याद में आइए, आपको आपकी फरमाइश का गाना सुनवाते हैं। बहुत
1: बिल्कुल सर,
0: बहुत
1: हमारी तरफ से और सभी श्रोताओं की तरफ से और मथुरा आकाशवाणी की तरफ से।

0: हेलो आकाशवाणी।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार जी, हम बोल रहे हैं मथुरा से, राजेश चतुर्वेदी आपके रेडियो श्रोता।
1: चतुर्वेदी जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं बहुत बहुत।
0: हाँ जी, बहुत जो है इस समय मौसम अच्छा हो गया है।
1: हाँ, खुशगवार है मौसम इस समय तो।
0: हाँ जी,
1: लेकिन आंधी तूफान ने नुकसान भी काफी किया है सर।
0: हाँ साहब, बहुत नुकसान किया है जी।
1: जी, आप कार्यक्रम कब से सुन रहे हैं हमारा?
0: हम तो 20-20 सालों से सुन रहे हैं, आज फोन लगा है पहली बार हमारा सर।
1: आप कोशिश करा करिए, तभी तो फोन लगेगा सर।
0: हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी।
1: आज बताइए क्या फरमाइश रहेगी कार्यक्रम में?
0: मानवता का मैं आदमी हूँ, मैं मानवता पे विश्वास रखता हूँ, धर्म को विषय रखता हूँ, पहले मानवता को रखता हूँ मैं।
1: जी,
0: जिसके अंदर मानवता है उसी का धर्म है, उसी की जाति है, उसी का समाज है, उसी का परिवार है। और जिसके
1: बिल्कुल
0: अंदर मानवता नहीं, उसकी कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई समाज नहीं।
1: सत्य बात है सर, बिल्कुल
0: तो मैं
1: सत्य।
0: चाहता हूँ जो न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, वो इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा, ये गाना मुझे सुनना है।
1: बिल्कुल चतुर्वेदी जी, सुनवाते हैं आपकी फरमाइश का ये गाना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद सर।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार सर।

0: हेलो।
1: हाँ सर जी, नमस्कार।
0: नमस्कार
1: मैं जबलपुर एमपी से आपका श्रोता अशोक सिंह बात कर रहा हूँ।
0: अशोक जी, स्वागत है कार्यक्रम में आपका।
1: आप कैसे हैं सारस्वत जी, आपका परिवार और आप आकाशवाणी परिवार?
0: सब लोग बहुत अच्छे हैं सर, उम्मीद करते हैं आपके यहाँ भी सब अच्छे होंगे।
1: हम सब अच्छे हैं। और गर्मी, अभी तो गर्मी का मजा ले रहे हैं, बारिश भी हुई इधर।
0: अच्छा, हमारे यहाँ तो 2-3 दिन से तापमान कुछ कम हो गया है।
1: ठीक है सर। और वो सुमन कल्याणपुर की याद में गाना सुना दीजिए, जिंदगी
0: जी बताइए,
1: इम्तिहान लेती है नसीब।
0: सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: सर जी नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: हेलो
1: नमस्कार,
0: जी। नमस्कार,
1: कौन बोल रहे हैं आप?
0: मोहम्मद हारून बोल रहा हूँ। मैं ग्राम अकबरपुर तहसीलश्रवण जिला विदिशा मध्य प्रदेश एमपी से। जी
1: आपका स्वागत करते हैं हारून भाई कार्यक्रम में।
0: बस
1: क्या हाल चाल है?
0: ठीक ठाक हैं
1: काम अच्छा चल रहा है आपका?
0: जी। अच्छा काम चल रहा है जी।
1: अच्छा, बहुत अच्छी बात है। कार्यक्रम भी सुन
0: बस
1: रहे हैं हमारा?
0: जी, बस फोन कार्यक्रम अच्छा लगता है, बस फोन लगाते रहते हैं। और आप कैसे हो?
1: हम बढ़िया हैं सर।
0: मौसम कैसा है आपके इधर?
1: हमारे यहाँ तो अभी आंधी तूफान और थोड़ी बहुत बारिश हो गई है।
0: जी, लेकिन हमारे इधर से भी 2 दिन से आंधी चल रही है। मौसम भी आज बादल भी हो गए सुबह से। जी
1: अच्छा, फिर तो गर्मी कम होगी।
0: जी
1: आज बताइए क्या फरमाइश रहेगी?
0: ये दिलासा गाना सुना देना,
1: कौन सा वाला गाना?
0: उठा ले जाऊंगा। ये शारदा प्रसाद हैं और मथुरा जी के हैं, महेंद्र चौधरी जी,
1: जी जी
0: उनको डेडी डेट रहेगा गाना
1: ठीक है, आपके लिए सुनवाते हैं ये गीत। बहुत
0: जी।
1: बहुत शुक्रिया,
0: धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
0: धन्यवाद।

अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। आज की प्रस्तुति संजय सारस्वत की थी। FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। स्वागत आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम फिल्म संगीत में। आपके साथ मैं हूं आज आपकी आरजे मित्र चंद्रा खत्री। साथियों, गर्मी के मौसम में अगर मानसून की दो बूंद जमीन पर गिर जाए तो मौसम सुहाना हो जाता है, लेकिन ये गर्मी बहुत कुछ कहती है, बहुत कुछ कर जाती है, क्योंकि इस गर्मी में ही तो बैक्टीरिया पनपते हैं और वो बैक्टीरिया हमें क्या क्या बीमारियों से ग्रसित कर देते हैं ये कह पाना भी बड़ा मुश्किल है। क्योंकि बच्चे हों या बुज़ुर्ग या हम हों या आप, कोई भी हो, बीमारी सबको घेर लेती है। बचना है हमें इन सब बीमारियों से, इन बैक्टीरिया से, इन वायरस से, क्योंकि चहों और इस समय हमारे जो ब्रज में गड्ढे हुए पड़े हैं वहाँ पानी पानी भरा हुआ है और पानी में मच्छर और बैक्टीरिया पनप रहे हैं। तो सावधान रहना है हमें इस बारिश के मौसम से, इस बारिश से, अपने चारों ओर के वातावरण से जो हमारे घर के आसपास बिखरे हुए हैं। रुख करते हैं गीत की ओर। अपने जैसी कोई तस्वीर बनाई थी मुझे, अपने जैसी कोई तस्वीर बनानी थी मुझे, मेरे अंदर से सभी रंग तुम्हारे निकले।

एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर अभी आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत के कार्यक्रम का। साथियों, बात चल रही है गर्मी की, और गर्मी के मौसम में जो ये धूप है ना, इससे हमारी आंखें भी नहीं बचती हैं। कई बार मैंने बच्चों को भी देखा है जो कि आंखों को मसलते रहते हैं, थोड़ा सा खेलने गए और उनकी आंखें जो होती हैं वो रेड रेड हो जाती हैं। तो हमें प्रिवेंशन लेना ज़रूरी है, कहते हैं ना प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो आंखों पर हमेशा चश्मा भी लगा कर चलिए, आंखें हमेशा अपनी साफ रखिए। इसके साथ साथ अगर धूप है तो धूप में जाने से बचिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी काम है तो बाहर निकलें, नहीं है तो बिल्कुल भी ना निकलें। एक चेहरा है जो आंखों में बसा रहता है, एक चेहरा है जो आंखों में बसा रहता है, एक तसव्वुर है जो तन्हा नहीं होने देता।

0: कार्यक्रम में अभी आपने गीत सुना चांदनी फिल्म से, गीत को अपने सुर दिया लता मंगेशकर ने। ये गीत कुमार सानू, कविता कृष्णमूर्ति और साथियों की आवाज में भी आप सुन रहे थे हम दिल दे चुके सनम फिल्म से। तेरे इंतजार में मेरा बिखरना इश्क है, तेरे इंतजार में मेरा बिखरना इश्क है, तेरी मुलाकात पर निकलना मेरा इश्क है।
1: ए, कह दो ना
2: क्या
1: कि तुम मुझसे प्यार करती हो, कि तुम्हें मुझसे इश्क है।
2: मुझे शर्म आती है।
1: देखो तुम नहीं कहोगी तो मेरी जान निकल जाएगी।
2: I love you.
3: Yeah!

उदित नारायण विभा शर्मा को अभी आपने सुना फिल्म इश्क में। साथियों, गर्मी का जो मौसम है ना, इसमें अपने आप को हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप पानी पीते रहें, अपनी बॉडी को बिल्कुल ड्राई होने ना दें, तब तक आपकी जो बॉडी है वो चलायमान भी है। क्योंकि नहीं तो क्या होता है ना कि बीपी की प्रॉब्लम होती है किसी को, तो चक्कर आने लगते हैं और बहुत सारी दिक्कतें आने लगती हैं। यूँ भी अगर हम थोड़ा सा भी काम कर रहे हैं गर्मी के मौसम में, लेडीज़ महिलाएँ हैं जो किचन में काम करती हैं, तो काम करते करते गिर जाती हैं, उन्हें पसीना आने लगता है, घबराहट होने लगती है। तो इन सारी सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए आप नींबू पानी ज़रूर पिएं, अपने आप को हाइड्रेट रखें। आप जितना आप लिक्विड पिएंगे उतना आप गर्मी के मौसम में तरोताजा रहेंगे। लाख छुपाओ सीने में एहसास हमारी चाहत का, लाख छुपाओ सीने में तुम एहसास हमारी चाहत का, दिल जब भी तुम्हारा धड़कता है आवाज यहां तक आई है।

फिल्म देवदास से लिया ये गीत अभी आप सुन रहे थे कविता कृष्णमूर्ति और के युगल शुरू में। लाजमी तो नहीं है कि मुझे आंखों से ही तो देख, लाजमी तो नहीं है कि तुझे आंखों से ही देखूं, तेरी याद का आना भी तेरे दीदार से कम नहीं।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म फना से लिया ये गीत। इस गीत को अपना सुर दिया था शान और कैलाश खेर ने। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत के कार्यक्रम को अब हम यहीं विराम देते हैं। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है आपका अपना कार्यक्रम गीत बात और SMS। गीत बात और SMS कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं को चंद्र खत्री का प्यार भरा नमस्कार। आपके संदेश हम तक पहुंच चुके हैं। पहला संदेश चलो पढ़ ही लेते हैं साथियों। पहला हमारा संदेश लिख भेजा है पिंगावाला चौक गोरैया जालंधर पंजाब से संदीप मक्कर, ज्योति मक्कर, मन्नत मक्कर, भरत मक्कर, कमल साहनी ने। सभी का स्वागत हमारे कार्यक्रम में। मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इजरा, नरगिस खातून, आप सभी जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से हमसे जुड़ रहे हैं। इसी के साथ जुड़ चुके हैं अनारकली बाजार जगराओ से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका गावया, भाई सुच्चा सिंह और जयपाल यादव, विनोद पुरी, आप सभी कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं, आपका धन्यवाद। रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा न्यू दिल्ली से हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। जाफराबाद से हैं श्री सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजे, कुमार संचित वायाल, कुमार प्रथमेश देशमुख, कुमारी प्रणाली देशमुख, कुमार सर्वद, कुमारी सानवी, डॉक्टर रमेश कुमार जाजूरिया, गीता रानी, गगनदीप आरजू और गुड्डू पटेल नगर मालोट से हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। महाराष्ट्र से गजानन येले, नवदीप येले, विश्वदीप येले एंड अशोक येले, शेरी बढ़ने रकोला से जुड़ चुके हैं अरुणा बलदेव दामोदर, आदित्य दामोदर। अगला संदेश लिख भेजा है महाराष्ट्र से शत्रुघ्न धाड़े, वकील वाल्मीकि, निनाजी एंड स्वप्निल ने। सभी का अभिनंदन हमारे कार्यक्रम में। महाराष्ट्र से जुड़ चुके हैं विजय सुरलकर, रत्नामाला, आरती गौरी और ओम प्रकाश, ब्रजेंद्र, तारा देवी, सोनाली, सोनम, आशीष टीकमगढ़ से हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, नीतीश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद, पराग, तनुजा देवांगन, ईशांत, आप सभी छत्तीसगढ़ से हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। छत्तीसगढ़ से ही दूसरा संदेश लिख भेजा रिजवान, आयशा, सबिया, अनस और रेहान ने। सैयद मजरूस, शायना हजन, अक्सा, नाजिया आफिया, इब्राहिम, सद्दाम, अदीब, आप सभी का सहारनपुर से हमारा संदेश मिल चुका है हमें, इसके लिए बहुत धन्यवाद। भारत भूषण, अंजु श्रीवास्तव, दिव्यांशु, संस्कृति, पौरुष, आप सभी बेंगलुरु से जुड़ रहे हैं। महेंद्र, कुलदीप, आप सभी रामगढ़ से कार्यक्रम से जुड़ चुके हैं। बबलू, शेख शगीर, शेख वजीर, सोहेल, सैयद, शामिर और अजलान, आप सभी मोताला बाजार से हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। मोहम्मद कलीम अंसारी, जहीर बेगम अंसारी, मोहम्मद अयान अंसारी, मोहम्मद उस्मान अंसारी, गंज डुंडवारा से ये श्रोता जुड़ रहे हैं। धनोरी तेलीवाला से निसार, नौशाद, बीबी आलिया, आयान। फजल का पंजाब से क्रियांश, योगेश, ओम, बेबी गरिमा और रजत, मनीष चौधरी, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां, आप सभी लक्सर हरिद्वार से कार्यक्रम सुन रहे हैं। गांव चौलादा बागपत से संजय, नमन, अपार, दीपेश, पूनम, ज्योति, शिवांश, छत्तीसगढ़ के श्रोता। जमानिया जिला गाजीपुर से सुरेश, उर्मिला, दीपक, स्वाति, इसी के साथ जमशेदपुर से विपिन, स्वाति, देव कुमार, आर्य कुमार।

कुमार। मलकापुर से नारायण इंगले, राजकुमार आशीष, और महाराष्ट्र से पीएस नावकार, निर्मला, विशाल एंड सोपान। कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर, आप सभी मजनू का टिल्ला से कार्यक्रम सुन रहे हैं। सतना एमपी से उमंग, आकांक्षा मलिक माही, आप सभी का शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। साथियों, ऐसे ही संदेश हम तक पहुंचाते रहिए। उत्तम कुमार भगत, श्वेता, किस्सू तासु, अर्णव आनंद, सत्यमानंद, आप सभी झारखंड के श्रोता, और पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत, गुड्डी भगत, आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

अभी आपने सुना ये गीत मुकेश की आवाज में, फिल्म थी तीसरी कसम। गीत बात और एसएमएस कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं का स्वागत आपके अपने कार्यक्रम में। साथियों, एक संदेश लिख भेजा है मामुलवाड़ी महाराष्ट्र से सोपान तायड़े, वसंतराव भोज ने, पीएस नवाकर और तुषार करांगले ने। इन्होंने लिखा है राज कपूर जी की 38वीं पुण्यतिथि पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि, और गीत अपनी पसंद का उन्होंने लिख भेजा है। बिल्कुल कार्यक्रम में शामिल करेंगे आपका गीत, आपका बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। गंगाधर सावरकर, विजय लक्ष्मी सावरकर, आप जुड़ चुके हैं कुंडल वाड़ी से। छत्तीसगढ़ के श्रोता राष्ट्रपा

पालगज भी है राधिका, बेबी अनिष्का और तन्मय। अशोक दले, सविता दले, अनिकेत, रोहिणी, ऋषिकेश, जीविका, सानिका, आप सभी श्रीरामपुर से जुड़े हैं और पुनावली से जुड़ चुके हैं अजय सोनवने, करिश्मा, अविका, विशाखा सोनवने, आप सभी का स्वागत कार्यक्रम में। छत्तीसगढ़ से नसीब मोहम्मद, सलमा बेगम, रेहान मोहम्मद, फैजान अहमद इसी के साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ से रोशन लाल, कौशल्या, हेमा, लता, डिम्पल और देवानगढ़। कार्यक्रम का अगला संदेश हमें आया है चांदनी चौक से, पवन कुमार, प्रभा देवी, लक्की, विक्की, रविंद्र, रौनक सेन, आप सभी का स्वागत कार्यक्रम सुनने के लिए। शायना, शबीना, रानी, बेनू और हफ्सा, आप सभी जुड़ रहे हैं इस्लामपुरा सनावत मध्य प्रदेश से। मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश कुमार, संध्या, कीर्ति, डिकेश, आप सभी का स्वागत जुड़ने के लिए।

राजस्थान से जुड़ रहे हैं लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी। भाई नवीन सिंह, ज्योति, श्वेता, स्वाति, सुशांत, चुलबुल रानी, जय, वीरू, कपलेश्वर और भूलिया देवी, आप सभी राजनगर बिहार से हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, इसके लिए शुक्रिया। संतोष नामदेव, अभय, अनिल, अजीत, ज्योति, अनीता, संजना, रेखा, भारती, पूर्वी, रूही, अन्नू, अनन्या, शक्ति, भक्ति, आदर्श, लव, कुश, नामदेव परिवार हमारा कार्यक्रम सुन रहा है, हमारे कार्यक्रम से जुड़ रहा है, इसके लिए धन्यवाद। उत्तम नगर दिल्ली से भोजराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल, भानु प्रकाश, दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण कपिल और कुणाल मेहरा कार्यक्रम से जुड़ने के लिए शुक्रिया। लल्लन मिश्रा, नूतन मिश्रा, अमन पाराशर, बीबी आराध्या और लल्लू पंडित नरहन स्टेट से हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, इसके लिए शुक्रिया। शाहू नगर यवतमाल से राहुल सरला, विशाल, चेतन, बेबी प्रियांशी, रोशनी, आप सभी का धन्यवाद जुड़ने के लिए, कार्यक्रम सुनने के लिए। सोहन जोशी, हरमिंदर, शिव कुमार, लोकेश, बेबी वेदेही, बेबी हंसिका, कुमारी अकीता, अनुपुर मध्य प्रदेश, श्रीमती जयवंती केवट जी, आप सभी छत्तीसगढ़ के श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। कोहका बिलाई से उत्तम सिंह, मोरस, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष और नंदनी। सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पर्ल और विलिस डिकेस्ट्रो हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। नेहरू चौक पैठर से डॉक्टर सुरेश यादव, अनीता, आरती, प्रशांत, सोनल, बेबी सिया, जालना शहर से सोमनाथ, गीता, ओम, सुभाष, चंदन, एकनाथ और संगीता। फनीश कुमार, सावित्री देवी, मोहित कुमार, देविका रानी, गंजन कुमार, हेयांश, आप सभी छत्तीसगढ़ के श्रोता हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। श्रीराम गोंदली, उषा, हर्षदा वेशनी, पूनम, युवराज महाराष्ट्र से जुड़ चुके हैं। चंडीगढ़ से सतीश और विमला हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। दतरंगी के भागवत शर्मा, शांति देवी, लीलावती, वीना, विनीता, रुद्र वर्मा। मधुबनी एक्सटेंशन से जुड़ रहे हैं कुशेश्वर प्रसाद, फूलो रानी, किशोरी राज, घनश्याम राजा, मीरा रानी, हीरा पन्ना, हजारीबाग झारखंड से वीरेंद्र भगत, मालती भगत और शोभा गुप्ता, रामचंद्र गुप्ता, जयदेव गुप्ता, आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

गीत बात और एसएमएस कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं का स्वागत। साथियों, आप सभी का संदेश हम तक पहुंच चुका है और कोशिश यही की जाती है कि ज्यादा से ज्यादा संदेश अपने कार्यक्रम में शामिल किए जाएं।

छत्तीसगढ़ से मुकेश गोस्वामी, मधु गोस्वामी, आशी गोस्वामी, शिवन्या गोस्वामी, अनु गोस्वामी, आप सभी का स्वागत कार्यक्रम में। प्रमिला, परवीन, सुल्ताना, अजीत भावसार, आप सभी गुजरात से हमसे जुड़ रहे हैं। दिनेश, प्रोफेसर वसुदा ब्रजसेन जी, हीरामणि, कृष्णा, चंद्रवंशी जी, अब्दुल गफ्फार डावर, सोहन जोशी, जयवंती, टी डी मल्होत्रा, जयवीर सिंह, शुभ चंद्र बजाज, आसमा कुरेशी, कमलकांत, रविंद्र सिंह, विजय सुरलकर, मुरली, वसंत राव, निवृत्ति, ताज मोहम्मद अंसारी, राकेश, आप सभी का स्वागत हमारे कार्यक्रम में।

स्वर सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर, गुरलाल, अभिराज, आप सभी गांव लोहगढ़ ठाकुरा वाला से जुड़ रहे हैं। प्रकाश जैन नांदेड़ से, लातूर से संगीता और सूरज पीआर जैन। अगला संदेश सौरभ, प्रकाश, बल्लू और तरुण का छत्तीसगढ़ से हमारे स्क्रीन पर पहुंच चुका है। सीताराम कांगड़ा, बबीता बोर्ड, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोर्ड, आप सभी रोहतक से जुड़ रहे हैं। श्रीरामपुर से डी अशोक कुमार, अविकास, सानू और अर्चना। संतोष नामदेव, सार्थक, समर्थ, शौर्य, आप सभी बघेरा दुर्ग से जुड़ रहे हैं। गंज डंडवारा से मोहम्मद कलीम जख्मी, भवन प्रकाश गौतम, डॉक्टर दबीरुल हसन, बेगम शबनम अनवार, नजमा बेगम नाज और सरिता गौतम। महाराष्ट्र से संदेश भेजा है नंदकिशोर गटे, संगीता, साक्षी, जयश्री, अंजलि, वाला साहब, राम निवास अग्रवाल, धनंजय और पीबी कुलथे ने। अजमेर शरीफ से जुड़ रहे हैं सैयद आलम हाशमी, गुलनाज, असद अरहाम और समस्त हाशमी परिवार। निलोफर फातिमा, मोहम्मद अल्फाद, आफरीन, मोहम्मद अशफाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद इसफाक, आप सभी छत्तीसगढ़ चोड़ी लाइन मुंगेली से जुड़ रहे हैं। साथियों, आप सभी जुड़ चुके हैं, जुड़ने के लिए शुक्रिया। कार्यक्रम सुनने के लिए भी धन्यवाद। बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, शुक्रिया आप सभी का। जज्जर हरियाणा से जुड़ने के लिए निप्पी साहनी, मिसेस सुनीता साहनी, आप सभी रामगढ़ कैंट झारखंड से जुड़ चुके हैं। नागपुर महाराष्ट्र से कमल साहनी, मिसेस पिंकी, डॉक्टर अफजल मलिक, संदीप मक्कर और बेगम इफ्जाल।

मोहम्मद बुरहुद्दीन फजाल अल्लाह फरहान अल्लाह समायरा आजमीन गुड़ी, आप सभी तेलंगाना बोंगीर से हमसे जुड़ रहे हैं। बिलासपुर छत्तीसगढ़ से छन्नूलाल श्रीवास, अनीता पुष्पा श्रीवास, अंजू योगिता, रज्जन साहू, हेमंत नामदेव, धर्मदास वाधवानी, जमशेदपुर से रोहन जायसवाल, आर्य जायसवाल, मुराही देवंती, इसी के साथ चंदोली से विजय, सरोज, सुंदर और सुमन। गांधी चौक बाड़मेर से पवलेश पवार, डेनी पवार, मनीष पवार, रामदेवरा से दिनेश चौहान, डांगरी से बाबू जायसवाल और बावड़ी से खुदा बख्श खलीफा।

लोफर फिल्म से लिया ये गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। कार्यक्रम से जुड़ चुके हैं जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन और माहिरा नूर, आप सभी जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत हमारे कार्यक्रम में। गांव और डागर निम्नाबाद जिला जींद हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा, जतेंद्र कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर, करमजीत, आप सभी का शुक्रिया। करीमनगर से लक्ष्मी नारायण, विजया, अभिनय और साई किरण। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश, पूनम, विशाल, दिशानी।

मुकेश, मनोज जेठवा, हर्षा जेठवा श्रीरामपुर से हमसे जुड़ रहे हैं। महाराष्ट्र से नारायण, दयानंद, ओमकार और साई गायकवाड़। पानीपत से भावना, नरेश, लक्ष्य, लाड़ो कोयल, नानक चंद मल्होत्रा। खंडवा से राजेश सेन। इसी के साथ गीत, बात और एसएमएस कार्यक्रम को अब हम यही विराम देते हैं। एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर लीजिए प्रस्तुति कार्यक्रम ब्रज लोकगीतों का। आज के कलाकार हैं श्री बाबू कौशिक।

0: पुलिस।
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों, लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1 लाख दो, बच जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट

0: करें।
1: हेलो मम्मा।
2: आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है और अभी आप आनंद ले रहे हैं श्री बाबू कौशिक के गाए ब्रज लोक गीतों का।

0: बिहार ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। अभी आप आनंद ले रहे हैं ब्रज लोकगीतों के कार्यक्रम में श्री बाबू कौशिक के गाए लोकगीतों का।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र इस

ब्रज लोकगीतों के कार्यक्रम में अभी आप आनंद ले रहे थे। श्री बाबू कौशिक के गाय लोकगीतों का आकाशवाणी का है ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। दोपहर का 1 बजने को है, थोड़ी ही देर में आप सुन सकेंगे समाचार।

0: समाचार के साथ मैं शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षा सशक्तिकरण का एक शक्तिशाली साधन है। ये लोगों को आत्मनिर्भर, जागरूक और सक्षम बनाती है। आज नई दिल्ली में जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सही विकास तभी संभव है जब समाज के सभी वर्ग सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति करें।
1: भारत सरकार जनजातीय समुदाय के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रहे हैं। छात्रवृत्ति योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं है, ये युवाओं के सपनों को पंख देने का माध्यम है। ये उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं का द्वार खोलती है, जिनमें प्रतिभा तो होती ही है परंतु संसाधनों का अभाव उन्हें आगे बढ़ते रोकता। लेकिन मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि अपने से अनेक युवाओं ने विभिन्न क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त की है।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति पॉल माशातिले से भेंट की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश, लघु और मध्यम उद्यमों, डिजिटल और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में अवसरों पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने आपसी साझेदारी को मजबूत करने के लिए श्री माशातिले की सराहना की। श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए कि भारत और दक्षिण अफ्रीका को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मिलकर काम करना चाहिए। भारत ने इबोला वायरस से निपटने के लिए अफ्रीका को चिकित्सा सहायता की 43 टन की दूसरी खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस खेप में निदान, निगरानी उपकरण और दवाएं शामिल हैं। श्री जयशंकर ने कहा कि इससे अफ्रीकी संघ के सदस्य देशों को इबोला वायरस से निपटने में मदद मिलेगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में अभी तक इबोला वायरस का कोई मामला सामने नहीं आया है। मंत्रालय ने सलाह दी है कि ऐसे व्यक्ति जो पिछले 21 दिन में इबोला प्रभावित देश से यात्रा करके आए हैं, उन्हें बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, दस्त या बिना किसी स्पष्ट कारण के रक्तस्राव जैसे लक्षण दिखाई दें तो वे स्वयं को लोगों से अलग कर लें। मंत्रालय ने कहा है कि ऐसे व्यक्ति स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों को तुरंत सूचित करें। नागरिक हेल्पलाइन नंबर 1075 पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। गृह मंत्रालय ने आव्रजन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित कर दिया है। इसमें आव्रजन और विदेशी नियम 2025 के अंतर्गत पंजीकरण और समय सीमा से जुड़े कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इस संशोधन के अंतर्गत भारत आने के बाद 180 दिन पूरे होने से पहले कभी भी पंजीकरण कराया जा सकता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवा और अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। रिलायंस कम्युनिकेशंस ग्रुप के पूर्व प्रबंध निदेशक अमिताभ झुनझुनवाला को सीबीआई ने करोड़ों रुपए के बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार कर लिया है। ये मामला भारतीय स्टेट बैंक से लिए गए 1,200 करोड़ रुपए के सावधि ऋण, बैंक ऑफ महाराष्ट्र से लिए गए 500 करोड़ रुपए के लेटर ऑफ क्रेडिट और सिंडिकेट बैंक से लिए गए 350 करोड़ रुपए की क्रेडिट सुविधा के कथित दुरुपयोग से संबंधित है। एजेंसी ने पहले ही 16 व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मध्य प्रदेश के सीधी जिले में एक वर्ष में प्रसव पूर्व और प्रसव के बाद में 53 गर्भवती महिलाओं की कथित मृत्यु के संबंध में राज्य के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। एक मीडिया रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए आयोग ने इस मामले में 2 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने बताया है कि उत्तर पुस्तिकाओं में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उनके पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल आज से शुरू हो गया है। ये 6 जून तक खुला रहेगा। सीबीएसई ने कहा है कि यह सुविधा केवल उन्हीं छात्रों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की प्रति प्राप्त कर ली है। छात्रों को प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन के लिए प्रति उत्तर पुस्तिका 100 रुपए और पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रति प्रश्न 25 रुपए का भुगतान करना होगा। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज गिरावट का रुख है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 81 अंक गिरकर 74,186 पर, जबकि निफ्टी 44 अंक लुढ़ककर 23,338 पर कारोबार कर रहा था। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

92.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए अब जानते हैं आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। राज्य स्तरीय समन्वित कार्यक्रम खेल दर्पण, जिसका अनुप्रसारण लखनऊ केंद्र से होगा, सुनिएगा रात्रि 10 बजे से। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम रात्रि 10:30 से प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे अभय नारायण मल्लिक का ध्रुपद गायन राग मारू विहाग में। किसान भाई और बहनों के लिए कार्यक्रम लेकर आएंगे फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी, संध्या 6:15 पर। आज का विषय रहेगा पशुपालन से जुड़ी है किसान और खेत की समृद्धि। इस विषय पर जानकारी देंगे डॉक्टर अरविंद कुमार त्रिपाठी। ब्रज साहित्यिक कार्यक्रम संध्या 7:05 से आप सुन सकेंगे। इस कार्यक्रम में भक्त कथा क्रम में आज का शीर्षक रहेगा राम भक्त श्री जटायु जी, कथाकार होंगे ब्रजेश शर्मा। बहनों के लिए कार्यक्रम लेकर आएंगे वनिता लोग 1:15 पर। इस कार्यक्रम में होगी वार्ता, विषय रहेगा घर में फेशियल कर चेहरा बनाए खूबसूरत, जानकारी देंगी इस विषय पर किशोरी पाठक। अपनी सांध्यकालीन सभा का आरंभ करेंगे संध्या 5:30 पर कार्यक्रम युववाणी से। इस कार्यक्रम में आज की बात क्रम में आज के विषय रहेंगे उर्दू शिक्षण के लिए और अधिक संसाधन, हीट स्ट्रोक से बचाव। इसी के साथ युवा साथी फिल्म संगीत का भी आनंद ले सकेंगे। सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा 2:30 पर।

संध्या वंदन, ये कार्यक्रम संध्या 6:45 पर आप सुनेंगे। संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम शाम सुहानी का समय रहेगा, संध्या 7:31। विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर यह कार्यक्रम रात्रि 8 बजे से प्रसारित किया जाएगा।

मंथन 9:45 पर, मनी टॉक 9:30 पर, दोनों ही कार्यक्रमों का अनुप्रसारण दिल्ली केंद्र से होगा। चित्रपट संगीत के कार्यक्रम में सुहाने तरानों का आनंद लीजिएगा रात्रि 9:15 से।

0: अभी आप सुन रहे थे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
0: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए अब करते हैं अपने देश को नमन।

संवेद सुरों में भी आपने सुना देशगान। एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए पेश है बहनों के लिए कार्यक्रम वनिता लोक। आज की प्रस्तुति खुशबू मिश्रा की है।

न कभी बदले ये लम्हा, न बदले ये ख्वाहिश हमारी, हम दोनों ऐसे ही रहें एक दूजे की, जैसे मैं चाहत और तुम जिंदगी हमारी। नमस्कार बहनों, वनिता लोक कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और आज मैं हूं आपके साथ आपकी सहेली खुशबू। बहनों, हवाओं को चलने के लिए किसी के इशारे की जरूरत नहीं होती, नींव तो अपना खाका खुद खींचती है और उसे किसी इमारत के बनने की कवायद नहीं होती। वक्त और हालात चाहे कुछ भी हो और हम अपने आप में पूरे हैं, हमें किसी तिनके के सहारे की ज़रूरत नहीं होती। जी हाँ बहनों, हम बात कर रहे हैं अपनी यानी हम महिलाओं की। जैसे अभी हम बात कर रहे कि हम अपने बच्चों में जैसे संस्कार देते हैं, तो संस्कार देने की जो भूमिका होती है वो सबसे पहले माँ की होती है, क्योंकि हम महिलाएं केवल परिवार का एक सदस्य ही नहीं होती बल्कि उस परिवार की शक्ति, संस्कार, प्रेम और एकता का आधार होती है। एक बेटी, बहन, पत्नी और माँ के रूप में वो अनेक जिम्मेदारियां निभाती है और अपने त्याग, समर्पण तथा प्रेम से परिवार को चलाती है और संवारती है। खुद को न तू कमजोर समझ, कहने दे दुनिया क्या कहती है, तू शक्ति है, तू नारी है, तू असंभव को संभव कर सकती है। बिना नारी शक्ति के परिवार, समाज, देश कैसे चल सकता है? अपने परिवार, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देती है नारी। परिवार में प्रेम और सामंजस्य बनाए रखती है नारी। कठिन परिस्थितियों में अपने परिवार को संभालती भी है और आर्थिक और इसके साथ सामाजिक विकास में भी योगदान देती है। आज हम महिलाएं सभी काम कर सकती हैं परिवार में। जब कभी भी संकट आए तो परिवार का हौसला बढ़ाती हैं और समाधान भी खोज ही लेती हैं। रिश्तों को बनाए रखना ये हम महिलाएं ही तो करती हैं। परिवार में अगर किसी के बीच विघटन है, अगर कुछ आपसी तालमेल सही नहीं बैठता है, तो हम महिलाएं ही सबसे पहले आगे आकर उन संबंधों को बेजोड़ जोड़ती हैं। और जिनके बीच भी अगर थोड़ी सी भी रिश्तों में खटास है तो उसको वो फिर से जोड़ने की कोशिश करती हैं, संवारने की कोशिश करती हैं। तो हम महिलाओं की बहुत ही ज़्यादा परिवार में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। और बात करते हैं रिश्तों की, तो रिश्तों को बनाए रखने में सबसे पहले महिलाएं ही आती हैं और उनकी हर खुशी अपने परिवार से ही होती है।

0: बहनों, इस खूबसूरत से गीत के बाद अब बात करते हैं अपनी। अपनी तो हम बात कर ही रहे थे बहनों। गर्मियों का मौसम है, हम सभी देख रहे हैं, कहीं बाहर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं होता, क्योंकि थोड़े से आलसी भी हम हो जाते हैं इन गर्मियों में। इतनी धूप में हम क्या करें बाहर जाकर, कुछ ऐसा मन में प्रतीत होता है। लेकिन जब बात अपने सौंदर्य की हो तो क्या किया जाए। हमको सुंदर भी बनना है और अपने को सजाना है, संवारना है, और हम पार्लर नहीं जाना चाहते, तो गर्मी में हम घर में ऐसा क्या कर सकते हैं कि हमारी त्वचा खूबसूरत दिखे। तो इसी विषय पर आज हम आपको वार्ता सुनवाते हैं। विषय है, घर में फेशियल कर चेहरा बनाएं खूबसूरत। वार्ताकार हैं किशोरी पाठक।
1: बहनों का सबसे मुख्य जो इंटेंशन है वो है सुंदर दिखना। उसके लिए हम तमाम प्रोडक्ट यूज़ करती हैं, जिनसे कि छुटकारा हमें कभी मिल भी जाता है और कभी नहीं भी मिलता। तो कुछ ऐसी विधि होनी चाहिए हमारे पास जो कि तमाम जो त्वचा की परेशानियां हैं उनसे, जैसे रूखापन है, झाइयां हैं, कालापन है आदि, इन सभी से हमको निजात मिल सके। तो आपको हमें मिलाना होगा किशोरी पाठक जी से, जो बताएंगी फेशियल के विषय में। और विषय है, घर में फेशियल कर चेहरा बनाएं खूबसूरत। तो सबसे पहले किशोरी जी, हम आपका स्टूडियो में आपका करते हैं बहुत बहुत स्वागत।
2: नमस्कार।
1: तो आज आप हमारी बहनों के लिए होममेड फ्रूट फेशियल बताने जा रही हैं कि हम कैसे घर में ही तमाम तरह के फेशियल बना सकते हैं। तो आप क्या क्या बताने वाली हैं
2: बहनों? सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि आज का जो दौर है वो पॉल्यूशन का दौर है। चाहे हम घर पे रहें चाहे हम बाहर जाएं, तो हमको पॉल्यूशन का सामना करना ही पड़ता है। तो उसी से हमारी स्किन जो है डैमेज हो जाती है, रैशेस पड़ने लगते हैं। तो उसके लिए जब हम अपनी स्किन को सुंदर बनाने के लिए फेशियल लेते हैं, तो मोस्टली महिलाएं जो पार्लर में ही जाती हैं। तो बहनों, आज मैं आपको बताऊंगी कि आप पार्लर में ना जाकर भी अपने आप को सुंदर और स्वस्थ बना सकती हैं। तो मैं अभी आपको बताऊंगी।

0: वी की घर में होम मेड फेशियल, जो कि हम घर में जो फ्रूट्स होते हैं या और भी चीजें होती हैं जिसके द्वारा हम फेशियल कर सकते हैं। तो सबसे पहले बहनों मैं आपको एक फेशियल बताती हूँ। तो फेशियल में जो हम सबसे पहले यूज करते हैं वो होता है क्लींजर। क्लींजर आपकी स्किन की ऊपर की जो मैल होती है उसको साफ करती है। तो उसके लिए हम आप लेंगे 1 चम्मच मैदा, 2 हरे अंगूर का जूस और गुलाब जल। इन तीनों को मिलाकर हम अपने चेहरे पे 5 से 7 मिनट मसाज करेंगे और फिर चेहरे को हल्के गर्म पानी से धो लेंगे। इससे आपकी स्किन साफ हो
1: हल्के
0: जाएगी।
1: गुनगुने पानी से।
0: हाँ जी,
1: तो मेरा बहनों से यही कहना है, अगर वो चाहती हैं कि हमको इसके बारे में कुछ ज्ञान प्राप्त हो रहा है, तो जल्दी से पेन और कागज लेकर के नोट कर लें कि कैसे बनाया जाता है होममेड फ्रूट फेशियल।
0: स्किन को क्लीजिंग करने के बाद बहनों हम स्क्रब करते हैं।
1: जी, स्क्रब पे आते हैं।
0: स्क्रब करने से हमारी स्किन के ऊपर जो डेली डेड स्किन जमती है तो उसको रब करना पड़ता है, यानी कि घिसना पड़ता है। जब हम इसको स्क्रब करेंगे तो हमारी स्किन के ऊपर की डेड स्किन निकल जाएगी। इसके लिए बहनों हम केले का 2 चम्मच मैश किया हुआ पल्प, यानी केले का जो गूदा होता है उसको
1: उसे
0: लेंगे,
1: अच्छे से दबा
0: और
1: लेंगे।
0: संतरे का भी पल्प यूज करेंगे। संतरे का जूस नहीं लेना है, इसमें हमको
1: गूदा बोलते
0: संतरे
1: हैं
0: का
1: इसे।
0: गूदा
1: हाँ
0: लेंगे। इन दोनों का जो पल्प हमारे पास तैयार होगा उसमें हम आधा चम्मच मैदा और आधा चम्मच चावल का आटा मिलाकर इस पेस्ट को 10 से 15 मिनट चेहरे पर मसाज करेंगे।
1: अच्छा,
0: इससे हमारी स्किन की जो डेड स्किन होती है वो
1: हाँ
0: निकल जाएगी। उसके बाद हमें ठंडे पानी
1: अच्छा,
0: से मुंह
1: उसमें
0: को धो
1: आपने
0: लेना है।
1: गर्म पानी बताया था, इसमें
0: हाँ,
1: ठंडा
0: इसमें
1: पानी।
0: हमें ठंडा पानी यूज करना है, क्योंकि पहले हमने गर्म पानी यूज किया ताकि हमारी स्किन के पोर्स खुल
1: खुल
0: जाएं,
1: जाए।
0: और उसके बाद हमने रब किया। तो उसके बाद रब करने से जब पोर्स खुले हुए हैं तो पहले हमको उन्हें बंद करना होगा। तो इसके लिए हम ठंडे पानी का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद बहन हम जेल का इस्तेमाल करेंगे। बहनों, तो जेल के लिए मार्केट में भी आता है और आजकल आपने देखा भी होगा बहुत घरों में एलोवेरा पाया जाता है। तो एलोवेरा जेल में आधा चम्मच शहद मिलाकर और उसमें ग्लिसरीन की कुछ बूंदें मिलाकर हम अपने चेहरे पर 5 से 7 मिनट तक लगा सकते हैं।
1: अच्छा,
0: तो उससे हमारी चेहरे का जो हमने पहले स्किन को क्लीजिंग किया, फिर
1: फिर
0: स्क्रब
1: स्क्रब
0: किया,
1: किया, फिर
0: फिर
1: जेल
0: जेल से उसको टाइटनिंग
1: मिल
0: करेंगे।
1: जाता है।
0: उसके बाद बहनों हम फेशियल में मेन होता है मसाज, ताकि हमारी स्किन टाइट हो और वो ग्लो करे। तो उसके बाद हम क्रीम तैयार करेंगे। तो क्रीम के लिए हम घर की चीजों का ही इस्तेमाल करेंगे। तो जिसमें सबसे पहले 2 चम्मच मैदा, आधा चम्मच संतरे का जूस, 1 चम्मच पक्के पपीते का रस, आधा चम्मच केले का मैश किया हुआ पार्ट, 1 चम्मच काले अंगूर का रस और आधा चम्मच ऑलिव ऑयल। इन सभी को मिलाकर हम एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। उसके बाद 15 से 20 मिनट तक गुलाब जल की सहायता से पूरे चेहरे पर मसाज करेंगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। जैसे कि पहले भी मैं आपको बता चुकी
1: जी
0: हूँ
1: जी
0: कि घड़ी के अकॉर्डिंग एक बार ऊपर और एक बार नीचे इस तरह से हम मसाज करेंगे। इससे आपका चेहरा बहुत ज्यादा ग्लो हो जाए, ग्लो करने लगेगा और आपकी स्किन की जो डैमेज है वो भी नष्ट हो जाएगी।
1: जो आपने कहा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ये मैं समझती हूँ हमारी सभी बहनों को पता ही होगा,
0: पता ही
1: क्योंकि ये
0: है,
1: तो जनरली सभी कर लेते हैं घर में।
0: जानते हैं।
1: हाँ
0: उसके बाद हम इतना प्रोसेसिंग होने के बाद लास्ट में हम पैक
1: पैक।
0: का इस्तेमाल करते हैं। पैक में बहनों हम पपीते का पल्प, केले का पल्प बारीक बारीक काट लें, और उसके बाद उसमें आधा चम्मच मुल्तानी मिट्टी, आधा चम्मच बेसन मिलाकर पैक तैयार कर लें। उसके बाद आधा घंटा लगाने के बाद जब वो सूख जाए तो हल्के गुनगुने पानी से चेहरे को धो लें। तो बहनों आपका चेहरा फेशियल होने के बाद जो ग्लो करता है, आप जब इसको करेंगी तो आपको खुद लगेगा कि हाँ, हम फेशियल करवा कर आए हैं या हमने खुद अपने घर में फेशियल

0: किया है।
1: तो क्यों किशोरी जी, जैसे ये आपने सारे स्टेप बाई स्टेप सारी चीजें बताई, क्लींजर, स्क्रब, जेल, क्रीम और पैक, क्या हम इसमें से कोई एक चीज छोड़ नहीं सकते? यानी मेरे कहने का मतलब है, जैसे किसी पे कोई काम आ जाए वो नहीं कर पाए, तो क्या वो
2: ऐसा
1: लगातार चीजें
2: कि क्लींजर तो हमने स्किन को साफ करने के लिए किया, स्क्रब हमने डेड स्किन को हटाने के लिए किया, उसके बाद हमने जेल यूज किया ताकि जो हमारी डेड स्किन जब हमारी हट गई तो हमारी स्किन से जो नेचुरल स्किन निकल के आई है तो उसको ठंडक के लिए हमने जेल का इस्तेमाल किया, और क्रीम का इस्तेमाल हमने किया उसकी टाइटनिंग और ग्लोइंग के लिए, फेयरनेस के लिए। और सबसे जब हमने क्रीम इस्तेमाल किया तो जब हम मसाज करते हैं तो हमारी स्किन के पोर्स खुल जाते हैं, तो क्रीम के बाद पैक का लगाना भी बहुत ही जरूरी
1: तो
2: है।
1: कहने का मतलब ये तो है कि ये सारी चीजें जरूरी हैं
2: और हाँ छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि ये हमको सुनने में बहुत ज्यादा लग रहा है लेकिन जब हम करते हैं तो आधा से एक घंटे के बीच के अंदर ये सारा प्रोसेस
1: और वैसे
2: हो
1: भी
2: जाता
1: आधा इससे ज्यादा वक्त तो हमें पार्लर जाने और आने में लग जाएगा, फिर वहां पे करवाएंगे उसमें भी आधा एक घंटे से तो लग जाता होगा ना।
2: हाँ, अगर आपको सिर्फ क्लीजिंग करना है तो आप क्लीजिंग करके छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आपने स्क्रब किया है तो आपको फेशियल वो क्रीम की मसाज और पैक जरूर
1: करना
2: लेना
1: पड़ेगा। आप कुछ और फेशियल भी बताने वाली हैं?
2: मैं ये बताना चाहूंगी कि ये मैंने फेशियल बताया लेकिन बहुत सी बहनों के सवाल होते हैं कि हमारी स्किन ऑयली है या हमारी स्किन ड्राई है, तो उस टाइम हम कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, घर की भी कौन से प्रोडक्ट इस्तेमाल करें जिससे कि हमें ज्यादा फायदा हो। तो बहनों मैं आपको ड्राई स्किन के लिए बताती हूँ, क्योंकि आजकल जो विंटर का मौसम चल रहा है,
1: विंटर तो खैर खत्म हो चुका है
2: लेकिन फिर भी विंटर में क्या स्किन ड्राई हो जाती है, तो जिसमें हमारी स्किन को बहुत ज्यादा मॉइस्चराइजर की जरूरत होती है। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि फेशियल जो होता है वो आफ्टर 30 में महिलाओं को जरूरत होती है, और आफ्टर 30 में स्किन नेचुरली मॉइस्चर होने लगती है। तो मैं सबसे पहले आपको रूखी त्वचा के लिए बताऊंगी, मैंने रूखी त्वचा के लिए हमें दूध में ऐसा, मतलब हम अपने घर में कोई भी हो जो हर घर में दूध का इस्तेमाल होता है और हर घर में दूध पाया जाता है, और दूध में भरपूर मात्रा में B12 होता है जो चेहरे को बेदाग रिंकल्स मुक्त बनाने में मदद करता है। तो आज मैं आपको एक दूध का फेशियल बताऊंगी जो कि आप
1: फिर से से
2: तो सबसे पहले दूध के फेशियल के लिए आप क्लीजिंग करेंगी, तो आधा कटोरी दूध कच्चा दूध लें और उसमें रुई को भिगोकर पूरे चेहरे पर हल्के हाथों से लगाएं, 10 मिनट बाद चेहरा धो लें तो बहनों आपका चेहरा साफ हो जाएगा। उसके बाद दूध से ही आपको स्क्रब करना है, तो उसमें आधा चम्मच नमक और 1 चम्मच दूध मिलाकर इस मिश्रण से चेहरे पर हल्की मसाज करके आप चेहरे को स्क्रब कर सकती हैं। नमक से चेहरे की गंदगी कटेगी और इससे आपका चेहरा निखर जाएगा।
1: ये चीज आपने बहुत ही खास बताई कि नमक को स्क्रब की तरह यूज करना।
2: हाँ जी, क्योंकि नमक में एक सॉल्ट में जो होती काटने की क्षमता होती है, तो वो आपकी स्किन की गंदगी को काट देगा। उसके बाद इसमें मसाज की जरूरत नहीं होती है, इसमें सिर्फ हम पैक का इस्तेमाल करेंगे। इसमें आधा चम्मच सॉरी 1 चम्मच दूध और आधा चम्मच शहद रुई की मदद से चेहरे पर लगाएंगे, और 5 मिनट मसाज करने के बाद 20 से 25 मिनट रखने के बाद उसको धो लेंगे, तो बहनों आपकी स्किन की जो ड्राइनेस है वो खत्म हो जाएगी।
1: बहुत अच्छा बताया आपने रूखी त्वचा वालों के लिए। अब आप बताने वाली हैं मेरे ख्याल से ऑयली त्वचा के लिए।
2: हाँ, एक हमारी ऑयली स्किन भी होती है जो कि अभी समर आने वाला है, तो समर में बहुत ज्यादा गर्मी से क्या पसीना बहुत आता है, और उसमें ऑयल निकलता है, तो उसके लिए हम आपको एक फेशियल बताएंगे जिसमें कि क्लीजिंग करने के लिए 1 चम्मच खीरे का जूस, आधा चम्मच टमाटर का जूस, आधा चम्मच नींबू का जूस, इन तीनों का मिश्रण बना लें तथा रुई की मदद से चेहरे को साफ कर लें। बहनों नींबू एंटीऑक्सिडेंट का काम करता है, तो

0: इससे आपकी चेहरे की जो ऑयल है उसको भी वो कंट्रोल कर देगा। उसके बाद हम स्क्रब यूज करेंगे जिसमें 1 चम्मच शहद, आधा चम्मच खाना सोडा, आधा चम्मच नींबू का रस, इन सभी को मिलाकर चेहरे पर मसाज करें और हल्के गुनगुने पानी से चेहरा धो लें। इससे आपकी स्किन की जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो भी निकल जाएगी। क्रीम के लिए हम 1 चम्मच दही, आधा चम्मच हल्दी, 2 से 4 बूंद नींबू, 2 से 4 पत्तियां केसर और आधा चम्मच शहद मिलाकर अच्छे से उसको फेंट लें। इस मिश्रण को 15 से 20 मिनट मसाज करें, फिर हल्के हाथों से गुनगुने पानी से धो लें। चेहरा धोने के बाद हम लास्ट में पैक का इस्तेमाल करेंगे। तो बहनों, पैक के लिए भी पिसी हुई मसूर की दाल, अगर आपके पास मसूर की दाल पिसी हुई नहीं है तो आपको रात में मसूर की दाल को भिगोकर सुबह उसका पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकती हैं।
1: बहनों, अभी आपने ये वार्ता सुनी, घर में फेशियल कर चेहरा बनाएं खूबसूरत। इस विषय पर जानकारी दे रही थी किशोरी पाठक। बहनों, धन दौलत से बड़ा होता है संस्कार का बांध। इसी से बनती है बच्चे की सच्ची पहचान। ज्ञान के साथ जब संस्कारों का दीप जलता है, तब हर घर का भविष्य उज्जवल बनता है। जी हाँ बहनों, अच्छे संस्कार बच्चों के जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। यदि हम उन्हें प्रेम, अनुशासन, ईमानदारी और करुणा का पाठ पढ़ाएं, तो वो न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे समाज का नाम रोशन करेंगे। आज के समय में हर माता-पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा पढ़ाई में अच्छा हो, लेकिन केवल पढ़ाई ही काफ़ी नहीं होती, बच्चों का अच्छा इंसान बनना भी उतना ही ज़रूरी होता है। इसके लिए उन्हें बचपन से ही अच्छे संस्कार देना आवश्यक है। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका सिर्फ यही है कि हम खुद को उनके सामने अच्छा व्यवहार करें। बच्चे सुनने से ज़्यादा देखकर सीखते हैं। यदि घर में बड़ों का सम्मान होगा, सच बोला जाएगा और दूसरों की हमेशा मदद की जाएगी, तो बच्चे भी वही आदतें अपनाएंगे। अभी मैं आपको परसों की ही बात बताती हूँ कि मैं अपनी सहेली के घर गई थी और वहाँ मैंने देखा मेरी सहेली का 7 साल का बेटा सोफे पर बैठा बैठा सिर्फ फोन चला रहा था। ना उसने मुझसे नमस्ते की, ना पैर छुए, बस वो जब तक मैं वहाँ रही तब तक सिर्फ फोन ही चलाते रहा। ये मैंने देखा और बहुत खराब लगा देखने में। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक हम संस्कार नहीं देंगे बच्चों में, तब तक बच्चों में बदलाव नहीं ला सकते। उन्हें किसी का भी सम्मान करना सिखाएं। छोटी छोटी चीज़ें जैसे धन्यवाद देना, कृपया माफ़ कीजिए, जैसे कुछ छोटे छोटे शब्द हैं उनका आप प्रयोग करना सिखाएं। ज़रूरतमंद लोगों की मदद करना सिखाएं। बच्चों के साथ समय बिताएं और उनकी हर बात को सुने और उन्हें समझाएं। डांट फटकार से ज़्यादा असर प्रेम और अच्छे उदाहरण का होता है। याद रखें, बच्चे कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं। उन्हें जैसा आकार हम देंगे वो वैसा ही बन जाएंगे। इसीलिए उन्हें अच्छे संस्कार, अच्छी आदतें और अच्छे विचार देना हम माता-पिता का ही जिम्मेदारी होती है। बच्चों को बस इतना ज्ञान दे दीजिए, सच और ईमान की पहचान दे दीजिए। किताबों का ज्ञान तो दुनिया दे देगी, आप उन्हें अच्छे संस्कार दे दीजिए। आइए अब रुक करते हैं फिल्म संगीत की ओर और सुनवाते हैं आपको ये प्यारा सा गीत।

बहनों, इस गीत के बाद चलते चलते आपको दे देते हैं कुछ टिप्स, और टिप्स हैं गर्मी के लिए। गर्मी से तुरंत राहत पाने के लिए खूब सारा पानी पिएं, नारियल पानी पिएं, छाछ का सेवन आप ज़रूर करें, खुद को हाइड्रेट ज़रूर रखें, ठंडे पानी से नहाएं, घर को भी आप ठंडा रखें, धूप के समय खिड़कियों पर हल्के रंग के पर्दे ज़रूर डालें। गर्मियों के मौसम में स्वस्थ और तरोताज़ा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है अपने आप को हाइड्रेट रखना। ठंडी चीज़ें जैसे खीरा, तरबूज और ककड़ी आप अपनी दिनचर्या में शामिल करें, पेय पदार्थ लीजिए, और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, धूप और लू से अपना बचाव ज़रूर करें। चश्मा ज़रूर पहने और पूरे बांह के कपड़े आप ज़रूर पहने, सिर को ढक कर निकलें, और अपने साथ छाता ज़रूर रखें, और इसके साथ एक पानी की बोतल। घर को भी आप अच्छी तरह से ठंडा रखने की कोशिश करें, खिड़कियों पर पर्दे डालें, और सुबह जल्दी उठ करके खिड़की बंद कर दें ताकि बाहर की गर्म हवा अंदर प्रवेश न कर सके। ठंडे पानी से स्नान आप ज़रूर करें, अगर हो सके तो दिन में 2-3 बार आप स्नान कर सकते हैं, चंदन का लेप लगाएं, नींबू शिकंजी पानी पानी जो होता है वो आप ज़रूर लें, प्याज, कच्ची जो प्याज होती है उसका सेवन करें। तो इस तरह से आप इन गर्मियों में अपना बचाव कर सकते हैं, अपने परिवार का बचाव कर सकते हैं। इसी के साथ खुशबू को दें इजाज़त, खुद का ख्याल रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। नमस्कार।

अभी बहनें सुन रही थी अपना कार्यक्रम वनिता लोग, एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

अभी आपने सुना फिल्म मैं हूं ना से लिया ये गीत। इस गीत को अपने सुर दिए थे सोनू निगम, आफताब शावरी और हसीन शावरी ने।

ये थे अखिल सचदेव, तुलसी कुमार, कबीर सिंह फिल्म में। इसी के साथ फिल्म संगीत के कार्यक्रम को अब हम यहीं विराम देते हैं। FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। दोपहर के 2 बजने को है, कुछ ही पलों में आप सुन सकेंगे समाचार।

0: और शैक्षिक रूप से प्रगति पर जोर दिया। सरकार ने आव्रजन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित किए। पंजीकरण समय सीमा और अपील प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी। और महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षा सशक्तिकरण का एक शक्तिशाली साधन है। ये लोगों को आत्मनिर्भर, जागरूक और सक्षम बनाती है। आज नई दिल्ली में जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सही विकास तभी संभव है जब समाज के सभी वर्ग सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति करें।
1: भारत सरकार जनजातीय समुदाय के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रहे हैं। छात्रवृत्ति योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं है, ये युवाओं के सपनों को पंख देने का माध्यम है। ये उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं का द्वार खोलती है, जिनमें प्रतिभा तो होती ही है परंतु संसाधनों का अभाव उन्हें आगे बढ़ते रोकता था। लेकिन मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि अपने से अनेक युवाओं ने विभिन्न क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त की है।
0: राष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जनजातीय समुदायों के युवाओं को सशक्त बनाने और उनका उत्थान करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है।
1: युवा हमारे राष्ट्र की शक्ति, आशा और उज्जवल भविष्य की प्रतीक है। मेरी सभी युवाओं, विशेषकर जनजातीय समुदाय के युवाओं से अनुरोध है कि उन्हें अपनी जड़ों और अपने लोगों को नहीं भूलना चाहिए। युवा शक्ति विरासत पर गर्व करते हुए आधुनिक शिक्षा और तकनीकों के बल पर आगे बढ़े तो सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि छात्रवृत्ति योजनाएं केवल वित्तीय सहायता का साधन नहीं है बल्कि ये युवाओं को सपनों को देखने का अधिकार देती हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि छात्रवृत्तियां उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं के द्वार खोलती हैं जिनमें अपार प्रतिभा है लेकिन संसाधनों की कमी के कारण वे प्रगति करने से वंचित रह जाते हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि युवा राष्ट्र की शक्ति, आशा और उज्जवल भविष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने युवाओं, विशेषकर जनजातीय समुदाय के युवाओं से आग्रह किया कि वे अपनी जड़ों को न भूलें।
1: भारत को वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य से आगे बढ़ रहे हैं। इस लक्ष्य की प्राप्ति में आप जैसे युवाओं की अहम भूमिका है। मुझे विश्वास है कि आप जिस भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं समाज और राष्ट्र के निर्माण में आपका सक्रिय योगदान रहना चाहिए।
0: गृह मंत्रालय ने आव्रजन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित कर दिए हैं। इसमें आव्रजन और विदेशी नियम 2025 के अंतर्गत पंजीकरण, समय सीमा और अपील प्रक्रिया में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इस संशोधन के अंतर्गत भारत आने के बाद 180 दिन पूरे होने से पहले कभी भी पंजीकरण कराया जा सकता है। इससे पहले 180 दिन की अवधि समाप्त होने के 14 दिनों के भीतर पंजीकरण कराना अनिवार्य था। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति पॉल माशाटिले से भेंट की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश, लघु और मध्यम उद्यमों, डिजिटल और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में अवसरों पर चर्चा की। डॉ. जयशंकर ने आपसी साझेदारी को मजबूत करने के लिए श्री माशाटिले की सराहना की। श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए कि भारत और दक्षिण अफ्रीका को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मिलकर काम करना चाहिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन गई है। अब समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमेरिकी दल बातचीत के लिए 4 जून तक दिल्ली में है। भारत की ओर से वाणिज्य विभाग में अपर सचिव दर्पण जैन मुख्य वार्ताकार हैं और अमेरिका का नेतृत्व ब्रेंडन लिंच कर रहे हैं। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन आज मुंबई पहुंचे। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर महाराष्ट्र के राज्यपाल विष्णुदेव वर्मा ने उनका स्वागत किया। प्रोटोकॉल मंत्री जयकुमार रावल भी हवाई अड्डे पर उपस्थित थे। राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन आज मुंबई में व्यापार और उद्योग जगत से बात करेंगे और

0: विभिन्न स्थलों का दौरा करेंगे। वे आज शाम लोक भवन में उनके सम्मान में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवा और अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कोलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद इनको न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में अभी तक इबोला वायरस का कोई मामला सामने नहीं आया है। मंत्रालय ने सलाह दी है कि ऐसे व्यक्ति जो पिछले 21 दिन में इबोला प्रभावित देश से यात्रा करके आए हैं, उन्हें बुखार, सिरदर्द और मांसपेशियों में दर्द या दस्त या बिना किसी स्पष्ट कारण के रक्तस्राव जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो वे स्वयं को लोगों से अलग कर लें। मंत्रालय ने कहा कि ऐसे व्यक्ति स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों को तुरंत सूचित करें। नागरिक हेल्पलाइन नंबर 1075 पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। भारत ने इबोला वायरस से निपटने के लिए अफ्रीका के रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र CDC को चिकित्सा सहायता की 43 टन की दूसरी खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस खेप में निदान, निगरानी उपकरण और दवाएं शामिल है। श्री जयशंकर ने कहा कि इससे अफ्रीकी संघ के सदस्य देशों को इबोला वायरस से निपटने में मदद मिलेगी। केरलम विधानसभा में कांग्रेस नेता शानिमोल उस्मान उपाध्यक्ष चुने गए हैं। शानिमोल उस्मान को 99 वोट मिले जबकि विपक्षी उम्मीदवार मोहम्मद मोहसिन को 34 वोट प्राप्त हुए। भारतीय जनता पार्टी के तीनों सदस्यों ने मतदान में भाग नहीं लिया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि उत्तर पुस्तिकाओं में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उनके पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल आज से शुरू हो गया है। ये पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: CBSE ने कहा है कि ये सुविधा केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की प्रति प्राप्त कर ली है। बोर्ड ने बताया कि सुरक्षा बढ़ाने के लिए आधार सत्यापन को शामिल किया गया है। जिन बच्चों के पास आधार कार्ड नहीं है उनके माता पिता, रिश्तेदार या अभिभावक के आधार कार्ड का उपयोग किया जा सकता है। विद्यार्थियों को प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन के लिए प्रति उत्तर पुस्तिका 100 रुपए और पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रति प्रश्न 25 रुपए का भुगतान करना होगा। शुल्क का भुगतान केवल UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग जैसे ऑनलाइन माध्यमों से किया जा सकता है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: उत्तर प्रदेश के आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े होने के आरोप में आजमगढ़ से एक युवक को गिरफ्तार किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: यह आतंकवादी गिरोह नौजवानों को अहम व्यक्तियों और संस्थानों की निगरानी करने, उनकी हत्या करने, राजनीतिक दलों के कार्यालयों पर बमबारी करने, सुरक्षा एजेंसियों के कर्मचारियों की हत्या करने और उनके कार्यालयों और मुख्यालयों पर हमला करने जैसे अपराध को अंजाम देने के लिए उकसा रहा था। खुफिया जाँच के दौरान आजमगढ़ निवासी मोहम्मद शेख का पता चला जो इस गैंग से जुड़ा हुआ था। शेख पाकिस्तान और दुबई के फोन नंबरों का उपयोग करके व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जरिए शहजाद भट्टी के आतंकवादी गिरोह से जुड़ा हुआ था। वो अपने साथियों और अन्य लोगों को भी आतंकवादी गिरोह में शामिल होने और गैर कानूनी काम को अंजाम देने के लिए भड़का रहा था। शहजाद भट्टी के गिरोह ने मोहम्मद शेख को एक राजनीतिक पार्टी की महिला नेता को धमकाने और उसकी हत्या करने का काम सौंपा था। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: प्रवर्तन निदेशालय ED मुंबई, सूरत, अंकलेश्वर और राजकोट में 20 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। निदेशालय ने सलीम इस्माइल डोला और उसके सहयोगियों द्वारा संचालित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठित मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले गिरोह के खिलाफ यह कार्रवाई की है। ये कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA 2002 के प्रावधानों के तहत की जा रही है। राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोने की तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। निदेशालय ने विदेश से लाए गए 2 किलो 600 ग्राम सोने को जब्त किया है जिसकी कीमत लगभग 4,20,00,000 रुपए है। खुफिया जानकारी के अनुसार अधिकारियों ने दुबई से आए 2 यात्रियों को पकड़ा। मामले की जांच की जा रही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मध्य प्रदेश के सीधी जिले में 1 वर्ष में

0: प्रसव पूर्व और प्रसव के बाद 53 गर्भवती महिलाओं की कथित मृत्यु के संबंध में राज्य के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। एक मीडिया रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए आयोग ने इस मामले में 2 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। देश भर की 42 उत्कृष्ट पंचायतों को ये पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। आज तेलंगाना का स्थापना दिवस है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर राज्य के लोगों को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि तेलंगाना को समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परिश्रमी लोगों का साथ मिला है। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राज्य समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और जीवंत परंपराओं से संपन्न है। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि तेलंगाना का इतिहास और गौरवशाली संस्कृति साहस, दृढ़ संकल्प और संघर्ष का प्रतीक है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच अमेरिका की मध्यस्थता से हुए संघर्ष विराम पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। समझौते के बाद क्षेत्र में तनाव कम होने की संभावना थी, लेकिन हाल के सैन्य उल्लंघनों से इसकी स्थिरता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। एक रिपोर्ट।
1: ईरान ने लेबनान में इजरायली हमले जारी रहने पर अमेरिका के साथ सभी प्रकार की बातचीत रोक दी है। अमेरिका के साथ किसी भी युद्ध विराम समझौते के लिए ईरान ने लेबनान पर इजरायली हमले रोकने की पूर्व शर्त रखी थी। उसने होर्मुज जल डमरू मध्य पूरी तरह से बंद करने और लाल सागर के मुहाने पर स्थित बाब अल मंदेब जल डमरू मध्य सहित अन्य मोर्चे खोलने की बात कही है। ईरान का कहना है कि लेबनान और गाजा में इजरायली हमले पूरी तरह बंद होने तक अमेरिका से कोई बातचीत नहीं होगी। लेबनान में जारी संघर्ष अमेरिका और ईरान के बीच संभावित विराम समझौते में एक बड़ी बाधा बन चुका है। दुबई से विनोद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
0: नेपाल की सत्तारूढ़ राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेताओं से भी मिलेगा। मुलाकात का उद्देश्य दोनों पार्टियों के बीच लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और जन केंद्रित राजनीतिक पहुंच पर विचारों का आदान प्रदान करना है। घरेलू शेयर बाजार में आज शुरुआती कारोबार में पहले गिरावट और फिर 0.5% से अधिक की तेजी देखने को मिली। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 508 अंक के उछाल के साथ 74,775 जबकि निफ्टी 140 अंक की वृद्धि के साथ 23,523 पर कारोबार कर रहा था। और अब बात खेलों की। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 11 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल तक आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में तेज बारिश का अनुमान है। अगले 2 से 3 दिन तक हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, झारखंड, कोंकण और गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, रायलसीमा, सौराष्ट्र और कच्छ, तेलंगाना और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने सभी वर्गों के विकास के लिए सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति पर जोर दिया। सरकार ने आव्रजन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित किए। पंजीकरण समय सीमा और अपील प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी। और महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए पेश सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

फिल्म यादें से लिया ये गीत। अभी आपने सुना कविता कृष्णमूर्ति, अलका याग्निक, हेमा सरदेसाई के सुरों में। साथियों, आज अभी आप सुनेंगे कार्यक्रम संबंधी सूचना। किसान भाइयों, इस मंगलवार यानी आज दिनांक 2 जून 2026 को शाम 6:15 से 30 मिनट की अवधि में हेलो किसान वाणी कार्यक्रम में आज का विषय रहेगा पशुपालन से जुड़ी है किसान और खेत की समृद्धि। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे डॉक्टर अरविंद कुमार त्रिपाठी। किसान भाई, पशुपालक भाई, पीएच मेंटेनेंस, आप कार्बन नाइट्रोजन अनुपात पर जानकारी, बदलते मौसम में अपने पशुओं की उचित देखभाल जैसे उनका आहार, आवास व्यवस्था और लू से बचाव तथा बरसात से पूर्व टीकाकरण पर जानकारी हेतु हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे डॉक्टर अरविंद कुमार त्रिपाठी। हमारे टेलीफोन नंबर 2530135 पर फोन करके या फिर मोबाइल नंबर 9412225575 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस संबंध में आप सीधे बातचीत कर सकते हैं डॉक्टर अरविंद कुमार त्रिपाठी से। बाहर के श्रोता 0565 कोड अवश्य लगाएं। कार्यक्रम का समय रहेगा आज मंगलवार 6:15 से 6:45 तक। सूचना समाप्त हुई। यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है और इस समय आप आनंद ले रहे हैं सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत के कार्यक्रम का।

अल्तमश फरीदी को भी आपने सुना फिल्म बेजुबान इश्क में। इस गीत के साथ ही सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत के कार्यक्रम को अब हम यही विराम देते हैं। एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में अपराह्न के 3 बज चुके हैं। अब हम इस सभा के प्रसारण यही संपन्न करते हैं। अपनी सायंकालीन सभा में संध्या 5:30 पर फिर आपसे भेंट करेंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: wave of freshness, washing away the scorching summer heat. And referring to mangoes, which are often talked about in summer, the Prime Minister said every region has its own mango, its own flavour and its own aroma. He mentioned different varieties of mangoes such as Langra of Kashi, Alfonso of Maharashtra, Kesar of Gujarat and Himsagar of West Bengal.
1: महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस अल्फांसो गुजरात का केसर ये तो आमरस की जान है उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा बिहार का जरदालू चौसा मालदा हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई है दक्षिण भारत जाइए तो बंगनपल्ली तोतापुरी नीलम मलगोवा बंगाल का हिमसागर उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा यानी जगह बदलती है आम का रूप रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है और साथियों आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है
0: Yes, and heat is not just uncomfortable, it can be dangerous. But the good news is there are simple ways to reduce its impact on our daily lives.
2: बिल्कुल अभिषेक तो बुनियादी बातों से शुरुआत करते हैं जब गर्मी बहुत ज्यादा हो तो हम क्या कर सकते हैं
0: First, stay hydrated, drink water frequently, even if you don't feel thirsty. Avoid going out during peak afternoon hours, usually between 12 p.m. and 4 p.m.
2: इसके अलावा हल्के रंग के ढीले ढाले सूती कपड़े पहनना सबसे सही है साथ ही आप जब बाहर जा रहे हैं तो छाते या हैट कैप का इस्तेमाल करना ना भूलें
0: And what about homes and workplaces? Can they help in reducing heat stress?
2: बिल्कुल अभिषेक दिन में पर्दे बंद रखना रात में क्रॉस वेंटिलेशन का इस्तेमाल करना और बिल्डिंग्स के आसपास पेड़ लगाने जैसे छोटे छोटे कदम बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं
0: And we often forget about checking on others, right?
2: बिल्कुल अभिषेक खासकर बुजुर्गों बच्चों और जो बाहर काम करते हैं एक बार उनका हालचाल पूछ लें तो उनके कई बीमारियों से वो बच सकते हैं गर्मी से बचाव का मतलब है छोटे छोटे समझदारी भरे कदम उठाना

FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। संध्या के 5:30 हुए हैं। अब हमारी दूसरी सभा आरंभ होती है। सभा की शुरुआत में हमारे युवा साथी सुनेंगे अपने दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। साथियों, गर्मी का समय चल रहा है, अभी कुछ दिन से तो मौसम थोड़ा ठीक है, लेकिन आने वाले समय में फिर गर्मी का प्रकोप बढ़ने की संभावना है। गर्मी में विशेष रूप से हीट स्ट्रोक, लू से बचने के लिए हमें कुछ उपाय अवश्य करने चाहिए, जैसे कि तेज़ धूप में निकलने से बचें और खुद को हाइड्रेट रखें, पर्याप्त मात्रा में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स का सेवन करें, हल्के ढीले और सूती रंग के कपड़े पहनें तथा बाहर जाते समय छाते, टोपी और सनग्लासेस का उपयोग करें। कुछ और भी कारण हैं जिनको अगर हम अपनाते हैं तो हम हीट स्ट्रोक से बच सकते हैं, जैसे समय का ध्यान रखें, दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे के बीच बाहर जाने से बचें क्योंकि इस समय धूप सबसे तेज होती है। हमेशा हल्के रंग के ढीले ढाले और सूती कपड़े पहनें ताकि शरीर को पर्याप्त हवा मिल सके। घर से निकलते समय छाता जरूर रखें, सिर और चेहरे को धूप से बचाने के लिए टोपी पहनें और आंखों के लिए सनग्लास का प्रयोग करें। प्यास न लगने पर भी हर थोड़ी देर में पानी पीते रहें। ORS और शिकंजी, सादे पानी के अलावा नींबू पानी, नारियल पानी या ORS का घोल लेते रहें ताकि पसीने से निकलने वाले लवण इलेक्ट्रोलाइट

फैट्स की पूर्ति होती रहे। बहुत अधिक चाय, कॉफ़ी, शराब और अत्यधिक मीठे पेय पदार्थों के सेवन से बचें। ये शरीर में पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन को बढ़ाते हैं। मौसमी फल जैसे तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी आदि खाएं, जिनमें पानी की मात्रा अधिक होती है। एक साथ बहुत ठंडा पानी पीने से बचें, यह पेट में ऐंठन पैदा कर सकता है। सामान या मटके का पानी पीना सबसे अच्छा है। यदि आप धूप में काम करते हैं तो बीच बीच में छांव में आराम करें और शरीर को ठंडा होने दें। हीट स्ट्रोक के कुछ लक्षण हैं, उनको हम अगर पहचान लेते हैं तो हम अपनी सुरक्षा ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे कि लू लगने पर शरीर का तापमान 104 फ़ारेनहाइट यानी 40 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो जाता है और त्वचा लाल और गर्म हो जाती है। पसीना आना बंद हो जाता है। तेज़ सिरदर्द, चक्कर आना और उल्टी आने की समस्या हो सकती है। अगर किसी को हीट स्ट्रोक हो जाए तो तुरंत नज़दीक के क्लिनिक पर जाकर अपने आप को दिखाएं, अपने डॉक्टर से परामर्श करें। मरीज को तुरंत किसी ठंडी हवादार या छायादार जगह पर लिटा दें, ठंडे पानी से स्पंज करें और उनके शरीर पर ठंडा पानी डालें या उन्हें ठंडे पानी से नहलाएं। उनके शरीर पर पानी डालकर पंखे की हवा दें ताकि वाष्पीकरण से शरीर का तापमान कम हो सके। स्थिति गंभीर होने, बेहोशी या भ्रम की स्थिति में तुरंत नज़दीकी अस्पताल में डॉक्टर से संपर्क अवश्य करें। अगर हम इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो हीट स्ट्रोक यानी लू लगने के जो समस्या है उससे अपने को काफ़ी हद तक बचा सकेंगे और अपने आप को सुरक्षित रख सकेंगे।

0: और साथियों, अब आपको सुनवाते हैं ओबी पर आधारित एक भेंट वार्ता, दृष्टि बाधित छात्र गगन राघव से जितेंद्र सिंह की बातचीत।
1: श्रोताओं, मन में कुछ करने का जज्बा हो, आत्मविश्वास हो, दृढ़ संकल्प हो, तो कोई भी ऐसी बाधा, कोई भी ऐसी मुश्किल नहीं है जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने से रोक सकें। आज हमारे कार्यक्रम में एक ऐसे ही खास मेहमान हमारे साथ हैं, एक ऐसे छात्र जिन्होंने दृष्टि बाधित होते हुए भी CBSE बोर्ड परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन किया है और 12th में 95% से भी अधिक अंकों से उन्होंने परीक्षा उत्तीर्ण की है। IIM रोहतक की भी परीक्षा उत्तीर्ण की है और UCL से भी जिन्हें ऑफर लेटर मिला है, उनका नाम है गगन सिंह राघव। तो ये हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत हैं, क्योंकि इससे पता चलता है कि अगर हम एक बार लक्ष्य तय कर लेते हैं और उसको लेकर दृढ़ संकल्पित हो जाते हैं तो जरूर हमको सफलता मिलेगी। आज हम उन्हीं की सफलता पर चर्चा करेंगे और उनसे उनके अनुभव को जानेंगे। तो गगन, सबसे पहले आपका हमारे कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन।
2: धन्यवाद सर।
1: क्या कहेंगे आप अपने प्रदर्शन को लेकर? विशेष रूप से हम आपसे चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप एक तो विजुअली इम्पेयर्ड हैं, दृष्टि बाधित हैं, और फिर भी आपने इतना अच्छा प्रदर्शन किया है और अच्छे अंकों से बोर्ड परीक्षाएं उत्तीर्ण की है, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे?
2: मैं कहूंगा मेरा कोई खास कंट्रीब्यूशन नहीं रहा है इस एग्जाम के लिए। बस कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं कि आपके अंदर अनुशासन कितना है और कंसिस्टेंसी कितनी है। मैंने तो बस दो ही प्रिंसिपल्स फॉलो किए, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। बाकी का सहयोग मेरा स्कूल का रहा, श्रीजी बाबा जैसे मथुरा जिले के प्रतिष्ठित विद्यालय की पूरी टीम का सहयोग रहा, जिसके सहयोग से मैंने क्लास 12th में 95.4% मार्क्स स्कोर किए सर। और फैमिली का भी कंट्रीब्यूशन रहा कि कोई ऐसा प्रेशर नहीं था कि हमें कुछ करना है, मींस ओनली स्टडी पर फोकस था और जो भी सपोर्ट रिक्वायर्ड थी और जितना फैमिली कर पाई, फैमिली ने भी अपना पूरा कॉर्पोरेशन शो किया सर।
1: ऐसी स्थिति में जहां अध्ययन सामग्री तक पहुंच थोड़ा सा मुश्किल होती है, तो कैसे आपने अपनी पढ़ाई जारी रखी और किन माध्यमों का आपको सहयोग मिला?
2: सर संघर्ष तो है क्योंकि सामग्री अवेलेबल तो है नहीं। क्लास 12th के लिए ना ही कोई मेरे पास ब्रेल बुक्स थी और ना ही कोई ऐसी डिजिटल तकनीक थी।

इससे कि मैं अपने टेस्ट को ब्रेल में कन्वर्ट करके पढ़ सकता था। लेकिन ऑडियो लर्निंग और मेरे सिबलिंग्स के सपोर्ट से मैंने जो बुक्स को रीड कराया और टीचर्स के सपोर्ट से जो टीचर्स बोर्ड पर लिखते उसके मैं ऑडियो नोट्स बनाता था, और मेरे मोबाइल ने और यूट्यूब क्लासेस ने भी इसमें काफी कॉर्पोरेशन मेरा शो किया कि जिससे कि मैंने एक अच्छी पढ़ाई की मेनली।

0: एक अच्छी पढ़ाई की, मेनली ऑडियो लर्निंग पर।
1: परीक्षा देने का माध्यम क्या था?
0: सर परीक्षाएं एक राइटर के माध्यम से दिलवाई गईं। जैसे मैंने क्लास 12th की एग्जाम दिया तो क्लास 11th का एक राइटर मुझे अवेलेबल कराया गया। CBSE ने एक प्राइवेट स्पेसिंग मतलब एक पर्सनल रूम दिया था और एक अपना इन्विजिलेटर कि जिससे कि कोई चीटिंग का भी पॉसिबिलिटी ना हो। और वो क्वेश्चन राइटर पढ़ता था, मैं आंसर बताता था और उसने आंसर कॉपी में एज इट इज राइट किए जो मैंने बोले।
1: अपनी दिनचर्या के बारे में कुछ बताना चाहेंगे, किस तरह की आपकी दिनचर्या रही ताकि ऐसे छात्र भी जाने कि एक विशेष प्रदर्शन करने के लिए हमको किस तरह से अनुशासित होना होगा, क्या करना होगा?
0: सर मेरी लगभग 10 से 12 घंटे पर डे की स्टडी थी जिसमें कि एक टाइम फिक्स था मेरा सोने का, जगने का। और स्टडी में मॉर्निंग शेड्यूल मतलब अगर 6 बजे जगने के बाद 7 बजे से 11 बजे तक एक स्टडी सेशन, उसके बाद एक घंटे का ब्रेक, 12 बजे के बाद फिर एक स्टडी सेशन 3 से 4 बजे तक, फिर एक ब्रेक और फिर एक इवनिंग में स्टडी सेशन 7 से 8 बजे तक। इसके बाद आप चाहे रिवीजन कर सकते हैं, अपने आप को फिजिकली एक्टिव कर सकते हैं। मतलब मेरा था कि 3 सेशन लेने हैं ब्रेक के दौरान जिससे कि दिमाग भी ज्यादा थके ना और इन्फॉर्मेशन हम जितनी पढ़ रहे हैं उतनी ऑब्जर्व हो पाए।
1: तो अपने प्रदर्शन को लेकर क्या बताना चाहेंगे, बोर्ड परीक्षाओं में कितने प्रतिशत अंक आपने अर्जित किए?
0: सर क्लास 10th में मेरे 91.2% थे, क्लास 12th में थोड़ा सा इंक्रीज हो गया। और जो मेरा बोर्ड में रिजल्ट रहा उसके लिए ऑडियो लर्निंग और क्लास 10th में तो सर ब्रेल बुक्स थी, लेकिन हाँ डिजिटल डिवाइसेस की कमी शुरू से रही। अगर डिजिटल डिवाइसेस होते जैसे फिर मुझे सैंपल पेपर पढ़ने हैं, सैंपल पेपर्स को भी मैं आसानी से पढ़ सकता था। मुझे PYQ करने हैं, PYQ को आसानी से कर सकता था। रेफरेंस बुक पढ़नी है उन्हें भी आसानी से पढ़ सकता था, लेकिन अब मैं उन सभी रिसोर्सेस तक नहीं पहुंच पाया। अगर उन तक पहुंच जाता तो हाँ जितना मेरा आज स्कोर है उससे भी ज्यादा होता, कई परसेंट ज्यादा होता, क्योंकि पूरा एडवांटेज में ले सकता था, जितना मुझे पढ़ना है उतना पढ़ सकता था। अब सिर्फ मुझे एक माध्यम मिला, वो था ऑडियो लर्निंग। ऑडियो लर्निंग के अलावा दूसरा कोई खास माध्यम में नहीं उठा पाया जिसका लाभ।
1: इसको लेकर और क्या सुधार की आवश्यकता है जिससे कि अन्य जो छात्र हैं उनके लिए जो अध्ययन है वो आगे और भी अधिक सरल और सुगम हो सके?
0: सर मेरा ऐसा मानना है कि एजुकेशन का एक्सेस लोगों को उनकी गरीबी अमीरी के आधार पर ना मिलना चाहिए। एजुकेशन जैसे हमारा भारतीय संविधान शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21A में देता है उसका पूर्णतः पालन किया जाए, जिसके लिए जितने भी छात्र हैं विजुअली इम्पेयर्ड हों, किसी और डिसेबिलिटी से जूझ रहे हों, उन्हें सरकार बुक्स की रिक्वायरमेंट पूरी करे, जितनी बुक्स रिक्वायर्ड हैं उन्हें अवेलेबल कराए, डिवाइसेस जितने रिक्वायर्ड हैं जैसे फिगर्स वगैरह के लिए ग्राफिटी डिवाइस है, रेफरेंस बुक्स के लिए ब्रेल प्रिंटर्स हैं, एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि हर जिले में ये सेंटर है इस पर आपको बुक्स मिल जाएंगी, प्रिंट कोई बुक करानी है आपको इस सेंटर में प्रिंट करा सकते हैं, डिवाइसेस हर विद्यालय में अवेलेबल हो जाएं या ब्लॉक में एक विद्यालय में अवेलेबल हो जाएं, इस तरह का सिस्टम बनाया जाए कि हर छात्र को शिक्षा का अधिकार मिले।
1: आपका जो मनपसंद विषय है वो कौन सा है, सबसे ज्यादा किस विषय में आपकी रुचि है?
0: सर सबसे ज्यादा रुचि है मेरी बिजनेस के अंदर, क्योंकि बिजनेस से मेरा ऐसा मानना है कि आपको अगर समाज का डेवलपमेंट करना है तो आप बिजनेस के साथ आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि बिजनेस से आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा कि एक वर्ग से आप पैसा लेकर दूसरे वर्ग को दे सकते हैं। ये एक ऐसा फॉर्मेट है। बिजनेस में इसलिए नहीं पसंद करता हूं कि बिजनेस से पैसा कमाओ ग्लैमर में जियो, नहीं, बल्कि बिजनेस से आप प्रोडक्ट सेल करें, अपनी कंपनीज को डेवलप करें और चैरिटी करें। मेरे आइडल हैं इसमें सर रतन टाटा।
1: आपको जो UCL से भी ऑफर लेटर मिला है तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे?
0: UCL से सर मुझे ऑफर लेटर मिला है यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन जिसकी QS वर्ल्ड रैंकिंग 9th है। UCL में पढ़ाई करने का मुझे मौका मिले तो मैं अपने भारत माता के लिए एक अच्छी सेवा कर पाऊंगा, अच्छा कंट्रीब्यूशन दे पाऊंगा, क्योंकि मुझे जितनी चीजें चाहिए, दृष्टिबाधित होने की कमजोरी मुझे कमजोरी नहीं लगेगी, क्योंकि UCL के पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर है कि मैं जितना पढ़ना चाहूं जो सीखना चाहूं वो आसानी से सीख सकता हूं और उसे फिर आगे जीवन में इम्प्लीमेंट कर सकता हूं। लेकिन UCL की फीस काफी अधिक है, 75 लाख रुपया प्रति वर्ष है और कोर्स 4 साल का है, तो इस फीस को अफोर्ड करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। बट हाँ कोई NGO, गवर्नमेंट, कोई चैरिटी, एनी कंट्रीब्यूशन क्राउड फंडिंग के माध्यम से अगर मुझे होता

0: है तो फिर यूसीएल से बेहतर कोई प्लेस नहीं है अभी।
1: हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, क्या अपनी बात को उन तक पहुंचाने का अभी तक आपने कोई प्रयास किया है?
0: सर मैंने पीएमओ में बाई हैंड लेटर दिया था, मेल किया है, सीएमओ के अंदर भी मैंने मेल किया स्पीड पोस्ट की, और सर जो भी एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंदर मैंने बाई हैंड लेटर दिया, ईमेल किया, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सर से भी मैं इस मैटर में मिला, लेकिन अभी तक सर कोई रेस्पॉन्स नहीं आया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सर यही कहना चाहूंगा कि गवर्नमेंट अगर मेरी बातों को सुन रही है तो प्लीज थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन शो करें जिससे कि मैं अपना विकास करके भारत माता की सेवा कर सकूं। मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है कि पढ़ाई करके लंदन में रहना है या एक ग्लैमर लाइफ जीनी है, मैं तो बस इंस्पिरेशन बनना चाहता हूं सोसाइटी के लिए।
1: आपने अभी जो IIM की जो परीक्षा भी उत्तीर्ण की है उसको लेकर कुछ बताना चाहेंगे?
0: IIM रोहतक का सर पेपर था तो मैंने पेपर दिया था IIM रोहतक का, उसमें सिलेक्शन हो गया है, उसका इंटरव्यू है, लेकिन IIM रोहतक का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अभी डेवलपिंग फेज में है। डिसेबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी ज्यादा सपोर्ट नहीं है जितनी यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन की तरफ से मिल सकती है डिसेबिलिटी के रूप में। वैसे 12th से सब्जेक्ट अलग होते हैं क्योंकि मेरे पास कॉमर्स थी, मैथमेटिक्स नहीं था, मैथमेटिक्स अलग से पढ़ना पड़ा, रीजनिंग अलग से पढ़नी पड़ी थी, इंग्लिश तो कॉमन होती है तो उसके लिए भी सर एक अच्छी स्टडी की रिक्वायरमेंट तो है ही, क्योंकि लोगों का ड्रीम IIM रोहतक भी है बहुत सारा।
1: आपने बताया कि UCL से जो ऑफर लेटर आया हुआ है और इसके लिए आपने सरकार से मदद मांगने के प्रयास भी किए हैं, अगर ये संभव नहीं हो पाता है तो आगे आपका सफर क्या रहेगा? भविष्य के लिए कुछ अपनी कार्य योजना बनाई हुई है?
0: सर अगर ये संभव नहीं होता है तो फिर किसी इंडिया के इंस्टीट्यूट में तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि जब आपके पास कोई चीज नहीं है तो जो है उसी के साथ कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। बट हाँ फिर भी मैं ट्राई करूंगा कि मैं भविष्य में इन्हीं यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई कर सकूं जिससे कि मैं बस उन चीजों को सीख सकूं जो मुझे यहां सीखने में कठिनाई होगी। मुझे अपनी पढ़ाई को बस उस स्तर पर करना है कि मैं नॉर्मल लोगों के साथ कॉम्पीट कर सकूं
1: जी,
0: जिससे कि मुझे भविष्य में देश की सेवा करने में कोई प्रॉब्लम ना आए।
1: UPSC वगैरह के बारे में भी कुछ आपने सोचा है क्या? उस दिशा में भी जाना चाहेंगे?
0: सर हाँ UPSC के बारे में मैंने सोचा है कि UPSC में मैं प्रयास करूंगा और UPSC में अगर मौका मिला तो देश की सेवा करने की पूरी कोशिश करूंगा सर।
1: हर किसी छात्र की कोई ना कोई एक हॉबी रहती है, आप अपनी कुछ हॉबी के बारे में बताना चाहेंगे?
0: सर मेरी हॉबीज हैं इंटरनेशनल रिलेशंस, इंडियन सोसाइटी, इंडियन क्राइम एंड जियोपॉलिटिक्स। इन टॉपिक्स पर सर मैं एक अच्छा इंटरेस्ट रखता हूँ, जैसे इंडियन क्राइम में क्या चल रहा है, वुमेन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को लेकर क्या है, और भी क्राइम किस स्केल पर पहुँचा, हम इस क्राइम को सुधारने के लिए क्या कर सकते हैं, मेरा खुद का कंट्रीब्यूशन भविष्य में क्या हो सकता है, सरकारें कौन से स्टेप ले सकती हैं पर नहीं लेना चाहती हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल पॉलिसीज में भारत का क्या स्थान है, भारत को कैसे सुधारा जा सकता है, जियोपॉलिटिक्स में अभी हमारा देशों के साथ क्या रिलेशन चल रहा है, इस पर भविष्य में क्या प्रभाव पड़ेगा, जनता की जेब पर इसका क्या इफेक्ट होगा अल्टीमेटली, यही सब मेरे सर टॉपिक हैं।
1: आपके जैसे और भी अन्य छात्र हैं, कोई ना कोई उनके अंदर अक्षमता है, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे?
0: सर इम्पेयरमेंट को अगर आप ये सोच लें कि ये मेरा इम्पेयरमेंट है, मैं कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि आपकी सोसाइटी आपको हमेशा दबाने की कोशिश करेगी। मैं सभी लोगों को नहीं कहूंगा, ह्यूमैनिटी भी है, मुझे भी ह्यूमैनिटी का सहयोग मिला, लेकिन आपके पास बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपको कमजोर बनाएंगे ना कि ताकतवर, तो आप उन सभी लोगों को नजरअंदाज करें और अपनी कमजोरी को पहचाने के मैं कमजोर क्यों हूं, जैसे मैंने देखा कि मैं कमजोर क्यों हूं, तो उसके बाद फिर आप दो प्रिंसिपल सीखें लाइफ में, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। एजुकेशन पर पूरा फोकस करें भले ही रिसोर्स ना मिले, आज तो ऑडियो लर्निंग पॉसिबल है, ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, स्ट्रगल करो बस आगे बढ़ो, जब अच्छा अचीवमेंट होगा तो चीजें अपने आप मिलती चली जाएंगी। मैं निकला तो अकेला मंजिल की तलाश में था, लेकिन लोग मिलते गए और कारमा बनता गया, तो आप बस अपनी मंजिल की तलाश करते रहिए, लोग मिलते जाएंगे और कारमा बनता जाएगा।
1: अगर आपको जो शिक्षा मंत्री हैं या हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री या हमारे प्रधानमंत्री जी सुन रहे हों, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे?
0: सर मैं मैसेज देना चाहूंगा कि जो देश का सबसे मुख्य पहलू है वो है एजुकेशन। मैं हेल्थ से भी ऊपर एजुकेशन को रखता हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर से भी ऊपर एजुकेशन को रखता हूँ, और शिक्षा मंत्री जी, प्रधानमंत्री

0: जी बस ये प्रयास करें कि एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा सबसे ज्यादा मजबूत हो, सबसे ज्यादा एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, हर छात्र को शिक्षा का अधिकार जमीनी स्तर पर मिलना चाहिए। ऐसा शिक्षा का अधिकार कि उसे ये महसूस ना हो कि मैं गरीब हूं या अमीर हूं, मैं ऐसे देश की कल्पना करता हूं।
1: हम भी ईश्वर से यही कामना करते हैं कि जो आपने लक्ष्य तय किया है आप अपने लक्ष्य तक पहुंचे। आपने जो सरकार से मदद मांगी है वो मदद भी आपको जरूर मिले।
0: मैं सभी श्रोताओं से कहूंगा कि आप बस जीवन में एक डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी का प्रिंसिपल बना लीजिए, चाहे आपकी कोई कमजोरी है। मैं ये नहीं कहूंगा कि डिसेबिलिटी कमजोरी है, किसी की आर्थिक प्रॉब्लम भी कमजोरी होती है कि पैसा नहीं है भोजन के लिए, पढ़ाई कहाँ से करें। तो हाँ, सभी प्रकार की कमजोरी होती हैं, उन कमजोरियों को नजरअंदाज करते हुए अगर अनुशासन बना लें, और मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में, कोई भी क्षेत्र हो उसमें अनुशासन बना लें और उसमें आप सबसे ऊपर चले जाएं, बस अनुशासन से आप सबसे ऊपर जा सकते हैं तो आप सफल हैं। जरूरी थोड़ी है कि आपको शिक्षा में ही सफल बनना है, किसी भी क्षेत्र में सफल बना जा सकता है। अनुशासन और कंसिस्टेंसी, दो प्रिंसिपल्स आप हमेशा फॉलो करें, तो मैं मानूंगा कि आपने इस साक्षात्कार को सफल बनाया।
1: तो आपने हमारे श्रोताओं तक अपनी बात को पहुंचाया, इसके लिए धन्यवाद।
0: धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच।
2: अभी आपने ये भेंट वार्ता सुनी दृष्टि बाधित छात्र गगन राघव से जितेंद्र सिंह की बातचीत सुनी। यह हमारा ओबी पर आधारित भेंट वार्ताओं का कार्यक्रम था और आइए सुनते हैं कार्यक्रम में ये संदेश।

अभी हमारे युवा साथी सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम युवावाणी FM 102.2 MHz पर। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। संध्या के 6 बजने को है, अब वक्त है हिंदी समाचारों का। कृपया कुछ पल समाचारों की प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। भारत ने कहा है कि नेपाल और भारत के द्विपक्षीय संबंधों में किसी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने यह बात नेपाल के प्रधानमंत्री की भारत नेपाल सीमा को लेकर टिप्पणी और उसके बाद नेपाल के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान के बारे में पूछे गए सवाल के उत्तर में कही। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% सीमांकन हो चुका है।
1: भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है। सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नो मैन्स लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं, जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं, उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
0: भारत ने जम्मू कश्मीर के बारे में पाकिस्तान यूरोपीय संघ के संयुक्त वक्तव्य में अवांछित संदर्भों को भी खारिज किया। श्री जायसवाल ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग हैं। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिक्स कल से 4 दिन के भारत दौरे पर रहेंगी। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि डेल्सी रॉड्रिक्स के साथ कैबिनेट के प्रमुख मंत्री भी रहेंगे। श्री जायसवाल ने बताया कि वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। ये वार्ता ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा, दवा और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों की खोज पर केंद्रित होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने आज नई दिल्ली में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति शिपोकोसा माशातिले से मुलाकात की। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के साथ दक्षिण अफ्रीका सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी था। दोनों नेताओं ने भारत दक्षिण अफ्रीका द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर सार्थक वार्ता की। म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउ लाइन आज मुंबई पहुंचे। आज शाम लोकभवन में उनके सम्मान में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में वे शामिल होंगे। नेपाल की सत्तारूढ़ राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने आज नई दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। ये मुलाकात भाजपा को जाने कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षा सशक्तिकरण का एक शक्तिशाली साधन है।

ये लोगों को आत्मनिर्भर, जागरूक और सक्षम बनाती है। नई दिल्ली में आज जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सतत विकास तभी संभव है जब समाज के सभी वर्ग सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति करें। केंद्र सरकार ने आव्रजन और विदेशी नियमों में संशोधन की अधिसूचना जारी की है। इसके अनुसार जो विदेशी नागरिक भारत में 180 दिन के लिए आते हैं और अपने वीजा की अवधि बढ़ाना चाहते हैं तो उन्हें वीजा की समाप्ति से पहले ही अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। ये पंजीकरण पहले 180 दिन की अवधि पूरी होने के बाद 14 दिन के भीतर कराया जा सकता था। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, न्यायमूर्ति चंद्रशेखर, न्यायमूर्ति संजीव सचदेव और न्यायमूर्ति अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI ने पिछले महीने 23 अरब 20 करोड़ लेन देन का रिकॉर्ड बनाया है। इस उपलब्धि पर वित्तीय सेवा विभाग ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से नागरिकों को डिजिटल भुगतान को अपनाने के लिए धन्यवाद दिया। दिल्ली की एक अदालत ने नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में 5 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 15 तारीख तक बढ़ा दी है। विशेष न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय गुप्ता ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI की उस याचिका को स्वीकार कर लिया जिसमें मंगीलाल, विकास बिवाल, दिनेश बिवाल, यश कादव और धनंजय लोखंडे की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग की गई थी। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 11 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र है। अप्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। आज रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम मनी टॉक। 9:45 पर होगा कार्यक्रम मंथन। ये दोनों ही कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

संध्या 7:20 पर होंगे प्रादेशिक समाचार और रात्रि 10 आप सुनेंगे राज्य स्तरीय समन्वित कार्यक्रम खेल दर्पण। ये सभी कार्यक्रम हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे।

अब से कुछ ही देर बाद संध्या 6:15 पर आप सुनेंगे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम हेलो किसान वाणी। यह हमारा सजीव फोन इन कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम का संचालन करेंगे वीरेंद्र सिंह और नीलमणि शर्मा। इस कार्यक्रम में आज का विषय रहेगा पशुपालन से जुड़ी है किसान और खेत की समृद्धि। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर अरविंद कुमार त्रिपाठी। श्रोताओ, यदि आप भी इस कार्यक्रम में पशुपालन से जुड़ी है किसान और खेत की समृद्धि विषय पर कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप हमें टेलीफोन कर सकते हैं संध्या 6:15 से लेकर 6:45 के मध्य। हमारा टेलीफोन नंबर है 2530135। मथुरा से बाहर के श्रोता और मोबाइल से डायल करने वाले श्रोता टेलीफोन नंबर से पहले मथुरा का एसटीडी कोड 0565 अवश्य लगाएं। इस प्रकार संपूर्ण नंबर हो जाएगा 0565 2530135।

शाम 6:45 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम संध्या वंदन। ब्रज साहित्य कार्यक्रम होगा संध्या 7:05 पर। इसमें आज आप सुनेंगे भक्त कथा राम भक्त श्री जटायु जी। कथाकार होंगे ब्रजेश शर्मा।

शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम होगा रात्रि 10:30 पर। इसमें आज हम आपको सुनवाएंगे राग मारू बिहाग में धमार गायन। कलाकार होंगे अभय नारायण मल्लिक। पखावस पर इनके साथ संगत करेंगे तोताराम शर्मा।

रात 11 बजे होंगे समाचार हिंदी में, 11:05 पर आप सुनेंगे समाचार अंग्रेजी में। रात्रि 11:10 पर समापन होगा हमारी आज की इस दूसरी सभा का।

अभी आप देशगान सुन रहे थे FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अब आरंभ हुए है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम हेलो किसान वाणी।

0: पहले हम उसकी
1: इतनी ऊंची मजदूरी ले रहे हैं किसान।
2: मनरेगा ने नाश किया।
1: हाँ मनरेगा ने कर दिया,
2: मनरेगा ने नाश किया
1: बिल्कुल।
2: और दूसरा जो है फ्री का अनाज,
1: फ्री का अनाज,
2: ये दोनों चीजों ने देश का बेड़ा गर्क किया।
0: हम जो फसल उगाते हैं काय को उगाते हैं, हमारे जो पेड़ ऑक्सीजन देते हैं वो कहाँ उगते हैं, पानी अगर भर के लाते हैं तो वो भी कहाँ बहता है, धरती पे। इसलिए ओम पृथ्वी देवे च विद्महे सहस्त्र मूर्ते च धीमहि तन्नो पृथ्वी प्रचोदयात। आइए पहले धरती माता को प्रणाम करें, पृथ्वी माता को प्रणाम करें। अभी जो मैंने मंत्र पढ़ा उस मंत्र का अर्थ था हम पृथ्वी देवी को जानते हैं और उनके हजारों रूपों का ध्यान करते हैं। हे माता पृथ्वी हमें बुद्धि दें और हमारे मन को प्रकाश से भर दें। ऐसी धरती माता के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। मेरे भाइयों बहनों बुजुर्गों याद रखो किसान भाइयों, एक जमाना था जब खेत की बोनी पूरी होती थी तो धरती की पूजन करते थे, मच्छेंद्री की पूजन करते थे। याद है क्या कोई को? कई को याद होगा और नई पीढ़ी को तो पता ही नहीं होगा। जब हल से बोनी होती थी तो मुझे जैत का पता है, जैसे ही बोनी पूरी होती थी और हम एक मच्छेंद्री मैया ऐसे बनाते थे और वहां हल लेके आते थे और कहते थे पोर में पानी हर वो लो, और वहां गेहूं डालते हुए जाते थे। और बाद में जब कटाई पूरी होती थी तो अंत में वो गाड़ी में लगाते ले जाते थे, उसको कहते थे छिटकवार। याद है कि नहीं? अरे कहीं को याद नहीं होगा। और जब बोनी पूरी हो जाती थी तो जितने भी अपने मजदूर साथी होते थे जो बोनी में सहयोगी होते थे, घुंघरी गांव में बनती थी घुंघरी, अब तो भैया भूल ही गए घुंघरी, अब तो पिज्जा पास्ता ब्रेड आ गई घुंघरी अपनी, और सबको खिलाते थे। ये हम क्यों करते थे बताओ? ये इसलिए करते थे कि धरती हमारी माँ है, यही तो फसल।

0: फसलें पैदा करती है, यही हमें अन्न देती है, इसी में उगा भोजन हम खाते हैं। अगर धरती माँ अनाज पैदा करने से इनकार कर दे तो बताओ हमारा पेट भर सकता है क्या? जोर से बताओ, भर सकता है क्या? नहीं भर सकता। तो आज जो कार्यक्रम हम कर रहे हैं वो अपनी धरती माता के लिए कर रहे हैं। और क्यों करना पड़ा ये कार्यक्रम मेरे किसान भाइयों? आज धरती की हालत ये हो गई है कि लगातार हमने खाद, पेस्टिसाइड, कीटनाशक दवाई डाल डाल के ऐसी हालत कर दी कि धरती माता बीमार होने लगी। एक सीमा होती है, एक सीमा होती है खाद की। मैं खाद डालने से मना नहीं कर रहा, खाद डालें लेकिन कितना डालें आखिर उसके बारे में विचार करना पड़ेगा। फिर इल्ली मारना है, कीड़े मकोड़े जो फसल में लगते हैं, तो दे स्प्रे, दे स्प्रे, दे स्प्रे, ऐसी हालत कर दी कि धरती माता बेचैन हो गई और अब पुकार के कह रही है मेरे बेटा बेटियों, मैं तुम्हें जीवन देती हूँ, मैं तुम्हारे लिए फसलें पैदा करती हूँ, नदियां मेरे सीने से होकर बहती है जो तुम्हें पानी देती है, पेड़ जो तुम्हें ऑक्सीजन देते हैं वो मेरे पेट पर उगते हैं, लेकिन तुम ये क्यों कर रहे हो? इतना ज्यादा खाद डालोगे, इतना ज्यादा पेस्टिसाइड कीटनाशक दवाइयां डालोगे तो उससे माँ को कष्ट होता है, धरती को कष्ट होता है। और किसान भाइयों, मित्र की जो जीव है कीट, अभी बात कर रहे थे, मुट्ठी भर मिट्टी में अगर माइक्रोस्कोप से देखोगे तो करोड़ों छोटे छोटे जीव है जीव। और ये जीव क्या करते हैं? ये जीव अगर जिंदा रहते हैं तो धरती से पोषक तत्वों को खींचते हैं और फसलों को उनसे आयरन हो, जिंक हो, बोरास हो, अलग अलग तरह के तत्व मिलते हैं, लेकिन हमने पेस्टिसाइड डाल डाल के वो मित्र कीटे मार डाले, उनकी संख्या बहुत कम हो गई। आप देखो पुराने जमाने में जब हम बोनी करते थे तो खेत की मिट्टी कितनी भुरभुरी रहती थी, कितनी। आप बखर डाल के देखो, आप हल डाल के देखो, आप ट्यूबवेल खोद के देखो, भुरभुरी थी, तुरंत गड्ढा हो जाता था। और आज खोद के देखो कितनी कड़ी हो गई है, पानी दे दे के फिर हम जमीन को फिर से खेती के लायक बनाते हैं। तो आज मैं पूरे देश से कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि खाद नहीं डालना है, प्राकृतिक खेती एक उपाय है। बिना ये जो केमिकल फर्टिलाइजर है, रासायनिक खाद है, इसके बिना भी अच्छी फसल पैदा की जा सकती है। लेकिन आज मैं आपसे ये कहने नहीं आया कि खाद नहीं डालना है, आज मैं ये कहने आया हूं कि डालना तो है, लेकिन ये तो विचार कर लो कितना डालना है। हम धरती में पता ही नहीं करते कि कौन से तत्व हैं और कौन से तत्व नहीं है, पता ही नहीं करते और डाल देते हैं। रामलाल डाल रहा है तो श्यामलाल ने उतना ही उड़ी दिया, पिछले बार डाला एक बोरी, कहने लग जा बार डेढ़ बोरी डाल दो, अब डाले जा रहे हैं, कैसे कोई फायदा हो रहा है? ये वैज्ञानिक बैठे हैं, ये सब शोध कर चुके हैं रिसर्च, कैसे खाद डालने से कोई फायदा नहीं होता। कितना खाद डालें तो मिट्टी में कौन कौन से तत्व हैं हमारे ये पता करके डालें, और उसके लिए सॉयल हेल्थ कार्ड, आप में से जो किसान भाई बैठे हैं कौन कौन से कौन कौन के पास वो मिट्टी वाला कार्ड, सॉयल हेल्थ कार्ड कौन के पास है, कोई हाथ उठाए? आपके पास है भैया? एक कार्ड बना है, जैसे अपना परीक्षण होता है ना, आदमी की खून की जांच होती है, भाई बहन कोई भी, और पता चल जाता है फलानी चीज है फलानी चीज नहीं है। तो सॉयल हेल्थ कार्ड अब बना है, बन रहा है, जिसमें अपन ये पता कर लेंगे कि अपने खेत में कौन से तत्व की कमी है।
1: कार्यक्रम सुनने वाले
2: सभी बहन भैया को वीरेंद्र सिंह और नीलमणि
1: की
2: राम राम।
1: राम राम वीरेंद्र भैया, देखो आपने माननीय कृषि मंत्री जी ने कितनी,
2: हाँ शिवराज सिंह चौहान जी देखो अपना संदेश दे रहे हैं, और भैया यही बात बता रहे हैं कि भाई खेती में जितनी ज्यादा हो उतनी ज्यादा जैव खातों को प्रयोग करें,

0: जी रासायनिक खादें भैया उनको प्रयोग कम कर दें, क्योंकि भाई हमारी जो मिट्टी है खेत की वो जैविक खाद थी जो भुरभुरी होगी वही ते उपजाऊ बनेगी।
1: बिल्कुल वीरेंद्र भैया, और देखो खेती और पशुपालन एक दूसरे के पूरक हैं।
0: बिल्कुल।
1: जहाँ प्रकार खेतन को उपजाऊ बनाने के लिए खाद की जरूरत पड़े हैं, बाई प्रकार किसान भैयान को आय बढ़ावे के लिए भी पशुपालन को महत्वपूर्ण योगदान हुए हैं,
0: और का
1: है ना। पशुपालन जो है किसान भैयान के लिए आय को एक स्थायी स्रोत है। गैया है, भैंस है, बकरी है, भेड़ है, मुर्गी पालन किसान जो है दूध, घी, दही, अंडा जो दूसरे उत्पाद बनते प्राप्त करे हैं,
0: बिल्कुल
1: और इन उत्पादन की बिक्री से किसान भैयान की नियमित आय भी मिले हैं,
0: हाँ जी
1: जाते उनके परिवार को जीवन स्तर बेहतर हो। विशेषकर तब जब फसल का ही प्राकृतिक आपदा के कारण प्रभावित है जाए, पशुपालन किसान भैयान को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करे हैं।
0: बिल्कुल
1: दूसरी बात वीरेन भैया, देखो पशुओं से प्राप्त जो गोबर है और जैविक अपशिष्ट खेतन के लिए उत्तम खाद को काम करे हैं, जाति माटी की उर्वरता बढ़े और रासायनिक उर्वरकन पर निर्भरता कम हुए है।
0: कम हो गए
1: और आज के समय में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए पशुपालन की महत्वपूर्ण भूमिका है। पशुपालन जो है ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी बढ़ावे हैं, महिला और युवा भी जहाँ में सक्रिय भागीदारी कर सकें, जाते परिवार के आय में वृद्धि हो गए।
0: बिल्कुल
1: और सरकार भी डेयरी विकास, पशु स्वास्थ्य सेवा और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से पशुपालन को प्रोत्साहित कर रही है।
0: जी
1: आज जो जरूरत है किसान आधुनिक पशुपालन तकनीकन को अपना में पशु उनके स्वास्थ्य को ध्यान रखें, संतुलित आहार दें में और नस्ल सुधार पर ध्यान दें, जाते उत्पादन बढ़ेगा और आय में भी वृद्धि होगी। अब मतलब हम यही कह सके हैं कि पशुपालन केवल एक व्यवसाय ना है, बल्कि किसान भैयान की खुशहाली और खेतन की समृद्धि को आधार है। अगर खेती के संग पशुपालन को भी समान महत्व दिया जाए तो
0: बिल्कुल
1: किसान भैयान की आय स्थिति मजबूत होगी और ग्रामीण भारत आत्मनिर्भर बनेगा।
0: और
1: पशुपालन
0: देखो
1: बढ़ाए आय, खेतन में लाए समृद्धि की इच्छाएं,
0: बिल्कुल
1: है ना।
0: और देखो
1: तो
0: सुनो, आजकल तो ज्यादातर किसानों ने कहा कर रखे हो खेती तो कर रहे हैं पर पशुपालन नहीं कर रहे,
1: ना कर रहे हैं,
0: जबकि खेती और पशुपालन दोनों किसान की आय के दोनों स्रोत हैं।
1: दोनों स्रोत
0: और
1: हैं।
0: चूंकि पशुपालन करेंगे तो भैया उनसे उनको गोबर प्राप्त होगा और गोबर से जो
1: कट्टा
0: है
1: बनेंगे, दुनिया भर की बनते वो होगी, खूब
0: हाँ
1: लाभ मिलेगा भी ना बेचेंगे तो,
0: और का।
1: है ना।
0: तो पहले समय में जो है गोबर से ही जो है कंडा बना के
1: खाद
0: इनते
1: बनती सब कुछ हो, पर
0: हाँ
1: अब समय बदल गए, वो ये पहले वो यू वैसी यूरिया वूरिया नहीं डाले
0: तो आज को
1: तो।
0: कार्यक्रम यही विषय पे आज हमारे संग हैं डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी।
1: हाँ देखो विषय अपने बयान को पता है, अपनी बातन ते चल गई होगी कि पशुपालन से जुड़ी है किसान और खेत की समृद्धि। तो आज हमारे बीच हैं डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी भैया, हमारी फोन लाइन खुल चुकी है 2530-135, और मथुरा त्योहार के श्रोता 0565 कोड लगाए कि अपनी जो भी समस्याएं घर बैठे फोन के माध्यम से पा सके हैं। तो भैया
0: बिल्कुल
1: आपकी जो भी समस्या है तुरंत डायल करें और पामे अपनी समस्या को समाधान आपके अपने कार्यक्रम हेलो किसान वाणी में।
0: वाणी डॉक्टर साहब राम राम साहब
2: राम राम, किसान भाइयों को मेरी राम राम।
0: कार्यक्रम में स्वागत है। डॉक्टर साहब देखो जैसे कि हमारी नीलमणि बहन बताई गई और बातें पहले हमने संदेश सुनियो हमारे जो केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को, तो उन्होंने यही बात कही कि भैया ज़्यादा से ज़्यादा हो तो जैविक खादन को प्रयोग करें और फिर हम खेती के संग संग पशुपालन जरूर करें क्योंकि पशुपालन ही हमारी खेती की समृद्धि को आधार है। तो यह ते संबंधित की चर्चा करते हुए हम आप कार्यक्रम को आगे बढ़ावें तो आपके विचारते यह बात में कितनी सच्चाई है कि पशुपालन जो है खेती की समृद्धि को आधार है।
2: जी धन्यवाद बीरेन जी, और अभी मैं मंत्री जी का वक्तव्य सुन रहा था और वाकई ये सरकार की बहुत सराहनीय पहल है। मैं अपना खुद का अगर व्यक्तिगत अनुभव साझा करूं
0: जी
2: तो मैं अपने जब ये बातें सुन रहा था तो मैं अपने शुरुआती बचपन के दिनों में, मैं आपसे चर्चा भी कर रहा था इस बारे में
0: जी
2: कि किस तरीके से हम लोग पशुपालन से आधारित कृषि खेती जिसको हम करते थे, हमने अपने खुद ही जो है अपने समय में छोटे थे हम जब 7वीं 8वीं तक स्कूल गांव में पढ़ा करते थे,
0: जी जी
2: तो हमें भी याद है दशहरा दिवाली के मौके पे सर के ऊपर गाय का गोबर जो हमारे रखा जाता था पूरी बरसात में 3-4 महीना, उसको घूर बोलते हमारे यहाँ घूरा,
0: घूरा
2: वहाँ
0: हाँ
2: से निकाल निकाल के हम खेतों में डाला करते थे, तभी
0: जी
2: हमें जो है दशहरा और दिवाली पे पटाखे लेने के पैसे मिला करते थे। तो हमें आज उसका महत्व तो हमें याद आया कि उसके बाद हम जब उसको खेत की जुताई हल और बैल की होती थी तो उसकी मिट्टी और उसकी जो खेत की जो फसल होती थी उसकी पैदावार और उसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी तरीके की होती थी।
0: जी
2: हम जिस क्षेत्र के थे वहाँ पे

0: सर शुरुआत में दशहरा दिवाली के बीच में आलू की अगेती आलू, बाद में फिर आलू की ज़्यादातर खेती होती है कैश क्रॉप के रूप में, इसके अलावा गेहूं और सरसों वगैरह सब लगती है तो पूर्वांचल क्षेत्र में। तो उस समय मैंने इस चीज़ को, अभी मुझे याद आया तो मैंने सोचा चर्चा करें, हम जब देखते थे डालते थे तो हमको बहुत सारे गुबड़ैले दिखा करते थे और छोटे छोटे गोला बना करके खेत के अंदर ले जाते थे।
1: बिल्कुल
0: तो गाय का गोबर, भैंस का गोबर जो हमारे यहाँ होता था, इसके अलावा हमारे दादाजी, हमारे पिताजी लोग, चाचा लोग, हमेशा जो भी खेत में गोबर नहीं पहुंच पाता था, गोबर कम पड़ जाता था, तो हमारे गांव में कुछ भेड़ चराने वाले लोग, उनका झुंड होता था, तो मैंने देखा है खुद ही। और गांव के लोग उनको बारी बारी से अपने खेतों में एक एक दो दो दिन के लिए, जब चौमासा खत्म होता है यानी कि पितृपक्ष वगैरह, तो उसके बाद से शुरू करते थे, ठंडानी शुरू होती थी, तो एक एक दो दिन के लिए उन खेतों में भेड़ों को रोका जाता था। उसके बदले में उन भेड़ पालकों को कुछ न कुछ गांव के लोग अनाज या जो भी पैसा, जैसे जिसकी है
1: हाँ,
0: क्षमता,
1: श्रद्धा के
0: उस हिसाब से,
1: अनुसार
0: उस हिसाब से बात करके उनको रखा जाता था।
1: जी।
0: वो भेड़े उसी खेत के अंदर सारी वो वीड्स वगैरह को खाती भी थी, जो उनके खेत के खरपतवार होते थे उनको खत्म भी करती थी,
1: बिल्कुल
0: खराब घास, खराब फसल, जड़ वाली कोई भी जड़ निकल रही कोई चीज, तो वो रात भर दिन भर वहीं रहती थी और खेत में ही वो अपना मल त्याग
1: हाँ
0: करती थी। तो
1: बिल्कुल
0: उनका जो भी मैंगनी वगैरह आती थी उसी खेत के अंदर ही रहती थी,
1: हाँ
0: उससे खेत की उर्वरता बढ़ती थी, फिर जुताई होती थी।
1: बिल्कुल
0: तो ये पद्धति हमने देखी थी। और हमारे उस समय में ज़्यादातर यूरिया और डीएपी ये सब उतना इस्तेमाल नहीं होता था। पैदावार अगर आप देखें उस हिसाब से, आज के समय के हिसाब से, तो जरूर थोड़ा कम रहती थी, लेकिन जो फसल की क्वालिटी होती थी उसका आप अगर असर देखें, मतलब पशुओं के स्वास्थ्य में और इंसानों के स्वास्थ्य में,
1: बिल्कुल
0: उस समय के आप पुरानी पीढ़ी के लोग आप देखें, उनकी स्वस्थ स्वस्थ कितने होते थे,
1: हाँ, आयु लंबी।
0: आयु लंबी, और आज देखिए आप 90 साल 80 साल तक निरोगी शरीर रहता था। इसका बहुत बड़ा महत्व है जो हमारी सरकार ने अभी ऑर्गेनिक खेती की तरफ ध्यान दिया है।
1: तो डॉक्टर साहब, यह विषय पे एक हमारे किसान भैया को जो पूछना चाह रहे हैं। हेलो किसान वाणी,
2: हेलो किसान भाई सर।
1: राम
0: हाँ जी,
1: राम
0: हाँ जी,
1: साहब।
2: राम राम सर। हम रणवीर सिंह बोल रहे हैं सर, गोरखपुर से।
0: बताइए
1: अच्छा
0: बताइए
1: अच्छा
0: बताइए।
1: पूछो जी।
2: आज जो पशुओं से संबंधित सवाल है।
1: हाँ, पशुपालन से जुड़ी है किसान और खेत की समृद्धि, तो पशुपालन कैसे खेत के कार्य जो लाभकारी, या विषय पे आप पूछो कुछ, क्या पूछना चाह रहे हो।
2: दोनों तो एक दूसरे के सर पूरक है। पशुपालन के बिना सर खेती नहीं हो सकती है, खेती के बिना पशुपालन नहीं हो
0: बिल्कुल
2: सकती
0: बिल्कुल
1: हाँ
0: सही
1: हाँ
0: आप कह रहे हैं, बिल्कुल
1: जरूर
0: सही कह
1: जरूर।
0: रहे हैं।
1: तो आज को आपको कहा प्रश्न है, आप कहा जानना चाह रहे हो, कहा पूछना चाह रहे हो, डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं।
2: ठंडी में सर भैंस भी आई थी अभी तक सर हिट, तो जब बरसात हो जाएगा तब तो होगी सर, मौसम डाउन होगा तब।
0: तो देखिए अक्सर भैंसों में थोड़ा सीजनल साइकिल होती है, फिर भी आमतौर पे ब्यात होने के 3 से 4 महीने के अंदर भैंस गर्भाधान कर लेनी चाहिए, ठीक है। अगर किसी कारणवश नहीं हो पा रहा है तो उसको आप एक कीड़े की दवाई दे दें, मिनरल मिक्सचर दे दें, ठीक है, अच्छी कंपनी का कोई मिनरल मिक्सचर, उसको दे करके उसको आप कोशिश करें कि जल्द से जल्द वो हीट में आए। और हीट भैंस में अक्सर एक होती है साइलेंट हीट, जिसको आप पता नहीं कर पाते हो। आजकल हम लोग क्या है कि भैंसा और सांड के पास पशु ले जाना काफ़ी कम कर दिए हैं, और भैंसा और सांड पहले गांव में लोग रखते थे, वो भी एक व्यवसाय का जरिया हुआ करता था लोगों के आय का। तो कुछ लोग 2-4 गांव 10 गांव के बीच में एक आदमी दो आदमी ऐसा काम करते थे जो भैंसा रखते थे या गाय का सांड अच्छी क्वालिटी का रखते थे,
1: बिल्कुल
0: तो उसको जो है गाय भैंस को जो है गर्भाधान के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अब वो पद्धति जबकि जब से आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का प्रचलन ज़्यादा बढ़ा है और पशुपालक भाई चाहते हैं, क्योंकि अब वो दो आदमी तीन आदमी लग करके गाय भैंस को ले जाना, फिर ले आना, फिर भैंस उसमें कूदती है, भागती है, गाय सब कुछ होता है, तो
1: हाँ
0: उसकी अपनी एक समस्या है, क्योंकि मैन पावर की कमी हो गई है। आजकल मजदूर या गांव के लड़के जो भी अपने परिवार के होते हैं वो सब पढ़ने लिखने बाहर चले जाते हैं नौकरी करने। तो जो आपका पशुपालन का अभी जो कमी आई है उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि ग्रामीण क्षेत्र में युवाओं का भागीदारी और युवाओं का पलायन जो हो रहा है ग्रामीण से रोजगार के लिए,
1: जी
0: व्यवसाय के लिए, ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण जो है अभी हमारे ग्रामीण अंचल में पशुपालन की स्थिति थोड़ी सी कम हो गई
1: कम हो
0: है।
1: गई है।
0: अगर आप 30, 35 साल, 40 साल अपने बचपन के दिन हम याद करें तो उस समय तो काफ़ी ज़्यादा था। हम अपने समय में
1: दस
0: अपने,
1: दस बीस बीस
0: हाँ
1: पोहे
0: बीस बीस
1: रखते
0: तीस तीस, जिसमें
1: हैं।
0: जानवर इतने होते थे, हम लोग कभी कभार ऐसा लगता था कि उनको लेकर के चराने जाते थे या कभी खाली खेत में निकल गए
1: हाँ,

0: घर में पानी
1: वहां
0: पिला के
1: पोखर में
0: लाते
1: पानी,
0: हैं।
1: वो सारी चीजें होती थी। तो अब हम अपने यहां खुद के देख रहे हैं, आज के दिन में एक से ज्यादा पशु रख पाना संभव नहीं हो
0: नहीं
1: रहा
0: हो
1: है,
0: रहा है।
1: क्योंकि तब स्थिति अलग थी, अब स्थिति अलग है। खेत की जोत हो गई कम, इसके अलावा युवा घर पे है नहीं, बुजुर्ग हैं या कोई सिंगल एक व्यक्ति है, घर में तीन भाई हैं तो तीन में एक ही परिवार में एक ही आदमी कुल गांव में रह रहा है, तो उसके भी बच्चा, कोई एक बच्चा है, किसी का दो बच्चे हैं, तो वो भी पढ़ने लिखने में लगे हुए हैं।
0: बाहर
1: तो
0: चले
1: ये
0: गए हैं।
1: सारी समस्याएं हैं जो ग्रामीण अंचल में पशुपालन को कम करने में जिम्मेदार हैं आज के समय में।
0: बिल्कुल।
1: अब समय ये है कि हमें ग्रामीण अंचल में ही आय का जरिया बढ़ावा देने के है, तो हमें एक प्राकृतिक खेती की तरफ और इसके अलावा हमें पशुओं का महत्व
0: हाँ
1: खेती में बढ़ाने की आवश्यकता है।
0: बिल्कुल।
1: समय आ गया है, हम सबको इसके बारे में सोचना होगा, सभी किसान भाइयों को सोचना होगा, ताकि हम अपनी धरती माता की उर्वरता बना के रखें।
0: डॉक्टर साहब
1: और
0: एक भैया लाइन पे। हेलो किसान वाणी।
2: हेलो किसान वाणी,
0: हाँ राम राम जी, कहाँ से बोल रहे हैं?
2: मैं नासिर खान बोल रहा हूँ, मंडियारा तहसील कामा जिला डीग से।
0: अच्छा जी, बोलो,
1: बताइए
0: कहाँ पूछना चाह रहे हो?
2: सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ, मतलब जैसे भेड़े हैं, बकरियां हैं, भैंस हैं, गाय हैं, सर ये मतलब हमारे पास में हो और हम उससे बेहतर खेती करें, कैसे करें, डॉक्टर साहब से पूछा थोड़ा।
0: हाँ बिल्कुल, बता रहे डॉक्टर
1: देखिए,
0: साहब।
1: अभी हम इसी बारे में चर्चा कर रहे थे कि पशुओं में हमारा अगर देखें तो चार मेन प्रमुख पशु हैं जो हमारे देश में आमतौर पे किसान भाई या पशुपालक भाई पालते हैं, गाय, भैंस, भेड़ और बकरी।
0: बिल्कुल।
1: ठीक है, अगर इन चारों को, इसके अलावा पोल्ट्री का भी अपना है, पोल्ट्री की बहुत ज़्यादा आजकल ज़रूरत है, पूरे देश में प्रोटीन की ज़रूरत है, सिर्फ दूध से ही काम नहीं चलना है, हमारी जो आबादी है, जिस तरह की रिक्वायरमेंट है दूध।
2: हेलो,
1: हाँ जी, हाँ जी,
0: हाँ सुनो, बता रहे डॉक्टर साहब आपको।
1: तो पशुपालक भाइयों को ये हमारा है कि सुझाव है कि आप कोशिश ये जरूर करें, अगर आप गाय भैंस संख्या आप पास ज़्यादा नहीं पाल सकते, तो भेड़ बकरी का पालन, खास करके बकरी का पालन अगर आप आज शुरू करते हैं। बकरी में सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, मुर्गी पालन में भी सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, गो पालन में तो है ही, और
0: बिल्कुल।
1: गो पालन में आप कोशिश जरूर करें कि हम अपनी जो देश की जो ब्रीड्स हैं, देसी गोवंश,
0: देसी गाय।
1: भले वो आजकल सरकार ने कोशिश की है कि उसको अच्छी क्वालिटी का सीमन उपलब्ध कराने की, देसी गायों में ही उनका खान पान भी अच्छी तरह आप करें तो वो भी आपको 8 से 10 12 लीटर दूध दे रही हैं। संकर नस्ल की जो गायें हैं वो बनने से बीमारियों के प्रति इतनी ज़्यादा ससेप्टेबल हैं, वो इतनी बीमारियाँ उनके अंदर आती हैं, जो दूध का पैदावार अगर 2 लीटर ज़्यादा है तो निश्चित तौर पर वो मान के चलिए उसको रिप्रोडक्टिव या बच्चेदानी संबंधी बीमारियाँ होती हैं, इसके अलावा तमाम ब्लड प्रोटेजन डिजीज होती हैं, वो इन्फेक्शन के लिए उनकी इम्यून सिस्टम हमारे देश के हिसाब से ढला नहीं है। मौसम परिवर्तन आप देख रहे हैं, कितना तीव्र गर्मी पड़ रही है,
0: बिल्कुल जी।
1: बाहर की नस्ल कोई भी हो, हाइब्रिड अगर आप क्रॉस भी कर लेते हैं तो पशु का स्वास्थ्य तो उसका आधा जीन तो आ ही गया, अगर वो 2 जनरेशन चला तो 70% 75% पहुंच गया। तो आप धीरे धीरे अगर आप देखें, जो पशु जिस ब्रीड ठंडे प्रदेशों के लिए उपयुक्त है, उसको हम अपने उत्तर भारत में या गर्म प्रदेशों में जहाँ ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, उमस और गर्मी ज़्यादा है, वहाँ पे वो सर्वाइबिलिटी, उसकी हेल्थ एस्पेक्ट सब अफेक्टेड होगा।
0: बिल्कुल।
1: तो अगर वो हेल्दी नहीं रहेगी तो प्रोडक्शन सही नहीं देगी। तो हमारे पशुपालकों से हमें यही, हमारा यही अनुरोध है, आप कोशिश करें देसी गोवंश को इस्तेमाल करें, हो सकता है आपको थोड़ा पैदावार कम आए, लेकिन निश्चित तौर पर आप मान चलिए स्वास्थ्य भी ज़रूरी है। ठीक है, हमें भविष्य में अगर इस चीज़ों को हमें आगे चल के अपने देश को आगे बढ़ाना है और बचाना है और स्वस्थ भी रहना है सबको, तो जैविक खेती, खास करके पशुपालन का महत्व, तो जैविक खेती में
0: बिल्कुल।
1: बिना पशुपालन के जैविक खेती संभव ही नहीं है। और आप बाजार में चले जाइए, किसी भी प्रोडक्ट पे आप देखिए ऑर्गेनिक के नाम पे कितना रेट ज़्यादा मिल रहा है।
0: और क्या।
1: अगर अरहर की दाल 200 रुपया किलो मिल रही नॉर्मल, तो ऑर्गेनिक निश्चित 240 250 या 300 रुपए तक मिल रही है, उसके पैकेट ये लगा रहे हैं,
0: बिल्कुल।
1: और वो सर्टिफाई भी कराई जा रही है कि प्योरली ऑर्गेनिक है, और उसका रेट भी किसान भाइयों को ज़्यादा मिल रहा है। आप किसी फल फूल कहीं भी चले जाइए, आपको ऑर्गेनिक का पूरा सेक्शन बना हुआ है।
0: बिल्कुल।
1: तो अब उसका मतलब एक तरह से डिमांड ज़्यादा है, लोग को जागरूकता भी बढ़ रही है, जो कंज्यूमर्स हैं वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने की तरफ जागरूक हो रहे हैं, वो चाहते हैं कि हम स्वास्थ्य के लाभ को देखते हुए।
0: और डॉक्टर साहब देखो, एक छोटा सा उदाहरण ले लें कि अब आलू पे ही ले लें। आजकल लोग आलू में जो है प्रति बीघा में, छोटे बीघा की बात करें तो दो दो कट्टा वाके

0: डीएपी के यूरिन के डाल रहे हैं।
1: बिल्कुल
0: अब
1: बिल्कुल
0: जब आलू जब खुद के आवे वहां को स्वाद देखो, कोई स्वाद ना है वहां,
1: बिल्कुल कुछ नहीं है, कुछ नहीं
0: ऐसा
1: है।
0: हो जाए ले ही सी बन जाए।
1: अब आप इसके बारे में बात करें फर्टिलाइजर की, केमिकल्स की, तो केमिकल फर्टिलाइजर क्या करते हैं, देखिए सल्फेट और जिंक और नाइट्रोजन तीन मुख्य है जो फर्टिलाइजर इस्तेमाल होती है,
0: जी
1: बाकी डायमोनियम फास्फेट वगैरह है। तो फास्फेट, सल्फेट और अगर आप देखें तो नाइट्रोजन, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि अल्टीमेटली धरती के अंदर जो मिनरल्स हैं और जो चाहे फसलों के लिए, भाई फसल तभी ग्रो करेगी जब उसको धरती माता से अच्छी तरीके से प्रचुर मात्रा में अच्छी तरीके से मिनरल्स प्राप्त होंगे,
0: हाँ बिल्कुल।
1: और तभी फसल भी हेल्दी रहेगी, और उसको खाने वाले चाहे पशु हों चाहे इंसान हों
0: इंसान हो।
1: उनका स्वास्थ्य भी, कि हम लोग जो मिनरल्स पाते हैं धरती से और पानी से उस पे सब पे असर पड़ रहा है केमिकल्स का, या ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का, या रासायनिक खादों का इस्तेमाल करने से,
0: बिल्कुल।
1: पेस्टिसाइड करने से। ये बकायदा वैज्ञानिक तौर पे प्रूव किया गया है कि जिस जमीन में ज़्यादा नाइट्रोजन, ज़्यादा सल्फेट और ज़्यादा फास्फोरस का इस्तेमाल होता है, उसमें कैल्शियम की कमी, आयरन की कमी, जिंक की कमी, ठीक है, कापर की कमी, कोबाल्ट की कमी,
0: बिल्कुल
1: ये मुख्य जो ट्रेस मिनरल्स हैं, अल्ट्रा ट्रेस, जो ट्रेस मिनरल्स बोलते हैं, जो बहुत ही कम मात्रा में जरूरी होते हैं, खासकर कापर, कोबाल्ट, आयरन, जिंक, मैंगनीज, ये सारी, क्रोमियम, ये सब ऐसे ट्रेस मिनरल हैं जिनकी जरूरत शरीर के अंदर बहुत कम मात्रा में है, लेकिन शरीर की जितनी भी मतलब मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है, मेटाबॉलिक प्रोसेस जिससे शरीर में ऊर्जा बनती है, जिस
0: बिल्कुल
1: शरीर चलता है, उन सबको, जिसे हार्मोन्स काम करते हैं, तो शरीर को चलाने के लिए जो माइन्यूट क्वांटिटी में ट्रेस मिनरल, जिनको बहुत बहुत सूक्ष्म मिनरल तत्व जिनकी रिक्वायरमेंट है, वो एक बार लगता तो नहीं है कि हमारा जो स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया है, लेकिन वो लंबे समय तक अगर वो कम मात्रा में मिलें या शरीर में उनकी मात्रा कम हो जाए, तो उसका दुष्परिणाम शरीर में बहुत घातक होता है
0: अच्छा
1: जो।
0: डॉक्टर साहब, यहाँ आप बीच में एक बात पूछना चाह रहे हैं कि जैसे आप बहुत से किसान भैया पशु ना पाल रहे, और उनको जी मन में कि भैया हम पशुपालन करेंगे या तो गाय रखेंगे या भेड़ बकरी रखेंगे, तो छोटे स्तर पे अगर कोई किसान छोटे स्तर पे अगर गाय को पालन करना चाहे तो कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जाती वो शुरुआत करें, और कैसे कैसे वह अनुदान कहूँ तो मिले वो, तो यह पे थोड़ा प्रकाश डालें।
1: देखिए गोपालन या आप भैंस, भैंस में तो सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है, गोपालन में है,
0: जी
1: बकरी पालन में है, और अपने प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में अगर देखें तो, और पोल्ट्री में,
0: जी
1: तीन में
0: जी
1: जितना मुझे जानकारी है उत्तर प्रदेश सरकार की,
0: जी
1: तो उसमें नंद बाबा भी योजना इनकी चलती है। अगर
0: हाँ
1: आप अपने मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय में संपर्क करें, वहाँ से संपर्क करके
0: जी
1: जितनी भी प्रदेश सरकार की गोवंश से रिलेटेड या गोट से रिलेटेड, बकरियों से रिलेटेड और मुर्गियों से संबंधित जितनी भी योजनाएं हैं, उनका किसान भाई लाभ ले सकते हैं,
0: जी
1: और वो ले करके निश्चित तौर पे इसकी तरफ लोगों को बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी ने कई सारी अच्छी योजनाएं चलाई हैं, तो वो अच्छी नस्ल के देसी गोवंश के लिए भी है, नंदबासा बाबा दुग्ध मिशन जितना मुझे याद आ रहा है,
0: जी
1: इसके अलावा मुर्गी के संबंध में भी अभी बहुत बड़ी एक कॉन्क्लेव हुई है उत्तर प्रदेश सरकार ने की है, जिसमें बहुत सारे पोल्ट्री फार्म, उत्तर प्रदेश में अंडे की बहुत जरूरत है,
0: हाँ
1: अंडा हमारा ज्यादातर आंध्र प्रदेश से आ रहा है,
0: जी
1: तो अगर हम बैकयार्ड पोल्ट्री फार्म भी किसान भाई हमारे शुरू करें, दो दो 400 400 मुर्गी रख करके अपने घर में, नहीं छोटा, छोटे से स्टार्ट करें,
0: हाँ
1: 10 20 25 आसपास के लोग शुरू कर देंगे, एक गांव से पर डे कम से कम 1000 1500 2000 अंडे ले सकते हैं, अपने घर के बाहर भी आप घेराव बना करके, जाली लगा करके, आप आराम से छोटे मोटे हमारे दाल, दलिया, मक्का, ये सब हर
0: हाँ
1: जगह उपलब्ध, हर गांव में उपलब्ध है, तो मक्के के आप और गेहूं की दलिया, ये सब तमाम आप लेकर के उनके फीड भी अपना तैयार कर सकते हैं, और उससे आप मुर्गी पालन को बढ़ावा दें और बकरी पालन को बढ़ावा दें,
0: एक भैया लाइन पे।
1: तो
0: हेलो किसान वाणी,
2: नमस्कार सर।
1: नमस्कार
0: नमस्कार जी,
1: नमस्कार,
0: कहाँ से बोल रहे हैं, शुभ नाम बताओ।
2: भरतपुर से राजस्थान।
0: अच्छा, क्या पूछना चाह रहे हो, पशुपालन और खेती से संबंधित कछु?
2: हमारी 7 महीना है गई, अब क्या खुराक दूंगा।
0: दोबारा बताओ, समझ में नहीं आई, गाय का है गई?
2: ऐसी आया 7 महीना की पड़िया, काम ही हो गई, अब क्या खुराक दूंगा सर में।
0: अच्छा,
2: और
0: 7 महीना की है गई पड़िया, है ना, बता रहे डॉक्टर साहब।
1: हाँ देखिए, आप अपनी पड़िया को, कोशिश ये करिए, पहली ब्यांत की है,
2: आप चली जाए।
1: हाँ थोड़ा सा उसको चूनी चोकर, और कोशिश करिए दलिया, गेहूं की दलिया कम से कम मात्रा में 250 ग्राम से स्टार्ट करिएगा दलिया, अगर उसको थोड़ा सा आप अगर दरदरा करके, अगर बॉयल करके देंगे तो और अच्छी बात है, इसके अलावा

बहुत आप उसको खल भी दे सकते हैं, चाहे आप बिनौला की दें, चाहे आप सरसों की दें, ठीक है, और सानी बना के जरूर खिलाएं, हरा चारा जरूर उपलब्ध रखें। चाहे आपको कुछ नहीं, इसमें दूब घास खूब मिलती है, दूब घास, नेपियर ग्रास आप लगा सकते हैं, उसकी बड़ सरकार दे रही है, उसको आप इस्तेमाल करें। बरसीन चलो आपको 4-5 महीने मिलती है, बाकी आप चरी की खेती, चरी को जब आप इस्तेमाल करें तो कोशिश ये करें, चरी सुबह सुबह जब किसान भाई काटते हैं

0: चरी सुबह सुबह जब किसान भाई काटते हैं तो उसके बाद उसको जरूर थोड़ी देर हवा दे दें, काटने के बाद या चॉप करने के बाद, क्योंकि चरी के अंदर ऊपर जो पत्तियां होती हैं उसमें जहर रहता है और वो साइनाइड कंटेंट उसमें ज़्यादा होता
1: जो
0: है।
1: लिपट जाए कहाँ।
0: हाँ, तो वो कोशिश जरूर करें उसको, हवा हवा ही एक जरिया है, जो हवा में सूख जाएगी तो ओस की बूंदें जो होती सुबह सुबह वो हट जानी चाहिए, क्योंकि नई पत्तियों में ही नरम रहती हैं, उनमें खूब रहता साइनाइड कंटेंट। और ख़ास करके जैसे बारिश हो रही, भी सूखा पड़ेगा, सब बढ़ेगा, तो पशुपालक भाइयों को जरूर ध्यान रखना है, चरी की पॉइजनिंग जो होती है, जो अक्सर किसान भाई या उनके पशुओं में नुकसान होता है, पशु मर भी सकता है, तो उससे बचाव करने के लिए चरी अगर आप इस्तेमाल करें सारघम की, जो आप ज्वार वाली इस्तेमाल करते हैं हम लोग, तो उसमें जब सुबह काटें, काटने के बाद अगर आप उसके थोड़ा हवा दे दें, खोल के उसको बंडल रख दें, अगर चॉप कर लिया है, टुकड़े काट लिए हैं छोटे छोटे, तो उसको खुला धरती में फैला दें या
1: हवा
0: किसी,
1: निकल जाए
0: हाँ, किसी
1: वहां।
0: बोरे पे या किसी पॉलीथीन पे, ताकि खुला होकर सूख जाए, वो उस खत्म हो जाए, तो जहर खत्म हो जाएगा हवा के साथ,
1: बिल्कुल।
0: तो फिर खिलाएं तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। हरा चारा
1: ज्यादातर किसान
0: बस।
1: भैया जी करें कि कूट के डाल दो चारों कोने में और
0: हाँ
1: ले गरम गरम भपका ले कर रहो
0: हाँ
1: वामते और ले लड़ामणि में डाल
0: वो
1: दो।
0: कभी ना करें, पशुपालक भाइयों को मेरी सलाह है, कभी भी ना करें
1: अच्छा,
0: गलती।
1: एक भैया और पूछना चाह रहे हैं कछु। हेलो किसान वाणी।
2: हेलो,
1: राम
0: हाँ जी,
1: राम
0: हाँ
1: जी।
0: बताइए।
2: हेलो डॉक्टर, नमस्कार।
0: नमस्कार नमस्कार।
2: आगे मैं तकबीर बोल रहा हूँ, जरीपुरा से, जनपद हाथरस।
1: हाँ जी,
0: हाँ
1: बोलो साहब, बोलो।
2: हाँ डॉक्टर, हम ये बात पूछना चाह रहे हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया अभी ऑर्गेनिक खेती के बारे में, खेती हम कोई सी भी करें लेकिन सभी समस्या थोड़ी विपणन की भी आती है, या पशुपालन करें या बकरी पालन करें,
0: जी
2: तो ये
0: बिल्कुल बिल्कुल
2: विपणन की भी बहुत बड़ी समस्या है।
0: बिल्कुल बिल्कुल
2: और ये ऑर्गेनिक खेती हम कैसे करें कि थोड़ा उन्हें विस्तार से जाके क्या क्या कठिनाइयां हमें, क्या क्या समस्या हमें,
1: जी।
2: थोड़ा उनको निवारण हो।
0: देखिए, अब सरकार धीरे धीरे कोशिश कर रही है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस FPOs के तौर पे, किसान भाई अगर आप देखें कोऑपरेटिव, जैसे आप गुजरात का एग्जाम्पल लें, हमारे देश में गुजरात है और कुछ प्रदेश हैं जहाँ पे कोऑपरेटिव के तौर पे लोगों ने खेती और पशुपालन को आय का जरिया बनाया है और समृद्धि का जरिया बनाया है। कहीं न कहीं ग्रामीण अंचल में गांव लेवल पे सबको जुड़ के, और सरकार भी सहकारिता को एक मिशन मोड में शुरू कर रही है, और आपके जितने भी जिले में कार्य अधिकारी हैं, चाहे पशुपालन के हों चाहे कृषि के हों, इन सब से आपका एक पॉजिटिव तरीके से किसान भाइयों का ग्रुप आकर के इनसे चर्चा करे, किस तरीके से, जैसे आप वितरण की बात कर रहे हैं, मार्केट तक किसान का प्रोडक्ट पहुंचे कैसे और किसान को आमदनी मिल जाए समय से, ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, एक तो प्रोडक्शन, उसके बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन और उसका फिर इनकम, तो ये दो तीन चीज़ें हैं जो जुड़ी हुई हैं। किसान मेहनत करके पैदा तो करेगा, सरकार कोशिश कर रही है कि उनके लिए मंडियां हैं, चाहे फल मंडी हो, चाहे दूध के लिए, आप देखिए धीरे धीरे डेयरी, कई कई सारी डेयरी उत्तर प्रदेश में आने जा रही हैं। हमारे प्रदेश में पहले पराग के नाम से कोऑपरेटिव चली थी, लेकिन वो किसी कारणवश वो सफल उतनी हो नहीं पाई। तो देखिए, थोड़ा ईमानदारी से और जुड़ के अपना ही मान के चलना पड़ेगा पशुपालक भाइयों को, और अगर आपको लंबे समय में वाकई चाहते हैं कि आप खेती के साथ पशुपालन के साथ समृद्धि, समृद्धि तभी आएगी जब गांव का किसान, पशु पशु और किसान भाई और जो युवा हैं वो ग्राम गांव में रह के आय का जरिया बनाएंगे, तो
1: बिल्कुल।
0: खेती भी साथ में और साथ में पशुपालन अगर जोड़ के इस्तेमाल करें और एक कोऑपरेटिव मूवमेंट के रूप में और सरकार के सहयोग से या अपने व्यक्तिगत स्तर पे किसान भाइयों का समूह बना के, निश्चित तौर पे आपके आय में वृद्धि होगी और भविष्य इसी का है आज के ज़माने में।
2: हेलो, हाँ
3: बहुत ही
2: डॉक्टर,
3: अच्छी बात डॉक्टर साहब ने बताई है वीरेंद्र
0: हेलो। हाँ
2: भैया।
0: जी, हाँ जी, बताइए।
2: हाँ डॉक्टर साहब, एक आप अपना मोबाइल नंबर और सर बताएं,
0: हाँ
2: तो
0: जी,
2: जाते ये मोबाइल नंबर हम ये आकाशवाणी से ये गुजारिश करेंगे कि किसी भी लाइव प्रोग्राम हो तो प्रत्येक डॉक्टर साहब का हमें मोबाइल नंबर जरूर बताएं।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब बता रहे हैं,
0: आप नोट कर लिए, 9412 33।
1: अरे उन्होंने काट दो, बोलते रहो आप।
0: 9412 33 6092, ठीक है।
1: बिल्कुल, तो
3: भैया आप ये फोन अपने डॉक्टर सामने दियो है, समय को ध्यान रखें, डॉक्टर साहब को भी अपनों काम रहे है, तो ये ना है कि बे समय ही फोन मिला दियो, समय पे ही मैंने फोन मिला मैं।
1: जी
3: अब जैसे कि हमारी बात चली है थी कि पशुपालन और खेती को संग किसान अभियान की तरक्की के रंग, पशुपालन अपनाएं खुशहाली और समृद्धि पाएं, आज का विषय है तो पशुपालन से जुड़ी है किसान और खेत की समृद्धि, तो अभियान ने जानकारी ली, अपनी समस्याओं को समाधान पायो, और क्योंकि हमें समय को भी ध्यान रखना है तो आज विशेषज्ञ डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी
1: बिल्कुल,
3: और समय सीमा को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम को दम राम
1: सभी किसान
3: राम
1: भैया को राम राम,
3: राम।

0: अभी आप सुन रहे थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम हेलो किसान वाणी FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अब आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम संध्या वंदन। पहले सुनते हैं अदनान सामी और साथियों को, फिल्म है बजरंगी भाईजान।
1: तेरे दरबार।

0: रघुनंदन पानी शिखर की आवाज़ और साथियों की आवाज़ों में अभी आपने ये पारंपरिक भक्ति रचना सुनी। इसी के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम संध्या वंदन अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है, ब्रज साहित्य कार्यक्रम। यह कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा में भक्त कथा राम भक्त श्री जटायु जी, कथाकार हैं ब्रजेश शर्मा।
1: ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम भक्ता विलास पूर्णाय यत् करो प्रस्फुटांजलि अशेष सिद्धि दातारं वंदे श्री बाके विहारणं। श्री प्रियादास जी

विरचित श्री भक्तमालते श्री जटायु जी की कथा को वर्णन श्री नाभाजी सुना रहे हैं। पक्षीराज जटायु गरुड़ जी के बड़े भाई अरुण जी के बेटा थे। इनमें बुद्धि बल विवेक और साहस पराक्रम विशेष हतो। इनके बड़े भाई संपाति के संग ही युवावस्था को एक अद्भुत प्रसंग आवे है। हम दो बंधु प्रथम तरुणाई गगन गए रवि निकट उड़ाई तेजन सहिसक सो फिर आवा मैं अभिमानी रविनीय रावा जरे पंख अति तेज अपारा परे उ भूमि घर को रुचिकारा परे उ भूमि घर घोर चिकारा। सूर्य तक पहुंचवे की उड़ान में असह्य तेज के कारण संपाती को पंख जरवे की दुर्दशा झेलनी पड़ी। जटायु तो पहले ही लौट पड़े और दंडकारण्य में पंचवटी के वन में निवास करने लगे। इनकी अयोध्या नरेश चक्रवर्ती महाराजा धीराज श्री दशरथ जी के संग मित्रता थी। एक बार जब शनि कृतिका नक्षत्र के अंत में हते तब विद्वान ज्योतिषी बोले, अब शनिश्चर रोहिणी नक्षत्र को भेद के जाकू सकट भेद कहें यागो फल देव दानवन को भयंकर 12 वर्ष के लिए पृथ्वी पर दुर्भक्ष पड़ेगो। तब तो राजा दशरथ जी ने वशिष्ठ आदि ब्राह्मण को बुलवाए के जा शनि के परिहार को उपाय पूछो। तब सब विद्वान ब्राह्मण एकत्रित भए और बोले, हे राजन, ये तो ब्रह्मादि देवतन के ताई असाध्य है, जाको कोई भी परिहार ना आए। ये सुन के तो राजा दशरथ जी परम साहस धारण करके एक दिव्य रथ पे अपने दिव्य अस्त्र के संग ही सूर्य के 1.25 लक्ष ऊपर नक्षत्र मंडल में गए। वहां रोहिणी नक्षत्र पृष्ठ भाग में बैठे हुए शनि को देखो और धनुष पे बाण लक्षित करके सहस्त्रार्थ को चढ़ाए के कर्ण पर्यंत प्रत्यंचा खींची, परंतु बाहरे शनि दृष्टि मात्र ते ही राजा दशरथ जी को रथ भस्म है गयो। राजा आकाश से गिरवे लगे। इतने में ही जटायु पहुंच गए और अपनी पीठ पे सावधानी ते बैठा लीनो। तब राजा ने फिर से धनुष्वाण समारो और शनि को ललकार भी लगे सामनो कियो। शनि हृदय में डर गए, ऐसो पराक्रमी राजा आज ते पहले हमने पृथ्वी पर कोई ना देखो। तब तो वीरता पर शनि भारी प्रसन्न हुए और राजा दशरथ जी दे बोले, तुम वर मांगो। मोते वर मांगो, मैं तुम्हारी वीरता पर भारी प्रसन्न हूं। राजा दशरथ जी बोले, आज के बाद हे शनि देव, तुम कबहू सकट भेद नहीं करोगे या संकट को नहीं डालोगे 12 वर्ष के लिए पृथ्वी पे। शनि बोले, ऐसो ही होगो एम वस्तु। तब राजा ने शनि की भारी स्तुति करी, प्रार्थना करी, वंदना करी। वाते शनि देव बहुत प्रसन्न भए और बोले, राजन, तुम्हारी या स्तुति को संसार में जो भी पुरुष बाँचेगो, पढ़ेगो, वंदना करेगो, पूजा करेगो, बाकू मेरी कोई बाधा ना व्यापेगी। तब तो फिर जटायु ने महाराजा धीराज दशरथ जी को धीरे धीरे पंखन पे पीठ पे सहारा देगी नैया और पृथ्वी पे पहुंचा दीनो। राजा दशरथ जी ने जटायु को बड़ो ही उपकार मानो, बोले, अरे पक्षीराज जटायु, आज तो मेरी मृत्यु निश्चित हती, तुमने बड़ा उपकार करो, अब तुम कछु मोते मांगो। मैं भूमंडल को चक्रवर्ती राजा हूं, तुम्हारा कौन सो प्रिय कार्य करूं। तब तो जटायु बोले, आपको जो बड़ो बेटा होएगो वो मेरे को होगो, वाकुम वो दही हो। तब तो राजा भारी उदास है गए मन में और फिर बोले, जटायु जी, तुमने तो ऐसा वचन मांगो है, हमें तो लगे खाली जाएगो।

अरे मेरे तो तीन तीन रानी हैं और छोटो बड़ो बेटा तो कोई हतोई ना है। तब जटायु बोले, अवई तो ना है, समय को इंतजार करो, जब होवे तब तो मेरो ध्यान रखियो। राजा दशरथ जी बोले, एम वस्तु ऐसे ही हो। तब तो दोनों अपने अपने घर चले गए। अब तीनों रानी ते कोई संतान हैवे के कारण राजा उदास भये। कुलगुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाए के पुत्रेष्टि यज्ञ की रचना में पारंगत श्रृंगी ऋषि को बुलवायो और वह यज्ञ को प्रसाद रानी पहुंचो। शुभ घड़ी शुभ नक्षत्र में अवतार को समय आयो। आकाश में देवतन की धुंधवी बजवे लगी, फूलन की वर्षा हेवे लगी, स्तुति करवे लगी। तो गीत की दृष्टि तो बहुत होवे ना। जटायु जी अयोध्या में देवतन के झुंड देख के पहुंचे और राजा दशरथ जी के राजद्वार में आए। विशाल कलेवर धारी जटायु जी को समाचार राजा को मिलो। महाराज बड़ी प्रसन्नता के साथ जटायु जी ते मिले। जटायु जी ने महाराजा धीराज चक्रवर्ती राजा दशरथ जी को अभिवादन कियो, प्रणाम कियो, सम्मान कियो। बोले, राजा आपको अपने वचन याद है ना? और याद नहीं तो लाओ हमारी थाती, लाओ हमारी धरोहर। दशरथ जी जटायु को आदर सहित प्रसूत का गृह के द्वार पर ले पहुंचे और रामलला को दर्शन करायो। जटायु जी ने रामलला के दर्शन करे, अपनी चोंच से इधर उधर पलट गए और बड़ो प्यार दुलार देंगे नाई बोले, अवई श्री रामलला छोटे, अतः आप स्वयं ही इनको लालन पालन करो, बड़े हुए पर रिंगे हमारे ही जाको ध्यान राखियो। और हम जाई बहाने ते प्रतिपक्ष प्रतिमाह आवत जावत बने रहेंगे। राजा सुनो हमारी बात, देखो हम जाति के पक्षी हैं, हमारो रहवो सहवो पेड़ पौधन के आश्रित है। धूप में, बरसात में, सर्दी में श्री रामलला की सेवा हमारे पर ना बन पावेगी। देखो इनकी सेवा तो आप ही करो, पर जे रिंगे हमारे ही। ऐसे कह के जटायु जी चलवे लगे। राजा दशरथ जी बड़े ही प्रसन्न भे। तब श्री रामलला जी को बड़े प्यार दुलार में लालन पालन भयो और राम जी ने बड़े है के जटायु जी के संग जा भाव को अंत तक निर्भर कियो। को रघुवीर सरस संसारा, सील स्नेह निवाहन हारा। जब वनवास के समय श्री रघुनाथ जी महर्षि अगस्त जी के सारे अनुसार पंचवटी पे पहुंचे हैं, रास्ता में विशालकाय जटायु जी को देखो और परिचय पूछो। तो जटायु जी बोले, वत्स मोकू अपने पिता अयोध्या नरेश राजा दशरथ जी को परम मित्र जानो। उवाच वत्सम मा विद्यम वयस्यम पितरात्मनः। तब तो ये सुन के भगवान श्री राम जी ने जटायु जी की पिता के तुल्य ही पूजा करी, सम्मान करो, वंदना अर्चना करी। जटायु खुश है कि बोले, तुम्हारे यहां रहवे थे, मैं अपनी यथाशक्ति सहायता करूंगा। ये सुन के भगवान श्री राम जी को भारी संतोष भयो। गीध राज ते भेंट भई बहुविध प्रीति बढ़ाए, और गोदावरी निकट प्रभो रहे परन घर छाए। क्षण भंगुर जीवन की कल का, कल प्रातः जान खिली न खिली मलिया गिर।

अभी आपने जब भक्त कथा सुनी, राम भक्त श्री जटायु जी, कथाकार है ब्रजेश शर्मा, और अब ये के संग आज को ब्रज साहित्य कार्यक्रम संपन्न हुए है। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।

0: हर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी।
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के।
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन है, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं इससे ज्यादा ये महत्वपूर्ण है कि हम क्या हैं।
0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कुशीनगर में 424 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, डबल इंजन सरकार ने तैयार किया विकास, सुरक्षा और रोजगार का नया वातावरण। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर के चिलुआ ताल में लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से पर्यटन विकास कार्यों का किया लोकार्पण। कहा, प्राकृतिक स्थलों को पर्यटन डेस्टिनेशन में बदल रही है सरकार। केंद्र सरकार ने सीबीएसई के चेयरमैन और सचिव का किया तबादला। ऑन स्क्रीन मार्किंग सेवाओं की खरीद की जांच के लिए समिति गठित। और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने आज आगरा के कैलाश मंदिर में किया दर्शन पूजन। कहा, शुद्ध मतदाता सूची ही निष्पक्ष चुनावों की नींव। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कुशीनगर में 424 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 278 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार ने विकास, सुरक्षा और रोजगार का नया वातावरण तैयार किया है। कुशीनगर अब पिछड़ेपन की पहचान नहीं बल्कि तीव्र गति से आगे बढ़ते नए उत्तर प्रदेश का प्रतीक बन रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए कार्य कर रही है।
5: इसी सत्र में हम लोग कुशीनगर के कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का भी संचालन करने जा रहे हैं। उसमें सत्र प्रारंभ होगा, बच्चों का एडमिशन हम करवाएंगे। कुशीनगर में अपना विश्वविद्यालय हो, कुशीनगर जनपद में मेडिकल कॉलेज हो, कुशीनगर जनपद में अब किसानों को गन्ने का दाम अब 315 नहीं बल्कि 400 रुपया कुंटल हम देने का काम कर रहे हैं और गन्ना का मूल्य समय पे मिले यह सुनिश्चित किया जा रहा है। अब इंसेफ्लाइटिस की बीमारी वैसे ही समाप्त हो गई है जैसे माफिया यूपी से समाप्त हो गए हैं।
0: मुख्यमंत्री ने आज गोरखपुर के चिलुआ ताल में 20 करोड़ 35 लाख रुपए की लागत से पर्यटन विकास और सौंदर्यीकरण कार्यों का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों में ताल और पोखरों की उपेक्षा होती थी लेकिन डबल इंजन की सरकार ताल और पोखरों का संरक्षण करती है, प्रकृति के प्रति अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करती है, इन्हें टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में विकसित कर रही है। केंद्र सरकार ने सीबीएसई के चेयरमैन और सचिव का तबादला कर दिया है। वहीं सीबीएसई द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग सेवाओं की खरीद की जांच के लिए एक जांच समिति का

0: गठन किया गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि उत्तर पुस्तिकाओं में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उनके पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल आज से शुरू हो गया है। ये पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: CBSE ने कहा है कि ये सुविधा केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की प्रति प्राप्त कर ली है। बोर्ड ने बताया कि सुरक्षा बढ़ाने के लिए आधार सत्यापन को शामिल किया गया है। जिन बच्चों के पास आधार कार्ड नहीं है उनके माता पिता, रिश्तेदार या अभिभावक के आधार कार्ड का उपयोग किया जा सकता है। विद्यार्थियों को प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन के लिए प्रति उत्तर पुस्तिका 100 रुपए और पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रति प्रश्न 25 रुपए का भुगतान करना होगा। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने आज आगरा के कैलाश मंदिर में विधि विधान के अनुसार भगवान शिव की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ने मतदाताओं से आग्रह किया है कि वे अपना वोटर आईडी कार्ड अवश्य बनवाएं और चुनावों में अपना वोट डालें। उन्होंने कहा कि एक शुद्ध मतदाता सूची ही निष्पक्ष चुनावों की नींव होती है। श्री कुमार 2 दिवसीय दौरे पर कल आगरा पहुंचे थे।
2: आगे आने वाले चुनाव भी पारदर्शी और ट्रांसपेरेंट होंगे। शुद्ध मतदाता सूची ही पारदर्शी चुनावों की आधारशिला है। आइए अपना वोट जरूर बनवाइए और चुनावों में वोट जरूर करिए।
0: मुख्य सचिव SP गोयल ने उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो 2026 के मास्टर प्लान और लेआउट का अवलोकन करते हुए संबंधित विभागों को समयबद्ध और प्रभावी तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। श्री गोयल ने कल ट्रेड शो की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा कि 25 से 29 सितंबर तक होने वाला ये शो और अधिक भव्यता के साथ आयोजित किया जाए। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्षों में उल्लेखनीय बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्षों में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। आज महिला सशक्तिकरण की दिशा में हुए प्रयासों पर एक विशेष रिपोर्ट।
3: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार के लगातार प्रयासों से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। साल 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लाखों महिलाओं को बिना किसी गारंटी के ऋण मिल रहा है। इस योजना के तहत इस वर्ष मार्च तक 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक ऋण लाभार्थियों को वितरित किए जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 17 लाख करोड़ रुपए महिलाओं को दिए गए। वहीं प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और भूमिनिया जैसी प्रमुख योजनाओं ने महिलाओं की बैंकिंग, बचत और उद्यमिता से जुड़ने की क्षमता को मजबूत किया है। जनधन योजना के तहत अब तक 58 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 33 करोड़ खाते महिलाओं के नाम पर हैं। मोदी सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल लखपति दीदी है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को सालाना कम से कम 1 लाख रुपए की स्थायी आय प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। यह पहल अब लगभग 6 लाख गाँव तक पहुँच चुकी है और सरकार ने देश भर में 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कारण राष्ट्रीय लिंगानुपात वर्ष 2014-15 के 918 से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 929 हो गया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। देश भर की 42 उत्कृष्ट पंचायतों को ये पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। आगरा के बिरहरू को भी नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का पुरस्कार मिलेगा। बिरहरू ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान भूरी सिंह परमार इस उपलब्धि के लिए कल दिल्ली में सम्मान ग्रहण करेंगे। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए सरकार और ग्राम पंचायत का आभार व्यक्त किया है।
4: ये गांव की जनता का पूरा सहयोग रहो, सरकार का भी बहुत सहयोग रहो। पहली बार मैं प्रधान बनूं और गांव की दुर्दशा पहले बहुत ज्यादा खराब थी, लोगों के हिसाब से सरकार को सहयोग और सब गलियां पक्की, इंटरलॉक, सीसी सब कराई गई, बाकी पंचायत घर, सचिवालय, RRC सेंटर, लैब, लाइब्रेरी, ऐसे बहुत से कार्य कराई गई, सरकार को बहुत धन्यवाद।
0: उत्तर प्रदेश के आतंक रोधी दस्ते ने पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े होने के आरोप में आजमगढ़ से एक युवक को गिरफ्तार किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: यह आतंकवाद

0: आतंकवादी गिरोह नौजवानों को अहम व्यक्तियों और संस्थानों की निगरानी करने, उनकी हत्या करने, राजनीतिक दलों के कार्यालयों पर बमबारी करने, सुरक्षा एजेंसियों के कर्मचारियों की हत्या करने और उनके कार्यालयों और मुख्यालयों पर हमला करने जैसे अपराध को अंजाम देने के लिए उकसा रहा था। खुफिया जाँच के दौरान आजमगढ़ निवासी मोहम्मद शेख का पता चला, जो इस गैंग से जुड़ा हुआ था। शेख पाकिस्तान और दुबई के फोन नंबरों का उपयोग करके व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जरिए शहजाद भट्टी के आतंकवादी गिरोह से जुड़ा हुआ था। वो अपने साथियों और अन्य लोगों को भी आतंकवादी गिरोह में शामिल होने और गैर कानूनी काम को अंजाम देने के लिए भड़का रहा था। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: ज्येष्ठ माह के पांचवें बड़े मंगल के अवसर पर लखनऊ के प्रमुख हनुमान मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की कतार देखने को मिली। बजरंगबली के जयकारे के साथ लोग दर्शन पूजन करते नजर आ रहे हैं। जगह जगह भंडारों का भी आयोजन किया जा रहा है। वहीं अयोध्या स्थित हनुमानगढ़ी मंदिर में भी बड़े मंगल पर भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में अगले तीन दिनों तक गरज चमक के साथ बारिश का अनुमान जताया है। इस दौरान प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में तेज झोंकेदार हवाओं के साथ बिजली कड़कने की चेतावनी जारी की गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कुशीनगर में 424 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, डबल इंजन सरकार ने तैयार किया विकास, सुरक्षा और रोजगार का नया वातावरण। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर के चिलुआ ताल में लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से पर्यटन विकास कार्यों का किया लोकार्पण। कहा, प्राकृतिक स्थलों को पर्यटन डेस्टिनेशन में बदल रही है सरकार। केंद्र सरकार ने सीबीएसई के चेयरमैन और सचिव का किया तबादला। ऑन स्क्रीन मार्किंग सेवाओं की खरीद की जांच के लिए समिति गठित। और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने आज आगरा के कैलाश मंदिर में किया दर्शन पूजन। कहा, शुद्ध मतदाता सूची ही निष्पक्ष चुनावों की नींव। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।

0: महात्मा गांधी के अनुसार युद्ध भूमि से भागने से अच्छा है हम लड़खड़ाएं, गिर जाएं, लेकिन फिर से शक्ति बटोर कर खड़े हो जाएं।
1: एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम शाम सुहानी। हमें जो संदेश मिले उनके नाम हैं परमवीर हाउस आदर्श नगर बठिंडा से अशोक ग्रोवर, प्रवीण ग्रोवर, विक्रमजीत ग्रोवर, अनमोल सिंह और पवनीत सिंह और इनके परिवार के सभी सदस्य। पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, तनुजा और ईशांत देवांगन। शास्त्री नगर बीट शहर से किशन सपकाल, आशा सोनिया और विशाल सपकाल। अलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली, सोनम और आशीष विश्वकर्मा। पैठण से शेख चांद, शेख फूरखान, शेख गुफरान, शेख जकीगे, अदनान और नुमान। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप। कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज। गांव गोपी की नगरिया से मिट्टनलाल सारस्वत, नेहा नीरज निकेता और इनके माता पिता। दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और बब्बू डब्बू। छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल और यशस्वी वर्मा। मोदला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर, आरती गौरी, ओम कुमार सुरलकर और उनके परिवारीजन। गांव नगलापोला से विजय सिंह, भानु प्रताप सिंह, अनुराधा, रामानुज, राधिका, पवन, करण, भोला, नमन और इनके परिवारीजन। अम्बागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा सबीहा, अनस और रेहान। रायपुर छत्तीसगढ़ से पवन कुमार साहू, क्रांति देवी साहू, पंकज साहू, सुष्मिता साहू और दीपिका साहू। गांव नौघरा से कोमल मास्टर, यशोदा, सूरज, रोहित, चंचल, संजना शिवानी और इनके माता पिता।

कर्नाटक इज नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर, कुशल, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह। दरियापुर बाबली महाराष्ट्र से गजानन येले, नवदीप येले, विश्वदीप और अशोक येले। खेरी बढ़नेर अकोला से अरुणा बलदेव दामोदर और आदित्य दामोदर। गांव कुमोदवन से रमेश चंद्र सेन, सुनील रचना गब्बर और उनके परिवारीजन। हाउसिंग बोर्ड भरतपुर से अजीत, सोनिया, शिवांश, चुन्ना और इनके माता पिता। पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक। रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हेना, हर्षित और खुशी गोस्वामी। मेन मार्केट पोस्ट सूरई जिला ललितपुर उत्तर प्रदेश से संतोष नामदेव, अभय, अनिल, अजीत, ज्योति, अनीता, संजना, रेखा, भारती, पूर्वी, रूही, अनु, अनन्या और उनके परिवारीजन। गांव चोहलदा बागपत से संजय ढींगिया, रमन ढींगिया और अपार ढींगिया। आप हैं गांव पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नेहवानकर, निर्मला और विशाल नेहवानकर। दरदेही सरगांव छत्तीसगढ़ से चंदूलाल पटवा, सुनीता, हर्ष कुमार पटवा, विनीत कुमार और क्रिस्टी पटवा। मजनू का टिल्ला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक। आप हैं भाटापाड़ा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, अर्चना जोशी, हरमिंदर सिंह चावला, बानी चावला, लोकेश जोशी, पायल जोशी, वैदेही जोशी, अंशिका जोशी, अकीता जोशी। अनूपपुर मध्य प्रदेश से जयवंती केवट जी। बाबा कुटी रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, संक्रांति चौहान, रितेश कुमार, राजेश्वरी चौहान और उत्कर्ष चौहान। आइए सुनते हैं आप सबके लिए प्रेम बंधन फिल्म का गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर के युगल स्वरों में। गीतानंद बख्शी का संगीत, निर्देशक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

प्रेम बंधन फिल्म का गीत अभी आपने लता मंगेशकर और किशोर कुमार के युगल स्वरों में सुना, और अब जो हमें संदेश मिले उनके नाम है पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसु तासु, अर्णव आनंद और सत्यमानंद, बोरडागाछी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत और गुड्डी भगत, गडके नगर यवतमाल महाराष्ट्र से लक्ष्मणराव लोखंडे, कल्पनाताई लोखंडे, शैलेश, प्रतीक्षा, स्वप्निल और रक्षिता लोखंडे, गणेशपुर गंज डुंडवारा एटा उत्तर प्रदेश से एम फारूक शेख, शेख शमा परवीन, सायमा फारूक, सरफरा शेख, गुलफरा शेख और बेबी मुस्कान, मेन बाजार कुंडलवाली महाराष्ट्र से गंगाधर येमेकर, प्रमोद और प्रदीप येमेकर, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा, कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर सावनकर और विजय लक्ष्मी सावनकर, गांव कुमार हेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सा नाजिया, आफिया इब्राहिम, सद्दाम और अदीब, डोगर गांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका, अनिष्का और तन्मय गजभिये, आप हैं दमदम एयरपोर्ट कोलकाता से बसंत कुमार सिन्हा, रेखा देवी शो, अजय कुमार गुप्ता, रिम्मी, तनुश्री गुप्ता और उनके मित्रगण और परिवारीजन, नाज पैलेस अजमेर शरीफ से सैयद आलम हाशमी, गुलनाज असद अरहाम और उनके परिवारीजन, रसेड़ा छत्तीसगढ़ से मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश कुमार, संध्या, कीर्ति कुमार और डीकेश साहू, मामूल

वाली महाराष्ट्र से सोपान तायडे, वसंतराव भोजने और उनके मित्रगण। गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदर दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राया और चेतन मस्कीन। चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना और केशवरधान खुराना। आइए सुनते हैं आप सबके लिए बॉबी फिल्म का गीत मन्ना डे, शैलेंद्र सिंह और साथियों की आवाज़ों में। शब्दकार भट्टा भाई पटेल, संगीत निर्देशक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

बॉबी फिल्म का गीत अभी आपने मन्ना डे, शैलेंद्र सिंह और साथियों की आवाज़ों में सुना, और अब आप सुनेंगे सोनू निगम और जसपिंदर निरूला को। फिल्म है दूल्हे राजा, गीत समीर का, संगीत निर्देशक आनंद मिलिंद। पसंद भेजने वाले श्रोता शाहूनगर यवतमाल से राहुल मनवर, सरला रोशनी, चेतन, विशाल मनवर और प्रियांशी। गृहीट झारखंड से मोहम्मद यासीन अनजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, मिफरा नवाज, बेबी चाहत और सादिया। कलानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा। उचपट्टी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से मुकेश गोस्वामी, मधु गोस्वामी, आशी गोस्वामी, शिवन्या और अन्नू गोस्वामी। भावी नीमगांव महाराष्ट्र से श्रीराम गोंधली, उषा गोंधली, हर्षदा, वैष्णवी पूनम और युवराज गोंधली। जिला

छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, प्रहलाद राजेंद्र वर्मा, उमेश और प्रेमला बंछोर। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना, योगेश, मैंडी शर्मा, सौरभ, सायना शर्मा और निवान शर्मा। जैन मंदिर वाली गली कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन अंसारी, आसना अंसारी और मोहम्मद कैफ अंसारी। बघेरा दुर्ग से संतोष नामदेव, सार्थक, समर्थ और शौर्य नामदेव। ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शहनवाज अब्बासी, सरफराज फरदीन, सुहान अरजान अब्बान और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य। श्रीरामपुर से अशोक दले, रोहिणी दले, सविता, अनिकेत, ऋषिके, जीविका, सानिका दले और उनके परिवारीजन। स्टेशन रोड जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू और पप्पी भाटिया। चांदनी चौक गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की, नानू, रविंद्र, रौनक सेन और उनके परिवारीजन। नाज मंजिल महसूल सीतामढ़ी से अकरम हुसैन प्रिंस, बेगम इशरत अकरम, वसीम अकरम, रूबीना, आरिज वसीम, नदीम अकरम, शमीम अकरम, ममता रानी शर्मा और पूनम कुमारी शर्मा। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया दिशानी और निमित आहूजा। मगरलोड छत्तीसगढ़ से फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी, मोहित कुमार, देविका रानी, गजेंद्र कुमार और हेयांश कुमार चंदन। व्हाइटफील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, दिव्यांशु भूषण, संस्कृति पौरुष और उनके परिवारीजन। दतरंगी भाटापाड़ा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्रमणि वर्मा और नोखीलाल वर्मा। आइए सुनते हैं आप सबके लिए दूल्हे राजा फिल्म का ये गीत।

आमिर जमाल की आवाज में अभी आपने मर्डर फिल्म का गीत सुना, संगीत निर्देशन अनु मलिक का था। हमें जो संदेश मिले उनके नाम है गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर चंदा, जसवीर जसी, सीता और गीता, जेल रोड रायगढ़ छत्तीसगढ़ से सौरभ निषाद, प्रकाश निषाद, बल्लू निषाद और तरुण यादव,

ताजपुर मोरवा समस्तीपुर बिहार से कारी रायकारी मीनाकारी पुंजराज आरती आकर्षण और जयश्री, गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौड़ मंजुला विशाल और निशा, ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से सुधाकर राजे जाधव प्रशांत राजे जाधव संचित प्रथमेश प्रणाली सर्वद्र सानवी और कल्पना देशमुख, गोविंदपुर सीकर से दातार सिंह शेखावत संगीता कंवर तुषार सिंह और रिंकी शेखावत, वाणीखेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस पिंकी लवली और आरती अरोड़ा, काटा रोड वाशिम महाराष्ट्र से मास्टर विठल सुरेशे सुषमा परिधि और मायरा सुरेशे, कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर सावनकर और उनके मित्रगण, आधार नंदघाट छत्तीसगढ़ से माखन वर्मा चांदनी भूपेश और दीपेश वर्मा, देवरी भाटापाड़ा से केआर साहू आकाश कमलेश गन्नू लाल और मुरली क्षत्रिय। और अब इसी के साथ ही फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम शाम सुहानी यहीं संपन्न होता है। हमें अनुमति दें, नमस्कार।

0: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अब आइए सुनते हैं विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है विशेष श्रृंखला। इसके अंतर्गत आज सुनिए मोदी सरकार के 12 साल किसान कल्याण और किसान केंद्रित नीतियों के माध्यम से किसानों का सशक्तिकरण। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक शेखर अय्यर और वरिष्ठ पत्रकार SP सिंह। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
2: दिस इज आकाशवाणी। इन द स्पेशल सीरीज नाउ वी ब्रिंग अ डिस्कशन ऑन 12 इयर्स ऑफ द मोदी गवर्नमेंट एम्पावरिंग फार्मर्स थ्रू वेलफेयर एंड फार्मर सेंट्रिक पॉलिसीज। पार्टिसिपेंट्स आर शेखर अय्यर, पॉलिटिकल एनालिस्ट, एंड SP सिंह, सीनियर जर्नलिस्ट। द मॉडरेटर इज सोनू सूद।
3: In the last 12 years of NDA government, Prime Minister Narendra Modi has continually stressed on farmers' welfare as one of the topmost priorities of the government. Agricultural production and agricultural exports have gone up steadily, and we have become a leading producer of food grains, millets, milk, coconut, spices, fruits, vegetables in the world. While ensuring food security for 140 crore Indians, the strong agricultural growth has made us an integral part of the global food value chain. In the last 12 years, the government has brought in path-breaking, targeted reforms for every stage of the agricultural cycle, optimizing productivity and ensuring transparent delivery of the benefits of government schemes through use of latest technology and digitization. To discuss the holistic government initiatives to maximize farmer welfare over the last 12 years and how it has given stability and momentum to our agriculture sector, we are joined today by two special guests, Mr. SP Singh and Mr. Shekhar Iyer. Mr. Singh, Mr. Iyer.

0: A warm welcome to both of you at this special Akashvani series on completion of 12 years of NDA government.
1: Namaskar, thank you.
0: So, आपसे हम जानना चाहेंगे कि जिस तरह का हमने एक तेजी देखी है एग्रीकल्चर सेक्टर में, जिस तरह से हमारा प्रोडक्शन बढ़ा है, न सिर्फ फूड ग्रेन्स में, हॉर्टिकल्चर में, बाकी जो कृषि के एलाइड सेक्टर्स हैं, किस तरह से आप आंकते हैं सरकार का जो ये 12 वर्षों में अप्रोच रहा है कृषि क्षेत्र की तरफ, उसमें कौन सा ऐसा प्रमुख केंद्र बिंदु है जिससे आपको लगता है कि ये संभव हो पाया है?
2: देखिए, इस सरकार की जो अगर सबसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर अगर हम देखें तो खेती किसानी के मामले में और कृषि क्षेत्र को बेहतर बनाने की उन्नत दिशा में ले जाने में या किसानों की दशा और दिशा को सुधारने में अगर किसी ने अहम रोल अदा किया है तो इस सरकार के इस 12 साल को एक माइलस्टोन के तौर पर देखा जा सकता है, एक अच्छा फेज कहा जा सकता है। सबसे पहला काम इस सरकार का अगर देखें तो सुधार के तौर पर, कृषि सुधार की दिशा में कृषि मंत्रालय का नाम पहले बदला गया। इसका नाम कृषि मंत्रालय था, इसको कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय किया गया। इसका पर्पज सिर्फ यह था कि किसानों, कृषि के साथ जो किसान से जुड़े हुए एलाइड सेक्टर है उसको कैसे बेहतर बनाया जाए, खेती और किसानी। दूसरा, किसान कृषि का की परिभाषा को सरकार ने बदला, वो उसके तरीके पहले था खेती और बाड़ी, लेकिन खेती के साथ देखते देखते बाड़ी कहीं गायब हो गई, विलुप्त सी हो गई। तो इस सरकार की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि यह थी कि उन्होंने बाड़ी को आगे बढ़ाया, यानी खेती की परिभाषा को, कृषि की परिभाषा को बदला और उसके दायरे को बढ़ाकर उसमें उन सेक्टर्स को भी डाला जो चूक हो रही थी या विलुप्त हो रहे थे, जैसे बागवानी का, हार्टिकल्चर, सेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, प्लस इसके अलावा डेयरी, पशुपालन और बी कीपिंग, मतलब खेती किसानी से जुड़े हुए जो उद्यम थे, सह उद्यम जिन्हें था, जो किसानों की जो आमदनी बढ़ाने की बात होती है, प्रधानमंत्री बार बार कहा करते हैं कि दोगुना करने की बात कही थी, मैं बार बार कहता हूं कि खेती के साथ अगर बाड़ी को जोड़ दिया जाए तो दोगुना नहीं, कई गुना की वृद्धि आमदनी बढ़ाई जा सकती है। और सरकार का पूरा प्रयास था कि हम कैसे खेती के साथ बाड़ी को आगे बढ़ाएं, और बाड़ी के आगे बढ़ाने का एक नतीजा है कि आज हम दुनिया में खेती के साथ साथ हॉर्टिकल्चर में, फिशरी में, आज हम हॉर्टिकल्चर में दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं। कई ऐसे फ्रूट्स हैं, कई ऐसे वेजिटेबल्स हैं जिसमें हम दुनिया में नंबर एक उत्पादन करने वाले कंट्रीब्यूट करते हैं। इसी तरह से हम चावल, चीनी, गेहूं और तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको हम दुनिया में सबसे बड़े एक्सपोर्टर हो चुके हैं। हम फिशरी के मामले में दुनिया के, चीन के बाद दूसरे नंबर के एक्सपोर्टर, जबकि हमारे यहाँ अभी जो एक्सप्लोरेशन होना चाहिए फिशरी का वो बहुत कम है। यानी इस सरकार का जो पूरा फोकस था खेती किसानी में लगे हुए किसानों के साथ, खेती तो वो करता था जिसके पास खेत होता था, लेकिन वो खेती में जो लोग लगे हुए थे जिनके पास जमीन नहीं थी, भूमिहीन किसान, वंचित वर्ग, गरीब वर्ग, जिसका कोई पूछने वाला नहीं था कि उन्हें क्या मजदूरी मिल रही है, वो कैसे उनका खर्च चल रहा है, कैसे वो जीवन यापन कर रहे हैं, इस सरकार ने सबसे बड़ा फोकस उनके साथ किया जो बाड़ी को जोड़ा, जिसमें जमीन की जरूरत नहीं होती है। दो पशु रख लीजिए, चार पशु रख लेता है गांव का भूमिहीन किसान, उससे उसका काम चल जाता है, उससे उसकी आर्थिक स्थिति सुधर जाती है और वो अपने किसान के खेत पर खेती करता है, उससे पैसे मिल जाते हैं, और अपने पशुपालन है, भेड़ पालन है, मतलब ढेर सारी से पशुपालन से भी पैसे मिलते हैं। तो ऐसे सेक्टर खुलते, बी कीपिंग है जिसमें कुछ नहीं लगता है, ऐसे ही फिशरी है, फिशरी में गांव के जितने भी तालाब थे, सोचिए मनरेगा के तहत इस सरकार ने कई लाख जीर्णोद्धार कराया तालाबों का, पुराने तालाबों का, और नए तालाब को तैयार करवाया। उसमें जो पानी भरा तो वो उन लोगों को दिया गया जिनके पास, जो भूमिहीन किसान थे, जिनके पास खेती नहीं थी, ऐसे, और जो लोग जिनको पानी से बहुत पुराना नाता था, ऐसे मछुआरों को जो ये काम दिया गया तो वहां पर मछली का उत्पादन होने लगा, ऐसे ही डेयरी का उत्पादन होने लगा। जब डेयरी का उत्पादन हुआ तो दूध कहाँ बेचेगा, वो एक बड़ी समस्या का पैदा होने से पहले ही सरकार ने सोच लिया था कि उनके लिए क्या करना है, तो उसने कोऑपरेटिव सेक्टर को आगे बढ़ाया और एक नया कोऑपरेटिव मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय खड़ा कर दिया, और उसकी चेन इतनी है कि गांव का हमें लगता नहीं कि कोई किसान बचा होगा या कोई गांव बचा होगा जिसमें पैक्स ना हो, जिसमें सहकारिता का आंदोलन न पहुंच गया हो और किसान उससे जुड़े न हो। जी
0: मिस्टर अय्यर, कमिंग टू यू, मिस्टर सिंह हैज यू नो आउटलाइन सो ब्यूटिफुली दैट व्हाट हैज बीन द बेसिक चेंज in the approach of the government towards the agriculture sector. We would like to know from you the stability and the momentum that we have seen in the agriculture sector. Even in the difficult years of COVID, the agriculture sector

0: का मकसद यह था कि हर 3 साल पर यह कराया जाता है ताकि इससे ये पता चल सके कि मिट्टी में कौन सी चीज कम है कौन सी ज्यादा है, उसी हिसाब की खाद डाली जाए। दूसरा काम किया खाद का, फर्टिलाइजर का। हमारे यहाँ याद होगा आपको कि 2014 से पहले फर्टिलाइजर को लेकर हर सीजन में हाय तौबा मचती थी, लेकिन 14 के बाद ये स्थिति नहीं रही। तो आखिर कहाँ से खाद की उपलब्धता कहाँ से आ गई? ये था कि जो हमारे यहाँ लीकेज हुआ करता था उसे सरकार ने रोका। नीम कोटेड यूरिया, यूरिया का उपयोग किसी और इंडस्ट्रियल उपयोग में कर लिया जाता था रॉ मटेरियल की तरह से, इसको रोकने के लिए उसमें नीम का तेल या नीम की खाद को मिला दिया गया, जिससे वो नीम लेपित यूरिया जब दी गई किसानों को तो वो किसी और उपयोग की नहीं सिर्फ खेतों के ही उपयोग की थी। उससे 10 से 20 हजार करोड़ रुपया सरकार का सब्सिडी का सीधे सीधे बचा। तीसरी जरूरत थी इनपुट था पानी, सिंचाई। सिंचाई के हिसाब से देखें तो पानी की हमारे यहाँ मैक्सिमम पानी जो नीचे जमीन से निकाला जाता है, पंप होता है या नहरों से जाता है, वो सिंचाई के काम में आता है। लेकिन पानी की जितनी जरूरत है और जितनी खेती है उसमें बहुत डिफरेंस था, बहुत मुश्किल थी। और हमारे यहाँ जो टेक्नोलॉजी थी सिंचाई की वो ठीक नहीं थी, वैज्ञानिक नहीं थी। तो इसके लिए सबसे पहले सूक्ष्म करके जो माइक्रो इरिगेशन को सरकार ने हैवी सब्सिडी के आधार पर हर किसान तक पहुंचाने की कोशिश की है, ताकि इससे 30 से 70% तक पानी बचता है। जो फ्लडिंग के तौर पर हमारे यहाँ सिंचाई होती थी, फ्लडिंग सिस्टम से हट के वैज्ञानिकों ने बताया कि नहीं, ये सिस्टम नहीं, कम से कम पानी यानी बूंद से बूंद पानी या थोड़ा थोड़ा पानी भी चाहिए, इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है। प्रधानमंत्री हर भाषण में शुरुआती दौर में इस पर जोर दिया करते थे कि गन्ने की खेती भी इससे हो सकती है। चौथा था बीज, बेहतर सीड। अगर आप, बड़ी सिंपल सी कहावत है कि बोए बीज बबूल का, आम कहां से होए, तो जब आप बेहतर सीड अगर उपयोग नहीं, बीज नहीं उपयोग करते हैं तो उससे बेहतर उत्पादकता की उम्मीद, यील्ड अच्छी नहीं होगी। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए बेहतर बीजों का उपयोग का, हमारे साइंटिस्ट, इतना बड़ा ICAR का, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का इतना बड़ा सिस्टम हमारे पास है, हमारे हर साल सैकड़ों बीज हर तरह के तैयार हो जाते हैं, आविष्कृत होते हैं, लेकिन वो खेतों के, किसानों के खेतों तक नहीं पहुंच पाते थे। उसको कैसे पहुंचाया जाए, इस सिस्टम को ठीक किया। और बीज पहुंचाने के लिए, और हमारे यहाँ बीज की जरूरत थी कि अभी अय्यर साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि जलवायु का जो विपरीत स्थितियां पैदा हो रही हैं और रोग, तो डिजीज से बचने के लिए, क्योंकि जब जलवायु परिवर्तन होगा और टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारे यहाँ बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, ढेर सारे रोग फैलते हैं। ऐसे रोगों से प्रतिरोधी क्षमता वाले बीज तैयार किए गए। और जलवायु जो हमारे यहाँ बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाए या बहुत ज्यादा ठंडी पड़ जाए या बहुत तेजी से बहुत ज्यादा पानी आ जाए, इन तीनों स्थितियों से बचने वाले ऐसे सीड तैयार किए गए जो उन फसलों पर इनका असर कम से कम हो या न्यूनतम हो। ये सबसे बड़ा काम किया इन्होंने इनपुट को घटाने का। उससे आगे बढ़ के इन्होंने किया बाजार को, कैसे बाजार इनको कैसे उपलब्ध कराया जाए, बेहतर बाजार। अब हर किसान तक बाजार को पहुंचाना आसान नहीं था, लेकिन नहीं, इस डिजिटल दुनिया में ये बहुत आसान बना दिया इस सरकार ने। प्रधानमंत्री ने कहा ई मार्केटिंग, ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग, इसको ई नाम के नाम से जाना गया। और इससे हर किसान अब जुड़ देता है अपने टेलीफोन से, अपने मोबाइल से, वो चाहे तो देश की हर मंडी से वो कनेक्ट होता है, उसे हमेशा पता चल सकता है कि किस मंडी में किस कमोडिटी का या किस उपज का क्या भाव चल रहा है, और अपनी मंडी के अपने व्यापारी से मोल भाव करने का उसे मौका मिल जाता है।
1: रियल टाइम इन्फॉर्मेशन मिल जाता
0: है, रियल टाइम इन्फॉर्मेशन। में तीसरा सबसे बड़ी बात थी कि जोखिम, किसान कहा जाता था कि ऊपर वाले पर भगवान बरसेंगे तो बारिश होगी, खेती होगी, मतलब सब कुछ ऊपर वाले पर निर्भर था। नहीं, इस सरकार ने इसको तय किया कि नहीं, किसानों को किसी के भरोसे छोड़ा नहीं जा सकता। किसान को जोखिम फ्री किया गया, उसको एक ऐसा कवच दिया गया कि उसकी खेती अगर नुकसान हो जाती है तो उसकी भरपाई सरकार करेगी। बीमा योजना लाई गई, प्रधानमंत्री बीमा योजना इतना बढ़िया योजना है कि बहुत नॉमिनल, और जो प्रीमियम जमा होता है वो पैसा किसान नहीं देता, उसका बहुत छोटा सा 5% किसान देता है, बाकी और 2.5% से 5% बाकी सब सरकार के खाते से जाता है किसी भी कंपनी को। उसका फायदा मिला तो जोखिम बच गया, अच्छे सीड मिल गए, अच्छे इनपुट मिल गए और अच्छा बाजार मिल गया। और सरकार ने, इसके अलावा सरकार ने अपनी ओर से एक कवच दिया कि आपका जो भी बाजार के मुकाबले बाजार में मूल्य आपकी उपज का कम मिलता है तो वो सरकार खरीदेगी। सरकार ने इस बात की, एक तरह से आज से नहीं, बहुत लंबे समय से ये परंपरा चली आ रही है कि सरकार खरीदती है, लेकिन
1: तब से हम न्यूनतम समर्थन मूल्य,
0: न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं। किसान इसको बहुत लाइक करता है, बहुत पसंद करता है कि गाढ़े दिनों में सरकार हमारे साथ खड़ी रहती है। सरकार की पूरी कोशिश है कि हम न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद करेंगे, लेकिन कोशिश यह होती है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद न करनी पड़े, उसकी उपज का मूल्य बाजार में बेहतर मिले। यानी MSP का जो घोषित मूल्य है, अगर कोई किसी चीज का 2500 रुपए क्विंटल मूल्य है, अगर बाजार में 2700 या 3000

0: रुपया मिलता है तो किसान 27 या 3 हजार पर बेचेगा, 2500 पर सरकार को नहीं देगा। यही सरकार की पूरी कोशिश है कि बाजार में उसकी उपज उसके कहे दाम पर मोल तोल के आधार पर बेहतर मूल्य उसको मिले। ये सरकार ने बहुत बेहतर
1: बिल्कुल सो जैसा आप कह रहे हैं कि इनपुट कॉस्ट और रिम्यूनरेटिव प्राइस दोनों पर ध्यान दिया गया है। मिस्टर अय्यर, व्हाट वुड यू से, यू नो द आइडिया इज टू इंक्रीज द प्रॉस्पेरिटी ऑफ फार्मर्स एंड एंश्योर प्राइस स्टेबिलिटी फॉर द कंज्यूमर्स ऑल्सो, सो हाउ फार यू फील द फूड मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट, द मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर and the value addition mechanisms, they have emerged as the central pillar of your India's farm to market strategy and have been successful.
2: See, the farmer needs correct inputs at the right time, at a right price. Right. And after that, at the time of harvest, he needs some financial help to take care of the expenditures. Then after the produce is harvested, he needs a market. And a good price that will take care of his cost as well as give him some reasonable profit to sustain his livelihood.
1: Mm-hmm.
2: So towards this end, what that he revised, keep into account the rise in the input cost. And as per the Swaminathan committee report, the effort has been to see that at least the cost is covered as per the recommendation to the great extent possible. At the same time, as Sinsab was saying, if the market offers a better price, the farmers have a choice to move on. And with this e-market, with the e-NAM, and along with that, now the lot of attention is being given for storage facilities. Okay. See, the biggest problem is when the prices, have not reached their optimum level, the farmer has a problem in disposing his produce. Yes. So therefore, he requires good storage facilities. And we have seen in the last two budgets, and in fact, the last budget has set aside at least 1 lakh crore, particularly to take into account this particular problem. Yes. Because you need to see financial risk management, and what is needed today is a large-scale infrastructure investment to increase farm incomes and build these kind of facilities and connectivity.
1: Yes.
2: So this is very important. This is the thrust area. So the government has been encouraging also private-public partnership also in this region for having a chain of cold storage chains in everywhere.
1: Yes.
2: Because invariably when you hear stories of, farmer in distress because, the production, there is like, for instance, a crop like onion or a crop like cotton or even a crop like even tomatoes. See, what happens is suddenly there is a glut in the market and the prices fall. And there is no food processing industry which is developed to the full extent to take care of this. So the government trust area is food production as well as necessary food processing industry that can take care of these vagaries, caused by nature or by otherwise, to see that the farmer doesn't lose out on getting the best price.
1: Yes. Coming to you, Mr. Singh, अभी आपने थोड़ी देर पहले कोऑपरेटिव मॉडल की बात करी थी कि मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन बनी इन 12 वर्षों में, इसका कृषि क्षेत्र को किस तरह फायदा हुआ है और जिस तरह का हम कोऑपरेशन मॉडल्स कृषि क्षेत्र में देख रहे हैं डेयरी सेक्टर में या जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनका क्या फायदा हो रहा है उसके बारे में आप हमें थोड़ा बता सकते हैं, प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज जो है या मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटीज है ये किस तरह का भूमिका प्ले कर रही है?
3: देखिए, कोऑपरेटिव को लाने से पहले कोऑपरेटिव का एक डिपार्टमेंट हुआ करता था। इस सरकार के आने के साथ ही एक नया मंत्रालय बना, सहकारिता मंत्रालय, जिस तरह से उसका विस्तार हो रहा है, गांव शायद ही देश का कोई ऐसा गांव बचा हो जहां पर कोऑपरेटिव आंदोलन न पहुंचा हो। और किसान तो हमें लगता है किसान ऐसा होगा जो किसी न किसी तरह से कोऑपरेटिव से जुड़ा ही होगा, चाहे उसे लोन लेना हो, क्रेडिट चाहिए होगा, दूसरा उसे सीड चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए या शुगर का प्रोडक्शन हो, यानी किसी भी चीज से अगर जुड़ा किसान है तो वह कोऑपरेटिव से जुड़ा ही होगा। सरकार ने इसको कैसे जोर से दिया, आप समझिए कि डेयरी डिपार्टमेंट को, डेयरी सेक्टर ऐसा सेक्टर है जिसमें भूमिहीन किसानों की एक बड़ी संख्या है। दुनिया का आज की तारीख में हम 25% केले हमारा कंट्रीब्यूट करता है इंडिया डेयरी में, और प्रोडक्शन वाइज हम दुनिया के नंबर एक प्रोडक्शन करने वाले देश बन चुके हैं। जरा सोचिए कि इतना बड़ा डेयरी सेक्टर में काम करने वाला भारत आखिर कैसे यह आंदोलन इतना बड़ा हो गया। तो यह आंदोलन सिर्फ सहकारिता के बूते हुआ, सहकारिता के नाते हुआ, और ये पिछले 10-12 सालों में तो कई फोल्ड के, कई गुना के वृद्धि दर्ज कर रहा है। इसकी ग्रोथ बहुत तेज है। डेयरी सेक्टर में सबसे ज्यादा भूमिहीन किसान इसमें काम करते हैं, 2, 4, 5 पशु रख करके, दुधारू पशु रख लिया और दूध सवेरे उनका कलेक्शन सेंटर पे पहुंचा देते हैं और उनको पैसा मिल जाता है, हाथ के हाथ पैसा मिलता है। कोऑपरेटिव सेक्टर से खाद मिलती है, सारा इनपुट। आप समझिए कि हमें लगता है कि

0: 60 से 70% किसान फर्टिलाइजर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है थ्रू कोऑपरेटिव ही जाता है, उनके पास पहुंचता है और सब उधारी पर मिलता है, सब क्रेडिट पे मिलता है। किसान को जब सख्त जरूरत होती है फर्टिलाइजर की, सीड की, किसी भी इनपुट की, वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के थ्रू ही जाता है। और जब उसकी खेती हो जाती है, जब उसकी उपज तैयार होती है, जब वो मार्केट में बेच लेता है, यानी उपज को खरीदने का भी काम कोऑपरेटिव सेक्टर की एजेंसीज ही करती हैं। हर स्टेट की अपनी नोडल एजेंसीज हैं जो कोऑपरेटिव सेक्टर से जुड़ी हुई हैं, जो उनके लिए काम करती हैं। अब इसके बाद फिर वो पैसा जमा करते हैं। एक छोटा सा डेटा दूंगा आपको कि पिछले 14 के पहले हमें लगता है कि मुश्किलन 25 से 28 हजार रुपया या मैक्सिमम मान लीजिए 30 हजार करोड़ कुल टोटल क्रेडिट रही होगी कोऑपरेटिव की ग्रामीण क्षेत्रों में। कोऑपरेटिव सेक्टर का एक कॉर्पोरेशन है, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, एनसीडीसी बोलते हैं, उसका आज की तारीख में जो डिसबर्समेंट है, इस साल का जो बजट है, जो उसका टारगेट है, वह 1.5 लाख करोड़ का है। जरा सोचिए, एक साल में, सिर्फ एक वर्ष का 1.5 लाख करोड़। और पिछली सरकारों का, पिछली कितनी सरकारें नहीं, वो सिर्फ 25 और 30 हजार करोड़ पर टिकी रही।
1: तो ये एक आजादी भी मिल रही है छोटे और सीमांत किसानों को जो प्राइवेट मनी लेंडर्स हैं उनसे।
0: सबसे बड़ी बात है कि प्राइवेट लेंडर से उनका बचाव हो गया, सूदखोरों से उनको पैसा नहीं लेना पड़ता, अपनी पैक्स से ले सकते हैं या कोऑपरेटिव बैंक से ले सकते हैं। दूसरी बात कि सरकार ने सबको केसीसी दे रखा है। आपने जो कहा ना कि इस सूदखोरों से तो इनका छुटकारा ही हो गया, क्योंकि केसीसी हफ्ते हर एक के हाथ में आ गया। हाँ, एक बात और, जितने भी दूसरे एलाइड सेक्टर हैं, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए संबद्ध जो क्षेत्र हैं, उन्हें किसान सरकार मानती ही नहीं थी, उनके उनके किसी परिभाषा में आते नहीं थे। आज जो पशुपालक हैं, डेयरी वाले हैं, जो दूध वाले हैं या मछुआरे हैं, बी कीपिंग वाले हैं, बागवानी करने वाले हैं, इन सबको किसान मान लिया गया है। और किसान क्रेडिट कार्ड अब सिर्फ किसान को नहीं, खेती करने वाले को नहीं, ये सेक्टर में काम करने वाले लोगों को भी केसीसी का लाभ मिलता है। यानी बहुत नॉमिनल ब्याज दर पर उनको जितना उनकी डिमांड होती है उसको पैसा मिल जाता है। इसलिए उनकी स्थिति में बहुत भारी सुधार हुआ है।
1: Mr. Iyer, coming to you, can you tell us that this government has always had an inclusive approach towards development in any and every sector? So if we talk about the vulnerable section, the small and marginal farmers, of course, you mentioned the PM Kisan Samman Nidhi Yojana. The very word Samman is giving respect to the farmers. Then the Fasal Bima Yojana you talked about, Kisan Mandhan Yojana is giving pension for small and marginal farmers, and nearly about 25 lakh farmers have enrolled. And also another very interesting and enlightening statistic is that 51% beneficiaries of PM Fasal Bima Yojana belong to the Scheduled Caste, Scheduled Tribe, OBC categories. And of course you mentioned PM Dhan Dhanya Krishi Yojana, which is going to benefit 1.7 crore farmers in most low productivity areas, the aspirational districts. So you feel that it is one of the intentions of the government is to take this prosperity to every farmer, be it in a remote area or be it from a backward area?
2: Absolutely, absolutely. You see, the overall philosophy of Prime Minister Modi has been that beech se lekar bazaar tak. And this is a broad concept, you know, from the seed to the market, the final produce. In that, whatever process is involved, including the economic condition of the farmer, the health of the farmer, and also use of modern technology. And do not forget, particularly irrigation. Now, in the last budget, they have got it for micro irrigation, where 5,000 crore has been set apart. Yes. See, apart from major irrigation projects, because the underlying philosophy is per drop more crop. That is, for every drop that is being, you know, water, that is, that the productivity must go up, which will require, you know, streamlining your canals, repair and maintenance of your canals, sub canals, and all these requires, you know, all the ministries of the government along with the state governments. They have to work hand in hand to ensure the benefit reaches everybody. You mentioned about the Dalit farmers, you mentioned about tribal farmers. They have a problem of their own, a very unique problem. That is also being tackled in a different way, particularly, you know, the climatic conditions as well as the land condition. You know, there are places which are receiving rainfall throughout the year. There are places that do not receive rainfall at all. So you have already schemes to tackle that also. This particular approach we have seen is there is not one single aspect that is neglected. Yes. And our farmer knows that he has a confidence that this government, whatever problem comes, they will take care of it. And take, for instance, the role of technology. I want to make a special mention. Now, Drone Didi Yojana. Now, look at Drone Didi Yojana. This is to empower the women.

0: and self-help groups in our villages. But that is also connected with agriculture productivity. Now, these Didi, drone Didis are being trained to use the technology for, you know, pesticides, spreading the pesticide, spraying of pesticide, as well as finding out the condition of the crops. You know, we've had the vast acreage under crop. What is the condition of the crop? So this kind of technology availability is also giving boost to the farmer, like the soil health card and other things. So the overall idea is, you know, there should be an integrated development.
1: Absolutely. So Mr. Singh, jaisa inhone kaha, Mr. Iyer ne, ki ek parikalpana hai ki hum jo vishwa hai, usko bhi export kare. Hum already exporter, major agriculture exporter ban gaye hai. 2014 se dekhe, to 37% bade hai humare agriculture exports. $51 billion ho gaye hai. Aur isme jo processed food exports hai, unka share bhi badhkar 20% ko paar kar gaya hai. So ek shift hai towards higher value added. So ek progressive shift dikhai de raha hai food processing ki taraf. Food processing par bahut sarkar ne jo bal diya hai, PLI bhi aaya hai food processing industry ke liye. Iske bare mein aap hama thodi bata sakte hain jo value added aur food processing hai, is par bal diya jana kyun itna important hai?
2: फूड प्रोसेसिंग क्या है कि रॉ फूड आइटम्स यानी जो कृषि उपज है, अगर उसको हम प्रोसेस्ड करके बेचते हैं, वैल्यू एडिशन कर देते हैं, तो उसका मूल्य बेहतर मिलेगा, किसान को फायदा होगा. हो क्या रहा है कि जैसे हमारे यहाँ जितना दूध पैदा होता है पूरे देश में, दुनिया का सबसे ज्यादा दूध पैदा करने वाला देश, जिसका मोर देन 60% कच्चा यूज होता है, जिसकी प्रोसेसिंग नहीं होती है, 30-40% ही दूध का अभी तक प्रोसेसिंग हो पाती है. अगर इस दूध की प्रोसेसिंग होने लगे तो बेहतर मूल्य किसानों को और बेहतर मूल्य मिल सकता है और कंज्यूमर्स को भी राहत मिलेगी. इसी तरह से अगर हम देखें हमारे यहाँ जो फिशरी एक बड़ा सेक्टर है. अगर हम इसकी प्रोसेसिंग सेंटर खोल दें, प्रोसेसिंग बेहतर होने लगे, तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा और डोमेस्टिक डिमांड जो पूरी होगी और फिशरमैन को बेहतर मूल्य मिलेगा, अच्छा मूल्य मिलेगा, लाभकारी मूल्य मिलेगा. तो हमारे देश में जितने भी अब तक फूड प्रोसेसिंग के वो बने सेंटर बनाए गए, मेगा फूड पार्क बनाए जाते हैं, कितने साल से हमें लगता है 201 साल से हम सुनते आ रहे हैं जब से ये मिनिस्ट्री बनी है. इस सेक्टर में बहुत अच्छा काम नहीं हुआ जितनी संभावना है. यहाँ पर पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, काम उस गति से नहीं हुआ है. इस सरकार का फोकस पूरा रहा है, खासतौर से प्रधानमंत्री का, कि किसानों की उपज का बेहतर मूल्य तब मिलेगा जब उसके उपज का प्रोसेसिंग होगी, प्रसंस्कृत के तौर पर जाएगा. कोई भी चीज टमाटर के, तो जैसे टमाटर है, आलू है, एक सिंपल वे में अगर टमाटर जाता है तो किस साल के कुछ महीनों तक ही वो सप्लाई की जा सकती है. लीन पीरियड में उसके मूल्य बढ़ जाते हैं, जिसका सीधा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे कंज्यूमर्स पर. तो कंज्यूमर्स को भी प्रभावित ना होना पड़े, किसान को अच्छा मूल्य मिले साल भर, इसके लिए प्रोसेसिंग का होना बहुत जरूरी है. और जितने भी प्रोड्यूस हैं हमारे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, उनके सारा प्रोसेसिंग सेंटर उसी जगह पे होना चाहिए जहां से वो पैदा होते हैं.
1: तो इस संदर्भ में मिस्टर सिंह, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अंतर्गत 1185 प्रोजेक्ट्स मॉडर्न प्रोसेसिंग और कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एस्टैब्लिश किए गए हैं नवंबर 2025 तक, और जो पीएलआई, जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, वो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए लाई गई है, जिसके अंतर्गत 169 एप्लीकेशंस को मंजूरी मिली है, और पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग स्कीम भी है, जिसमें 4 लाख से अधिक एप्लीकेशंस के माध्यम से 1,70,000 से अधिक लोन्स को मंजूरी मिली है. तो आपको लगता है कि ये एक अच्छी शुरुआत है, और आपको लगता है कि इसमें, जैसा आप कह रहे हैं, कि स्कोप और भी ज्यादा है?
2: कोरोना के पीरियड में प्रधानमंत्री ने एक बात कही थी, और कही ही नहीं थी बल्कि उन्होंने घोषणा भी की थी, कि 1,00,000 करोड़ का एग्री इन्फ्रा फंड का अनाउंसमेंट किया था, और उस फंड का अगले 5 सालों तक उसका उपयोग किया जाएगा. और अब समझिए कि 1,00,000 करोड़ का एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होता है, तो ये जितना आपने बताया, मत्स्य संपदा हो, चाहे फूड संपदा हो, जितनी भी योजनाएं परियोजनाएं बनाई जा रही हैं, सब उसका पार्ट है. और इसका मतलब है कि प्रोसेसिंग के सेक्टर पर पूरा फोकस रहेगा. जब प्रोडक्शन बेहतर होगा, अगर ज्यादा प्रोडक्शन हो गया तो हो सकता है उसके खराब होने के चांस हो जाएंगे, तो उसको अगर प्रसंस्करण कर देते हैं तो वो हमारी चीज बच जाती है. और कम उत्पादन में बेहतर उपयोग करने का तरीका है प्रसंस्करण. प्रसंस्करण से कई फायदे होते हैं, जो किसान को फायदा, कंज्यूमर को फायदा, और उससे जो उस पूरी चेन बनती है उसमें लोगों को रोजी रोजगार मिलते हैं, इम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है.
1: मिस्टर अय्यर, कमिंग टू यू, एज वी मेंशन्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम दैट वी हैव रीच्ड अ रिकॉर्ड फूड ग्रेन प्रोडक्शन एंड अ हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन हैज ऑल्सो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज्ड इन द लेटेस्ट बजट. प्रमोशन ऑफ हाई वैल्यू क्रॉप्स लाइक कोकोनट, कोको, कैश्यू, सैंडलवुड इन कोस्टल रीजन्स एंड अगर ट्रीज इन नॉर्थ ईस्ट एंड आलमंड्स, वॉलनट्स एंड पाइन नट्स इन हिली एरियाज. These have been defined as the focus areas.

समवेत स्वरों में अभी अपने सुनी ये देशभक्ति परक रचना एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। 8:45 होने को हैं। अब से कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे। समाचार पहले हिंदी में और उसके बाद अंग्रेजी में होंगे। कृपया समाचार संध्या की प्रतीक्षा करें।

समवेत स्वरों में अभी अपने सुनी ये देशभक्ति परक रचना एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। 8:45 होने को हैं। अब से कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे। समाचार पहले हिंदी में और उसके बाद अंग्रेजी में होंगे। कृपया समाचार संध्या की प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए समिति का गठन किया। भारत ने नेपाल के साथ द्विपक्षीय मामलों के समाधान में तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप को नकारा। भारत ने वायु से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल रुद्रम 2 का सफल परीक्षण किया। प्रसार भारती के वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म ने 2 साल के भीतर ही 1 करोड़ यूजर्स का आंकड़ा पार किया। यूक्रेन में रूस के हमलों में 21 लोग मारे गए। और महिला क्रिकेट में भारत आज रात टॉन्टन में मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगा। समाचार विस्तार से। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए 1 सदस्यीय समिति का गठन किया है। समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान करेंगी। समिति 1 महीने के अंदर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस बीच बोर्ड ने आज कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन हेतु ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। ये सुविधा केवल उन्हीं छात्रों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकन उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां प्राप्त कर ली हैं।
1: पोर्टल शुरू होते ही इसे बड़े स्तर पर साइबर हमलों के जरिए इसकी सेवाओं को बाधित करने का प्रयास किया गया। CBSE ने बताया कि इन्हीं प्रयासों के क्रम में मात्र 2 मिनट में पोर्टल पर 15 लाख हिट दर्ज की गईं और अनधिकृत रूप से फाइलों तक पहुंचने के लिए 1 लाख से अधिक प्रयास किए गए। बोर्ड ने साफ किया कि उसकी टीमें पूरी सतर्कता और तत्परता के साथ काम कर रही हैं ताकि छात्रों को हर संभव सुविधा प्रदान की जा सके। छात्रों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर CBSE ने प्लेटफॉर्म में और कई सुधार किए हैं। इसके तहत प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक और निर्बाध बनाने के लिए सेशन की समय सीमा भी बढ़ा दी गई है। पुनर्मूल्यांकन पोर्टल पर वर्तमान में 8,000 से अधिक उपयोगकर्ता एक साथ काम कर रहे हैं। अब तक 16,000 से अधिक छात्र सफलतापूर्वक अपना मूल्यांकन जमा कर चुके हैं। पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। आनंद कुमार के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत ने नेपाल के साथ सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की किसी भी तरह के हस्तक्षेप को नकार दिया है। कुछ दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने काफी समय से लंबित विवाद को सुलझाने में चीन और ब्रिटेन के शामिल होने की मांग की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सीमा मुद्दों के सभी पहलुओं को सुलझाने के लिए स्थापित द्विपक्षीय तंत्र मौजूद हैं।
2: भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है। सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नो मैन्स लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं, जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने जम्मू कश्मीर के बारे में पाकिस्तान यूरोपीय संघ के संयुक्त वक्तव्य में अनुचित संदर्भों को भी खारिज कर दिया है।
3: भारत के आंतरिक मामलों पर संयुक्त वक्तव्य में किए गए ऐसे अवांछित संदर्भों को अस्वीकार करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न तथा अविभाज्य अंग हैं, जिनका ऐसे मामलों पर कोई अधिकार नहीं है। उन्हें इन पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।
0: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्से रॉड्रिक्स कल से 4 दिन के भारत दौरे पर रहेंगे। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि डेल्से रॉड्रिक्स के साथ कैबिनेट के

0: प्रमुख मंत्री भी रहेंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि वो अपने दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगी।
1: विजिट ऑफ द एक्टिंग प्रेसिडेंट।
2: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। इन वार्ताओं में भारत वेनेजुएला संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा होगी और ऊर्जा, व्यापार, निवेश, फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन तथा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों की खोज पर भी चर्चा होगी।
1: ट्रांसपोर्टेशन एंड रिन्यूएबल एनर्जी।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति शिपोकोसा माशातिले से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट पर राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच घनिष्ठ मित्रता है और दोनों देश वैश्विक दक्षिण में प्रमुख स्थान रखते हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार की निरंतर वृद्धि का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों पक्षों को प्रौद्योगिकी, औषधीय, ऊर्जा, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग करना चाहिए। इससे पहले उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति से मुलाकात की। उनके साथ दक्षिण अफ्रीका सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: टीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO तथा वायुसेना ने स्वदेशी निर्मित वायु से सतह पर मार करने में सक्षम रुद्रम 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ये परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज में अत्यंत कठिन परिस्थितियों में किए गए। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि परीक्षण के दौरान मिसाइल सटीकता के साथ अपने निर्धारित लक्ष्य तक पहुंची। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए DRDO, भारतीय वायुसेना, रक्षा, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विकास और उत्पादन भागीदारों तथा संबंधित उद्योग हितधारकों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि सफल परीक्षण स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकी की बढ़ती परिपक्वता को प्रदर्शित करते हैं और उन्नत हथियार प्रणालियों में आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवर, अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनके नियुक्तियों को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु और केरलम में अगस्त्यमलाई पारिस्थितिकी परिदृश्य के संरक्षित क्षेत्रों में अतिक्रमण को गंभीरता से लेते हुए एक समयबद्ध अतिक्रमण उन्मूलन योजना तैयार करने और इसे प्राथमिकता के आधार पर लागू करने का निर्देश दिया है। शीर्ष न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि अतिक्रमण करने वाली सभी 118 वर्तमान और सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के खिलाफ अनुशासनात्मक और कानूनी कार्यवाही शुरू की जाए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय को पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। न्यायमूर्ति राय बृहस्पतिवार को मुख्य न्यायाधीश संगम कुमार साहू की सेवानिवृत्ति के बाद शुक्रवार से पदभार ग्रहण करेंगी। दिल्ली की एक अदालत ने नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में 5 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 15 तारीख तक बढ़ा दी है। विशेष न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय गुप्ता ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI की उस याचिका को स्वीकार कर लिया जिसमें मंगीलाल, विकास बिवाल, दिनेश बिवाल और यश यादव और धनंजय लोखंडे की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग की गई थी। NTA ने 3 मई को आयोजित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा रद्द कर दी थी। पुनर्परीक्षा 21 जून को निर्धारित की गई है। प्रसार भारती के डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म वेव्स OTT की नवंबर 2024 में शुरुआत के 2 वर्षों से भी कम समय में पंजीकृत उपयोगकर्ताओं की संख्या 1 करोड़ से अधिक हो गई है। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने बताया कि देश के सार्वजनिक डिजिटल मीडिया तंत्र के विकास में ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मंत्रालय ने कहा कि ये भारत और दुनिया भर के दर्शकों को विश्वसनीय, समावेशी और विविध सामग्री प्रदान करने वाले स्वदेशी डिजिटल प्लेटफॉर्म को तेजी से अपनाए जाने को दर्शाता है।

0: में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। आज महिला सशक्तिकरण की दिशा में हुए प्रयासों पर एक विशेष रिपोर्ट।
1: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार के लगातार प्रयासों से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। साल 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लाखों महिलाओं को बिना किसी गारंटी के ऋण मिल रहा है, जिसके कारण उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने और आगे बढ़ाने में मदद मिली है। इस योजना के तहत इस वर्ष मार्च तक 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक ऋण लाभार्थियों को वितरित किए जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 17 लाख करोड़ रुपए महिलाओं को दिए गए। तमिलनाडु के तिरुपुर के रहने वाली वाणीश्री ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना ने उन्हें उद्यमी बनने के लिए प्रेरित किया।
2: इस योजना की सहायता से मैंने अपनी नई बुटीक शॉप खोली है और मैं ये गर्व के साथ कह सकती हूँ कि ये शॉप बहुत अच्छी चल रही है। इसके साथ ही मैं अब अपने प्रतिष्ठान की 3 से 4 और शाखाओं का सफल संचालन करने में सक्षम हो गई हूँ।
3: 2-3 ब्रांचेस ऑल्सो।
1: वहीं प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और भूमिनिया जैसी प्रमुख योजनाओं ने महिलाओं की बैंकिंग, बचत और उद्यमिता से जुड़ने की क्षमता को मजबूत किया है। जनधन योजना के तहत अब तक 58 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 33 करोड़ खाते महिलाओं के नाम पर हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला की रहने वाली सरोज बाला ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जनधन खाता खुलने के बाद अब सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ सीधे उनके बैंक खाते में पहुंचता है।
4: ये जीरो बैलेंस से खाता आराम से खुल जाता है, इसके लिए कोई राशि जमा नहीं करवानी पड़ती। जब कोरोना था, जब किसी के पास 1 रुपया भी नहीं होता था, उस समय लोगों को 1500 रुपया मोदी सरकार ने दिया। मोदी जी के 12 वर्ष का कार्यकाल बहुत अच्छा है, उन्होंने आम जनमानस को बहुत सुविधाएं दी है। एक हमारे को बीमा योजना मिली है, 2 लाख बीमा कवर मिलता है।
1: वही मोदी सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल लखपति दीदी है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को सालाना कम से कम 1 लाख रुपए की स्थायी आय प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। यह पहल अब लगभग 6 लाख गांव तक पहुंच चुकी है और सरकार ने देश भर में 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कारण राष्ट्रीय लिंगानुपात वर्ष 2014-15 के 918 से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 929 हो गया है। सरकार की निरंतर नीतियों और योजनाओं के चलते महिलाएं आज आत्मनिर्भर और समावेशी अर्थव्यवस्था के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी लोखंडे प्रशांत सीताराम को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री सीताराम इससे पहले गृह मंत्रालय में अपर सचिव के रूप में कार्यरत थे, उन्होंने श्री राहुल सिंह का स्थान लिया है। सरकार ने श्री वरुण भारद्वाज को CBSE में सचिव के रूप में नियुक्त किया है। रूस ने कीव और यूक्रेन के अन्य शहरों पर ड्रोन और मिसाइलें दागी, जिसमें 21 नागरिक मारे गए और 100 से अधिक घायल हो गए। राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि देश में नागरिक बुनियादी ढांचे और ऊर्जा सुविधाओं को निशाना बनाया गया। उन्होंने अमरीका से यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइलें भेजने का भी आग्रह किया। दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के अंतर्गत सेवारत 550 से अधिक भारतीय शांति रक्षकों ने संघर्षग्रस्त देश में नागरिकों की सुरक्षा और शांति स्थापना प्रयासों में उनके समर्पण और प्रतिबद्धता के लिए सम्मानित किया गया। इनमें 53 महिलाएं शामिल हैं। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 11 बजे शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए समिति का गठन किया। भारत ने नेपाल के साथ द्विपक्षीय मामलों के समाधान में तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप को नकारा। भारत ने वायु से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल रुद्रम 2 का सफल परीक्षण किया।

भारती के वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म ने 2 साल के भीतर ही 1 करोड़ यूजर्स का आंकड़ा पार किया। यूक्रेन में रूस के हमलों में 21 लोग मारे गए और महिला क्रिकेट में भारत आज रात टोंटन में मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ 3रा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: सुबह की खूबसूरत शुरुआत। सुकून से भरा दोपहर,
1: पुरानी जींस और गिटार,
0: शाम के ट्रैफिक की फिर वही जद्दोजहद, शहर के शोरगुल में खो जाता ये सफर
1: जगह,
0: फिर रात को फुर्सत के वो पल,
2: ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा,
0: यानी आपके हर वक्त का हम सफर। तो सुनते रहिए FM रेनबो 100.7 MHz। FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
3: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan Lucknow ki.
4: Namaskar, adab and hello hi. रात के 9:01 और ठीक 58 सेकंड हो रहे हैं और ये वक्त है आपके सबसे पसंदीदा लेट नाइट स्टॉप का। यस, मैं बात कर रही हूँ रेनवे रेनबो कैफे की, जिसकी लाइट्स ऑन हो चुकी हैं और आपके सुरीले सफर में आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त ज्योति है हाजिर सिर्फ और सिर्फ आपके रेनबो एफएम पर। भाई आज है जून की 2 तारीख, दिन भर सूरज देवता ने काफी परेशान किया, तंदूर भट्टी सुलगा ली ऐसा महसूस हो रहा था। इतने सुलगने के बाद, इतने झुलसने के बाद अब राहत थोड़ी मिली है रात में जाकर। तो भाई इस वक्त जितने भी लोग बेड पर लेटकर कूलर या एसी की हवा खा रहे हैं, तुरंत मुस्कुराइए क्योंकि अगले 1 घंटे रेनबो कैफे में टेंशन लेना है सख्त मना। आज रात हम और आप मिलकर बात करेंगे जून के इस महीने की सबसे खूबसूरत चीज यानी गर्मियों की छुट्टियों की, और साथ में सर्व करेंगे वो गाने जो आपके मूड को एकदम चिल्ड कर देंगे, और छुट्टियों की ये बातचीत आपकी टेंशन की भी करने वाली है टोटल छुट्टी। तो करें शुभारंभ। ऑलराइट, हियर वी गो।

0: इसके अंतर्गत सुनिए पीएम स्वनिधि के 6 वर्ष वित्तीय समावेशन के माध्यम से रेहड़ी पटरी विक्रेताओं के सशक्तिकरण पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के महाप्रबंधक राजेश कुमार और पत्रकार सौरभ शुक्ला।
1: मंथन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं पीएम स्वनिधि स्कीम के बारे में, जिसने शहरों और कस्बों में काम करने वाले रेहड़ी पटरी वाले छोटे विक्रेताओं की मदद करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं राजेश कुमार जी, जो जनरल मैनेजर हैं सिडबी के, उनसे बात करेंगे। राजेश जी, आपका स्वागत है।
2: धन्यवाद
1: राजेश जी। सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे, आम लोगों के समझने के लिए, कि ये पीएम स्वनिधि योजना आखिर है क्या और इससे रेहड़ी पटरी वालों को खास तौर पर क्या फायदा मिलता है।
2: पीएम स्वनिधि योजना बेसिकली एक लोन प्रोवाइड करने के लिए शुरू की गई योजना थी, जिसमें सिलसिलेवार ढंग से 3 चरणों में लोन मिलता था। पहला लोन 10,000 का था, दूसरा 20,000 का और तीसरा 50,000 का। इस लोन के साथ साथ उनको इंटरेस्ट सब्सिडी थी, 7% का इंटरेस्ट सब्सिडी मिलता था। और डिजिटल ट्रांजेक्शन करने के लिए, डिजिटल ट्रांजेक्शन से मेरा मतलब है QR कोड के थ्रू पेमेंट लेना या डिजिटली पेमेंट करने पे 100 रुपए तक प्रति मंथ का इंसेंटिव था
1: जी।
2: अब उसके अलावा 400 रुपए का और इंसेंटिव ऐड हो गया है, जो कि बल्क ट्रांजेक्शन परचेज करने पे उनको मिलता है। इसके अलावा जो सरकार की 8 वेलफेयर स्कीम्स हैं, उनसे जोड़ने की योजना थी और उनके स्किल के डेवलपमेंट करने के लिए उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग का प्रोग्राम था।
1: तो आज जब हम बात कर रहे हैं, तो इस योजना को करीब 6 साल पूरे हो चुके हैं, तो आपको क्या लगता है, खासतौर पर कोरोना के बाद छोटे दुकानदारों के लिए योजना कितनी मददगार साबित हुई होगी?
2: ये मददगार कितनी ज्यादा थी, ये आप इसके नंबर से समझ सकते हैं। अभी तक 75 लाख से ज्यादा लोगों को इस स्कीम में लोन मिल चुका है और करीब 17,800 करोड़ के लोन, करीब 1,13,00,000 लोन दिए जा चुके हैं। तो इसका विस्तार पूरे भारत में था, सारे स्टेट यूटीज में स्कीम में, अर्बन एरियाज में इसके लोन दिए गए और लोगों को काफी सहायता हुई, इसलिए कि उनके पास उसमें कार्यशील पूंजी खत्म हो गई थी, बिजनेस को रीस्टार्ट करने के लिए उसमें पैसा चाहिए था
1: जी।
2: बट गरीब लोगों को पैसे की जरूरत हमेशा रहती है, कोरोना खत्म होने के बाद भी अभी तक चल रही है और उसका डिमांड है और लोगों में इसका काफी यूटिलिटी दिख रहा है
1: जी। राजेश, एक अहम चीज जो इस स्कीम में है कि वो एक बिना गारंटी के एक छोटा लोन मिल जाता है, तो ये कितना बड़ा फायदा होता है रेहड़ी पट्टी वाले लोगों के लिए और ऐसे लोग जो साहूकारों के पास जाते थे पहले लोन लेने के लिए या पैसा कर्ज लेने के लिए और उसमें उन्हें काफी लंबा ब्याज भी चुकाना पड़ता था, तो ये खासतौर पर उनके जीवन स्तर में किस तरह का एक सुधार आप देखते हैं?
2: सुधार 2 रूप में आप देख सकते हैं। एक तो वही अमाउंट अगर वो इनफॉर्मल सेक्टर से मनी लेंडर से लेते थे तो काफी ज्यादा ब्याज देना पड़ता था
1: जी,
2: जो उनके प्रॉफिट को कम करता था। दूसरा, चूंकि काफी हाई रेट कॉस्ट पे लोन मिलता था तो वो एक छोटा अमाउंट लेते थे, जितना बेसिक जरूरत होती थी उतनी ही लेते थे क्योंकि काफी ज्यादा उनको इंटरेस्ट देना पड़ता था। स्कीम में रिजनेबली गुड अमाउंट, जिसको कहते हैं कि पहले 10,000 रुपया जो अभी बढ़ के 15,000 रुपया हो गया, फिर 25,000 रुपया और फिर 50,000 रुपया का लोन मिलता है, तो उनको सिर्फ इतना बिजनेस चलाने के लिए बल्कि बिजनेस बढ़ाने के लिए सुविधा हो रही है और इसकी वजह से उनका ओवरऑल इनकम इसलिए बढ़ रहा है कि उनके बिजनेस का साइज बढ़ रहा है
1: जी।
2: तो दोनों रूप से फायदा हुई और हमने इम्पैक्ट स्टडी कराया, 2 स्टडी कराया था, तो उसमें निकल के आया कि इनका इनकम जो है करीब करीब 20% से एनुअली बढ़ रहा है जिन्होंने इसके अंदर लोन लिया है। तो इसका दोनों वजह से है, कॉस्ट कम होना और बिजनेस का बड़ा करना।
1: कोई एक उदाहरण जो आपके जहन में ताजा हो रहा हो इस समय बात करते समय, कि किसी के जीवन स्तर में आपने सुधार देखा हो, क्या काम करता था वो व्यक्ति?
2: बहुत लोगों ने बिजनेस को बड़ा किया, पहले थोड़ा सा क्वांटिटी रखते थे। जब भी हम फील्ड में जाते हैं तो वो बताते हैं कि चाहे वो फल वाला हो, सब्जी वाले हो या आर्टिफैक्ट्स वाले हो, उनका दायरा बढ़ गया, उनका स्टॉक का क्वांटिटी बढ़ गया और उनकी कैपेसिटी बढ़ गई। कुछ ने बैकवर्ड इंटीग्रेशन, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन भी किया कि पहले आप सिर्फ फल बेच रहे थे, अब उसका आप जूस भी बेच रहे हैं या कट फ्रूट्स भी बेच रहे हैं, सिर्फ आप मछली बेचते थे, अब मछली को जो है सो फ्रीज में रख रहे हैं तो उसको ज्यादा समय तक बेच पा रहे हैं या फिर उसको आप प्रोसेस करके बेच रहे हैं। पहले आप छोटी आय के आपके पास पूंजी थी तो आप छोटे छोटे आर्टिफैक्ट्स खरीदते थे, अब जब ज्यादा पैसा है तो बड़े बड़े महंगे आर्टिफैक्ट्स भी खरीद के आप दुकान में रखते हैं। तो हजारों ऐसे एग्जांपल्स मिल जाएंगे आपको, आपको बता देंगे लोग कि कैसे उनके बिजनेस को बढ़ावा मिला है इससे।
1: आप लोगों को कोई चुनौतियां भी सामने आई जब स्कीम को आप लोगों के बीच लेकर के गए, उनका रुझान कैसे था? क्योंकि आज तो नंबर्स बड़े अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन शुरुआती दिनों में क्या माहौल था?
2: शुरुआती दिनों में डिमांड था, इसलिए कि कोरोना के कारण लोग काफी अफेक्टेड हुए थे, उनको पूंजी चाहिए थी और सरकारी जो मशीनरी है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे ULBs हो, अर्बन लोकल बॉडी, मतलब जो शहर का

0: जो लोकल निकाय है उन लोगों में भी रुचि थी, बट एक मुश्किल जो थी इनको बैंक तक ले जाना, और बैंकों में भी एक थोड़ा सा ये मानसिक रूप से ये होता है कि इतने गरीब लोगों को लोन देना वापस हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। शुरुआती एक उलझन थी लोगों के दिमाग में, एक दुविधा थी कि ऐसा सक्सेसफुल होगा नहीं होगा, बट बहुत जल्दी ये साबित हो गया कि ये काफी सक्सेसफुल है, लोग ऋण चुका रहे हैं, तो उसके बाद ये पीछे मुड़ के इस स्कीम ने नहीं देखा।
1: ये वाकई खासतौर पर बैंकों के लिए भी दिक्कत होती है कि अगर वो किसी को लोन दे रहे हैं तो वापस आएगा नहीं आएगा, ये चिंता बैंकों के लिए बड़ी होती है। तो इस स्कीम में क्या कहीं ऐसा कुछ देखने को मिला है जरा भी कि नहीं लोगों की तरफ से इंतजार हो कि नहीं मेरा पैसा माफ कर दिया जाएगा ऐसा कुछ, या वो अपनी क्रेडिट रेटिंग सुधारने के लिए तुरंत ही लोन का भुगतान करने में सबसे आगे बढ़कर अपना काम करते हैं?
0: मैंने नहीं देखा कभी कि किसी ने इंतजार किया हो कि उसका लोन माफ हो जाए, लेकिन चूंकि गरीब लोग हैं तो उनके जिंदगी में बहुत सारी ऐसी जेन्युइन परेशानियां आती रहती हैं, वो हेल्थ का इश्यूज हो, बिजनेस का इश्यूज हो, आपके इलाके में बाढ़ आ गया, आपके गांव में स्थिति आपदा हो गई, गर्मी है, कुछ ही कारण से आपका बिजनेस, बारिश हो गई बहुत ज्यादा तो आपका बिजनेस अफेक्ट हो गया, तो बहुत सारे कारणों से लोग ऋण को चुका पाने में असमर्थ होते हैं। बट ऐसा मैंने नहीं देखा जहां पर कि उनके पास नियत नहीं हो चुकाने की। और इस स्कीम में इनबिल्ट इंसेंटिव है,
1: जी
0: आप पहला लोन पे करेंगे तो दूसरा बड़ा लोन मिलेगा, दूसरा लोन प्रीपे करेंगे तो तीसरा और बड़ा लोन मिलेगा, आप तभी लेंगे लोन जब आपको जरूरत है, लेकिन आपको ये पता है कि जब जरूरत है तो वो लोन मिलेगा,
1: जी
0: तो इसलिए लोगों की रुचि है लोन को लेने में और रिपे करने में।
1: जी जाहिर है। तो मतलब कर्ज चुकाएंगे तो अपने कारोबार को बढ़ाने की रुचि लोगों में रहती ही है, और उसका एक इंसेंटिव भी मिलता है कि अगर आपने लिया हुआ कर्ज समय पर चुका दिया तो आपको और ज्यादा कर्ज मिलेगा। डिजिटल पेमेंट इंसेंटिव की भी आपने बात कही थी, वो किस तरह से होता है और पिछले 6 सालों में लोगों ने इसमें किस तरह का रुझान दिखाया?
0: डिजिटल इंसेंटिव है, अगर आप जैसे ग्राहक से अपने पैसा जो है सो क्यूआर कोड के थ्रू ऑनलाइन लेते हैं तो उसके लिए हम इंसेंटिव देते हैं, या आप जो अपनी पेमेंट करना है, जो आप खरीद करते हैं उसके लिए आप पेमेंट करते हैं, पर्सनल हो या बिजनेस एक्सपेंसेस हो, तो एक तो रिटेल का हम देते हैं जो साल में मैक्सिमम 1200 रुपए तक मिल सकता है, 100 रुपए प्रति मंथ। दूसरा एक अभी शुरू किया गया है जिसमें क्वार्टर में हम 100 रुपए देते हैं, अगर वो स्ट्रीट वेंडर 2000 रुपए से ज्यादा का परचेज करता है और ऑनलाइन पेमेंट करता है, तो इस तरह से आप साल में 1600 रुपए तक डिजिटल इंसेंटिव के रूप में पा सकते हैं, जो आपके ऑलमोस्ट लोन के इंटरेस्ट का कॉस्ट सब्सिडाइज कर देता है।
1: जी, महिलाओं के लिए इस योजना में कोई खास पहल देखने को मिली?
0: महिलाओं की भागीदारी इस स्कीम में काफी ज्यादा है, अबाउट 45% जो हमारे बेनिफिशियरी हैं वो महिलाएं ही हैं, तो दो की इस स्कीम में अलग से कोई उनके लिए इंसेंटिव का प्रोविजन नहीं किया गया था, समरूप से ये स्कीम सबको बराबर रूप से सहायता प्रदान कर रहा है, लेकिन चूंकि हमारी सोसाइटी में बिजनेस में महिलाएं हैं और स्ट्रीट वेंडिंग में खास करके उनका योगदान दिखता है, तो उनकी भागीदारी वो हमारी स्कीम में भी दिखती है।
1: एक अहम सवाल ये भी उठता है कि जब हम अपने आसपास कारोबार में सुधार देखते हैं तो उससे उन लोगों का जीवन स्तर भी बढ़ता है पूरी तरह से। एक तरह से अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें तो उसमें आप इस तरह की योजनाओं का क्या फायदा होता देखते हैं?
0: अर्थव्यवस्था को फायदा यह है कि जैसे 17,800 करोड़ ये फॉर्मल लोन्स दिए गए, ये पैसे कभी इनफॉर्मल सेक्टर से लिए जाते, अब ये फॉर्मल सेक्टर से हैं, उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड बन रहा है, उनकी क्रेडिट हिस्ट्री बन रही है और आगे बाहर से लोन लेने में सुविधा होगी। इनफैक्ट हमारे स्कीम में जो स्टडी है उसके हिसाब से 30% से ज्यादा लोगों ने अभी ही स्कीम से बाहर बैंकों से लोन लिया है, फॉर्मल सेक्टर से लोन लिया है, ये फायदा है। दूसरा जो इम्पैक्ट है, जब आपका इनकम लेवल इंप्रूव होता है तो आपकी सबसे पहली इच्छा होती है कि अपने फैमिली का लिविंग स्टैंडर्ड में जहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण है या सबसे जरूरी आपको वो तो है उसकी बेसिक सुविधा की उन्नति कर सके, सुधार कर सके, वो आपके घर का हो, बच्चों की पढ़ाई हो या कोई हेल्थ का इश्यू हो, जिस घर के लिए अलग अलग चीजें क्रिटिकल होंगी, लेकिन जहाँ जो क्रिटिकल है वहां वो उस पर एक्सपेंड करते हैं, अपने को सुधारने की कोशिश करते हैं, और ये भी हमारे इम्पैक्ट रिपोर्ट में निकल के आया है कि आधे से ज्यादा लोगों के जीवन स्तर में कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता
1: आपने
0: है।
1: इम्पैक्ट रिपोर्ट का जिक्र किया तो उसमें क्या-क्या पैमाने रखे थे आप लोगों ने इस रिपोर्ट को बनाने के लिए?
0: एक तो हम देखना चाहते थे कि इनकम में क्या इम्प्रूवमेंट है, दूसरा ये देखना चाहते थे कि उस इम्पैक्ट उनके लिविंग्स पे आता है कि नहीं, तो 4 बेसिक पैरामीटर्स थे, हाउसिंग, एजुकेशन, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, उनके घर का रहन ठिकाना था, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, खुद का और परिवार का हेल्थ, और खाने पीने का एक न्यूट्रिशन जो एक बेसिक आप कहते हैं अच्छा भोजन रिलेटिवली वो मिल रहा है कि नहीं, कि इन 4 पैरामीटर पे स्टडी किया गया था।
1: तो क्या परिणाम इसके निकल के आए? क्या लोगों के स्तर में एक अमूलचूल परिवर्तन देखने को मिला या एक नोशनल इंक्रीज जिसे कहते हैं कि एक मामूली फर्क नजर आया?
0: उस ढंग से उसको क्लास

0: नहीं किया गया था उस रिपोर्ट में कि कितना आमूलचूल है, ये आमूलचूल तुरंत हो भी नहीं सकता,
1: जी
0: लेकिन हर एक कदम जो कि सही दिशा में बढ़ता है वो इम्पोर्टेंट है, उस तबके के लिए खास करके काफी मायने रखता है।
1: इस योजना का विस्तार भी किया गया है, आपको क्या लगता है किस तरह से और ज्यादा फायदेमंद होगा ये लोगों के लिए और नए लोग भी इस स्कीम में शामिल होंगे?
0: अभी तक ये सिर्फ शहरी लोगों के लिए था जो स्टैचुटरी टाउन्स हैं, अब हम उसको सेंसस टाउन में एंड पेरी अर्बन एरियाज में एक्सपेंड कर रहे हैं, तो एक तो वो फायदा हो रहा है, और दूसरा स्कीम में अब क्रेडिट कार्ड को जोड़ा गया है, दूसरा फायदा है लोगों के लिए जो एग्जिस्टिंग बोरोवर्स हैं, जो बेनिफिशियरीज हैं उनके लिए है, और तीसरा हम उनके स्किल में ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, उनके उनको एक बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए जो सपोर्ट चाहिए उस पर भी हम ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग कराना, उनका हैंड होल्डिंग कराना, उसके लिए भी सरकार कोशिश कर रही है।
1: सर, आपसे एक अहम सवाल ये जानना चाहेंगे कि जो छोटे लोन लेने वाले थे उनमें से कितने लोग बड़े लोन की तरफ बढ़े हैं, ऐसा कोई आंकड़ा अगर आप हमारे साथ साझा कर सकें?
0: जैसे हमारा जो स्कीम है, जो छोटे लोन है जिसको हम फर्स्ट लोन कहते हैं, तो उसमें करीब अभी आज की तारीख में 75 75.5 लाख लोगों ने लोन ले रखा है,
1: बिल्कुल
0: उसमें से करीब करीब 47 लाख से थोड़े कम लोगों ने रिपे कर दिया पूरी तरह से, या तो जो जिन्होंने फर्स्ट लोन रिपे कर दिया है वो सेकेंड लोन के लिए एलिजिबल है, उनमें से करीब 29 लाख लोगों ने सेकेंड लोन लिया है, और जो 13.5 लाख लोगों ने लोन रिपे कर दिया है उसमें से करीब 8 लाख लोगों ने थर्ड लोन लिया है, एक तरह से माना जाए कि काफी ज्यादा जो रिपेयर कर चुके हैं उनमें से मोर देन 60% 70% लोग जो है सो नेक्स्ट लोन लेते हैं।
1: तो चलिए हम बात करते हैं स्कीम के बेनिफिशरीज से भी, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। विष्णु शंकर भारद्वाज जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। विष्णु जी, सारनाथ के रहने वाले हैं आप, और क्या परिवर्तन आया आपके जीवन में इस योजना का लाभ लेने के बाद? बोलिए राजेश जी।
2: सर हम लोग तो रेडी वाले हैं, सारनाथ म्यूजियम पे ठेलिया पे दुकान लगाता हूँ मैं सर,
1: जी
2: और जो मेरा कार्ड है काफी पुराने समय से था जी, कोरोना काल जब आया तो हम लोग लगातार 2 साल के लगभग बंद किए हुए थे, दुकान फिर से शुरू की तो हम लोग की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो गई थी सर, तो उसी समय सर पीएम सुनिधि जो आई ये सर अच्छा होगी, पहली बार तो बैंक हम लोग को सम्मान मिलने लगा, फिर उसके बाद जो हम लोग उसमें रजिस्टर करा कर अपना 10,000 का लोन लिए, जब हम लोग उसकी एक्टिविटी करने लगे तो हम लोग को उसमें बहुत ज्यादा बेनिफिट होने लगा, पहली बार तो उसमें मंथली दे देना पड़ने लगा, फिर उसके बाद हम लोग जब 10,000 20,000 50,000 का लिए तो बैंक ऑटोमेटिक आज हमारी सर 4 लाख की लोन की हुई है, उसमें ओडी अकाउंट होती है सर, तो उससे सर हमको बहुत ही सहायता मिला, और उसके साथ साथ पीएम सुनिधि साथ साथ हमारे फैमिली मेंबरों को भी सर जोड़ा गया है।
1: बिल्कुल, तो विष्णु जी बहुत धन्यवाद अपने विचार साझा करने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि आपका कारोबार इसी तरह से आगे भी बढ़ता रहे। तो राजेश जी, अभी आपने विष्णु जी को सुना, वो अपनी
2: जी
1: बात
2: जी
1: बता
2: सर
1: रहे थे
2: हम
1: कि किस तरह से जो है उन्हें इस योजना का फायदा मिला और किस तरह से उन्होंने अपने कारोबार को आगे बढ़ाया। तो और भी जो लोग इस तरह की योजनाओं का फायदा उठाना चाहते हैं या उनके मन में कोई डर है, कोई शंका है, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
0: उनको मैं कहूंगा कि आप अपने शहर के यूएलबी नेशनल बॉडी होता है आप उनसे संपर्क, और अगर खुद से कर सकते हैं तो हमारे पीएम स्वनिधि के वेबसाइट पे जाकर के या मोबाइल ऐप से डायरेक्टली आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपके पास स्ट्रीट वेंडिंग का सर्टिफिकेट या कोई डॉक्यूमेंट है तो, और
1: बिल्कुल
0: नहीं है तो वेंडिंग के लिए पहले अप्लाई करें, और स्ट्रीट वेंडिंग और लोन अप्लीकेशन अब कंबाइंड रूप से एक साथ होता है, तो आप जब अप्लाई करेंगे तो पहले आप यूएलबी आपका स्ट्रीट वेंडिंग का कंफर्मेशन करेगा जिसको हम LOR कहते हैं, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, और जब आपका LOR यूएलबी अप्रूव कर देगा तो फिर आपका एप्लीकेशन बैंक को चला जाएगा लोन के लिए।
1: तो राजेश जी, इस महत्वपूर्ण जानकारी को साझा करने के लिए आपका
0: धन्यवाद
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपका।
3: अभी आप सुन रहे थे पीएम स्वनिधि के 6 वर्ष वित्तीय समावेशन के माध्यम से रेहड़ी पटरी विक्रेताओं के सशक्तिकरण पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के महाप्रबंधक राजेश कुमार और पत्रकार सौरभ शुक्ला। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।

श्रोताओं नमस्कार। खेल दर्पण के आज के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। आज के इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक परिचर्चा। परिचर्चा का विषय है चुनौतियों से कैसे पार पाएं चैंपियन। परिचर्चा में भाग ले रहे हैं

0: अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती खिलाड़ी संजय राय तथा फुटबॉलर नीरज गुप्ता। परिचर्चा का संचालन कर रहे हैं दीपांकर मिश्र। तो आइए सुनते हैं परिचर्चा, चुनौतियों से कैसे पार पाएं चैंपियन। श्रोताओं नमस्कार, खेल दर्पण के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। श्रोताओं, भारत जैसा कहा जाता है कि प्रतिभाओं का देश है, यहाँ ढेरों प्रतिभाएं हैं, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो। आज विशेष रूप से हम भारतीय खेल और खिलाड़ियों के बारे में बातचीत करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, और ऐसा माना जाता है कि भारत में खेलों की बड़ी ही अद्भुत प्रतिभाएं रही हैं और अभी भी हैं। लेकिन जब हम परिणामों से उनकी तुलना करते हैं तो हम देखते हैं कि जैसी प्रतिभाएं हमारे पास हैं, जैसी विशाल जनसंख्या है हमारी, उस तरह का प्रदर्शन जो है वो नहीं हो पाता है, नहीं निकल के आ पाता है। हालांकि व्यक्तिगत प्रतिभाओं की बिल्कुल कमी नहीं है और ये हमारे खिलाड़ियों ने समय समय पर अपने प्रयासों से साबित भी किया है। तो आज इन्हीं सब विषयों पर बात करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है दो विशेष मेहमानों को। एक तो हमारे साथ हैं संजय राय जी, जो कि कुश्ती के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, और साथ में हमारे हैं नीरज गुप्ता जी, जो प्रदेश स्तरीय फुटबॉलर हैं और अभी भी खेल से जुड़े हुए हैं, खेल रहे हैं। तो सबसे पहले तो संजय जी और नीरज जी, आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में मैं स्वागत करता हूं।
1: धन्यवाद।
0: संजय जी, आपसे बातचीत की शुरुआत करते हैं, और जैसा कि मैं अभी कह रहा था कि भारतीय खिलाड़ियों की कुछ अपनी चुनौतियां हैं, अपनी समस्याएं हैं, जो उन्हें कहीं ना कहीं मार्ग में उनके बाधा बन जाती है प्रतिभा के बावजूद। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप एक खिलाड़ी के रूप में कैसे देखते हैं कि कौन सी वो बड़ी चुनौतियां हैं जो एक भारतीय खिलाड़ी को झेलनी पड़ती है।
1: अपने जो खेल और खिलाड़ी से संबंधित जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि सबसे बड़ी चुनौती क्या है खिलाड़ियों के लिए, तो एक खिलाड़ी को आगे बढ़ने के लिए, उसके परफॉर्मेंस के लिए और उसके प्रैक्टिस के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है उसका फाइनेंशियल सपोर्ट। हम अपने एकल प्रयासों से एक लेवल तक तो पहुंच सकते हैं, हम एक स्टेट लेवल, नेशनल लेवल तक तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन जब हम इससे ऊपर उठना है हमको, और इससे ऊपर का जब हमारा टारगेट होगा और उसको अचीव करना होगा, तो वहाँ हमारी जो भी क्षमताएं हैं, पूरी क्षमताओं के साथ प्रैक्टिस करने के साथ साथ जो सबसे बड़ी चुनौती हमारे लिए वो है फाइनेंशियल सपोर्ट। खिलाड़ी के लिए जैसे कुश्ती से है या हॉकी का प्लेयर है या किसी भी फील्ड का प्लेयर है, तो हर गेम के अलग अलग इक्विपमेंट हैं, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, और फिर जो एक खिलाड़ी को जो आगे बढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान जिसका होता है, जिसको गुरु कहा जाता है, कोच कहा जाता है, वो सबसे बड़ा मायने रखता है।
0: चलिए इस पर हम आगे बात करेंगे, उससे पहले हम जान लेते हैं नीरज जी से कि नीरज जी, आपको क्या लगता है जो खिलाड़ियों को चुनौतियां का सामना करना पड़ता है भारतीय खिलाड़ियों को, आपके हिसाब से वो कौन ऐसी चुनौतियां हैं जिनका आप जिक्र करना चाहेंगे?
2: मैं संजय राय जी के बात से पूरी तरह सहमत हूँ। खिलाड़ियों को सबसे बड़ी चुनौती बेसिक होती है कि जिस खेल में वो जुटे हुए हैं उस खेल का उनको जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है, इन्वायरमेंट, इन दोनों चीजों पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। जैसे कि अलग अलग खेल के अलग अलग इक्विपमेंट होते हैं, फाइनेंशियल की जो इन्होंने बात कही है वो भी बात है, इसमें इसकी भी चुनौती का सामना करना पड़ता है।
0: आपने जैसे कहा कि आर्थिक सहायता, तो आप लोग एक वरिष्ठ खिलाड़ी हैं, संजय जी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आर्थिक पक्ष जो है खेल का, वो एक खिलाड़ी को किस तरह से प्रभावित करता है और उसके प्रदर्शन को किस तरह से प्रभावित करता है?
1: फाइनेंशियल सपोर्ट का तात्पर्य यह है कि खिलाड़ी की, जैसे हम चूंकि कुश्ती से जुड़े हुए हैं तो हमारा एक रूटीन वर्क के बाद एक रूटीन डाइट चार्ट होता है। अगर हमने आज सुबह के सेशन में 3 घंटे वर्जिश किया है, पसीना बहाया है, तो नेक्स्ट सेशन में हमें बिल्कुल तैयार होने के लिए इस तरह की डाइट चाहिए कि बीच का जो समय है उसको रिकवर कर ले वो, यानी कि हम अपने इवनिंग सेशन के लिए पूरी तरह से फिट हो जाए, हमारी डाइट इस तरह से संतुलित होनी चाहिए। उसमें घी है, बादाम है, दूध है, सूखे मेवे हैं और जो भी सीजन के फल अवेलेबल होते हैं, ये पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए, तब जाके कहीं हमारी रिकवरी इतनी अच्छी हो पाएगी कि हम अपने मॉर्निंग सेशन की ट्रेनिंग के बाद का जो बीच का समय होता है उसमें रेस्ट करने के बाद हम अपने इवनिंग

0: सेशन के ट्रेनिंग के लिए पूरी तरह से तैयार हो पाए। दूसरा चीज इसमें है फाइनेंशियल सपोर्ट में, ये भी है कि हमको कहीं खेलने जाना है या किसी नेशनल लेवल के टूर्नामेंट में अगर हमको जाना है तो हमारे पास जो हम लोगों के खेल के परिधान होते हैं, अब हर चीज काफी महंगी हो गई है, तो जैसे रेसलिंग शूज है, कॉस्ट्यूम है और प्रॉपर जो किट होती है, क्योंकि हमारा इंडिविजुअल गेम है तो इंडिविजुअल गेम में इंडिविजुअल व्यक्ति भी स्पॉन्सरशिप किसी को दे सकता है कि हमें कोई स्पॉन्सर मिल गया, उसने हमारा पूरा खर्चा उठाया, भाई मैं नेशनल खेलने जा रहा हूँ, वो हमारे पूरे नेशनल खेलने जाने से आने तक का जो भी कुछ हुआ, कोई व्यक्ति हमें ऐसा स्पॉन्सर मिल गया या कोई ऐसा हमें सपोर्ट करने वाला मिल गया कि भाई चलो हम आपके बादाम का खर्च उठा लेते हैं, तो ये जैसे एक व्यक्ति नहीं कई लोग मिलके भी एक व्यक्ति को छोटा छोटा हेल्प करके उसको आगे बढ़ाने में अपना सहयोग दे सकते हैं।
1: जी, बड़ी अच्छी बात कही आपने। नीरज जी, हम आपसे भी जानना चाहेंगे, आप फुटबॉलर हैं तो विशेष रूप से फुटबॉल के क्षेत्र में जो आर्थिक पक्ष है, जो आर्थिक मदद है, आर्थिक सहायता है, वो चाहे सरकार से आए या निजी संस्थानों से आए, वो कैसे प्रभावित करती है और अगर उसको बेहतर किया जाए तो कैसे आपके खेल की गुणवत्ता बढ़ सकती है?
2: जैसे कि संजय भाई ने कहा कि हर खिलाड़ी के लिए प्रॉपर डाइट होता है, तो खिलाड़ी अगर 3 घंटे 4 घंटे अपना पसीना बहाता है तो नेक्स्ट जैसे कि लेवल के लिए जो अगर सुबह उसने वर्कआउट किया अपना 3 घंटे 4 घंटे जो भी प्रैक्टिस किया, उसके बाद उस खिलाड़ी की पूरी एनर्जी जो है एग्जॉस्ट हो जाती है। जो एनर्जी उनका एग्जॉस्ट हुआ तो उसके लिए एक प्रॉपर डाइट होता है, मेंटेन किया जाता है, चार्ट वगैरह उसकी तैयार होती है, तो उस डाइट को प्रॉपर पूरा करने के लिए एक रूटीन के हिसाब से अपना आदमी डाइट बराबर करता है, तो उसमें भी खर्चे भी ज्यादा आते हैं। जैसे इन्होंने बताया कि कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते हैं, जूस वगैरह टाइम टू टाइम हर चीजें, तो डाइट पर भी असर पड़ता है, डाइट पे जो फाइनेंशियल आता है उस पर भी असर, वो भी खिलाड़ी के मतलब उस पर असर करता है, आगे बढ़ने के उस पर असर आता है उससे भी।
1: चलिए, तो इसी बात को हम आगे बढ़ाते हैं और मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि चलिए, जो लोग खेल से जुड़े हुए हैं, अगर अपने खेल के, अपने प्रदर्शन की बदौलत उनकी कहीं नौकरी लग जाती है तो फिर भी उनके सामने एक विकल्प खुल जाता है, या फिर वो अपने खेल में बहुत ही ऊंचा नाम कर लें, किसी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में खिताब ले आए, तो फिर उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है। लेकिन जो बीच के खिलाड़ी हैं, जो अभी तक उतना नाम नहीं कर पाए हैं या अभी भी संघर्षरत हैं, तो एक बात तो ये बताइए कि उनके लिए किस तरह की सहायता उपलब्ध है सरकार की ओर से, फेडरेशन की ओर से, और उसमें कहाँ कमी है जिसे पूरा किए जाने की जरूरत है?
0: बहुत ही अच्छा सवाल रहा आपका ये, क्योंकि ये बिल्कुल आज के परिवेश में खिलाड़ी जिन चुनौतियों से जूझ रहा है वो सबसे बड़ा सवाल यही है कि खिलाड़ी को फाइनेंशियल सपोर्ट कैसे किया जाए। तो सबसे बड़ी चीज है कि उसमें पहले तो हम फेडरेशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं कुश्ती फेडरेशन की बात कर रहा हूं, तो कुश्ती फेडरेशन अपने हर आयु वर्ग के सीनियर नेशनल, जूनियर नेशनल, सब जूनियर नेशनल, अंडर 15, अंडर 23 लेवल का नेशनल चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज करती है पूरे देश में। तो हर वेट कैटेगरी में फर्स्ट, सेकेंड और दो थर्ड, मतलब 4 प्लेयर सेलेक्ट किए जाते हैं हर वेट कैटेगरी से, मेन एंड वोमेन, और उसके बाद इन लोगों को रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया एक कैंप देती है जिसको नेशनल कैंप कहते हैं, हम लोग इंडिया कैंप भी उसको कहते हैं, तो उसमें सारी व्यवस्था रहती है और सारे उसमें आपको इंटरनेशनल लेवल के सारे कोचेज होते हैं, वो आपको उनका प्रैक्टिस रूटीन पूरा मेंटेन करना होता है और कंटिन्यू आपको उसमें ड्यूरेशन होता है इंडिया कैंप का, 90 दिन का होता है, 60 दिन का होता है, 30 डेज का होता है। इसके अलावा जो प्लेयर छूट जा रहे हैं, जिनका नेशनल चैंपियनशिप में मेडल नहीं आ पा रहा है, जिनके अंदर प्रतिभा तो है लेकिन भाई वहां पे बस फर्स्ट, सेकेंड और दो थर्ड की ही जगह है, तो इसमें जो लोग सक्सेस हो गए, जिनका मेडल आ गया वो तो ठीक है, लेकिन जो बच्चे छूट जा रहे हैं उनके लिए भारतीय कुश्ती संघ ने अभी तत्काल में रैंकिंग सीरीज का प्राविधान डाला है। रैंकिंग सीरीज का नियम यह है कि उसमें चाहे एक वेट कैटेगरी में जितने भी लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसका कोई नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट कोई बाउंड नहीं है उसमें, और रैंकिंग सीरीज में अगर हम या जो भी प्लेयर है और रेसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं वो, और रैंकिंग सीरीज में अगर वो मेडल देते हैं तो उनके लिए सबसे बड़ा एक प्लेटफॉर्म ये मिल जाता है कि वो सीधे इंडिया कैंप के हकदार हो जाते हैं, उस नेशनल कैंप के हकदार हो जाते हैं जिस नेशनल कैंप के लिए उन्होंने एक ख्वाब बना के बरसों से ग्राउंड पे मेहनत किया था, पसीना बहाया था, और फिर वो उसी इंडिया कैंप से, नेशनल कैंप से वो शुरुआत होती है जो सपना लगभग हर एक खिलाड़ी देखता है कि जो भी टीम बाहर जानी होती है नेशनल कैंप से ही उन बच्चों का सिलेक्शन होता है, ट्रायल लिया जाता है, उसमें जो भी बच्चे फर्स्ट आते हैं वो उस समय की जो भी चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज होनी रहती है उसके हिसाब से वो ट्रायल होता है, उसमें बच्चे सेलेक्ट होते हैं और वो बच्चे जाते हैं। तो एक तो

0: प्रेशन का ये बहुत बड़ा एक खिलाड़ियों के लिए कदम है। और इसके अलावा एक फाइनेंशियल सपोर्ट में जैसे रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया WPL रेसलिंग प्रो लीग ऑर्गेनाइज करती है, ये भी कहीं ना कहीं बहुत ही एक खिलाड़ियों के लिए फायदेमंद है कि जैसे अगर उसमें कोई भी खिलाड़ी जिसका एक अच्छा परफॉर्मेंस रहा है अपने करियर का और उसको कहीं से फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल पा रही है और अचीवमेंट उनका अच्छा रहा है और कंटिन्यू वो मतलब पार्टिसिपेशन कर रहे हैं नेशनल टूर्नामेंटों में, तो उनकी फेडरेशन के माध्यम से जब टीमें इनकी बोली लगती हैं तो वो अपना जो कुछ भी डॉक्यूमेंट्स है अवेलेबल कराते हैं, तो जो भी ऑनर है उनको अगर कोई ऑनर लेता है अपनी टीम से खेलने के लिए तो वहाँ एक अच्छा पैसा मिलता है उनको। तो एक फाइनेंशियल सपोर्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाता है कि लगभग हमको ऐसा लगता है कि एक खिलाड़ी को अगर एक टीम ऑनर अपनी टीम से खेलने के लिए खरीद लेता है तो वो टोटली चीज जो फाइनेंशियल हेल्प की हम लोग बात कर रहे हैं कि एक प्लेयर का पूरा हो जाता है, फाइनेंशियल रूप से वो मजबूत भी हो जाता है जिससे वो अपनी आगे की तैयारी और बेहतर तरीके से कर सके। तो कुल मिला के बहुत ही अच्छा एक माहौल तैयार हो रहा है देश में, फेडरेशन की अच्छी पहल है। और नीचे थोड़ा सा एक कहना चाहेंगे कि जैसे एक तो हम एक लेवल पे हम बात कर रहे हैं लेकिन उस लेवल तक पहुंचने के लिए चूंकि वो ग्रामीण परिवेश जो अपना है वहां से जहां से हम प्रतिभा को तैयार करते हैं नर्सरी जो होती है खेल की, क्योंकि खिलाड़ी एक तो खिलाड़ी हमेशा अभाव में होता है, प्रतिभा अभाव में होती है, तो हमें ये जरूरत है। मैं तो ये कहूंगा कि अगर मैं पहले खुद को बोलता हूं कि अगर मैं ही हूं तो हमें अपने गांव में या हमें उस जगह पे जहां मैं फिलहाल अभी हूं वहां पे ऐसा देखना चाहिए, वाच करना चाहिए हम लोगों को कि भाई ऐसा कौन सा बच्चा है, अगर वो बच्चा है तो हमें उसका हेल्प इतना ही हमें उसको हेल्प करना है कि उसको एक अच्छी जगह बतानी है जहां से उसके रुचि के हिसाब से उसके शौक उसके मुताबिक जिस गेम को खेलना चाहता है उसका कोचिंग देने वाला कोई व्यक्ति हो, उसको वहां पे एक ग्राउंड मिल जाए जिस पे जाकर वो अपनी प्रैक्टिस कर सके। तो ये सब चीजें अगर हम छोटी छोटी चीजों को एक्नॉलेज करें हम सभी लोग मिलके जो भी लोग खेल से जुड़े हैं तो काफी कुछ चीजें आसान हो जाएंगी।
1: जी संजय जी, आपने बड़ी अच्छी बात की और मैं इस पर थोड़ा और विस्तार से जानना चाहूंगा कि जो आपने ग्रामीण क्षेत्र की बात की तो हम सब जानते हैं कि भारत में ढेरों प्रतिभाएं हैं जो कि ग्रामीण क्षेत्रों से आती हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन उन्हें तराशना और उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाना एक बड़ी चुनौती है। तो आप खुद ग्रामीण पृष्ठभूमि से आए हैं तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी शुरुआत कैसे हुई और आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा एक ग्रामीण पृष्ठभूमि का खिलाड़ी होने के कारण।
0: बहुत ही अच्छा सवाल, क्योंकि मैं ग्रामीण परिवेश ग्रामीण पृष्ठभूमि रही मेरी और हमें कुश्ती से बड़ा लगाव था, परिवार में भी फादर भी कुश्ती करते थे और हम अपने जिस स्कूल में माध्यमिक शिक्षा परिषद का स्कूल हुआ करता था जिस स्कूल में मैं पढ़ने जाता था उसी स्कूल के रास्ते में अखाड़ा हुआ करता था, तो जब हम सुबह स्कूल के लिए निकलते थे तो रास्ते में वहाँ जो उस्ताद जिनको कहा जाता है गांव की भाषा में उस्ताद कहा जाता है, तो उस्ताद जी जो बच्चों को प्रैक्टिस कराते थे और जो लोग अब वर्जिश करते थे देख के बड़ा अच्छा लगता था उनकी शरीर देख के, तो मन में आता था कि काश हमारी भी शरीर ऐसी होती हम भी मेहनत करते। तो ये तो बात है 6वीं 7वीं जब हम लोग पढ़ते थे, फिर उससे ऊपर जब मैं 8वीं 9वीं आया तो मैं थोड़ा और बड़ा भी हो गया था और शरीर भी काफी अच्छी हो गई थी, क्योंकि अखाड़े पे नहीं जाते थे हम लोग लेकिन जब भी मौका मिलता था अपने घर पे अपने दरवाजे पे या कहीं ऐसी जगह जो घर के अगल बगल थी खाली थी वहां पे हम लोग एक वर्जिश का अपना छोटे मोटे गांव वाले जो साधन हुआ करते थे उसको तैयार करके करते थे, तो शरीर इस तरह से ठीक हो रही थी अच्छी हो रही थी और खाने पीने की सारी व्यवस्था थी घर पे दूध घी की सारी व्यवस्था थी। तो हमारे गांव के एक लोग हुआ करते थे जो गोरखपुर उनकी दुकान थी वो, तो उन्होंने देखा था हमको हमारी शरीर देखी उन्होंने गांव में जाके, तो उन्होंने बोला कि नहीं आपको गोरखपुर चलना है कुश्ती के लिए, फादर से बात किया उन्होंने, फादर ने जब हमसे बात किया तो हम तैयार हो गए, तो वो लेके हमको गोरखपुर आए, तो गोरखपुर आने के बाद यहाँ पे प्रॉपर हमारी कुश्ती का अभ्यास शुरू हुआ था, कुश्ती का अभ्यास शुरू हुआ और 1 साल तो मैं बिल्कुल गाँव से गोरखपुर आने जाने का कार्यक्रम चलता रहा, लेकिन 1 साल के बाद जब मैं ट्रायल दिया आवासीय छात्रावास के लिए जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा संचालित होता है, तो उसमें ट्रायल देने के बाद उसमें पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फिर मंडल लेवल पे फिर स्टेट लेवल पे ट्रायल होने के बाद मैंने अपने सारे ट्रायल क्लियर किए, उसके बाद उसमें हमारा सिलेक्शन हुआ कैंप के लिए और जो स्टेट कैंप लगा स्टेट कैंप के बाद फिर फाइनल ट्रायल हुआ तो हमारा सिलेक्शन हॉस्टल के लिए हुआ, तो जो

0: सबसे बड़ी चीज है बेसिक जो है कि ग्रामीण रूरल क्षेत्र में उन लोगों का या ऐसे लोगों का अभाव है जो, जैसे कोई कुश्ती का नॉलेज होना चाहिए भाई, जिसको कुश्ती का नॉलेज है वही कुश्ती का ट्रेनिंग आपको दे सकता है, जिसको बैडमिंटन का नॉलेज है वही बैडमिंटन की ट्रेनिंग दे सकता है। तो ये सबसे बड़ी चीज है जो कि ग्रामीण क्षेत्र में इनकी अवेलेबिलिटी बहुत कम है, जबकि हमारी नर्सरी ही वहीं से तैयार होती है। अगर हम उस लेवल पे ये चीज अपना कर लेते हैं कि हम अपने ब्लॉक स्तर पे या अपने एक ग्राम पंचायत स्तर पे, जिसको कह सकते हैं कि अगर थोड़ा सा इसको वो किया जाए कि हम ग्राम पंचायत स्तर पे एक खेल का मैदान हो, वहां पे कम से कम इस तरह के दो चार लोग, जैसे गवर्नमेंट के पास बहुत सारी योजनाएं हैं चल रही हैं शिक्षा के क्षेत्र में चल रही हैं, तो उसी तरह से इसके लिए भी एक पहल करनी होगी कि इस तरह के लोग चिन्हित किए जाएं जो उस ग्राम सभा के अंतर्गत हों, जिनको कुश्ती का ज्ञान हो, जिनको वॉलीबॉल का ज्ञान हो, जिनके अंदर एथलेटिक्स का नॉलेज हो, तो उनसे सुबह शाम एक वो करके और ग्राउंड पे बच्चों को कुछ टिप्स दिए जाए जिससे बच्चे तैयार हो और उनके नॉलेज से उनको इतना लाभ हो कि उस गेम में वो मतलब करने के लिए उनके अंदर जागरूकता हो, उस गेम के प्रति उनका लगाव बढ़े और वर्क करें। इसके अलावा आता है कि अब जैसे हमने आवासीय छात्रावास का आपसे अभी जिक्र किया था, तो आवासीय छात्रावास कुश्ती के अलावा उत्तर प्रदेश सरकार के पास इस समय स्पोर्ट्स हॉस्टल है, स्पोर्ट्स हॉस्टल वीर बहादुर सिंह गोरखपुर और स्पोर्ट्स कॉलेज सैफई। तो लगभग लगभग प्रदेश में स्पोर्ट्स हॉस्टल और स्पोर्ट्स कॉलेज इस लेवल के हैं और इस स्थिति में है प्रदेश में कि स्पोर्ट्स कॉलेज जैसे गोरखपुर स्पोर्ट्स कॉलेज वीर बहादुर सिंह है, इसमें कक्षा छठवीं से एडमिशन स्टार्ट हो जाता है। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज जो लखनऊ में है उसमें कक्षा नौवीं से एडमिशन स्टार्ट हो जाता है। तो हमें तो सिर्फ एक से और पांचवीं तक ट्रेनिंग देनी है, क्योंकि पांचवी के बाद तो गवर्नमेंट ने एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है बच्चे के लिए। तो एक से और पांचवी तक का जो जीमा है वो शायद सिर्फ गवर्नमेंट के ही हिस्से नहीं है, उसमें हम सबकी भागीदारी होनी चाहिए कि एक से पांचवी तक का जो बच्चा है उसके तैयार करने के लिए हमें खुद समय निकालना होगा, हमें खुद एक पहल करनी होगी। और उसके बाद से हम जब पहल करेंगे तो निश्चित ही अगर हम 10 बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं तो नहीं 10 तो 2 बच्चे तो जरूर सेलेक्ट होंगे उस आवासीय छात्रावास से, उनको जरूर लाभ मिलेगा, उनका करियर जरूर आगे बढ़ेगा। तो ये एक तरह से हम सबकी जिम्मेदारी है अगर हम स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं और स्पोर्ट्स में कुछ नया अगर करना है तो हमें अपने आसपास के बच्चों को देखना होगा कि वो क्या कर रहे हैं।
1: संजय जी, आपने जैसा कहा कि पांचवी तक हमें प्रयास करना है और उसके बाद कहीं ना कहीं एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है जहां की खिलाड़ी जाकर अपनी प्रतिभा संवार सकते हैं और उन्हें एक रास्ता मिल सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि सूचना की कमी एक बड़ा कारण है, जो आप चीजें बता रहे हैं उसकी भी सूचना बहुत सारे लोगों के पास नहीं
0: नहीं
1: है,
0: है आज के
1: विशेष
0: डेट में।
1: करके छोटे शहरों और गांवों में तो इसकी बहुत ही कमी है। तो आकाशवाणी का एक माध्यम है जो कि सूचना और अच्छी सूचना का प्रसार करे, ये हमारा कार्य भी है। तो आकाशवाणी के माध्यम से आप हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि जो प्रतिभाएं छोटी जगहों पे हैं, जिनके पास अभी सूचना के उतने साधन नहीं हैं और वो इस द्वंद्व में हैं, इस असमंजस में हैं कि वो कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, किससे संपर्क करें ताकि उन्हें अपनी प्रतिभा को दिखाने का एक मौका मिले, उसे तराशने का एक मौका मिले, तो आप जो लोग नई शुरुआत कर रहे हैं उनको कौन सी चीजें ऐसी हैं जो उन्हें जाननी चाहिए, उन्हें आप बताना चाहेंगे वो किससे संपर्क करें, किसके पास जाएं?
0: ये बहुत अच्छा रहा आपने चर्चा किया इस पे। ये वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज गोरखपुर, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ और स्पोर्ट्स कॉलेज सैफई, पूरा इसको कहा जाए कि व्यापक प्रचार प्रसार नहीं हो पाता है। आज भी फार्म बिक चुके हैं, लोगों ने फार्म भर दिया है, लेकिन आज भी अगर आप ग्रामीण परिवेश में जाएंगे, किसी गांव में जाके किसी खेलने वाले बच्चे से जो एथलेटिक्स का शौकीन है या उसकी प्रैक्टिस करता है उससे पूछेंगे तो बताएगा कि नहीं, हमें नहीं पता कि फार्म मिला कि नहीं मिला। तो ये प्रचार प्रसार बहुत जरूरी है। ग्रामीण क्षेत्र में तो बाकायदा मतलब इसकी सूचना भेजी जानी चाहिए। तो इस सब हर डिस्ट्रिक्ट में एक जिला खेल कार्यालय होता है, तो जैसे ही ये फार्म बिकने होते हैं तो सबसे पहले इनकी नोटिस जिला खेल कार्यालय को जाती है। वो जिला खेल कार्यालय पे नोटिस चस्पा होती है, उस पे लिखा रहता है कि फला से फला डेट तक ये फार्म, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ, वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज गोरखपुर का फार्म फला से फला डेट तक वितरित किया जाएगा। यहां से आप उसकी एक निर्धारित उसका शुल्क होता है, वो शुल्क देके आप उस फार्म को वहां से प्राप्त कर सकते हैं। और इसके अलावा जैसे एक रीजनल कार्यालय होता है, तो आप अगल बगल के अगर जिले के खेल कार्यालय से चीज स्पष्ट नहीं होती है तो आप रीजनल ऑफिस पे पहुंच सकते हैं, जहां से 100

0: परसेंटेज स्पष्ट होनी ही होनी है कि ये फार्म बिकेगा, कब से बिकेगा, इसका मूल्य क्या निर्धारित होगा, वो सारी चीजें आपको जिला खेल कार्यालय से अगर नहीं मिल पाती हैं तो आप अपने रीजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर से ले सकते हैं, जो हर रीजन में एक रीजनल स्पोर्ट्स अफसर का ऑफिस बना हुआ है, जहाँ से जो उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत रन करता है, आपको सारी जानकारियाँ वहाँ से मिल सकती हैं, बशर्ते कि आपको वहाँ तक जाना होगा।
1: मतलब ये हुआ कि जो भी नई प्रतिभाएं हैं, जो छोटे शहर और गांव के खिलाड़ी हैं, वो अपने जिले के खेल कार्यालय
0: जी
1: और जो स्थानीय केंद्र हैं
0: जी
1: उसके संपर्क में रहें, तो उन्हें समय आने पर जो महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं
0: जी
1: वो प्राप्त होती रहेंगी। चलिए नीरज जी, एक चीज जानना चाहेंगे कि फुटबॉल में भारत में कई प्रतिभाएं समय समय पर दिखती हैं, बड़े नाम आते हैं, लेकिन अगर एक टीम के रूप में चर्चा की जाए तो भारतीय टीम कहीं ना कहीं फीफा की रैंकिंग में बहुत नीचे है। तो इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बावजूद एक टीम के रूप में हमारा प्रदर्शन जो है अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इतना लचर क्यों है, इसके मुख्य कारण क्या है?
2: इसके मुख्य कारण ये है कि खिलाड़ियों को सही जो दिशा निर्देश है वो नहीं मिल पाता है। जैसे कि संजय भाई ने कहा अभी कि खिलाड़ियों को जानकारी नहीं हो पाती है, आगे इसलिए भी नहीं बढ़ पा रहा है फुटबॉल का कि हमारी देश की जो टीम है ना बढ़ने का कारण यही है कि खिलाड़ियों को सही चीजें और सही फैसिलिटी वगैरह नहीं मिल पाती, कोई सपोर्ट नहीं कर पाता है, जो प्रतिभाएं होती हैं वो दबी रहती हैं। अभी भी हम गांव क्षेत्र में जाएं तो खिलाड़ियों को देखें तो अच्छे अच्छे खिलाड़ी वहां पर भी मौजूद हैं, पर उनको तराशने की ही जरूरत है। ये सब चीजें हैं जो कि थोड़ा सा
1: ये चुनौती
2: जी
1: बनती है। जी संजय जी, हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं और मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि संजय जी जो हैं वो कुश्ती के साथ ही कुश्ती की एक नया प्रकार है ग्रैपलिंग रेसलिंग, उससे भी जुड़े हुए हैं और उसके बड़े ही अच्छे खिलाड़ी हैं। हालांकि ये एक नई विधा है कुश्ती की और इससे बहुत सारे लोग वाकिफ नहीं हैं। तो संजय जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ग्रैपलिंग रेसलिंग जो है वो क्या है, वो पारंपरिक कुश्ती से किस तरह से अलग है, और अगर ग्रैपलिंग रेसलिंग में कोई अपना करियर बनाना चाहता है तो इसके लिए उसे क्या करना चाहिए?
0: ग्रेपलिंग रेसलिंग जैसा नाम दिया गया है इसको, ग्रेपलिंग रेसलिंग रेसलिंग नाम इसलिए दिया गया कि रेसलिंग ही इसको, रेसलिंग की जो भी फेडरेशन होती है, चाहे वो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग UWW जो वैश्विक संस्था है कुश्ती की, उसी के अंतर्गत रन करती है। और दूसरी चीज की किसी भी देश में जो भी ग्रेपलिंग की फेडरेशन होगी उस देश की जो नेशनल एसोसिएशन फेडरेशन होगी उसी के अंतर्गत संचालित की जाएगी, कोई अलग उसके लिए संस्था अलग से नहीं बना सकता है। तो ये ग्रेपलिंग रेसलिंग की एक एसोसिएट स्टाइल है, जैसे कि जो प्रोफेशनल स्टाइल है रेसलिंग की ग्रीको रोमन और फ्री स्टाइल, उसके बाद ग्रेपलिंग एसोसिएट स्टाइल में आता है रेसलिंग की। तो ग्रेपलिंग रेसलिंग में, ग्रेपलिंग और रेसलिंग में सिर्फ अंतर इतना ही है कि ग्रेपलिंग रेसलिंग में जैसे रेसलिंग और जूडो को मिला के दोनों की टेक्निक, कुछ टेक्निक इसकी रेसलिंग से ली गई हैं और कुछ टेक्निक जूडो से ली गई हैं। तो रेसलिंग और जूडो को मिला के इसकी सारी टेक्निक बनी हुई है और इसको सबमिशन रेसलिंग भी कहा जाता है। जैसे चोक किया जाता है, चोक होने के बाद से जो लोग मतलब बेहोश हो जाते हैं, इसको तो एक तरह से इसको सबमिशन रेसलिंग भी कहा जाता है। तो सबमिशन रेसलिंग भी इसको कहा जाता है, ग्रेपलिंग रेसलिंग है। और एक बहुत अच्छा प्लेटफार्म है, अभी भारतीय कुश्ती संघ ने इसके लिए अलग से एक कमेटी भी अडॉप्ट कर दिया है कंट्री में अपने, ग्रेपलिंग कमेटी ऑफ इंडिया अंडर एजिस रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। और इसमें एक अलग से एक ऑप्शन मिल गया उन लोगों के लिए कि जैसे जो लोग काफी वर्क कर रहे थे लंबे टाइम से और सफलता नहीं मिल पा रही थी, तो मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि आप एक बार ग्रेपलिंग रेसलिंग को भी करके देखो, हो सकता है कि आपकी वही टेक्निक वही मेहनत यहाँ एक अच्छे मुकाम पे आपको लेके जाए। और अब इसको पूरे देश में इसके सेंटर बनाने की तैयारी चल रही है, जैसे रेसलिंग के सेंटर हैं तो इसके भी हर जिले पे इसके सेंटर बनाए जाएंगे, जोन पे इसके सेंटर बनाए जाएंगे। और अभी फिलहाल अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी खिलाड़ी अगर इसको सर्च करना चाहता है तो यूट्यूब पे भी काफी इसकी इंटरनेशनल लेवल की, वर्ल्ड चैंपियनशिप की, एशियन चैंपियनशिप की, यूरोपियन चैंपियनशिप की सारी वीडियो पड़ी हुई हैं, जो भी बड़े इंटरनेशनल लेवल के टूर्नामेंट है, तो उससे भी आप डाउनलोड करके उसको देख सकते हैं कि क्या है, कैसे है, उसका बेसिक टेक्निक क्या है, उसमें मतलब क्या आपको करना होगा, कैसे चेंज लाना होगा, आप अगर रेसलिंग से ग्रेपलिंग रेसलिंग में आते हैं तो आपको क्या चेंजिंग करनी होगी। तो कहीं ना कहीं उसमें अगर कोई रेसलिंग में काफी वर्क कर रहा है कोई बच्चा और उसका रिजल्ट नहीं आता है तो एक बार वो चेंज कर सकता है अपना प्लेटफॉर्म, है आप रेसलिंग में ही लेकिन एक फॉर्मेट अलग हो गया है, आप रेसलिंग से दूर नहीं गए हैं, तो आप अपना प्लेटफॉर्म चेंज कर सकते हैं। और इसमें हो सकता है आप अगर मेहनत किए हैं, मेहनत करेंगे तो इसमें आप

0: बेटर रिजल्ट आ सकता है।
1: जी, बातें करते करते वक्त का पता नहीं चला और हम अपने कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ चले हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा संजय जी, कि जो नए प्रतिभाएं हैं, नए खिलाड़ी हैं, वो खेल में अगर अपना करियर बनाना चाहते हैं तो उन्हें आप दोनों क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: संदेश किसी भी खिलाड़ी के लिए तो सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि आप खेल हो, शिक्षा हो या किसी भी क्षेत्र में, तो एक अनुशासन बहुत बड़ा, अनुशासन का बहुत बड़ा रोल होता है हमारे जीवन में, जिसको हम फॉलो करते हैं। और अनुशासन के साथ साथ हमें अपना एक लक्ष्य निर्धारित करना होगा, क्योंकि अगर आप लक्ष्य नहीं निर्धारित करते तो आपका वर्क नहीं हो सकता है। वर्क के लिए आपका लक्ष्य ही आपको प्रेरित करेगा कि आपको कितना वर्क करना है। अगर आप लक्ष्य अपना नेशनल लेवल का लेते हैं कि हमें नेशनल से गोल्ड लेना है, तो वो आपका लक्ष्य प्रेरित करेगा कि आज आपको इवनिंग सेशन में कितना वर्क करना है। और अगर आप इंटरनेशनल लेवल का टारगेट लेते हैं कि हमको इंटरनेशनल लेवल में, एशियन चैंपियनशिप में, कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में हमको मेडल लेना है, तो हमेशा आपको एक लक्ष्य देना होगा खुद को, क्योंकि उस लक्ष्य को दिए बिना आप दिशाहीन रहेंगे, क्योंकि उसी लक्ष्य के लिए आपको वर्क करना है। आपको और कुछ करना नहीं है, सिर्फ उस लक्ष्य को पाने के लिए वर्क करना है। और जितना ही आपका लक्ष्य ऊंचा होगा, उतना ही आपकी प्रैक्टिस उम्दा होगी। और जब आपकी प्रैक्टिस उम्दा होगी, आपकी प्रैक्टिस इस काबिल होगी कि आप नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे फाइट कर सकें, तो निश्चित ही मेडल भी आएगा। एक बार आप पार्टिसिपेशन करने जाएंगे, एक बार कुछ और आपका अनुभव बढ़ेगा, अगली बार उसी टूर्नामेंट में आप जाएंगे तो आप अचीवमेंट लेके आएंगे। तो आपको एक लक्ष्य देना होगा, और वो लक्ष्य ऐसा होना चाहिए कि बिल्कुल, मतलब आपको सोने ना दे, एक जुनून हो उस लक्ष्य को पाने के लिए। आपके अंदर एक जुनून फिर हो जाएगा कि हमें उसे अचीव करना है तो करना है, चाहे कुछ भी हो। तो ये लक्ष्य तो निर्धारित करना होगा, बिना लक्ष्य के आप वर्क नहीं कर सकते हैं।
1: नीरज जी, आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
2: एक खिलाड़ी के लिए अनुशासन तो बहुत जरूरी है। जिस खेल में वो रुचि रखते हैं, उस खेल में उनको पूरा अपना 100% देना होता है। अगर अनुशासन नहीं रहेगा तो फिर आप वो नहीं कर पाएंगे। और जिस खेल में वो रुचि रखते हैं, उस खेल को आगे तक अपने, मतलब स्वयं को आगे ले जाने के लिए उस पर बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा कभी कभी होता है कि कुछ खिलाड़ी होते हैं, कुछ कुछ टीमें वगैरह जिला की या स्कूल की, यूनिवर्सिटी की, नेशनल की, मतलब जो टीम ट्रायल वगैरह होती है, उस ट्रायल में अगर वो एक दो बार छट भी जाते हैं, फिर भी उनको हताश नहीं होना चाहिए। उनको निरंतर उस पर मेहनत करते रहना है। टीम में सिलेक्शन होगा, फिर उससे वो और आगे बढ़ेंगे। ऐसे कई चुनौतियां भी आती हैं सामने कि आदमी थोड़ा सा डगमगा जाता है अपने रास्ते से, कि हमारा इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ, तो थोड़ा सा मन में निराश आ जाता है। खिलाड़ी फिर भागने लगता है पीछे कि मेरा तो नहीं हो पा रहा है कुछ, मैं क्या करूं। तो इसलिए खिलाड़ी को हमेशा अपने प्रयास करते रहना चाहिए।
1: संजय जी, नीरज जी, आप लोगों ने जैसी चर्चा की, मुझे उम्मीद है कि आकाशवाणी के माध्यम से ये सारी बातें, जिसमें सारी सार्थक बातें हुई हैं, वो एक बड़े वर्ग तक और छोटे छोटे सुदूर जगहों पे पहुंची होंगी। बहुत सारी काम की बातें निकल कर आईं और बहुत सारी जानकारियां भी हमने जानी, और हम उम्मीद करते हैं कि इसका फायदा एक समाज के बड़े वर्ग को मिलेगा। आप दोनों हमारे स्टूडियो में आए, अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद,
3: धन्यवाद सर।
4: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे परिचर्चा, चुनौतियों से कैसे पार पाए चैंपियन। परिचर्चा में भाग ले रहे थे अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती खिलाड़ी संजय राय तथा फुटबॉलर नीरज गुप्ता। परिचर्चा का संचालन कर रहे थे दीपांकर मिश्र। इसी के साथ आज का खेल दर्पण का यह अंक यहीं समाप्त होता है। हमें अनुमति दीजिए, नमस्कार।
5: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे राज्य स्तरीय कार्यक्रम खेल दर्पण, मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत पंडित सतीश चंद्र का सितार वादन, राग पीलू।

FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं राग मारु बिहाग में धमार गायन। कलाकार हैं अभय नारायण मलिक। पखावस पर आपके साथ संगत की है तोताराम शर्मा ने।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे राग मारू बिहाग में धमार गायन। कलाकार थे अभय नारायण मलिक, पखावज पर इनके साथ संगत की तोताराम शर्मा ने। इसी के साथ ही शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को है अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति का गठन किया। इस समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान करेंगी। समिति एक माह के अंदर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस बीच बोर्ड ने आज कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन

0: की गई प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन हेतु ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। यह सुविधा केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां प्राप्त कर ली हैं। भारत ने नेपाल के साथ सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की किसी भी तरह की हस्तक्षेप को नकार दिया है। कुछ दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने काफी समय से लंबित विवाद को सुलझाने में चीन और ब्रिटेन के शामिल होने की मांग की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सीमा मुद्दों के सभी पहलुओं को सुलझाने के लिए स्थापित द्विपक्षीय तंत्र मौजूद हैं। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने जम्मू कश्मीर के बारे में पाकिस्तान यूरोपीय संघ के संयुक्त वक्तव्य में अनुचित संदर्भों को भी खारिज कर दिया है।
1: भारत के आंतरिक मामलों पर संयुक्त वक्तव्य में किए गए ऐसे अवांछित संदर्भों को अस्वीकार करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न तथा अविभाज्य अंग हैं, जिनका ऐसे मामलों पर कोई अधिकार नहीं है। उन्हें इन पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।
0: वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्स कल से चार दिन के भारत दौरे पर रहेंगी। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि डेल्सी रॉड्रिग्स के साथ कैबिनेट के प्रमुख मंत्री भी रहेंगे। श्री जायसवाल ने बताया कि वे इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति शिपोकोसा माशातिले से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच घनिष्ठ मित्रता है और दोनों देश वैश्विक दक्षिण में प्रमुख स्थान रखते हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार की निरंतर वृद्धि का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों पक्षों को प्रौद्योगिकी, औषधीय, ऊर्जा, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग करना चाहिए। इससे पहले उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति से मुलाकात की। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ तथा वायुसेना ने स्वदेश निर्मित वायु से सतह पर मार करने में सक्षम रुद्रम 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ये परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज में अत्यंत कठिन परिस्थितियों में किए गए। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि परीक्षण के दौरान मिसाइल सटीकता के साथ अपने निर्धारित लक्ष्य तक पहुंची। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए डीआरडीओ, भारतीय वायुसेना, रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विकास और उत्पादन भागीदारों तथा संबंधित उद्योग हितधारकों के प्रयासों की सराहना की। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवा और अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। भारत ने श्रीलंका के जाफना विश्वविद्यालय में आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी विद्यार्थियों के लिए अपनी छात्रवृत्ति योजना का विस्तार किया है। श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त संतोष झा ने इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्तियां वितरित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित इस योजना के अंतर्गत अब 100 प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को प्रति माह 7,500 श्रीलंकाई रुपए की सहायता दी जाएगी। यह सहायता उनकी पूरी डिग्री अवधि तक जारी रहेगी। मौसम विभाग ने आज भीतरी कर्नाटक, केरल, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। तटीय आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिम मध्य प्रदेश में गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by R.S. Raghu. The government has constituted a one-member committee to probe into matters relating to procurement of services for on-screen marking OSM system by Central Board of Secondary Education, CBSE. OSM is a new digital evaluation system introduced by CBSE this year for Class 12 board examinations, replacing traditional paper checking. The committee will be chaired by Chairperson of the Capacity Building.